0: बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुंचने लगते हैं।
1: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
2: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
3: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
1: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
4: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
5: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
6: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
0: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
7: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
8: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
0: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते हैं। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही है। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
9: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
0: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिव सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
10: ये जेन ज़ी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
11: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे
12: है सर, असली विलन।
13: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
0: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
10: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
14: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
0: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
10: मैं उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला
0: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
12: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
0: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
10: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
0: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की तीन दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग ना माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
15: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
0: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
16: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
17: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
6: शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई यह मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठे हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे हैं, जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डिलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या ही? ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की है।
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा, पीएम रिलीफ फंड रहता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात ते का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे, ते त्या ठिकाणी गेले आहेत ही अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित FCRA बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या JPC को भेजा जाए. FCRA बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, FCRA के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर FCRA का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. FCRA की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए FCRA नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए FCRA ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको FCRA ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने NDA में शामिल हो सकते हैं. लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या NDA में जाएंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से भारत को आजादी जरूरी है. मध्य प्रदेश की खबर अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जहां ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सरकारी भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है जहां केवल 66 लोगों को नौकरी दी जानी थी वहां पैसा ले लेकर 5 गुना भर्ती कर दी गई.
8: सरकारी नौकरी की लाइन, वो लाइन जिस पर लोकतंत्र की लकीरें खींचती हैं, वो लाइन जहां खड़े खड़े कुछ को नौकरी मिलने पर लड्डू घरों में बंटता है और बहुत से बेरोजगार नौकरी की लाइन में खड़े खड़े ओवरएज हो जाते हैं. लाइन में खड़े इसी लोकतंत्र के इन्हीं बेरोजगारों के नाम पर जब होता है सौदा तो आज तक करता है खबरदार. खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां 66 पदों की आउटसोर्स भर्ती की मंजूरी मिली, लेकिन आरोप है मार्च से अप्रैल के बीच 70,000 रुपए घूस लेकर 318 लोगों को भर्ती कर दिया गया. आज तक के पास मौजूद इस दस्तावेज को देखिए, ये वो जांच रिपोर्ट है जो बताती है कि बेरोजगारों के नौकरी पाने के अरमानों पर भ्रष्टाचारियों ने जेब भरकर धोखा दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सपोर्ट स्टाफ के लिए 66 पदों की आउटसोर्स भर्ती को मंजूरी दी थी. सरकार ने केवल 25% कर्मचारी रखने की स्वीकृति दी थी. मंदसौर में तत्कालीन CMHO ऑफिस ने बिना किसी सरकारी इजाजत के मार्च और अप्रैल के भीतर 318 लोगों को नौकरी पर रख लिया, जो मंजूर पदों से लगभग 5 गुना ज्यादा था. कई नियुक्तियां सीधे तौर पर केवल आउटसोर्सिंग एजेंसी के लेटर हेड पर जारी कर दी गई. एक्स्ट्रा रखे गए इन कर्मचारियों को सैलरी किस फंड से दी जाएगी, इसका कोई वित्तीय प्रावधान तय नहीं था. तत्कालीन CMHO गोविंद सिंह चौहान के भतीजे जयदीप पर आरोप है कि इस पूरे रैकेट में उसने बिचौलिए का काम किया. भर्ती के नाम पर प्रति उम्मीदवार 70,000 रुपए की डीलिंग की जाती थी. पूरा खेल अस्पताल परिसर में मौजूद CMHO के सरकारी बंगले से चलता रहा. पूरा फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब बिना रिकॉर्ड वाले कई कर्मचारियों की सैलरी फंस गई. सैलरी न मिलने पर कर्मचारियों ने शिकायत की, इसके बाद जांच शुरू हुई. उधर नौकरी के नाम पर कथित तौर पर पैसे देने का दावा करने वाले कई शिकायतकर्ता अब अपने पैसे वापस दिलाने और

0: बंगले में। फिर तीसरी बार पैसे दिए मैंने जयदीप भैया को, अस्पताल के अंदर ही एक स्टोर रूम है गोली दवाई का डबल मंजिल, वहां जाकर मैंने पैसे दिए। कोई मांगीलाल कोई
1: लोगों के कितने पैसे आप?
0: मैंने 13 लोगों को पैसे दिए टोटल 70,000 रुपए से, आप जो लोग कितने होते हैं 9,10,000 के लगभग पैसे दिए मैंने उनको। ठीक, फिर चार लोगों को सैलरी इन्होंने नहीं दी, फिर बाहर निकाल दिया, चार पास मामी ने काम करवा लिया, किसी को पैसे नहीं दिए। और बाकी चार पांच लड़के, पांच छह लड़के वो रहे थे, उनका हाथ तक नहीं लगाया, ना जयदीप भैया ने मेरे को पेमेंट लौटाया, मैं कैसे थक गया।
2: राज्य सरकार ने तत्कालीन CMHO डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान को निलंबित कर दिया। पांच लोगों की जांच कमेटी बनी है जिसने कहा है कि आपराधिक मामला दर्ज हो।
3: शिकायत की थी, उस जांच के आधार पे उनकी जांच की गई जिसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई, और इस जो जांच प्रतिवेदन था, हमारी जो जांच सदस्य टीम थी उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया, और उस प्रतिवेदन के आधार पे CMHO मंदसौर निलंबित है।
4: 9 लाख रुपए करीबन बताए हैं, लिखे हैं आवेदन में, और डॉक्टर जो गोविंद सिंह चौहान जी उनका उसमें नाम है और पैसे दिए गए हैं सर, और एक अन्य जयदीप नाम के व्यक्ति का भी नाम लिखा हुआ है, उनके माध्यम से पैसे लिए गए। अब ये तथ्यों में क्या साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर उसका वैधानिक आगे कार्रवाई की गई।
2: हालांकि आज तक ने भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी से बात की तो डॉक्टर चौहान अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं।
5: और संबंधित एजेंसी को मेरे द्वारा कार्यादेश दिया गया था कि गवर्नमेंट के निर्देशानुसार जो सर्कुलर है उसके अनुसार जहां जहां जितनी संस्थाओं में कर्मचारी रखना है उनको आप देखें और वो कर्मचारी रख के हमें उपलब्ध कराएं संस्थाओं में, ये कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं। नहीं, जो जयदीप का नाम आ रहा है वो न तो मेरा भतीजा है और न ही कोई रिश्तेदार।
2: सवाल है कि जब आंखों के सामने नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ दिखता है तो केवल निलंबन ही क्यों हुआ? क्या CMHO तक ये मामला है या फिर प्रशासन के और लोग शामिल हैं जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसा ठगा जो बेरोजगार जीवन भर भूल नहीं पाएंगे?
6: जिन हाथों पर बेरोजगारों को रोजगार देने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों ने नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपए वसूल लिए। सिर्फ जरूरत से ज्यादा भर्तियां ही नहीं हुई बल्कि हर नियुक्ति की एक कीमत भी वसूली गई। सवाल अब सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं जिसने बेरोजगारों के सपने को कथित तौर पर रिश्वत की मंडी में बदल दिया। मंदसौर से अजय के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: आ गई है सावन की शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि पर क्या होगा पूजा विधान? सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? क्या है सावन की शिवरात्रि की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का आज झारखंड बंद। छात्र नेता का अब सरकार से बात करने से इनकार। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम। दिल्ली में छात्रों पर पहले

उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत। ब्रुकलिन की अदालत ने खारिज किए 3 आपराधिक मामले। अडानी ने फैसले का किया स्वागत। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर। चमोली में बह गया पुल, रायगढ़ में नाले में बही इको वैन, 9 लोगों की हुई मौत। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, मृतकों की संख्या 111 पहुंची। कोलंबिया में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान।

0: पहले न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। झारखंड में परीक्षा और भर्ती में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में कल छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। लाठीचार्ज से नाराज छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अब सरकार के आगे बात करने से इनकार कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर देवेंद्र महतो 10 दिन से अनशन पर है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खुला खत लिखकर छात्रों से अपील की है कि वो राजनीतिक झांसे में ना आए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने की कोशिश की है। इस बीच एक अहम घटनाक्रम, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों में रडार में आने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। 22 जुलाई को इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। ऐसे में इसके बाद सीआईडी ने उनसे लंबी पूछताछ भी की थी। तो परीक्षा में धांधली को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है रांची में, वहां पर अब एक्शन लिया गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं देवेंद्र महतो, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की भी गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने उनसे बहुत देर तक लंबी पूछताछ की थी जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी भी छात्रों का आंदोलन जारी है, 18वां दिन हो चुका है और छात्र अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। कल हमने तस्वीरें देखी, लाठीचार्ज उन पर किया गया, लाठीचार्ज के खिलाफ। ऐसे में बीजेपी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है और देवेंद्र महतो जिनसे सरकार से अभी तक उनकी बात नहीं हो पाई है वो ये कह रहे हैं।
1: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने।
4: तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
5: ऐसा कितना सरकार ने इंपोज़ कर दिया है।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
6: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
7: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
8: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हरेक शर्त।
9: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
10: युवा को पलटी कर दिया जाता है वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई। तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सुरेंद्र सरकार के खिलाफ डटे हैं अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
11: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
12: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
13: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है।
14: क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुंचने लगते।
15: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
16: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
17: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
15: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
18: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
19: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: तो वहीं जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने कल रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए। ऐसे में छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। छात्र अपनी मांग पर लेकिन अड़े हुए हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की जा रही है और सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है।
14: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
20: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
21: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
14: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आता। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही है। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
22: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
14: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिव सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
23: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
24: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है।
25: पीछे सर असली विलन।
26: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
14: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
23: प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
3: अश्रु गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
14: पुलिसिया शक्ति और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
23: उसी रास्ते पर देखिए, जो छात्र पार, मैंने कहा था ना, बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला,
14: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
4: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
14: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
23: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया। बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
14: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की तीन दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग न माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
5: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा, यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
14: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठी चार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटने वाले।
6: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो।
7: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। राहुल ने सवाल किया है कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, इसका जिम्मेदार कौन है वो सामने आए। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दे, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, राहुल नहीं चाहते कि संसद चले। तो ये एक दूसरे को जवाब दिया गया है। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और एसपी के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई ये मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आई है। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह और पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करके आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे। पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डिलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की,
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा पीएम रिलीफ फंडर रहता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही भावग आहे असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे। ते त्या ठिकाणी गेले आहेत अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किए जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए. एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. एफसीआरए की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं. लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस.
9: आ गई है सावन की शिवरात्रि. सावन की शिवरात्रि पर क्या होगा पूजा विधान? सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? क्या है सावन की शिवरात्रि की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र.
10: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

चार्ज के खिलाफ बीजेपी का आज झारखंड बंद, छात्र नेता का अब सरकार से बात करने से इनकार, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम, दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर पीएम गृहमंत्री के बयान पर अड़ी कांग्रेस, नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष।

0: उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत। ब्रुकलिन की अदालत ने खारिज किए 3 आपराधिक मामले। अडानी ने फैसले का किया स्वागत। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर। चमोली में बह गया पुल। रायगढ़ में नाले में बही इको वैन। 9 लोगों की हुई मौत। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही। मृतकों की संख्या 111 पहुंची। कोलंबिया में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल झारखंड में परीक्षा और भर्ती में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में कल छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। लाठीचार्ज से नाराज छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अब सरकार के आगे बात करने से इनकार कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर देवेंद्र महतो 10 दिन से अनशन पर हैं। तबीयत उनकी बिगड़ी और ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खुला खत लिखकर छात्रों से अपील की है कि वो राजनीतिक झांसे में न आए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने छात्रों को भटकाने की कोशिश की है। इस बीच एक अहम घटनाक्रम। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल किंग्यांतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों में रडार में आने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। 22 जुलाई को इस्तीफा उन्होंने दिया था। इसके बाद सीआईडी से एक लंबी पूछताछ हुई जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। और उनको न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई सीआईडी से पूछताछ के बाद। देखिए जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को लेकर आपको बता रहे हैं। झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। अभी भी यह आंदोलन जारी है। छात्र अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। तो वही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने कल रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की जा रही है और सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है।
1: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
2: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने। तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा। सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
1: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: पाकिस्तान से आए हैं, सरकार नियम खुश हो रही है।
1: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
4: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
5: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
1: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
1: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत। सरकार मानेगी हरेक शर्त।
7: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
8: युवा को पलटी कर दिया जाता है वायु को कोई रोक नहीं सकता।
1: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की आंधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
1: अब छात्र अड़े हैं और सोरेन सरकार के खिलाफ डटे हैं अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
9: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
11: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्नैप को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
12: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
13: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
14: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा, आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
15: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, जांच करनी होगी।
13: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
16: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
17: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे, शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
1: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
18: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
19: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
1: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आता। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया हूँ, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
20: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
21: ये जेन ज़ी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
22: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है।
23: पीछे सर असली विलन।
24: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। ये वो आते आते टूट गया, ये 3 लेयर का ब्रेकिंग था। ये तीन लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
1: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
21: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
9: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
1: पुलिसिया शक्ति और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
21: मैं उसी रास्ते पर देखिए, जो छात्र पार, मैंने कहा था ना, बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिया। और देखिए रेला,
1: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
2: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
1: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
21: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया। बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
1: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की तीन दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95% से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग न माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
4: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
1: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: रांची में छात्रों ने सरकारी तंत्र को जगाने के लिए भले ही आज विधानसभा का घेराव किया हो, लेकिन पिछले कई दिनों से ये लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। रांची के एक स्टेडियम में टेंट लगाकर धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार उनकी सुन ही नहीं रही। ये आंदोलन इसलिए हो रहा है ताकि झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में धांधली आगे ना हो, कोई भी करप्शन ना हो। पूरी रिपोर्ट देखिए।
24: भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से।
1: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा?
5: 16 दिनों तक झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में टेंट के नीचे प्रदर्शन करने के बाद 17वें दिन छात्रों को विधानसभा का घेराव करना पड़ा। पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। छात्रों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़ी।
21: देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
5: पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
21: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
5: छात्रों को डराने की धमकाने की कोशिश भी हुई, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे। छात्र डटे हुए हैं, उनका हौसला टूटा नहीं, और इसकी वजह है वो अराजकता, वो धांधली, वो भ्रष्टाचार जिसका आरोप ये छात्र लगा रहे हैं। आरोप है कि झारखंड में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार है। आरोप है कि सरकारी नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि सेटिंग से मिलती है। आरोप है कि सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं। आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर बेचे जा रहे हैं। आरोप है कि बरसों तक तैयारी करने के बाद भी योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलती। आरोप है कि खाली पदों को सरकार भर नहीं रही, भर्ती नहीं निकाल रही। आरोप है कि योग्य छात्रों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नौकरियों में भ्रष्टाचार है। बिना पैसों के, घूस के, जुगाड़ के, सेटिंग के सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आरोप है कि हर एक नौकरी का पैसा तय है, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए और पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 16 दिन धरने पर बैठे, सरकार ने नहीं सुनी तो अब मजबूरी में सड़कों पर उतरे हैं।
9: सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन हम लोग भी देखे हैं और देखेंगे, इनका जेल को भी देखे हैं। इनका पुलिस का लाठी में कितना दम है, इनका टीयर गैस में कितना पावर है, इनका वाटर कैनन तो घोटाला हो गया, वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया उसको।
6: वो भी स्टूडेंट का ताकत के सामने टिक नहीं पाई।
9: तो हम यही कहेंगे कि ये सब से छात्र नहीं डरेंगे। जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना? हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है। आंदोलन जारी रहेगा।
5: देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं। वैसे तो भूख हड़ताल पर बहुत से आंदोलनकारी बैठे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो वो शख्स जो अन्न जल त्याग कर बैठे थे। हफ्ते भर पहले सोनम वांगचुक ने पानी पीने की अपील की तो अब पानी तो पी रहे हैं, लेकिन अन्न अभी भी त्यागा हुआ है। आज के आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो भी आए। कमजोरी है तो 4 छात्रों ने उन्हें स्ट्रेचर पर उठाया हुआ था, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में शिबू सोरेन की फोटो लेकर महतो प्रदर्शन के लिए पहुंचे।
7: जी शिबू सोरेन जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर आंदोलन किया है, अगर गुरु जी जिंदा होते तो ये हम लोग साथ आंदोलन में आते। गुरु जी जिंदा नहीं है, उनका तस्वीर हमारे साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगर गुरु जी को आदर्श मानती है हेमंत सोरेन जी, ये छात्रों का दर्द, छात्रों का पीड़ा, मैं बहुत जान को जोखिम में डाल के आया हूँ, एक तो मैं चल नहीं सकता हूँ। ये भीड़ कभी भी पुलिस के साथ भिड़ंत हो सकती है, कभी भी ये भीड़ में भगदड़ हो सकता है। मैं जान रहा हूँ, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं जान रहा हूँ, ये आंसू गैस छोड़े जाएंगे।
8: सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तब आप तब तक
7: जारी रहेगा, जब तक नहीं सुनेगी तब तक जारी रहेगा।
5: सवाल ये है कि सरकार के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की कई राउंड की बातचीत हो गई है, लेकिन पूरी तरह से छात्रों की मांगों पर सहमति नहीं बनी है। छात्रों की मांग थी कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, सरकार ने पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट कैंसिल कर दिया, यानी ये मांग पूरी हो गई। दूसरी मांग थी सीबीआई जांच की, सरकार सीआईडी ईडी से जांच को तैयार है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जा रही। तीसरी मांग थी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, सरकार रिटायर्ड जज से जांच को तैयार है, अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं। देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं कि सरकार से अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को ये मांगे पूरी करनी ही होंगी।
13: एक बार लगता है कि सरकार के साथ फिर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से फास्टिंग पे हैं, 16-17वां दिन है, तो हम ज्यादा सवाल नहीं करना चाहते हैं 16वां, तो मतलब लगता है कि एक बार फिर वार्ता टेबल पे आ सकते हैं?
3: वार्ता की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मांग पूरा करिए,
13: मांग पूरा किया जाए।
3: वार्ता का क्या जरूरत है, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष का यहाँ मामला है नहीं, सीधे तौर पर यहाँ छात्र का मामला है, छात्र नाखुश है, छात्र असंतुष्ट है, छात्र को संतुष्ट करिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है संतुष्ट करना छात्र को, ये छात्र सभी आपके छात्र हैं।
0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: आ गई है सावन की शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि पर क्या होगा पूजा विधान, सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, क्या है सावन की शिवरात्रि की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

0: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं यदुवंशी हूं, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है।
1: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती, समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का आज झारखंड बंद। छात्र नेता का अब सरकार से बात करने से इनकार। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर पीएम गृहमंत्री के बयान पर अड़ी कांग्रेस। नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष।

द्रौपदी गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत, ब्रुकलिन की अदालत ने खारिज किए 3 आपराधिक मामले। अडानी ने फैसले का किया स्वागत। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, रायगढ़ में नाले में बही इको वैन, 9 लोगों की हुई मौत। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, मृतकों की संख्या 111 पहुंची। कोलंबिया में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि बड़ी महत्वपूर्ण होती है और साल की दो शिवरात्रियां, एक फाल्गुन की महाशिवरात्रि और एक सावन की शिवरात्रि, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज सावन की शिवरात्रि है और बात करेंगे आज शिव जी के पूजा विधान की। इसके अलावा बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में चर्चा करेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः 10:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन महीने की शिवरात्रि के बारे में। क्या है इसका महत्व और क्या है इसकी महिमा? शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि को हर महीने में मास की शिवरात्रि आती है, लेकिन दो शिवरात्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक फाल्गुन की शिवरात्रि जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं और एक सावन की शिवरात्रि।

माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। कुछ मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था। शिवरात्रि पर महादेव की अगर उपासना की जाए तो व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है, संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। शिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन का महीना चूंकि भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों से कांवर में जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लोग बड़ी तपस्या से, बड़ी कठिनाई से, दूर दूर से जाकर पवित्र जल भर करके लाते हैं और अपने स्थानीय शिवलिंग पर या किसी ज्योतिर्लिंग पर वो जल अर्पित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस कार्य को करने से पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन की शिवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में आप अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, ये भी बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, करियर में आपके दबाव बढ़ेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आज सावन की शिवरात्रि है तो आज भगवान शिव की उपासना कैसे करनी चाहिए,
सरल तरीका क्या है? स्नान करके 12 बजे के पहले नहा लें और स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लीजिएगा। शिव जी को जल अर्पित करें, इसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इनसे फल, पुष्प, मिठाई, धूप, दीप, इनसे पंचोपचार पूजन करिए और शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। शिवरात्रि की रात में शिव जी की पूजा करना ज्यादा फलदायी है, तो रात में शिव मंत्रों का जप करें और उसके अलावा आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं रात में, या शिव स्तुति का पाठ कर सकते हैं। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा की जाती है। अगर 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे में घी से और चौथे पहर में शहद से पूजा करिएगा। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करिएगा। शिवरात्रि में पूजा का महत्व ज्यादातर रात के समय में होता है, तो आज रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जग करके भगवान शिव के सामने दीपक जलाइएगा, उन्हें पुष्प प्रसाद अर्पित करिएगा और इसके बाद जितना ज्यादा कर सकें नमः शिवाय का जप करिएगा। आप चाहें तो भगवान शिव को आज रुद्राक्ष अर्पित करके अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शिवरात्रि के विशेष उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विद्या शर्मा ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 मार्च 1992, सुबह 8:55 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा है, तो क्या मेरे बेटे का विवाह होगा और अगर होगा तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विद्या जी, आपके पुत्र की कुंडली में विवाह का योग निश्चित रूप से है और साल 2027 के सेकेंड हाफ में, जून से दिसंबर 2027 वाले समय में आपके बेटे का विवाह होगा इनकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी बालिका के साथ। कुछ विचित्र विवाह कर सकते हैं, किसी डिवोर्सी से शादी कर लें या इंटरकास्ट शादी कर लें, इस तरह की संभावना भी इनकी कुंडली में दिखाई दे रही है। इनका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप अपने बेटे के लिए करिए और बेटे के नाम से हर बृहस्पतिवार केले का दान करिए, काफी बेहतर होगा। सावन की शिवरात्रि ऐसा मौका है जब आप छोटे छोटे प्रयोग करके अपनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको धन की समस्या हो रही है तो धन की प्राप्ति के लिए आज क्या प्रयोग करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, यानी पंचामृत से आज भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। इसके बाद जल की धारा चढ़ाइएगा और फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। आज शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में या आज मध्य रात्रि में अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे? शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी, जरा सा घी शिवलिंग पर अर्पित करिए। पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा और फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा
पति पत्नी अगर एक साथ ये उपाय करें प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में तो उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, शीघ्र संतान की प्राप्ति उनको हो पाएगी। कुछ और विशेष उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो जाए तो सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लीजिए और एक एक करके, एक साथ नहीं, वन बाई वन शिवलिंग पर चढ़ाइएगा आज, और हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ये उपाय प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में आज करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके रोजगार की समस्या दूर हो, आपको बेहतर और मनचाही नौकरी मिले तो क्या करेंगे? शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद संध्या में या रात में शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाइएगा। बेहतर होगा सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में शिव जी को जल अर्पित करें और उसके बाद 11 घी के दीपक जला करके शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर आज प्रदोष काल में या रात के समय में ऐसा करते हैं तो आपके रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, अपने आयु की रक्षा चाहते हैं तो आज क्या उपाय करेंगे? इत्र ले जाएं मंदिर में और इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। चंदन का इत्र हो तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करें और मंदिर में ही कहीं पर बैठकर या खड़े होकर ओम जूम सह, ओम जूम सह, इस मंत्र का ओम जूम सह माम पाले पाले, ओम जूम सह माम पाले पाले, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और अगर मंदिर में भीड़ बहुत है, आपको बैठने या खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही है तो मंदिर में इत्र और जल चढ़ाकर घर चले आइएगा और घर पर आकर 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा। एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला ले जाइएगा और शिवलिंग से स्पर्श करा करके इसको अपने गले में धारण करिएगा। देखिए, सावन की शिवरात्रि पर आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आज सुबह के समय यानी 12 बजे के पहले या प्रदोष काल में सूर्यास्त के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद या मध्य रात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। ये हम सबको करना चाहिए। अगर आज के इस पावन अवसर पर हम ऐसा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे।
कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

लोग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाती हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा सच है? देखिए, शिवलिंग पर अगर आप फल मिठाई ये सब अर्पित करते हैं तो इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते, इसको निर्माल्य कहा जाता है। शिवलिंग के इस दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग के साथ शालिग्राम की स्थापना की जाती है, और जब शिवलिंग के साथ शालिग्राम की स्थापना की जाती है तो शिवलिंग पर अर्पित की गई वस्तु को आप ग्रहण कर सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। और नंबर 9, विवादों से आज बचाव करिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाए।

शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्रों का, नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिएगा। इससे स्वास्थ्य और धन के मामलों में लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

कर्क राशि वालों के लिए चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, कष्ट कम होंगे। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि वालों को चोट चपेट लग सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्तता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा। आज थोड़ा सा समय निकाल कर एक लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ा दीजिएगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है सावन सूत्र। सावन में किसी भी एक दिन सुबह के समय शिवलिंग पर चांदी का एक छोटा सा बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसको बाद में वहां से उठा लीजिए और अपने पास संभाल कर रखिएगा। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा, जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: झारखंड में छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का आज राज्यव्यापी बंद। प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम हेमंत सोरेन का खुला पत्र, मांग पर कार्रवाई का भरोसा, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी बनाने का दावा। झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर राहुल गांधी ने बताया गलत, सरकार से छात्रों की बात सुनकर तत्काल समाधान की अपील की। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी को बताया एक दिखावा, जेपीएससी जेएसएससी में सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस जेएमएम पर हमला, बाबूलाल बोले झारखंड में नौकरियां बेच दी गई, छात्रों की लड़ाई को बताया अगस्त क्रांति। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो का सरकार पर हमला, बोले अब सरकार से बात नहीं करेंगे। देवेंद्र महतो का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले सरकार हमारी आवाज कुचलना चाहती है, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते गिरफ्तार हुए, बैलिस्टिक कंपनी को परीक्षा का जिम्मा देने का आरोप। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर ईडी का शिकंजा, आर्थिक लेन देन की भी होगी जांच। पेपर लीक मामलों पर देशभर में कार्रवाई, राजस्थान समेत कई राज्यों में जांच तेज, आर्थिक लेन देन की जांच करेगा प्रवर्तन निदेशालय। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिनों में हंगामे के आसार, 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है सदन। सरकार की लंबित विधेयकों को पास कराने की तैयारी, एफसीआरए संशोधन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पर नजर। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप, 12 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश। हंगामे के बीच सोमवार को कई विधेयक हुए पारित, लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी विधायी कामकाज जारी। तो वही संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार, जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का जवाब। राहुल गांधी का पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना, पेलेट गन और चंदा चोरी के मुद्दे पर जवाब मांगा। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर गोली चलने के आरोप पर जेपी नड्डा का जवाब, बोले प्रदर्शन के दौरान कोई भी गोली नहीं चली।
1: सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
2: पहला मांग तो हमारा ये है,
0: जंतर मंतर कार्रवाई पर खड़गे की मांग, लाठीचार्ज पर गृहमंत्री अमित शाह संसद में दे जवाब। खड़गे का प्रधानमंत्री पर निशाना, राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने की मांग। किरेन रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार, बोले गृहमंत्री चर्चा पर जवाब देने को तैयार। रिजिजू के विपक्ष की दो टूक, गृहमंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष को सदन से भागना नहीं होगा। एनडीए संसदीय दल की आज मंगल मिलन बैठक, लोकसभा राज्यसभा के सभी एनडीए सांसदों के शामिल। राम मंदिर में सीईओ पद के लिए आज हो सकता है इंटरव्यू, 18 चयनित आवेदक पहुंचेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन। सीईओ भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पर जल्द से जल्द फैसला, सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी लेगी इंटरव्यू। 2 दिन चलेगा सीईओ पद का इंटरव्यू। राम मंदिर परिसर के पीएफसी में होगी चयन प्रक्रिया, 5,200 आवेदनों में से 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को राहत नहीं, अदालत ने न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ाई। आरोपियों की हिरासत के खिलाफ बचाव पक्ष की अर्जी, 12 अगस्त को धाराओं पर अदालत में होगी सुनवाई। यूपी में अग्निवीर भर्ती का बड़ा स्केड्यूल, मेरठ से शुरू होगी भर्ती रैली, बरेली लखनऊ वाराणसी और अयोध्या में भी आयोजन। वहीं मेरठ में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली, बरेली में 14 से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 से 28 जनवरी तक भर्ती। टीएमसी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट फ्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमीयत पर कोलकाता हाईकोर्ट से रैली हुई मंजूरी, राजा बाजार से मोलाली तक सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक मार्च की इजाजत। वहीं सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन में पीएम मोदी, शरद पवार के साथ दिखे प्रधानमंत्री। रेवती सुले के रिसेप्शन में अमित शाह, शरद पवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात। अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विपक्ष पर तीखा हमला, बोले गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच को भरोसा। यूएस कोर्ट के फैसले का गौतम अडानी ने किया स्वागत, बोले न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरा सम्मान। गौतम अडानी का बयान, सच निष्पक्षता और कानून के राज पर हमारा भरोसा कायम रहा। विदिशा में बारिश का कहर, उपंती बेतुआ ने बचाई तबाही, बाढ़ में फंसे लोग और मवेशियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर, अलकनंदा और गंगा का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे पुलिस अलर्ट। पुरी में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव, जनजीवन प्रभावित। चेन्नई में बारिश का असर, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बूंदी में बारिश का सैलाब, सड़कों पर बहती बाइक स्कूटी, करीब घंटे भर की बारिश ने शहर को किया जलमग्न। चमोली के जोशीमठ नीति घाटी में बादल फटा, 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज बहा। तेरा गांव का जोशीमठ तहसील मुख्यालय से संपर्क टूटा, भारत चीन सीमा मार्ग भी बंद। बादल फटने के कारण भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बोल्डर नाले में आए, नदी किनारे खेत और सेब के बगीचों में भारी नुकसान। उत्तराखंड के विकास नगर में भी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। विकास नगर में कहीं पर सैलाब के तेज बहाव की वजह से वाहन फंसे तो कहीं पर राहगीरों की जान आफत में पड़ गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी फ्लैश फ्लड, पिन घाटी में बहुत सी सड़कें प्रभावित हुई, कई गांवों से संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश का कहर, नाले में बही एक कार, 9 शव बरामद, कुल 11 लोग सवार थे, 2 तैरकर बाहर निकले। राजगढ़ हादसे में मृतकों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, प्रथम दृष्टया ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। राजगढ़ के ही खिलजीपुर जल मंदिर में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू हुआ, जल मंदिर आधे से ज्यादा डूबा, गेट और तोपखाना की दुकानों में पानी घुसा। वाराणसी में गंगा के बाढ़ से डूबे पक्के घाट, कई घाटों का संपर्क टूटा, नौका संचालन पर प्रतिबंध, गंगा द्वार से विश्वनाथ धाम में प्रवेश पर। यूपी के बागपत में महिला कावड़ियों के लिए खास इंतजाम, पूरा महादेव में पहली बार पिंक प्लान, पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट तैयार। महिला अफसरों के हाथ सुरक्षा की कमान, हर पिंक शिविर में महिला अफसर तैनात, महिला कांस्टेबल भी रहेंगी मुस्तैद। महिलाओं के लिए विशेष बसें तैनात, ई व्हीकल की सुविधा भी मिलेगी, कावड़ मेले में दिखेगा पिंक पहन। कावड़ियों से केसरिया हुआ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर तरफ गूंज रहा है बोलबम का जयकार। चंदौली के कावड़ियों ने जमाया भक्ति रंग, प्लेटफॉर्म पर गूंज रहे हैं हर हर महादेव, शिव भजनों से भक्तिमय हुआ स्टेशन। दिल्ली में ईएडब्ल्यू ग्लोबल एक्वा एक्सपो 2026 का आगाज, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने किया उद्घाटन, भारत मंडपम में जल सुरक्षा पर मंथन। मुंबई में सोने की चट्टान पर विराजे गौतम बुद्ध, 18 लाख की गोल्ड ईट पर स्थापित हुई प्रतिमा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा को विदेश भेजने की तैयारी। संभाजी नगर में संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविन्द्र चौहान ने किया स्वागत। मुंबई के गोल्डन मैन ने किया अनोखा काम, रोहित पिसाल ने बनवाई गोल्ड की ईट, बुद्ध के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने की पहल।

में गंगा यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, संगम पर स्नान करना हुआ प्रभावित। कानपुर में मॉनसून के बीच गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रमुख घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, अलर्ट जारी। बीजेपी सांसद हरभजन सिंह ने राजस्थान के श्रीगंगानगर पर वीडियो पंजाब का बताकर शेयर किया, वीडियो में युवक जोम्बी ड्रग लिए बताया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी में 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान की छत दही, मलबे में दबे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया, एक घर। फरीदाबाद के सेक्टर 31 में ई रिक्शा के नीचे दबकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, पूरे हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अमृतसर पुलिस की बड़ी कामयाबी, सीमा पार नशा और हथियार सप्लाई करने वाले 2 नेटवर्क बेनकाब, 7 गिरफ्तार, 10 पिस्तौल, 1 किलो से ज्यादा हीरोइन और ड्रोन बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार, यूपी से हथियार सप्लाई करने आया था आरोपी। मुंबई में अमूल के नाम पर नकली दूध का कारोबार पकड़ा गया, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, दहिसर में नामी कंपनियों के नाम पर बेच रहे थे नकली दूध। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली वारदात, खाने में दवा दिए जाने के शक में एक लड़के ने अपनी मां को बैट से मार करके हत्या, खुद भी खुदकुशी कर ली। यूपी के ललितपुर में थप्पड़बाज पुलिसकर्मी कैमरे में कैद हुआ, मेडिकल के दौरान आरोपी को लगातार कई थप्पड़ मारते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो आया। अलवर के कोट कासिम में छत के रास्ते घर में घुसे 4 बदमाश, 15 लाख नकद समेत सोना चांदी चोरी, सीसीटीवी में संदिग्ध कैद। भोपाल के हाई सिक्योरिटी इलाके 4 रेमली में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई के बंगले में चोरी हुई, चोर ताले तोड़कर घुसे और नलों की टोटियां चोरी कर ले गए। भरूच में चलती ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग का आतंक, ट्रेन के दरवाजे पर बैठे यात्री का मोबाइल छीनते हुए, संतुलन बिगड़ने से युवक ट्रेन के नीचे आया, घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी की बर्थडे पार्टी का बुलावा बना आखिरी सफर, ससुराल पहुंचे 25 साल के दामाद की संदिग्ध मौत, माता पिता ने लगाया हत्याकार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच सैन्य और मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को लेकर हुई चर्चा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वगई का बड़ा बयान, कहा सुरक्षा को झूठे दलालों से नहीं खरीदा जा सकता। ईरान की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव, पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रजाई बने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव, 1981 से 1997 तक संभाली थी आईआरजीसी की कमान। रूस के यूक्रेनी शहरों पर भीषण बमबारी, ज़ापोरिज़्या और सुमी शहर में बरसाए गए बम, रात भर हुए हमले में बच्चे समेत 23 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत। रूस के एक शहर में यूक्रेनी ड्रोन से भीषण हमला, बच्चे समेत 13 लोगों की मौत, 39 लोग घायल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का 17 अगस्त से बड़ा सैन्य अभ्यास, ड्रोन, साइबर और जीपीएस हमलों से निपटने पर रहेगा जोर। कूटनीतिक संबंधों में खटास के बीच काठमांडू में भारतीय राजदूत नेपाल के पीएम बालेन शाह से मिले, वहीं ढाका में भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से की मुलाकात। फिलीपींस में तूफान डॉल्फिन के बाद भीषण तबाही, लगातार बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ में डूबे, मेट्रो मनीला में भी बाढ़ का कहर। अमेरिका पॉपुलर टीवी सीरीज द ड्यूक्स ऑफ एजाद मिक के अभिनेता और पूर्व अमेरिकी सांसद बेन जोन्स का निधन हुआ, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नेशनल बैंक ओपन के क्वार्टर फाइनल में नाओमी ओसाका ने कनाडा की फर्नांडिस को 6-4, 6-4 से हराया, स्विट्जरलैंड की बेलिंडा ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।

0: बिजली का बिल, पेंट,
1: तो मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: बहुत टायर्ड हो गई।
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खोल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों।
1: आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको पूछना चाहता हूँ इस वक्त और वो बोलता है
0: मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर।
1: मैं 28 साल का एक किसान और बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर और वेल स्पोकन बच्चे।
0: आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सब याद रखा जाएगा,
1: सब कुछ याद रखा जाएगा। वहां पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली वर्ल्ड छात्र आंदोलन हुआ था जितना दिल्ली में और कांग्रेस हुआ था।
0: इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं।
1: पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे ये लोग, जो है दाल भात खाते थे, उससे उन्होंने आंदोलन किया था। क्या आप लोग सिर्फ छीन लोगे कि आपको पिज्जा बर्गर की तलाश थी या आपको अपने किस्म का प्राउड मिला था? माफ कीजिएगा,
0: आप लड़ते रहें, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ओह सॉरी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: के लिए जो है इनको बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरा कोई तथाकथित साधु संत इस तरह की बात ना कर सके।
2: तो क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिर से हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ा जाएगा? क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की कार्ड बीजेपी ने तैयार कर ली है? समाजवादी पार्टी के कृष्ण और सुदामा दाम का भी क्या बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। लखनऊ से दिल्ली तक हर कदम फूंक फूंक कर रखा, लेकिन अब बीजेपी को मथुरा से नई किरण दिख गई। बीजेपी और आनुषंगिक संगठन हमेशा से कहते आए थे कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, लेकिन अब मथुरा से संत समाज ने इसका ऐलान कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की तैयारी है। समय तय हो चुका है, बस 6 दिसंबर 2026 का इंतजार है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या में कार सेवा हुई थी। मथुरा के हिंदू संगठनों ने कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की घोषणा करके हिंदुत्व की स्पीच को फिर गर्मा दिया है।
3: 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है।
2: मथुरा के कई हिंदू संगठनों और संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संत समाज ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। मथुरा के संतों ने पहले 9 अगस्त को कार सेवा की तैयारी की थी। इसके लिए बाकायदा हवन पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद मामला टल गया। अब संतों ने 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा करने का ऐलान किया है। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर ही बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची और फिर एक एक करके आधे हिंदुस्तान में भगवा लहरा दिया। मथुरा भी बीजेपी के एजेंडे में शुरू से रहा है। योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर खुलकर कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते।
4: सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
2: उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च के बीच चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर दिसंबर में मथुरा में कार सेवा होती है तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व कितना टिकेगा ये समय बताएगा। आज तक ब्यूरो।
5: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं यदुवंशी हूं, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है।
6: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है। वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द-गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे

0: ताकि दूसरा कोई तथाकथित साधु संत इस तरह की बात ना कर सके।
1: तो क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिर से हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ा जाएगा? क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की कार्ड बीजेपी ने तैयार कर ली है? समाजवादी पार्टी के कृष्ण और सुदामा दाम का भी क्या बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। लखनऊ से दिल्ली तक हर कदम फूंक फूंक कर रखा, लेकिन अब बीजेपी को मथुरा से नई किरण दिख गई। बीजेपी और आनुषंगिक संगठन हमेशा से कहते आए थे कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, लेकिन अब मथुरा से संत समाज ने इसका ऐलान कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की तैयारी है। समय तय हो चुका है, बस 6 दिसंबर 2026 का इंतजार है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या में कार सेवा हुई थी। मथुरा के हिंदू संगठनों ने कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की घोषणा करके हिंदुत्व की स्पीच को फिर गर्मा दिया है।
2: 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है।
1: मथुरा के कई हिंदू संगठनों और संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संत समाज ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। मथुरा के संतों ने पहले 9 अगस्त को कार सेवा की तैयारी की थी। इसके लिए बाकायदा हवन पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद मामला टल गया। अब संतों ने 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा करने का ऐलान किया है। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर ही बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची और फिर एक एक करके आधे हिंदुस्तान में भगवा लहरा दिया। मथुरा भी बीजेपी के एजेंडे में शुरू से रहा है। योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर खुलकर कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते।
3: सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च के बीच चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर दिसंबर में मथुरा में कार सेवा होती है तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व कितना टिकेगा ये समय बताएगा। आज तक ब्यूरो।
4: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं यदुवंशी हूं, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है।
5: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है। वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द-गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है। देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा

0: महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, ईरान से खतरे की वजह से ट्रंप ने टर्की से भरी थी गुपचुप उड़ान, एयरफोर्स वन की जगह दूसरे मिलिट्री विमान से किया सफर। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद, छात्र नेता में तो अस्पताल में भर्ती, सरकार से बात करने से किया इनकार, सीएम सोरेन का जवाब, बहकावे में न जाए छात्र। संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम, पीएम और गृहमंत्री के बयान पर अड़ी कांग्रेस, नड्डा का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं नेता विपक्ष। उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत, ब्रुकलिन की अदालत ने खारिज किए तीन आपराधिक मामले, अडानी ने फैसले का किया स्वागत। वहीं पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया एक पुल, रायगढ़ में नाले में बही इको वैन, 9 लोगों की हुई मौत।

0: पूजा सुबह के 8 बजे है और वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे रांची में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की। दरअसल इसको लेकर बवाल बढ़ गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। वहीं बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है। इसके साथ ही बात करेंगे नीट पेपर लीक की, बताएंगे कि इस पूरे केस में ईडी ने अब क्या बड़े एक्शन की तैयारी की है। वहीं संसद में भी छात्रों के मुद्दे पर संग्राम के आसार नजर आ रहे हैं। अमित शाह के बयान से पहले कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार के घेरने की तैयारी है। इसके साथ खबर है कि आज से राम मंदिर सीईओ के लिए इंटरव्यू शुरू हो सकता है। बात पहाड़ों की भी होगी, पहाड़ों पर सैलाबी हाहाकार की बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कई मैदानी राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर एक बड़ा सुरक्षा खुलासा सामने आया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान के डर से ट्रंप ने टर्की से सीक्रेट प्लेन से उड़ान भरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में टर्की से निकलते समय ट्रंप को एक गुप्त सुरक्षा ऑपरेशन के तहत उनके तय विमान एयरफोर्स वन की जगह दूसरे सैन्य विमान में ले जाया गया था। वजह ईरान से जुड़ा एक विश्वसनीय खतरा बताया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया कि मीडिया ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के कुछ भी कर्मचारी भी इससे अनजान थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए टर्की के अंकारा पहुंचे थे। उनके साथ नया खतर से मिला बोइंग 747-8 विमान भी था, जिसे भविष्य के एयरफोर्स वन के तौर पर तैयार किया गया था। लेकिन टर्की से ब्रिटेन के लिए रवाना होते समय अचानक सुरक्षा प्लान उनका बदल गया। हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, क्या अपडेट है? ये सीक्रेट प्लेन जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, ये फैसला आखिर क्यों लिया गया था?
1: बिल्कुल पूजा, अगर देखें तो 8 जुलाई की ये घटना है, जब जैसे आपने कहा कि नेटो सम्मेलन से वापस लौट रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड, बीच ये घटना घटी थी जब उनको एयरफोर्स वन में के बजाय दूसरे एक विमान में, यहां तक कि कहा जा रहा है कि कैटरिंग विमान जो था उसमें बिठाया गया था वापसी के लिए। लेकिन उसकी बनक तभी हुई थी, तब आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद कहा था कि उनको असैसिनेट करने की ईरान कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उन पर कुछ हुआ तो वो मिट्टी में ईरान को मिला देंगे। तो तभी ये बनक हुई थी कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुलाई के महीने में इतने आग बबूला हुए थे, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा था। अब आज वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छापी है और उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि क्या मामला हुआ था। दरअसल जब पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ सऊदी के कई पर कतर ने भी उनको एक विमान एयरफोर्स वन का विमान जो है वो बतौर एक तोहफा गिफ्ट जो है उनको दिया था, और उसी को लेकर जो है अमेरिकी खुफिया एजेंसी को ये जानकारी मिली थी कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं है, जबकि वो अंकारा में ही जो है और वहां से वो उसमें कोई खतरा उनके लिए है। तभी ये प्लान जो है सीआईए ने उनकी वापसी के लिए बनाया था। अब वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ये सभी जानकारियां जो है, जो कि अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई भी इस तरह का सुरक्षा की चूक, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर जो है वो न सिर्फ मीडिया से बल्कि अमेरिकी आवाम से भी छुपाई गई। अब जाहिर है कि इस पर बहुत सवाल उठेंगे, आखिर इतनी देर के बाद ये बात क्यों सामने आई, तब तो इसका थोड़ी सी बनक लग गई थी, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा अभी बल्कि आने वाले दिनों में भी
0: बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी के लिए। अब बात झारखंड की कर लेते हैं। दरअसल झारखंड में छात्रों के आंदोलन में हुए लाठीचार्ज की बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों पर कल देर शाम पुलिस ने लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए। पुलिस के इस एक्शन ने छात्रों का गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया। रांची की तस्वीरें जहां पर लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। कल देर शाम पुलिस ने लाठियां छात्रों पर बरसाई हैं, जिसके बाद छात्र काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, छात्र भी भड़क गए, छात्र कुछ घायल भी हुए हैं इस पूरी लाठीचार्ज की घटना में। 10 अगस्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची की। अभी भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लगभग 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, और कल ये ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है, कई छात्र घायल हुए हैं।
2: रांची में विधानसभा मार्च के दौरान जब छात्रों पर लाठियां बरसी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों का आक्रोश धधक उठा।
3: एक भी नहीं बचेंगे।
4: हम लोग को नहीं मार दे, कोई दिक्कत नहीं है कि
3: जान चल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे।
2: विधानसभा के ठीक पास डटे छात्रों की पहले पुलिस से बहस हुई। जब छात्र डटे रहे और पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। देखते ही देखते मार्च अफरा तफरी में बदल गया। कई छात्र घायल हुए, कई को चोटें आईं। सोमवार को आंदोलनकारी छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनातनी की तस्वीरें सामने आईं। वाटर कैनन, आंसू गैस और हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र एक एक कर बैरिकेड पार करते गए और विधानसभा के ठीक करीब पहुंच गए तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी। मार्च शांतिपूर्ण था, सरकार प्रशासन की भी यही कोशिश थी कि बात न बिगड़े, लेकिन अब लाठी चार्ज के बाद इस आंदोलन ने अलग रंग ले लिया है। सीएम सोरेन के लिए पुलिस का यह एक्शन चिंता बढ़ाने वाला है। रांची से सत्यजीत शशिभूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो कल रांची में छात्रों ने विधानसभा का घेराव क्यों किया, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, ये आपको समझाते हैं। कहां पर सरकार अभी छात्रों के साथ सहमत है, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है ये समझिए। जो झारखंड सरकार है उसने सहमति बनाई है कि जेपीएससी सिविल सेवा पीटी टेस्ट रद्द होगा, सीआईडी जांच 90 दिन में पूरी की जाएगी, वहीं पैसे के लेन देन में ईडी से जांच की जाएगी, जेपीएससी बैकलॉग 2023-2025 भी रद्द होगा और रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। अब लेकिन ये पेच कहां फंसा हुआ है आप समझिए। टीडीपीएल से कराई सारी परीक्षा केवल जांच नहीं रद्द हो, ये छात्र मांग कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल की न्यायिक जांच नहीं रद्द होनी चाहिए, वहीं परीक्षा को रद्द करके सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसी सब को लेकर कल रांची में विधानसभा का घेराव छात्रों को करना पड़ा। रांची में पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए। पुलिस एक्शन के बाद छात्र सवाल कर रहे हैं कि आखिर शांतिपूर्ण मार्च में पुलिस ने लाठियां क्यों बरसाई हैं।
2: मांग झारखंड में परीक्षा व्यवस्था में सुधार की थी, लेकिन बीती शाम अंधेरा होने के बाद विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी बरसा दी। तमाम छात्र घायल हुए। इस एक्शन का गुस्सा, नाराजगी, क्रोध अब छात्रों के विरोध में साफ दिखाई दे रहा है।
5: छात्र विधानसभा मार्च करने के बाद लौटने लगे, कुछ छात्र विधानसभा में डट गए और जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उन्हें चोट आई है, वो घायल हुए हैं, किसी के पैरों में तगड़ी चोट लगी है, किसी के हाथों में सूजन आ गई है। क्या शिक्षक, क्या विद्यार्थी, क्या परीक्षार्थी, जो भी थे, हर कोई चोट के बाद अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
2: छात्र बता रहे हैं कि कैसे संख्या कम होने के बाद पुलिस ने उन पर लाठी बरसाई, कैसे ये पूरी कार्रवाई हुई, कैसे मार्च में शामिल छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया।
6: उसके बाद हम लोग छात्र
7: लोग सर खेत में घुस जा रहे थे, लोग पुलिस खेत में घुस घुस के मारी है लड़की लोग को, लड़की लोग को गाली दे के मारा गया है सर, इतना बुरी तरह से पीटा गया हम लोग को। और जबकि हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी कहीं पे कोई हिंसा नहीं हुई है। फिर बाद में जब जनसंख्या बल कम हो गया उसके बाद दौड़ा दौड़ा के मारा गया।
2: लाठीचार्ज में घायल छात्रों में गुस्सा है और हेमंत सरकार से सवाल की आखिर जब मार्च शांतिपूर्ण था तो लाठी क्यों बरसाई गई?
8: कहते कि हाँ भाई हमारी मांगे गवर्नमेंट सुने, वो भी एकदम संवैधानिक रूप से, कोई हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, तो आप ही बताइए ना सर कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे।
5: इनके पैरों में देखिए यहाँ पर चोट आई है, पूरा पैर में सूजन आ गई है। ये तमाम जो छात्राएं थी इनके कपड़े बता रहे हैं कि आखिर इनके साथ वहाँ पर क्या कुछ हुआ। शाम के अंधेरे में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इनको विधानसभा से हटाने की कोशिश की थी। बड़ी संख्या में छात्रों का आंदोलन, 17 दिन भले बीत गए लेकिन अभी आंदोलन जारी है, टिक गए हैं कि जेएसएससी सीजीएल या तो विड्रॉ होगा नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। रांची के स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: तो वहीं इस बीच झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। देर रात आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि अब सरकार से बातचीत नहीं होगी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार से अब बातचीत नहीं होगी। तो रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत भड़क उठी है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद बुलाया गया है। झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। 18 दिन हो गया है इस आंदोलन का। ऐसे में लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड बंद का आज बुलावा किया है और आज इस विरोध में झारखंड बंद बीजेपी ने बुलाया है।
2: विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसी तो झारखंड की सियासत ने और जोर पकड़ लिया। बीजेपी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला तेज हो गया। अब बीजेपी की तैयारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चाबंदी की है, जिसके लिए आज बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया है।
9: जो अन्याय और अत्याचार हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ हुआ है, जो नौकरियां बेची गई है, परीक्षाओं से पहले पेपर लीक किए गए हैं और जिस प्रकार से आज बलवत्ता पूर्वक हमारे बच्चों के देह में जो लाठियां बरसाई गई है, रात का अंधेरा का फायदा उठा करके दिन में उजाले में बारूद के गोले छोड़े गए हैं, फवारे छोड़े गए हैं, आज सैकड़ों बच्चे घायल हैं। वो हमारे बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, इसलिए उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके कल झारखंड को ठप करेगा।
2: हेमंत सोरेन की घेराबंदी की रणनीति तैयार है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सरकार की चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस एक्शन पर अब सहयोगी कांग्रेस भी सवाल उठा रही है।
10: झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ है।
2: झारखंड सरकार लगातार इसी सियासी टकराव को टालने की कोशिश में लगी थी। छात्रों से तीन दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन हल नहीं निकल सका। अब छात्रों के मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सूबे की सियासत गरमाई तो हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विपक्ष पर आंदोलन को भटकाने का आरोप लगा दिया। मैं ये भी समझता हूँ कि आपके शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच विपक्ष के कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने की कोशिश की। आप सभी से अपील है कि आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में न आएं। सीएम भले ही विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाएं, लेकिन लाठीचार्ज ने हेमंत सरकार को बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी के हाथ में बड़ा मौका दे दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: तो कल जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया छात्रों पे, ऐसे में बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है। छात्र आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, बीजेपी ने लाठी चार्ज का विरोध करते हुए आज ऐलान किया है बीजेपी का झारखंड बंद का। कल हमने तस्वीरें देखी जो सामने आई, छात्रों पर किस तरीके से बर्बरता की गई, उन पर लाठी चार्ज किया गया, काफी चोट छात्रों को आई है। ऐसे में आज झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध बीजेपी करेगी और झारखंड बंद का आज उन्होंने ऐलान किया है, उसका विरोध किया भी जा रहा है। उधर नीट पेपर लीक मामले में ईडी ने अब बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी राजस्थान, बिहार, असम, साथ ही कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केस दर्ज करने की तैयारी में है। ईडी राज्य पुलिस से केस से संबंधित दस्तावेज और एफआईआर हासिल करने की प्रक्रिया में है। इससे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। राजस्थान, असम, महाराष्ट्र को लेकर वही राज्यों की पुलिस से दस्तावेज अब ईडी लेगी और पहली चार्जशीट इससे पहले दाखिल की गई थी 13 आरोपियों के खिलाफ। तो उधर छात्रों के मुद्दे पर संसद में भी संग्राम बढ़ता जा रहा है। सरकार चर्चा को तैयार है, अमित शाह विपक्ष के हमलों का जवाब देने को राजी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के हमले और तेज हो गए हैं।
2: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस एक्शन हुआ तो ये मुद्दा संसद में सबसे बड़े गतिरोध की वजह बन गया। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा रहा। अब जब सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो चर्चा को तैयार है, तब भी तकरार थमती नहीं दिख रही।
11: क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो।
12: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अब हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
2: छात्रों के आंदोलन पर संसद में जबरदस्त सियासी शोर है। पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर बयान देंगे तो विपक्ष के हमले नहीं थमेंगे। यही वजह है कि एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि गृह मंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष को शांति से सुनना होगा।
13: गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है।
2: विपक्ष की रणनीति तैयार है, वहीं सरकार अमित शाह के जवाब से पलटवार की तैयारी में है, जो संसद में जल्द ही दिखाई दे सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं संसद में आज चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संग्राम के आसार नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र के 3 दिन बचे हैं और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की लगातार तैयारी कर रही है।
2: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है।
14: दोनों विषय बहुत जरूरी है छात्र नौजवानों के, जिस तरह व्यवहार हुआ, जिस तरह छात्र नौजवान अपमानित होकर के गए, और अभी भी उनकी मांगे तो दूर, जो सरकार को फैसला लेना चाहिए। सरकार ने अभी न्याय कहाँ दिया बच्चों को?
15: तो सर इसमें पहली मांग
14: दोनों पर चर्चा हो, दोनों की बातें हो तो स्वीकार करेंगे दोनों बातें।
2: विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया।
16: वो देख रेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो, क्यों ऐसा हुआ।
2: यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियां में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है।
17: जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं, जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं, और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
2: माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी सियासत के बीच एक और बड़ी खबर आज से, अयोध्या राम मंदिर के सीईओ सीईओ पद के लिए इंटरव्यू शुरू हो सकता है जो कि दो दिन तक चलेगा। इस इंटरव्यू के लिए 18 आवेदक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचेंगे और 2 सितंबर को नए सीईओ का ऐलान हो सकता है। बात कर लेते हैं मानसून की मार की। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच उत्तराखंड से सैलाबी सितम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए
18: ये ब्रिज जाएगा।
19: पहाड़ों पर मानसून ने कैसा हाहाकार मचाया है उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। शोर करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी मार से लोहे का बड़ा पुल बहता चला जाता है। दिल दहला देने वाला ये मंजर उत्तराखंड के जोशीमठ का है, जहां एक दिन पहले तमक नाले के पास आए फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। तस्वीरें देखिए, तबाही किस तरह आई, देखिए किस तरह पानी तेज रफ्तार से आ रहा है। सामने एक छोटा ट्रक और जेसीबी है। पानी को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगा। पानी की मार को लोहे का पुल भी नहीं सह पाया और सैलाब में बह गया।
20: ये एकदम से याद दिलाता है पिछले वर्ष जो उत्तरकाशी की धराली की आपदा थी 5 अगस्त को जब वहाँ पे आया था, उसी तरह की ये जो बहाव आया है, ये फ्लड जो आया है, उसी तरह की याद दिलाता है। ऐसे में पूरा पुल बह चुका है। वहीं प्रशासन की टीमें जा चुकी हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो चुका है। वहीं प्रशासन का कहना है एक व्यक्ति के अभी तक लापता होने की सूचना मिली है।
19: उत्तराखंड के कई जिलों में मानसून तेवर दिखा रहा है। नैनीताल से चमोली तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 13 अगस्त तक राहत के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो
0: सुपर 8 में आवक तो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
23: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
24: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: बिजली का बिल पेड,
6: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
7: इतना माही वे।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
11: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन कभी कभी EMI डिफॉल्ट करते ही ग्राहकों को फोन लॉक होने या डिवाइस के फीचर बंद होने का डर सताने लगता है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत लोन पर खरीदे गए मोबाइल और लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इसके बाद लोन पर खरीदे गए मोबाइल या लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। दरअसल RBI ने डिवाइस डिसेबल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया तय की है, जिसमें ग्राहकों की प्राइवेसी और अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि डिवाइस लॉकिंग का इस्तेमाल रिकवरी के दबाव के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। डिफॉल्ट के बाद पहले 30 दिन तक डिवाइस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। 60 दिन के बाद कुछ फीचर्स सीमित किए जा सकते हैं। 90 दिन बाद ही डिवाइस डिसेबल करने की कार्रवाई संभव होगी और इनकमिंग कॉल, SMS और SOS जैसी जरूरी सुविधाएं चालू रखनी होंगी। RBI ने ये भी साफ किया है कि डिवाइस लॉकिंग के लिए मनमाने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल लेंडिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ग्राहकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी नए सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। डिवाइस लॉकिंग के लिए प्रमाणित OEM या OS आधारित सिस्टम का इस्तेमाल होगा, वहीं थर्ड पार्टी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कर्जदार और गारंटर की सीमित निजी जानकारी ही साझा की जा सकेगी और रिकवरी एजेंट तय समय के भीतर ही संपर्क कर सकेंगे। नए नियमों का मकसद रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना और ग्राहकों को अनावश्यक दबाव से बचाना है। साफ है कि EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को नए नियम से बड़ी राहत मिलने वाली है। डिवाइस लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के दायरे में होगी और ग्राहकों के जरूरी अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पर वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, ईरान से खतरे की वजह से ट्रंप ने सीक्रेट प्लेन से भरी थी उड़ान, टर्की से एयरफोर्स वन की जगह दूसरे मिलिट्री प्लेन से किया था सफर। छात्रों के विधानसभा घेराव में हुए लाठीचार्ज पर आज बीजेपी का झारखंड बंद, तबीयत बिगड़ने से छात्र नेता महतो अस्पताल में भर्ती, सारी मांगे पूरी होने तक एक्शन जारी। गृहमंत्री के सदन में जवाब देने के आश्वासन के बाद भी गतिरोध कायम, छात्रों पर पुलिस एक्शन और चढ़ावा चोरी पर बयान की मांग कर रहा है विपक्ष, नड्डा का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए 18 लोग चुने गए, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन तक करेगी साक्षात्कार। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया एक पुल, रायगढ़ में नाले में बही इको वैन, 9 लोगों की मौत।

0: झारखंड में छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का आज राज्यव्यापी प्रदर्शनकारी। छात्रों के नाम हेमंत सोरेन का खुला पत्र, मांगों पर कार्रवाई का भरोसा, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी बनाने का दावा। झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग को राहुल गांधी ने बताया गलत, सरकार से छात्रों की बात सुनकर तत्काल समाधान की अपील की। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी को बताया दिखावा, जेपीएससी जेएसएससी में सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस जेएमएम पर हमला, बाबूलाल बोले झारखंड में नौकरियां बेच दी गई, छात्रों की लड़ाई को बताया अगस्त क्रांति। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो पर सरकार का हमला, सरकार पर हमला बोले अब सरकार से बात नहीं करेंगे। देवेंद्र महतो का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले सरकार हमारी आवाज कुचलना चाहती है, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते गिरफ्तार, बैलिस्टिक कंपनी को परीक्षा का जिम्मा देने का आरोप। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर ईडी का शिकंजा, आर्थिक लेनदेन की भी होगी जांच। पेपर लीक मामलों पर देशभर में कार्रवाई, राजस्थान समेत कई राज्यों में जांच तेज, आर्थिक लेनदेन की जांच करेगा प्रवर्तन निदेशालय। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिनों के हंगामे के आसार, 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है सदन। सरकार की लंबित विधेयकों को पास कराने की तैयारी, एससीआरए संशोधन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पर नजर। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप, 12 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश। हंगामे के बीच सोमवार को कई विधेयक हुए पारित, लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल पास, राज्यसभा में भी विधायी कामकाज जारी। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार, जंतर मंतर पर पुलिसियाई कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का जवाब की मांग। राहुल गांधी का पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना, पेलेटगन और चंदा चोरी के मुद्दे पर जवाब मांगा। जेपी नड्डा पर राहुल गांधी पर पलटवार, बोले राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर गोली चलाने के आरोप पर जेपी नड्डा का जवाब, बोले प्रदर्शन में इस दौरान कोई भी गोली नहीं चली।
1: सदन में आइए, हम चर्चा

पर खड़गे की मांग, लाठीचार्ज पर गृहमंत्री अमित शाह संसद में जवाब दें। खड़गे का प्रधानमंत्री पर निशाना, राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने की मांग। किरेन रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार, बोले गृहमंत्री चर्चा पर जवाब देने को तैयार। रिजिजू के विपक्ष को 2-2, गृहमंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष को सदन से भागना नहीं होगा। एनडीए संसदीय दल की आज मंगल मिलन बैठक, लोकसभा राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद होंगे शामिल। राम मंदिर में सीईओ पद के लिए आज हो सकता है इंटरव्यू, 18 चयनित आवेदक पहुंचेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन। सीईओ भर्ती प्रक्रिया पर जल्द फैसला, सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी लेगी इंटरव्यू। 2 दिन चलेगा सीईओ पद का इंटरव्यू। राम मंदिर परिसर के पीएफसी में होगी चयन प्रक्रिया, 5200 आवेदनों में से 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपी को राहत नहीं, अदालत ने न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ाई। आरोपियों की हिरासत के खिलाफ बचाव पक्ष की अर्जी, 12 अगस्त को धाराओं पर अदालत में होगी सुनवाई। यूपी में अग्निवीर भर्ती का पूरा बड़ा स्केड्यूल सामने आया, मेरठ से शुरू होगी भर्ती रैली, बरेली लखनऊ वाराणसी और अयोध्या में भी आयोजन। मेरठ में 17 अगस्त से ही अग्निवीर भर्ती रैली, बरेली में 14 से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 से 28 जनवरी तक भर्ती। टीएमसी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट फ्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमीयत पर कोलकाता हाईकोर्ट से रैली की मंजूरी, राजा बाजार से मोलाली तक सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मार्च की जा सकती। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन में पीएम मोदी, शरद पवार के साथ दिखे प्रधानमंत्री। रेवती सुले के रिसेप्शन में अमित शाह, शरद पवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात। अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विपक्ष पर तीखा हमला, बोले गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा। यूएस कोर्ट के फैसले का गौतम अडानी ने किया स्वागत, बोले न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरा सम्मान। गौतम अडानी का बयान, सच निष्पक्षता और कानून के राज पर हमारा भरोसा कायम रहा। विदिशा में बारिश का कहर, उफंती बेतवा ने मचाई तबाही, बाढ़ में फंसे लोगों और मवेशियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर, अलकनंदा और गंगा का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे पुलिस अलर्ट। पुरी में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव, जनजीवन प्रभावित। चेन्नई में बारिश का कहर, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बूंदी में बारिश का सैलाब, सड़कों पर बहती बाइक स्कूटी, करीब घंटे भर की बारिश ने शहर को किया जलमग्न। चमोली के जोशीमठ नीति घाटी में बादल फटा, 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज बहा। 13 गांव का जोशीमठ तहसील मुख्यालय से संपर्क टूटा, भारत चीन सीमा मार्ग भी बंद। बादल फटने के कारण भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बोल्डर नाले में आए, नदी किनारे खेतों और सेब के बगीचों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के विकासनगर में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, मैदानी इलाकों में बढ़ा पानी। विकासनगर में कहीं पर सैलाब के तेज बहाव में वाहन फंसे तो कहीं राहगीरों की जान आफत में पड़ गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी फ्लैश फ्लड, पिन घाटी में बहुत सी सड़कें प्रभावित, कई गांव से संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश का कहर, नाले में बही एक कार, 9 शव बरामद, कुल 11 लोग सवार थे, 2 तैरकर बाहर निकले। रायगढ़ हादसे में मृतकों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, प्रथम दृष्टया ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। राजगढ़ के ही खिलचीपुर जल मंदिर में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू हुआ, जल मंदिर आधे से ज्यादा डूबा, गेट और तोपखाना की दुकानों में पानी घुसा। वाराणसी में गंगा की बाढ़ से डूबे पक्के घाट।

0: सीधा रुख करते इस वक्त की एक बड़ी खबर का। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत भड़क उठी है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद बुलाया गया है। कल छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जब वो विधानसभा मार्च के लिए निकले थे तो उन पर लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद छात्रों को काफी चोट आई लाठीचार्ज के खिलाफ। आज बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान हुआ है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। जिस तरीके से कल छात्रों पर लाठी बरसाई गई, उनको कई चोटें आई हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद है आज,
1: और इसीलिए सड़कों पर टायर जलाकर घर किशोरगंज चौराहे पर है। बीजेपी ने लगभग आज पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान किया है। यहाँ पर जो किशोरगंज है यहाँ पर टायर जलाए गए हैं और इसी के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता है सड़क शहर बंद कर रहे हैं। जितनी गाड़ियां इनको यहाँ से लौटाई जा रही है किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। दुकानों को भी आह्वान किया गया है बंद करने के लिए। पेपर लीक के खिलाफ जहां उन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया था, उसी के साथ कल जब छात्र विधानसभा मार्च के लिए निकले तो उसके बाद वहां पर शाम को देर शाम दिन भर जो रेस्ट्रेंट दिखता रहा शाम को लाठीचार्ज में बदला। अब यहीं किशोरगंज चौराहे को ठप किया गया। कार्यकर्ता यहीं से गाड़ियों को लौटा दे रहे हैं, यानी अब आगे की गाड़ियां दूसरे इलाकों में और किशोरगंज के दूसरे पार से आने वाली गाड़ियां आगे नहीं जा रही है। तमाम कार्यकर्ता जो है तो बीजेपी ने मोर्चा खोला है और उसी के साथ सड़क पर यहां नहीं बल्कि कई रांची के इलाकों में टायर जला के रास्तों को ही बंद कर दिया गया है और बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी जो लगातार अब तक गिर गए, दूसरे हिस्से में भी टायर जला दिया गया है, यहां पर भी रास्ता बंद कर दिया गया है और इसी के साथ जितने ऑटो वाले हैं गाड़ी वाले हैं और वो तमाम लोग जाना चाहते हैं उनको भी यहां से लौटाया जा रहा है। हालांकि जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें वो जाने दे रहे हैं क्योंकि कई बच्चे जो अपने स्कूल की ओर रवाना हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये आग ये धुआं दरअसल बीजेपी की ओर से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है कि छात्रों पर नारेबाजी को लेकर के कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये विरोध कहां कहां हो रहा है आज?
2: देखिए पूरे झारखंड में इसका विरोध है। छात्रों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज आंसू के छोड़ने काम ये सरकार,
1: कई सारे बच्चों का स्कूल वगैरह भी उनको भी
2: स्कूल का बंद का आह्वान हम लोगों ने कर दिया है। कई स्कूलों ने सभी शिक्षा के साथ बंद भी किया, लेकिन कई लोग दुष्ट भी हैं उनको समझना चाहिए।
1: इसलिए देखिए अब ये प्रदर्शन के बाद कुछ गाड़ियां देखिए यहाँ से भी इन गाड़ियों को भी तो जो गाड़ियां सप्लाई लेकर की है उनको भी रोका जा रहा है। लेकिन सड़कों पर ये जो किशोरगंज की आप तस्वीरें देख रहे हैं रांची में चारों तरफ पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। जो टायर थे उनको जला के फैला दिया गया ताकि यहाँ पर यातायात, हालांकि यहाँ पुलिस व्यवस्था मौजूद है लेकिन बिल्कुल लाचार नजर आ रही है कि क्या वो इसे रोक सकती है, कम रास्ता खुलवा सकती है या जो आग है ये जो टायर सड़कों पर फैले हुए हैं इनको रोका जा सके। तो कुल मिलाकर के आज का दिन कल तक छात्रों का आंदोलन था, अब इसमें सियासी रंग है। बीजेपी खुलकर छात्रों के समर्थन में है तो लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरी हुई है और इसीलिए आज पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। और
0: आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अब सीधा रुख करते हैं भाग्य चक्र का पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। प्रातः 10:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3:04 तक उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, करियर में आपके दबाव बढ़ेगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, काम

होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

में धन की हानि हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: कांग्रेस भी साथ था। इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था। सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एंजेडा बदल गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मामला शांत हुआ तो पप्पू यादव के भगवा भेष में विरोध के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चढ़ावा चोरी के जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति थी, विपक्ष उससे क्या हासिल कर सका? क्या यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बैकफुट पर लाने का उसका प्लान कामयाब नहीं हो सका? हालांकि विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया।
1: वो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो।
0: यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव में आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियों में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है।
2: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
3: आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को।
0: चढ़ावा चोरी की जांच और एक्शन के बीच टकराव जारी है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है, लेकिन संसद के मानसून सत्र में विपक्ष हमलों की धार तेज नहीं कर सका है। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, ईरान से खतरे की वजह से ट्रंप ने सीक्रेट प्लेन से भरी थी उड़ान, तुर्की से एयरफोर्स वन की जगह दूसरे मिलिट्री प्लेन से किया था सफर। छात्रों के विधानसभा घेराव में हुए लाठीचार्ज पर आज बीजेपी का झारखंड बंद, तबियत बिगड़ने से छात्र नेता महतो अस्पताल में भर्ती, सारी मांगे पूरी होने तक अनशन जारी। गृहमंत्री के सदन में जवाब देने के आश्वासन के बाद भी गतिरोध कायम, छात्रों पर पुलिस एक्शन और चढ़ावा चोरी पर बयान की मांग कर रहा है विपक्ष, नड्डा का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए 18 लोग चुने गए, 3 सदस्यीय कमेटी 2 दिन तक करेगी साक्षात्कार। और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, रायगढ़ में नाले में बही इको वैन, नौ की मौत।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत की।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। रांची की बात करेंगे जहां पर छात्रों की लड़ाई झारखंड बंद तक पहुंच गई है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। दिखने लगा असर, सीधे ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अमित शाह के बयान देने की तैयारी है तो राहुल गांधी का इनकार है। संसद में जारी है गतिरोध के बीच जबरदस्त जुबानी जंग। पहाड़ से मैदानी इलाकों तक आफत की हो रही है बारिश, आपको दिखाएंगे चमोली से एमपी तक की रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त झारखंड से आ रही तस्वीरों के साथ, क्योंकि छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान आज किया है और इसका असर भी दिखने लगा है। रांची की सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ता बंद को अंजाम दे रहे हैं। सड़क पर जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां तक कि सड़क बंद करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सड़क पर उतर आए। आज छात्रों के आंदोलन का 18वां दिन है। कल छात्रों ने विधानसभा मार्च किया था। देर शाम विधानसभा के पास से छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसी के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इसका असर भी अब दिख रहा है। आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें जगह जगह टायर जलाए जा रहे हैं, झंडा लेकर स्लोगन बोले जा रहे हैं लाठीचार्ज के खिलाफ। ये झारखंड बंद का ऐलान। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है और कहां कहां?
2: नेहा, बंद अभी चूंकि शुरुआती समय है और ज्यादातर जो दुकानें भी हैं वो 9:30-10 बजे के बाद ही खुलती हैं। लेकिन हाँ, अब तक हम जिन इलाकों से, एक बार देखिए मैं चौराहा दिखा दूं, आज सड़कों पर यहाँ पर आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। ज्यादातर दुकानें अभी बंद दिखाई दे रही हैं और जो बड़े चौराहे हैं जहां पर समय 9:15-9 बजे खुल भी जाती हैं वहां भी बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, बीजेपी का आह्वान और उसके बाद सड़कों पर अभी हमने देखा कई जगहों पर जो कार्यकर्ता है वो उतरे हैं, टायर वायर जला दिखे। इधर भी सड़क जो है यहां पर भी चहल पहल आज काफी कम है, तो वह कई जगहों पर टायर जला गए हैं, कई जगहों पर कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं तो रास्ते बंद करने के। हालांकि इक्का दुक्का जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो जरूर निकली हैं, लेकिन हाँ अभी शुरुआती समय में अगर देखेंगे तो ये है कि बंद का असर है कुछ इलाकों पर, लेकिन ज्यादातर जो प्रतिष्ठान है जो 10-11 बजे के बाद खुलते हैं तो ये हो सकता है कि उसके विरोध में वो भी बंद रहे। लेकिन हाँ, सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता हमने रांची में देख लिया है, कई जगहों पर कई चौराहे हैं, कुर्मा चौराहा जो है उसी किशोरगंज है वहां पर टायर वायर जला गया, गाड़ियों को वहीं से लौटा दिया गया है। तो कम से कम 3-4 घंटे ये लगता है कि हंगामा होगा तो शहर पर इसका असर जरूर पड़ेगा, उसकी रफ्तार सुस्त जरूर पड़ेगी। नेहा,
1: शशि भूषण मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, शांतिपूर्ण तरीके से आज भी प्रदर्शन किया जाएगा या सिर्फ आज बंद पर फोकस है, एक जगह छात्र बैठकर धरना देंगे?
3: नेहा देखिए, छात्रों का धरना जो है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी रहेगा, जैसा 17 दिनों तक जारी रहा कल तक और आज 18वां दिन है तो वहां पर तस्वीर नहीं बदलने वाली है। लेकिन आज बंद का असर जरूर दिख सकता है रांची के अंदर, पूरे झारखंड में बंद कॉल किया है बीजेपी ने। और ये देखिए, हम बिरसा मुंडा चौक पर हैं, रांची का सबसे प्रमुख चौक चौराहा जो भी कह लीजिए, और यहाँ पर गाड़ियों की जो तादाद है ना वो आम दिनों से कम है इस वक्त। जैसा आशुतोष बता रहे थे कि कमर्शियल गाड़ियां तो फिर भी चल रही हैं लेकिन जो निजी वाहन है वो बहुत कम चल रहे हैं। और हमारे कैमरा पर्सन अगर पैन करके दिखाएं उस तरफ तो दुकानों का शटर भी अभी खुला नहीं है। और देखिए, जो केमिस्ट की दुकानें हैं वो तो खुली है जो इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आती हैं, लेकिन बाकी दुकानों के शटर अभी भी डाउन हैं। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुम्हार टोली और बाकी जो दूसरे इलाके हैं, जो डोरंडा का इलाका है, वहां पर सुबह में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब जब 10 बजेंगे लगभग तो 10 बजे के बाद एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी बंद को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि इस मामले में उसको राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। और जिस तरह से छात्रों के ऊपर का लाठीचार्ज की घटना हुई विधानसभा के 1 नंबर गेट के पास, उसके बाद ये बड़ा मुद्दा बन गया है। तो विपक्ष यानी जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर, वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नेहा, थोड़ी देर में हो सकता है बंद का असर इस बिरसा मुंडा चौक पे दिखेगा।
1: तो आशुतोष और शशि भूषण दोनों तस्वीरें दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से। आइए अब आपको दिखाते हैं कल की तस्वीरें। कल क्या कुछ हुआ था, आज झारखंड बंद का आह्वान क्यों किया गया, इसकी नौबत क्यों आ गई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
4: रांची में विधानसभा मार्च के दौरान जब छात्रों पर लाठियां बरसी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों का आक्रोश धधक उठा।
5: एक भी नहीं बचेंगे,
6: हम लोग मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे।
4: विधानसभा के ठीक पास डटे छात्रों की पहले पुलिस से बहस हुई। जब छात्र डटे रहे और पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। देखते ही देखते मार्च अफरा तफरी में बदल गया। कई छात्र घायल हुए, कई को चोटें आईं।
2: छात्र विधानसभा मार्च करने के बाद लौटने लगे, कुछ छात्र विधानसभा में डट गए और जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जिन छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है उन्हें चोट आई है, वो घायल हुए हैं। किसी के पैरों में तगड़ी चोट लगी है, किसी के हाथों में सूजन आ गई है। क्या शिक्षक, क्या विद्यार्थी, क्या परीक्षार्थी, जो भी थे, हर कोई चोट के बाद अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं। आप भी थे वहाँ पर?
7: हमको भी दौड़ा दौड़ा के मारा गया, निर्दय से हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया, कोई राम नहीं, लड़की लोग को मारा गया।
4: सोमवार को आंदोलनकारी छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनातनी की तस्वीरें सामने आई। वाटर कैनन, आंसू गैस और हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र एक एक कर बैरिकेड पार करते गए और विधानसभा के ठीक करीब पहुंच गए तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी। विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसी तो झारखंड की सियासत ने और जोर पकड़ लिया। बीजेपी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला तेज हो गया। अब बीजेपी की तैयारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चाबंदी की है, जिसके लिए आज बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया है।
8: जो अन्याय और अत्याचार हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ हुआ है, जो नौकरियां बेची गई है, परीक्षाओं से पहले पेपर लीक किए गए हैं, और जिस प्रकार से आज बर्बरता पूर्वक हमारे बच्चों के देह में जो लाठियां बरसाई गई है, रात का अंधेरा का फायदा उठा करके, दिन में उजाले में बारूद के गोले छोड़े गए हैं, फवारे छोड़े गए हैं, आज सैकड़ों बच्चे घायल हैं, वो हमारे बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं।
4: अब छात्रों के मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सूबे की सियासत गरमाई तो हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विपक्ष पर आंदोलन को भटकाने का आरोप लगा दिया। मैं ये भी समझता हूँ कि आपके शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच विपक्ष के कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने की कोशिश की। आप सभी से अपील है कि आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में न आएं। सीएम भले ही विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाएं, लेकिन लाठीचार्ज ने हेमंत सरकार को बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी के हाथ में बड़ा मौका दे दिया है। रांची से सत्यजीत, शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
1: झारखंड में 18 दिन से जारी आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र महतो का अनशन आज भी 18वें दिन जारी है और आज महतो के अनशन का 10वां दिन है। कल वो बढ़ चढ़कर विधानसभा मार्च में शामिल हुए। पुलिस लाठीचार्ज पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी।
9: अब जांच करिए ना, जिसको फंसना है फंसेगा, आपको क्या चिंता है? जनता जो कुर्सी दिया है, ये जनता जो आपको सत्ता में बैठाया है, इससे बड़ा चिंता किसको कर रहे हैं? कोई फंसे, आपका साला फंसे, ससुर फंसे, चाहे आपका ससुराल वाले फंसे, इसका चिंता नहीं करना है मुख्यमंत्री जी। घोषणा करिए, छात्र को संतुष्ट करिए। ये आग जो लग चुका है ना, ये आग अब बुझने वाला नहीं है। सरकार पर निर्भर करता है कि हम लोग किस दिशा में जाएंगे। छात्र का काम पढ़ना, छात्र के हाथों में किताब, छात्र के हाथों में कलम, मसाल, ये सब नहीं है। छात्र का काम पढ़ना, फॉर्म भरना, एग्जाम देना, नौकरी करना। ये छात्र कल नेतागिरी नहीं करेंगे कोई, ये छात्र कल कोई चुनाव में नहीं लड़ेंगे, ये कल पढ़ने फिर चले जाएंगे, उसका बात नहीं सुनेंगे। कैसा बेशरम मुख्यमंत्री है, कुर्सी खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ, अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे।
1: आशुतोष मिश्रा में सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अब छात्रों के लिए आगे की राह क्या है, क्योंकि विधानसभा मार्च में तो कल लाठी चार्ज हो गया, आज झारखंड बंद का आह्वान हो गया, अब आगे क्या?
2: आंदोलन जारी है, छात्रों ने कहा था कि मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगे, वो तो सांकेतिक शक्ति प्रदर्शन था ये दिखाने के लिए कि जो यूथ हैं भले अलग धड़े हों, लेकिन मांग थी जेएसएससी एसजीएल सीजीएल की कि जब तक वो रद्द नहीं होगा उसमें न्याय नहीं मिलता, वो रहेंगे। और इसीलिए मैं जिस आंदोलन मंच पे हूं, आज 18वां दिन है, ये मंच भी जिसका तस बना हुआ है, छात्र भी यहां डटे हुए हैं। हालांकि देखिए, कल चोट बहुतों को लगी है, ये मुझे याद है कि ये वो कोर ग्रुप के वॉलंटियर्स थे जो छात्रों को शाम होते कह रहे थे चलिए अब यहां से वापस भी चलना है, उसके बाद जब अंधेरा हुआ है कहां कहां आपको चोट आई, ये देखिए इन छात्रों को,
10: ये देखिए पूरा लाल है सर, यहाँ आगे से भी मार रहा है, पीछे से भी मार रहा है। हम लोग खुद एसपी सर बोले कि आप लोग अपना बच्चा को शांत करके बैठे, हम लोग शांत करने खुद जा रहे हैं, हम लोग क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग पुलिस डंडा लाठी
2: आंदोलन देख रहे हैं, यहाँ चले कई सारे वहाँ जो छात्र हैं वो सब घायल हैं,
10: और हमारे बहने जो बहने हम लोग साथ आंदोलन में बैठी थी शांतिपूर्ण तरीके से, उन लोग का फीमेल पुलिस मार रहा है सर, वहाँ एक भी फीमेल पुलिस नहीं थी, इस बेदर्दी की तरह से क्या मतलब हद है, कैसा सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार से यही कह रहे हैं कि आपके यहाँ महिला पुलिस नहीं है,
2: अब आगे क्या होगा, अब आगे की रणनीति क्या है छात्रों?
10: अब आगे की रणनीति हिसाब है कि जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती तब हम लोग हिलने वाले नहीं है, अब डंटा खा लिया, अब गोली खाने के लिए भी तैयार हैं।
2: और इसीलिए यहाँ पर देखिए कि जैसे रोज मैं सुबह देखता था कि सुबह छात्रों का जमावड़ा एक हुजूम यहाँ बैठा रहता था, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, घंटे बीतेंगे, ये भीड़ बढ़ती जाएगी। आंदोलन अब जस का तस जारी है, अब ये देखना है कि क्या सरकार के पास वार्ता के लिए जो समय था वो यहीं से था, तीन दिन दो दौर की बातचीत चली, ज्यादातर मांगों पर मानी गई, लेकिन प्रमुख मांग पर छात्र अड़े थे, वहां पर सुनवाई नहीं हुई, तो क्या अब एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा?
1: शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भूषण, छात्र तो यही चाहते थे कि उनकी मांगों को सुना जाए, काफी हद तक उन्होंने राजनीतिक पार्टी को दूर रखने की कोशिश भी की, बीजेपी अब इस आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ गई है, आज बंद का आह्वान उन्होंने किया है, अब छात्र किस तरीके से इसे नॉन पॉलिटिकल बनाएंगे, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल बन गया तो हो सकता है उनकी सारी मांगे डाइल्यूट हो जाए।
3: बिल्कुल सही बात आपने कही नेहा, और यही वजह रही कि कल पूरे दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ विधानसभा मार्च, हमने कहीं भी कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देखा उसमें। सरकार जो झारखंड की है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनसे डिमांड जरूर थी अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का, किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई झंडा नहीं दिखा। और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आज इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री हो रही है या एंट्री हो चुकी है, आज झारखंड बंद का कॉल कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन छात्र अभी भी शायद जो राजनीतिक मंच है या फिर पार्टियां हैं उनसे दूरी बनाते हुए, जैसा पिछले 17 दिनों में उन्होंने आंदोलन चलाया है, आज 18वें दिन भी वो कंटिन्यू रहेगा और तब तक आगे वो कंटिन्यू रहेंगे, जैसा आशुतोष वहां बात कर रहे थे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। छात्रों को, उनके संगठनों को, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ये पता है कि अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री होती है तो उनका काम और मुश्किल हो जाएगा, और यही वजह है कि उन्होंने उससे दूरी बना करके रखा हुआ है। उनको उनका एक जेन्युइन कॉल है, इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं।
1: ठीक है, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बात संसद के मानसून सत्र की, जिसमें अब बहस 3 ही दिन बाकी है, और ये लग रहा है कि बाकी दिन भी गतिरोध में ही बीत जाएंगे। गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कल एक प्रस्ताव आया, सरकार ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन पर गृह मंत्री संसद में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के प्रस्ताव का कोई असर ही नहीं हुआ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें गृह मंत्री के जनरल बयान में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ ये जानना है कि 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर किसने गोली चलवाई। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा कल शाम सामने आए, उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोली चली ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया।
11: क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो।
12: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
13: आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है, आपको फेस करना होगा। गृहमंत्री जी पूरी जितना समय कांग्रेस चाहते हैं उतना चर्चा करके जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूं, भागना नहीं है। अब बहाना मार के प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, माफी मांगना, ये सब नाटकबाजी नहीं है। अभी तो सीधा चर्चा, हम सीधा सीधा लोकसभा में हम चर्चा चाहते हैं और राहुल गांधी भाग नहीं सकते।
14: हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम यह जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, यह हम समझना चाहते हैं। तो यह हमारी पोजिशन शुरुआत से थी, फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजिशन, आवर पोजिशन इज नॉट चेंज्ड।
1: जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या इस बात पर क्लैरिटी है कि जिन स्पेसिफिक्स की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं वो शामिल होंगी गृहमंत्री अमित शाह के बयान में? 20 जुलाई के दिन क्या हुआ, क्या पैलेट गन से गोलियां चली या फिर नहीं चली, या फिर अभी भी इसी तरह से गतिरोध बरकरार रहेगा?
2: और देखिए, आज भी जिस तरीके की विपक्ष की रणनीति है उसमें यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि 10 बजे इंडिया ब्लॉक की उनकी बैठक है और उसके बाद वो लोग 10:30 बजे के आसपास मकर द्वार पर आकर के जो उनकी पुरानी मांगे थी, हमने देखा कि पिछले कई सप्ताह से वो लगातार जो मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आएं और जवाब दें। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गृह मंत्री हर एक मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि 20 जुलाई की घटना जो हुई थी उस पर गृहमंत्री जवाब दें, तो गृहमंत्री उस पर भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसको ऑथेंटिक तौर पर उन्होंने सदन के अंदर भी बोला और बाहर भी लगातार वो बात कर रहे हैं कि गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार। लेकिन विपक्ष जो है आज भी प्रोटेस्ट करने के लिए और हंगामा करने के लिए अड़ा हुआ है। सिचुएशन जिस तरीके की दिखाई पड़ रही है कि 3 दिन सिर्फ सदन के बचे हुए हैं, आज, कल और परसों, 13 तारीख को मानसून सत्र पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। वैसे में विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के, अब उनके मुद्दों में एक और मुद्दा जुड़ गया है, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन संसद परिसर में कर रही थी, संसद भवन के अंदर भी, अब कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को उठाना चाह रही है और आज जानकारी जिस तरीके की मिल रही है कि वो लोग भी प्रदर्शन में इसमें शामिल होंगे और वो लोग भी
1: प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है, गतिरोध जारी रहेगा। इस बीच खबर यह कि आज कांग्रेस की घेराबंदी करने के लिए एनडीए के सांसद प्रदर्शन करेंगे। एनडीए का कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। यही बात अब से कुछ देर पहले जेपी नड्डा कह रहे थे। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, क्या प्लान है आज एनडीए का?
15: जी, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं नेहा, तो एनडीए का मंगल मिलन शुरू होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंच गए और इसके अलावा सभी जो सांसद हैं एनडीए के वो पहुंचने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में पहुंचेंगे और इस मंगल मिलन के बाद जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एनडीए के सभी सांसद सीधा पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग से मकर द्वार की तरफ चलते हुए नजर आएंगे और लगभग सभी सांसदों के हाथ में तख्तियां होंगी जिसमें वो जवाब मांगेंगे राहुल गांधी से। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पिछले काफी लंबे समय से चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है अंदर और बाहर संसद के, और इसीलिए कल सरकार ने खुला ऑफर विपक्ष को दिया जिसमें ये कहा गया साफ साफ कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृहमंत्री अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी भागे नहीं, राहुल गांधी भागो मत, इस तरह की बात जेपी नड्डा ने भी कल कही थी। और आज जब मंगल मिलन खत्म हो जाएगा तब उस वक्त एनडीए के सांसद
1: अब बात मौसम की, पहाड़ से मैदान तक आफत बरस रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में तमक नाले में फ्लैश फ्लड में वैली ब्रिज बह गए, तो वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में झेरी नाले में उफान से कार बहने से 9 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी के उफान में कल 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भोपाल में भारी बारिश है, आज 12वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई। वहीं वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है। राजस्थान के बूंदी में कल ऐसी बारिश हुई कि बाइक और स्कूटी बहने लगे। सभी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली में आई आपदा की एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं।
4: दिल तहला देने वाला तबाही का मंजर, पानी का घातक प्रहार और बह गया लोहे का भारी भरकम पुल। खिलौने की तरह बहने लगी भारी भरकम जेसीबी मशीनें। उत्तराखंड में जोशीमठ से करीब 37 किलोमीटर दूर तमक नाले के पास कल फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। तस्वीरें देखिए तबाही किस तरह आई, देखिए किस तरह पानी तेज रफ्तार से आ रहा है। सामने एक छोटा ट्रक और जेसीबी है। पानी को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगा। पानी की मार को लोहे का पुल भी नहीं सह पाया और सैलाब में बह गया। अब दूसरे एंगल से ये तस्वीर देखिए। फिलहाल यहाँ पुल सलामत है, नीचे पाठ का पानी आ रहा है और ऊपर एक बाइक सवार पुल से गुजर रहा है, लेकिन चंद मिनटों के भीतर पूरा मंजर बदल जाता है और करीब 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज देखते ही देखते बह जाता है। एक महीने पहले ही इस वैली ब्रिज को लगाया गया था। इस आपदा ने पिछले धराली में हुई तबाही की बुरी यादों को ताजा कर दिया।
16: ये एकदम से याद दिलाता है पिछले वर्ष जो उत्तरकाशी की धराली की आपदा थी 5 अगस्त को जब वहां पे आया था, उसी तरह की ये जो बहाव आया है, ये फ्लड जो आया है, उसी तरह की याद दिलाता है। ऐसे में पूरा पुल बह चुका है। वहीं प्रशासन की टीमें जा चुकी हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो चुका है। वहीं प्रशासन का कहना है एक व्यक्ति के अभी तक लापता होने की सूचना मिली है।
4: पुल के बहने से नीति घाटी के जुम्मा, झेलम, कोशा, मलारी, कैलाशपुर, मेहरागांव, फरकिया, बांपा, गमशाली, नीति, द्रोणागिरी, कागा और गरपक समेत 13 गांवों का संपर्क जोशीमठ तहसील मुख्यालय से कट गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन गांवों के लिए यह पुल आवाजाही का प्रमुख मार्ग था। वहीं भारत चीन सीमा की ओर जाने वाला बॉर्डर रोड भी बाधित हो गया है।
17: ये तमक नाला है, उसका पुराना भी इतिहास रहा है कि अतिवृष्टि में वो नाला काफ़ी बढ़ करके आ जाता है और वहाँ पे पुल बहने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये अभी कुछ ही समय पहले अतिवृष्टि के कारण जो नाला उफान पे आया है उसकी वजह से पुल वॉश आउट हुआ है। और साथ में जो प्रारंभिक हमें सूचना मिल रही है कि ग्रिफ के एक वर्कर वहाँ पे थे, वो भी बहे हैं। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने तत्काल मौके पे भेज दिया है, हमारी प्रशासनिक टीम भी मौके पे पहुंच रही है।
4: जोशीमठ के तमक नाले में फ्लैश फ्लड का पूरा इतिहास रहा है। पिछले साल मानसून के दौरान इसी नदी पर बना पीसीसी पुल भी बह गया था। इसके बाद पिछले महीने ही बीआरओ की ओर से यहां वैली ब्रिज लगाया गया था, लेकिन महज एक महीने के भीतर ही यह पुल भी तेज पानी के बहाव में बह गया। तमक नाले में हर मानसून के दौरान पुल और सड़क को नुकसान पहुंचने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ताजा तस्वीर बेहद डराने वाली है। कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
1: और अब आपको दिखाते हैं मध्यप्रदेश की रिपोर्ट। राजगढ़, विदिशा, भोपाल तीनों जगहों पर जमकर आफत बरसी है। राजगढ़ में नदी में एक कार बह गई जिसमें 9 लोगों की जान चली गई।
18: दूर दूर तक पानी ही पानी, सड़कों पर पानी, दुकानों में पानी और पानी में डूबा ये मंदिर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पानी नहीं आफत बरसी है। राजगढ़ के खिलचीपुर स्थित गाढ़ गंगा नदी तट पर स्थित जल मंदिर का हाल देखिए। मंदिर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नजर आ रहा है। कल सावन का दूसरा सोमवार था, बड़ी तादाद में शिव भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और 6 लोग जल मंदिर के अंदर फंस गए।
19: अचानक गाढ़ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से 6 लोग इस मंदिर के अंदर फंस गए हैं और नदी का बहाव तेज होने के कारण वो मंदिर के बाहर नहीं है आ पाए। उनके गले गले तक पानी है और सभी लोग फंसे हुए हैं। उनमें एक महिला है, एक बच्चा है और 4 लोग हैं जिनको निकालने के लिए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम आई हुई है। और आप देख सकते हैं कि नाव की मदद से उनको मंदिर से निकाला जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम मंदिर के पास मौजूद है, उनको निकालने गए हैं। एनडीआरएफ की टीम, आप मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है।
18: राजगढ़ के मटन मार्केट का हाल देखिए, पूरा बाजार पानी पानी है। बाजार से भी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। बारिश से पूरा राजगढ़ जिला प्रभावित है। नदी नालों के उफान की स्थिति बनी हुई है। उफनते हुए जीरी नाले में कल दर्दनाक हादसा हुआ। जीरी नाले में इको वैन बहने से 9 लोगों की मौत हो गई। अब मध्य प्रदेश के विदिशा का हाल देखिए, लगातार बारिश के बाद बेतवा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बेतवा घाट पर बने मंदिर पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस मंदिर का हाल देखिए, सिर्फ मंदिर का शिखर नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी और ओवरफ्लो पुलिया पार करने को मजबूर हो गए हैं। विदिशा के वामनखेड़ा और पथरिया गांव में फंसे लोग और मवेशियों के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम देवदूत बनकर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब राजधानी भोपाल का हाल देखिए, रविवार रात से सोमवार सुबह तक 10 घंटे इतनी बारिश हुई कि भोपाल त्राहिमाम कर उठा। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी ने डेरा जमा लिया। बारिश की वजह से कल तो सभी स्कूल बंद रहे, आज भी स्कूलों को बंद रखा गया है।
20: मूसलाधार बारिश ने भोपाल के गीतानगर, कल्याण नगर जैसे कई ऐसे इलाके जहाँ पे तबाही मचा दी है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो इलाका है, वो जो लोग चल के आ रहे हैं उनके छाती तक पानी है पूरा। और ये सभी लोग जो चल के आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाइए कि वहाँ कितना पानी इस वक्त भरा हुआ। हम इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें गहराई का अंदाजा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, उस शर्ट पे जो पानी का निशान है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ के लोग जो है वो किस हद तक पानी में डूबे हुए हैं इलाके। ये देखिए, ये भी चल के आ रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये एक करोद मंडी आती है, वहां से एक नाला आता है जिसकी वजह से हर बार तेज बारिश में ये नाला ओवरफ्लो होता है और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है। और सामने लोगों को भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो सीने तक पानी में डूबे हुए हैं। इस इलाके में पानी जो है वो तकरीबन 4-4, 5-5 फीट तक पहुंच गया है।
18: विदिशा से पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: में चौतरफा गिर गई सोरेन सरकार। पुलिस लाठीचार्ज खिलाफ बीजेपी के झारखंड बंद के दौरान सड़क पर हो रहे हैं प्रदर्शन। अब भी धरने पर बैठे हैं छात्र, कहां अंजाम तक आंदोलन। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज लोकसभा में दो अहम बिल पेश कर सकते हैं अमित शाह। मंगल मिलन के बाद संसद की ओर पोस्टर लेकर जाएंगे एनडीए के सांसद। विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति पर वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। ईरान से खतरे की वजह से ट्रंप ने सीक्रेट प्लेन से भरी थी उड़ान। तुर्की से एयरफोर्स वन की जगह दूसरे मिलिट्री प्लेन से किया था सफर। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू। फाइनल राउंड के लिए 18 लोग चुने गए। 3 सदस्यीय कमेटी 2 दिन तक करेगी साक्षात्कार। और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर। चमोली में बह गया पुल। राजगढ़ में नाले में बही इको वैन। 9 लोगों की मौत। इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कोलंबिया में कल आए भूकंप की तीव्रता 7.4 नापी गई। जबरदस्त भूकंप कोलंबिया में आया। भारी तबाही इसने मचाई है। इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 111 तक पहुंच चुका है। करीब 87 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप में कोलंबिया के कई शहरों में इमारतें जमीन दोज हो गई है, जिस मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। इसे पिछले एक दशक में देश में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप बताया जा रहा है।
1: Está temblando fuerte. Avenida Roosevelt con 43.
0: और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। झारखंड में छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का आज राज्यव्यापी बंद। झारखंड बंद के आह्वान का दिखने लगा असर। रांची में कई जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बुलडोजर लेकर प्रदर्शन। सरकार खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम हेमंत सोरेन का खुला पत्र। मांगों पर कार्रवाई का भरोसा। झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग को राहुल गांधी ने बताया गलत। सरकार से छात्रों की बात सुनकर तत्काल समाधान की अपील। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी को बताया दिखावा। जेपीएससी जेएसएससी में सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस जेएमएम पर हमला। बाबूलाल मरांडी बोले झारखंड में नौकरियां बेच दी गई। छात्रों की लड़ाई को बताया अगस्त क्रांति। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो का सरकार पर हमला। बोले अब सरकार से बात नहीं करेंगे। महतो का सरकार पर आरोप। बोले सरकार हमारी आवाज को चलना चाहती है। तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीप के ने जताया समर्थन। छात्र नेता देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की और जाना हाल। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल हियांगते गिरफ्तार। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा का जिम्मा सौंपने का आरोप। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर ईडी का शिकंजा। आर्थिक लेन देन की होगी जांच। पेपर लीक मामले पर देश भर में कार्रवाई। राजस्थान समेत कई राज्यों में जांच तेज। आर्थिक लेन देन की जांच करेगा ईडी। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन हंगामे के आसार। 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है सदन। सरकार की लंबित विधेयकों को पास कराने की तैयारी। एफसीआरए संशोधन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पर नजर। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। 12 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश। हंगामे के बीच सोमवार को कई विधेयक हुए पारित। लोकसभा में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पास। राज्यसभा में विधायी कामकाज जारी। संसद के मानसून सत्र में आज हंगामे के आसार। जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान पर कांग्रेस का जवाब की मांग। राहुल गांधी का पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना। पेलेट गन और चंदा चोरी के मुद्दे पर जवाब की मांग। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर गोली चलने के आरोप पर जेपी नड्डा का जवाब। बोले प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली।
2: और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: जंतर मंतर की कार्रवाई पर खड़गे की मांग, लाठीचार्ज पर गृहमंत्री अमित शाह संसद में जवाब दें। खड़गे का प्रधानमंत्री पर निशाना, राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान की मांग। किरण रिजिजू का विपक्ष पलटवार, बोले गृहमंत्री चर्चा पर जवाब देने को तैयार है। रिजिजू का विपक्ष की दो टूक, गृहमंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष को सदन से भागना नहीं होगा। एनडीए संसद दल में आज मंगल मिलन बैठक, लोकसभा राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आज हो सकता है इंटरव्यू, 18 चयनित आवेदक पहुंचेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन। सीईओ भर्ती प्रक्रिया पर जल्द फैसला, सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी लेगी इंटरव्यू। दो दिन चलेगा सीईओ पद का इंटरव्यू, राम मंदिर परिसर के पीएफसी में होगा चयन प्रक्रिया। 5,200 आवेदन में से 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। राम मंदिर से रावाचोरी मामले में 8 आरोपी को राहत नहीं, अदालत ने न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ाई। आरोपियों की हिरासत के खिलाफ बचाव पक्ष की अर्जी, 12 अगस्त को धाराओं पर अदालत में होगी सुनवाई। टीएमसी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट फ्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमीयत पर कलकत्ता हाईकोर्ट से रैली की मंजूरी, राजा बाजार से मौलाली तक सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक मार्च की इजाजत। यूएस कोर्ट के फैसले का गौतम अडानी ने किया स्वागत, बोले न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरा सम्मान। गौतम अडानी का बयान, सच निष्पक्षता और कानून की राज पर हमारा भरोसा कायम रहा। यूपी कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी, निष्क्रिय जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। यूपी कांग्रेस में संगठन सृजन की नई कवायद, सक्रिय नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। यूपी की सियासत में आकाश आनंद की वापसी, पुराने तेवर के साथ दिखा नया सियासी अंदाज। 2 साल बाद यूपी में आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की तैयारी, दलित जेनजी गठजोड़ पर बहुजन समाज पार्टी की नजर। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद ने कहा, सीएम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा बहुत पसंद है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के अग्निवीर भर्ती का बड़ा शेड्यूल, मेरठ से शुरू होगी भर्ती रैली, बरेली लखनऊ वाराणसी और अयोध्या करेगी आयोजन। मेरठ में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली, बरेली में 14 से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 से 28 जनवरी तक भर्ती। अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विपक्ष पर तीखा हमला, बोले गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच को का भरोसा। विदिशा में बारिश का कहर, उफनती बेतवा ने मचाई तबाही, बाढ़ में फंसे लोगों और मवेशियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर, अलकनंदा और गंगा का बड़ा जलस्तर, नदी किनारे पुलिस अलर्ट। पुरी में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई में बारिश का असर, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते दिक्कतों का लोगों को करना पड़ रहा है सामना। बूंदी में बारिश का सैलाब, सड़क पर बहती बाइक स्कूटी, करीब घंटे भर की बारिश ने शहर को किया जलमग्न। चमोली के जोशीमठ नीति घाटी में बादल फटा, 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज बहा। 13 गांव का जोशीमठ तहसील मुख्यालय से संपर्क टूटा, भारत चीन सीमा मार्ग बंद। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बोल्डर नदी किनारे आए, खेतों और सेब के बगीचों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के विकास नगर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। विकास नगर में कहीं सैलाब के तेज बहाव में वाहन फंसे तो कहीं राहगीरों की जान आफत में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड, पिन घाटी में बहुत सी सड़कें प्रभावित, कई गांवों से संपर्क कटा। मध्यप्रदेश राजगढ़ में बारिश का कहर, नाले में वही कार, 9 के शव बरामद, कुल 11 लोग थे सवार। राजगढ़ हादसे में मृतकों के परिजनों के 4,4 लाख मुआवजे का ऐलान, प्रथम दृष्टया ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। राजगढ़ के खिचलीपुर जल मंदिर में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू हुआ, जल मंदिर आधे से ज्यादा डूबा, गेट और तोपखाने की दुकानों में घुसा पानी। वाराणसी में गंगा की बाढ़ से डूबे पक्के घाट, कई घाटों का संपर्क टूटा, नौका संचालन पर प्रतिबंध, गंगा द्वार से विश्वनाथ धाम तक प्रवेश पर रोक। यूपी के बागपत में महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, पूरा महादेव में पहली बार पिंक प्लान, पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट तैयार। महिला अफसरों के हाथ सुरक्षा की कमान, हर पिंक शिविर में महिला अफसर तैनात, महिला कांस्टेबल रहेंगी मुस्तैद। महिलाओं के लिए विशेष बसें तैनात, ई व्हीकल की सुविधा, कांवड़ मेले में दिखेगा पिंक पहरा। कांवड़ियों से केसरिया हुआ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर तरफ गूंज रहा है बोल बम का जयकारा। चंदौली के कांवड़ियों के जमाया भक्ति रंग, प्लेटफॉर्म पर गूंज रहा है हर हर महादेव, शिव भजनों से भक्तिमय हुआ स्टेशन। प्रयागराज में गंगा यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ा, संगम पर स्नान करना हुआ प्रभावित, गांधी में मानसून के बीच गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रमुख घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, अलर्ट जारी। बीजेपी सांसद हरभजन सिंह ने राजस्थान के श्रीगंगानगर का वीडियो पंजाब को बताकर शेयर किया। पंजाब की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का बीजेपी नेता पर पलटवार का, राजस्थान के श्रीगंगानगर का वीडियो पंजाब को बताने का लगाया आरोप। गाजियाबाद के लोनी में 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान की छत ढही, मलबे में 3 लोगों का रेस्क्यू, एक घायल। बिहार के बेगूसराय में गंगा घाट पर स्नान के दौरान कांवड़ियों और स्थानीय लोगों में मामूली कहासुनी को लेकर झड़प, पक्षों में जमकर मारपीट। पटना में 10वीं की छात्रा लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला स्कूल ड्रेस और बैग, आक्रोशित परिजनों ने आगजनी की और सड़क जाम किया। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्करी का खुलासा, उत्पाद विभाग की टीम ने लाखों की शराब जब्त की। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने बरसाई लाठी तो भागे छात्र। महाराष्ट्र के बीड में बिजली के खंभे पर काम करते समय कर्मचारी को लगा करंट, मौके पर मौत। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर ने 2 बच्चों को दिया जहर, फिर की आत्महत्या, घटना से पहले वीडियो बनाकर पति से परेशान होने की बात बताई, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में एक गांव में पूजा का प्रसाद खाने से 100 लोगों से ज्यादा की तबियत बिगड़ी, घटना के बाद अफरा तफरी मची। बिहार के कटिहार में पति को लेकर सड़क पर भिड़ी 2 पत्नियां, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। झांसी में ट्रेन के अंदर टिकट चेकिंग स्टाफ के केक काटते वीडियो वायरल, रेलवे ने मामले के संज्ञान लेते शुरू की जांच। राजस्थान के नागौर में पुलिस ने रिटायर्ड जवान के मकान में चल रही अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 20 करोड़ का माल जब्त। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज एनडीए की मंगल मिलन बैठक शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित तमाम मंत्री और सांसद मंगल मिलन के लिए पहुंच चुके हैं। आज कांग्रेस की घेराबंदी करने के लिए एनडीए के सांसद प्रदर्शन की भी तैयारी में है और एनडीए का यह कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ही चर्चा से भाग रही है। हर मंगलवार को ये मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं पीएम, ये मंगल मिलन जिसमें एनडीए के सभी दिग्गज सांसद मौजूद रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं आप, अब से कुछ देर पहले वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इस मंगल मिलन समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें सभी के हाथ में इस वक्त आप भारतीय झंडा देख सकते हैं। संसद परिसर में इस मंगल मिलन को आयोजित किया जाता है। सबसे कुछ देर पहले की तस्वीर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ मंगल मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए, के साथ किरण रिजिजू की मौजूदगी और तमाम एनडीए के सांसद दरअसल इस मंगल मिलन में शिरकत करते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजी पर विचार किया जाता है। आज स्ट्रैटेजी ये है कि संसद में धरना प्रदर्शन किया जाएगा एनडीए के सांसदों द्वारा। अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह सभी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं।

0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आज की तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, आज तो धरना प्रदर्शन की तैयारी है।
1: देखिए बिल्कुल, आज की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है और जिस तरीके से झंडा फहराया जा रहा है वो साफ साफ है कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त से पहले वैसे भी सरकार का एक कार्यक्रम है जो कल्चर मिनिस्ट्री यानी संस्कृति मंत्रालय के तहत है, हर घर झंडा। और आप देखेंगे तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, सब जो है तिरंगा यात्रा अपने अपने क्षेत्रों में निकाल रहे हैं और एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी में भी इसी तरीके का एक नजारा जो है आपको देखने को।
0: रुकिए यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
2: पापा,
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: बिजली का बिल पेड
9: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
10: कैसे?
9: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
10: माही वे।
11: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
12: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
13: लायन डेट नट बाइट्स।
14: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
18: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
19: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
20: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
19: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
21: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
22: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ। और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है।
23: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है। वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मजारे UCC इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है। देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,

0: इसके लिए जो है इनको बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरा कोई तथाकथित साधु संत इस तरह की बात ना कर सके।
1: तो क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिर से हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ा जाएगा? क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की कार्ड बीजेपी ने तैयार कर ली है? समाजवादी पार्टी के कृष्ण और सुदामा दाम का भी क्या बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। लखनऊ से दिल्ली तक हर कदम फूंक फूंक कर रखा, लेकिन अब बीजेपी को मथुरा से नई किरण दिख गई। बीजेपी और आनुषंगिक संगठन हमेशा से कहते आए थे कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, लेकिन अब मथुरा से संत समाज ने इसका ऐलान कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की तैयारी है। समय तय हो चुका है, बस 6 दिसंबर 2026 का इंतजार है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या में कार सेवा हुई थी। मथुरा के हिंदू संगठनों ने कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की घोषणा करके हिंदुत्व की इस पिच को फिर गर्मा दिया है।
2: 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है।
1: मथुरा के कई हिंदू संगठनों और संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संत समाज ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। मथुरा के संतों ने पहले 9 अगस्त को कार सेवा की तैयारी की थी। इसके लिए बाकायदा हवन पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद मामला टल गया। अब संतों ने 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा करने का ऐलान किया है। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर ही बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची और फिर एक एक करके आधे हिंदुस्तान में भगवा लहरा दिया। मथुरा भी बीजेपी के एजेंडे में शुरू से रहा है। योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर खुलकर कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते।
3: सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च के बीच चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर दिसंबर में मथुरा में कार सेवा होती है तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व कितना टिकेगा ये समय बताएगा। आज तक ब्यूरो।

पेट्रोल की बढ़ती लागत और E20 पेट्रोल को लेकर बनी आशंकाओं के बीच कार खरीदारों की पसंद बदलती दिख रही है। जो लोग कल तक पेट्रोल गाड़ियों को पहली पसंद मानते थे, वो आज CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। नतीजा ये है कि भारतीय ऑटो बाजार में अल्टरनेट फ्यूल गाड़ियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सड़क पर उतर रही हैं, जिससे CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों की बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि जुलाई में कुल बिक्री में CNG, हाइब्रिड और EV गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 40.6% पर पहुंच गई। वहीं पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 41.7% पर आ गई। एक साल पहले दोनों के बीच करीब करीब 13% पॉइंट्स का अंतर था, जो अब महज 1% अंक पर आ गया है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट मानी जा रही है। साथ ही E20 पेट्रोल को लेकर भी ग्राहकों के बीच कई सवाल बने हुए हैं, जिससे CNG वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 24% पर पहुंच गई है। वहीं EV का हिस्सा भी बढ़कर करीब 8% हो गया है। उधर हाइब्रिड गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों और पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी के बीच का अंतर तेजी से घटा है। ऑटो डीलर्स का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर बाजार में काफी भ्रम है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत सामने नहीं आई है जिसमें E20 की वजह से गाड़ियों में दिक्कत साबित हुई हो। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव ऐसे समय में आ रहा है।

जब कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री भी मजबूत बनी हुई है। नई लॉन्चिंग और वैकल्पिक ईंधन वाले मॉडल्स की बढ़ती संख्या ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। डेटा के मुताबिक जुलाई में पैसेंजर व्हीकल रिटेल बिक्री में 19% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं सीएनजी का सबसे बड़ा वैकल्पिक ईंधन सेगमेंट बना हुआ है। उधर ईवी और हाइब्रिड गाड़ियां भी तेजी से बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं और इससे ऑटो बाजार में ईंधन का समीकरण तेजी से बदल रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ग्राहकों का फोकस इंजन से ज्यादा रनिंग कॉस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी पर रहेगा। साफ है, भारतीय कार बाजार में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पेट्रोल गाड़ियां अभी नंबर वन हैं, लेकिन सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी तेजी से उनके बराबरी की तरफ बढ़ रही हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो पेट्रोल गाड़ियों और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। आदित्य के राणा, आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मंगल मिलन में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। विपक्ष के खिलाफ संसद तक पोस्टर के साथ जाएंगे। नड्डा का चैलेंज, छात्रों पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज लोकसभा में दो अहम बिल पेश कर सकते हैं अमित शाह। विपक्ष अब भी पुलिस एक्शन और चढ़ावा चोरी के बयान पर अड़ा। लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार। छात्र क्रांति में चौतरफा घिर गई सोरेन सरकार। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी के झारखंड बंद के दौरान सड़कों पर हो रहे हैं प्रदर्शन। अब भी धरने पर बैठे हैं छात्र, कहा अंजाम तक आंदोलन। उद्योगपति गौतम अदानी को अमेरिका से बड़ी राहत। यूएस की अदालत से सभी आपराधिक मामले खारिज। अदानी ने किया फैसले का स्वागत, कहा इंसाफ का भरोसा था। और पहाड़ से मैदान तक मानसून का हाहाकारी दृश्य। चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बहा पुल। राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई गाड़ियां। भोपाल में स्कूल बंद, विदिशा में बाढ़।

0: स्वागत है। तो सुबह 10 बजे के इस बुलेटिन में बात चार बड़ी सियासी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड छात्र आंदोलन की, जिसमें कल शाम हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों में भारी आक्रोश है। साथ ही पुलिस एक्शन को लेकर सूबे का सियासी ताप भी बढ़ गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया है, जिसका असर राजधानी रांची समेत कई शहरों में देखा भी जा रहा है। इसके साथ बात करेंगे संसद में छात्रों के मुद्दे पर छिड़े संग्राम की। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से पहले कांग्रेस के हमले और तेज हो गए हैं। साथ ही बात करेंगे राम मंदिर से जुड़े अहम मुद्दे की, जिसके नए सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से इंटरव्यू शुरू होगा। तो बात संसद के मानसून सत्र की, जिसके अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 3 दिनों में सरकार की कोशिश कुछ अहम बिल पास कराने की है। वहीं छात्रों और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेराबंदी में लगा हुआ है। सरकार कल साफ कर चुकी है कि छात्रों पर पुलिस एक्शन पर वो चर्चा को तैयार है। वहीं विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग लगातार कर रहा है। तो सत्र की शुरुआत से पहले एनडीए की मंगल मिलन की बैठक जारी है। इस बैठक में सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस बैठक में सभी बड़े नेता शामिल थे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में वहां पर मौजूद थे एनडीए के सभी सांसद। तो मंगल मिलन लगातार बीजेपी का वो कार्यक्रम जिसमें सांसद मिलते हैं एनडीए के, यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल के सांसद। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुलाकात करते हैं। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा लगातार देखी जाती है, लेकिन आज की तस्वीर ये अहम रही, जब तिरंगा झंडा लहराते हुए सभी सांसद नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आपके लिए हम मंगल मिलन की लेकर आए हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का वो कार्यक्रम जो संसद की कार्यवाही से पहले होता है, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, मंगल मिलन का आज का एजेंडा क्या रहा, क्योंकि 10 बजे विपक्ष की भी बैठक होती है, लेकिन उससे पहले हम एनडीए के सभी दलों की भी बैठक देखते हैं, तो आज का एजेंडा क्या रहा?
1: जी बिल्कुल अंजलि, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दो बड़ी बैठकें संसद भवन के अंदर चल रही है। पहली बैठक विपक्ष की जो मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में चल रही है, वहीं दूसरी ओर मंगल मिलन हो रहा है, और इस मंगल मिलन में एनडीए के सभी सांसद हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे ही आज मंगल मिलन की शुरुआत हुई, तब हमने देखा जितने भी सांसद हैं एनडीए के, वो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आए। सबके हाथों में तिरंगा झंडा भी था। और आपको बता दें कि देश भर में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक इंडिपेंडेंस वीक मनाया जा रहा है, और ये इसी वीक के तहत हर घर तिरंगा कैंपेन भी सरकार चला रही है, और इसी के तहत सभी सांसद आज हाथ में तिरंगा लहराते हुए नजर आए और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी सभी ने लगाए। मंगल मिलन इस वक्त जो है वो चल रहा है, और आज एक प्रेजेंटेशन जल शक्ति मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जरूर दी जाएगी। इससे पहले 3 प्रेजेंटेशन मंत्रियों के द्वारा दी जा चुकी है। पीयूष गोयल ने भी प्रेजेंटेशन दी, ललन सिंह के अलावा मनसुख मंडाविया अपने मंत्रालय को लेकर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। तो लगातार प्रेजेंटेशन होती है, और आज जल शक्ति को लेकर जानकारी दी जाएगी कि कैसे मोदी सरकार में इस पूरे विभाग को लेकर काम हुआ है। संभवतः प्रधानमंत्री भी जो है वो अपनी बात रख सकते हैं, और जब ये मंगल मिलन का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब सभी सांसद पार्लियामेंट्री बिल्डिंग से मकर द्वार की तरफ मार्च करते हुए नजर आएंगे।
0: पीयूष, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जैसे कि पीयूष बता रहे हैं, एक और छात्रों को के जो मुद्दा है उस पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी की तैयारी में है। तो झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने बीजेपी को विपक्ष पर पलटवार का बड़ा मौका दे दिया है। आज एनडीए सांसद पोस्टर लेकर संसद में प्रदर्शन करने वाले हैं और इसकी प्लानिंग है और छात्रों के समर्थन में वो संदेश देंगे। बताया ये जा रहा है कि सरकार इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि छात्रों पर जिस चर्चा की मांग कांग्रेस कर रही थी अब वो ही इस चर्चा से पीछे हट रही है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, ये संदेश देने के लिए आज जो सांसद है एनडीए पार्टी की वो क्या करने वाले हैं, खासतौर पे झारखंड वाले सांसद?
1: जी बिल्कुल, लगभग 10:30 के आसपास जब मंगल मिलन खत्म होगा तब जितने भी सांसद हैं एनडीए के और खास तौर पर जो झारखंड बीजेपी के सांसद हैं वो सभी मार्च करते हुए मंगल मिलन जहां पर हो रहा है यानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग से मकर द्वार की तरफ बढ़ेंगे। और इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 500 से 600 मीटर की ये दूरी है और इस दूरी को इस रास्ते में सभी सांसदों के हाथ में तिरंगा हो सकता है, साथ में उनके पोस्टर्स होंगे, बैनर्स होंगे, प्लेकार्ड्स होंगे जिसमें वो ना सिर्फ जो छात्रों पर बर्बरता हुई है कल झारखंड के ऊपर उस मुद्दे को उठाएंगे बल्कि साथ साथ राहुल गांधी को भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भागो मत, आओ संसद में चर्चा में हिस्सा लो। क्यों? क्योंकि कल सरकार ने खुला ऑफर विपक्ष को दिया था कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे वो जंतर मंतर पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ या झारखंड में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इसी के साथ साथ जब चर्चा होगी तो गृहमंत्री ना सिर्फ इन पूरे पर जवाब देंगे बल्कि सभी मुद्दे जो विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे उन सभी मुद्दों पर भी अपनी बात रखेंगे। तो आज प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट की राजनीति लगभग 10:30 के आसपास आपको संसद भवन के मकर द्वार के बाहर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए के सांसद मार्च करते हुए नजर आएंगे हाथ में पोस्टर बने लिए, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सांसदों ने भी प्रोटेस्ट की तैयारी कर ली है, उनके हाथ में भी पोस्टर्स बैनर्स होंगे। और पिछले लगभग हर दिन हम ये देख रहे हैं विपक्ष 10:30 के आसपास से धरना प्रदर्शन करता है, तो आज भी विपक्ष का धरना होगा लेकिन जब एनडीए के सांसद मकर द्वार पर पहुंचेंगे तो वहां पर स्थिति ऐसी कि जहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं एक दूसरे के
0: जी बिल्कुल। और पीयूष, उस पर रहेगी हमारी नजर क्योंकि जैसा कि पीयूष भी बता रहे थे लगभग हर दिन एक बैठक भी होती है और वो विपक्ष की बैठक भी होती है। इस बीच सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाती है और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की ये बैठक अभी भी चल रही है जिसमें चर्चा की जा रही है कि कैसे जो रणनीति तैयार की जाती है सरकार की तरफ से उसे काउंटर किया जाए या फिर अपनी बात को कैसे आगे रखा जाए। तो सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा, उसमें कई मुद्दे रहते हैं शामिल, चाहे वो छात्रों पर जो एक्शन हुआ था उस पर सरकार से लगातार जो जवाबदेही मांगी जा रही है उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए या फिर चंदा चोरी के मुद्दे को किस तरीके से उठाया जाए इस पर चर्चा हो रही है। और अब रुक करते हैं रांची का, जहां पर बीजेपी का झारखंड बंद है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया है जिसे लेकर रांची समेत कई शहरों में जबरदस्त हंगामा दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहां सड़कों पर टायर जलाकर सड़कों पर ट्रैफिक को बाधित किया जा रहा है। तो बीजेपी आज हमलावर मोड पर है, छात्र अपने आंदोलन को कायम किए हुए हैं, वो अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता आज आपको नजर आ रहे हैं सड़कों पर।
2: छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। हम यहाँ किशोरगंज चौराहे पर है और टायर जला करके अब रास्तों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। आज झारखंड बंद का आह्वान है रांची के किशोरगंज में, यहाँ पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए झंडे लेकर के और अब उन्होंने यहीं से गाड़ियों को लौटाना शुरू कर दिया है। रास्तों को यहाँ से कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है, शहर ठप करने की कोशिश उन्होंने कल जब विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे उसके बाद बीजेपी ने जब लाठीचार्ज हुई रात को छात्रों पर उसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। किशोरगंज की तस्वीर देख रहे हैं, देखिए वहां पर भी वो गाड़ियों को रोक रहे हैं, यहीं से पलटवा दिया है। शहर को बंद किया जा रहा है, पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान दिया गया है और इसी के साथ सड़कों पर टायर यहां पर जला दिया गया है। ये बीजेपी विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है सोरेन सरकार के खिलाफ, अब सीधे नारेबाजी, सीधे बीजेपी ने मोर्चा खोला है और जो विरोध है वो लाठीचार्ज को लेकर के क्या संदेश आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से दिया जा रहा है सरकार को?
3: ऐसा है, हेमंत सोरेन का किस तरह स्थिति हो गई है कि कभी भी छात्र का हित का बात करें, आज तक जो भी नौकरी देते हैं।
2: आज का विरोध लाठी चार्ज को लेकर या पेपर लीक को लेकर?
3: देखिए, आज का विरोध छात्रों पर लाठी चार्ज होने का है। जिस तरह से छात्र अपनी व्यवस्था बनाकर घेराव करने गए थे, उस पर आंसू गैस छोड़ना, कटीली तारों से उन्हें हर्म करना, ये लग रहा पाकिस्तान से आए हैं। इस खोखली सरकार राहुल गांधी वहाँ बयान दे रहा है, दोहरा चरित्र वाला राहुल गांधी यहाँ छात्रों का साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त है।
2: और सोरेन सरकार के खिलाफ, इस लाठीचार्ज के खिलाफ कार्यकर्ता जो है सड़कों पर टायर जला करके, अब ये किशोरीगंज जो चौराहा है इसको ठप कर दिया है। पूरे रांची के अलग अलग इलाकों में जो है बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया लाठीचार्ज के खिलाफ, सोरेन सरकार के खिलाफ। विपक्ष में बीजेपी ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। रांची में किशोरगंज से लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: आइए सुन लेते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं।
4: जो अन्याय और अत्याचार हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ हुआ है, जो नौकरियां बेची गई है, परीक्षाओं से पहले पेपर लीक किए गए हैं, और जिस प्रकार से आज बर्बरता पूर्वक हमारे बच्चों के देह में जो लाठियां बरसाई गई है, रात का अंधेरा का फायदा उठा करके, दिन में उजाले में बारूद के गोले छोड़े गए हैं, फवारे छोड़े गए हैं, आज सैकड़ों बच्चे घायल हैं। वो हमारे बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, इसलिए उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके कल झारखंड को ठप करेगा।
0: तो रांची से हमारे सहयोगी शशि भूषण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शशि, किस तरह की स्थिति आज सड़कों पर नजर आ रही है, क्या असर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि यही वक्त होता है जब दफ्तरों के लिए लोग निकलते हैं?
5: देखिए अंजलि, सुबह तकरीबन 8 से 9 के बीच में रांची शहर के अलग अलग जगहों पे, जैसे किशोरगंज चौराहा, कुमार टोली, डोरंडा, इन तमाम जगहों पे थोड़े थोड़े प्रोटेस्टर्स निकले थे, बंद समर्थक निकले थे और बीजेपी के लोगों ने बंद कराया। लेकिन बड़ा कॉल जो है वो 11 बजे से है, और यहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं से ABBP जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, वो निकलेंगे विधानसभा का घेराव करने के लिए। हालांकि अभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, दूसरी गेट से नेता जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। रणनीति यहां बन रही है कि कैसे 11 बजे मार्च शुरू होगा, और ये पीछे की तरफ जो रास्ता आपको दिखाएं, यही रास्ता है जो आगे बिरसा मुंडा चौक की तरफ जाएगा और वहां से फिर असेंबली की तरफ, जहां कल हमने मार्च देखा था। तो आज एक बार फिर से बड़ी तस्वीर 11 बजे देखने को मिलेगी या उसके बाद, जब यहां ABBP का मार्च शुरू होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस लड़ाई में निकल चुकी है, कहीं ना कहीं जो राजनीति है।
0: शुक्रिया शशि इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करते हैं संसद परिसर का, जहां पर एनडीए का मंगल मिलन अब खत्म हो चुका है और एनडीए के सांसद अब मकर द्वार की तरफ कूच कर चुके हैं। आज वो झारखंड में हुए एक्शन के खिलाफ, और साथ ही मैं आपको बता दें कि वो राहुल गांधी पर अटैक करते हुए प्रदर्शन करने वाले हैं। तो हाथों में उनके तख्तियां, पोस्टर, बैनर आपको नजर आएंगे और मकर द्वार की तरफ उन्होंने अपना कूच शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए इस वक्त लेकर आ रहे हैं। तो बीजेपी के चाहे सांसद हो या सहयोगी पार्टी, एनडीए सहयोगी पार्टियों के सांसद हो, एनडीए के सभी सांसद इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन करते हुए। तो जहां हम लगातार देखते आए हैं विपक्ष का प्रदर्शन, आज प्रदर्शन एनडीए का हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं संसद में। अब एनडीए के सांसद झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने की उनकी मंशा है, वो सवालों के घेरे में लेना चाहते हैं राहुल गांधी को, झारखंड की सरकार को, और सवाल उठाना चाह रहे हैं कि आखिर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ। कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो संसद परिसर में आज विरोध प्रदर्शन एनडीए के सांसदों का है, उसके थ्रू, उसके जरिए क्या कोशिश है उनकी?
6: देखिए, बिल्कुल, एनडीए की ये कोशिश है कि वो एक संदेश दे आम जनता तक कि जो भी छात्रों का प्रदर्शन है उस पर चर्चा के लिए संसद में सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष इसके लिए अब पीछे भाग रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज पूरा जो प्रोटेस्ट है वो एनडीए के जितने MP हैं वो पोस्टर बैनर लेकर चल रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप चर्चा में जो है वो भाग लें। लेकिन विपक्ष की तरफ से कल साफ कर दिया गया था कि हम छात्र आंदोलन के साथ साथ जो है राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है उस पर भी चर्चा चाहते हैं। सरकार ने कहा चंदा चोरी पे नहीं होगी चर्चा क्योंकि सरकार के पास समय कम है, छात्रों का जो आंदोलन है उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, गृह मंत्री इस पर पूरी चर्चा के बाद जवाब देंगे। और कल किरण रिजिजू ने यह भी कहा था कि जब चर्चा हो जाए तो आप जवाब पूरा सुने बिना जाइएगा मत, भाग मत जाइएगा, सुनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अब जो है वो बैकफुट से फ्रंट फुट पे खेल रही है और यही कोशिश है कि आप देखिए अब एनडीए जो कल तक जो है विपक्षी दल जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे चर्चा की मांग करते हुए, आज एनडीए के सांसद ये चर्चा की ये मांग कर रहे हैं विपक्ष के लिए आइए चर्चा के लिए हम तैयार हैं।
0: जी बिल्कुल, और तस्वीरें इस वक्त आने लगी हैं इस मार्च की, बैनर पकड़ा हुआ है कि विपक्ष आप मत भागो चर्चा से। एक बार कोशिश करते हैं अगर आप कुछ सुनाई देता है तो तस्वीरें इस वक्त आपको संसद परिसर से हम सीधी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त ये मार्च शुरू हो चुका है। हिमांशु, बहुत अहम हो जाता है ये समझना कि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है सत्र के, ऐसे में अगर विपक्ष हर बार अपना गोल पोस्ट चेंज करता है तो ये दिक्कत सिर्फ सरकार की नहीं है, ये उन छात्रों के लिए भी हो सकती है जो चाहते हैं कि गृह मंत्री आके कोई जवाब दें उस मुद्दे पर।
6: देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष इस चीज की मांग कर रहा था, छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, टीयर गैस छोड़े गया, पहले गन का यूज हुआ है, उसको लेकर जो है चर्चा होनी चाहिए। अब जब सरकार मानसून सत्र के अंतिम प्रभाव पर चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष ये कह रहा है कि दो मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, एक राम मंदिर पे चंदा चोरी को लेकर और छात्र आंदोलन पर। सरकार का ये कहना है समय कम है, हम छात्र आंदोलन पर जो है चर्चा के लिए तैयार।
0: जी हिमांशु, इस वक्त आइए सुन लेते हैं एनडीए के सांसद क्या कह रहे हैं।
7: लाठीचार्ज हो रहा है, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, वहाँ पर निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, ये राहुल गांधी को जवाब देना होगा। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए।
8: राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने पूरा सदन का पूरा सेशन बिगाड़ा है, अब उनको सदन के अंदर आके जवाब देना चाहिए और संवाद के माध्यम से सदन को चलना देना चाहिए।
7: राहुल गांधी में अगर हिम्मत हो तो सदन में आके अमित भाई शाह का पूछू ने इनके लड़कों के राहुल गांधी कहा है।
0: आपके लिए लेकर आ रहे हैं संसद परिसर से जहां पर मार्च शुरू हो चुका है और इस मार्च में सांसद सारे यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सदन में आना पड़ेगा क्योंकि अब गृह मंत्री जो है वो बयान के लिए तैयार हैं, वो चर्चा के लिए तैयार हैं, साथ ही झारखंड के मुद्दे को भी उन्होंने इस मुद्दे में समेट लिया है। क्यों? क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो इस मुद्दे को लेकर अब सरकार और सहयोगी पार्टियों के सांसद घेराबंदी कर रहे हैं यहाँ विपक्ष की। तो अब तक जो विरोध प्रदर्शन, जो तेवर हम विपक्ष की तरफ से देखते आए वो यहाँ एनडीए के
9: वहाँ पे जाकर के जो युवाओं की बर्बरता पूर्वक पिटाई हुई है, राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं जाते, प्रियंका गांधी वहाँ क्यों नहीं जाते, ये धरने पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं। वास्तव में राहुल गांधी भगोड़ा है और इन सब सारी घटनाओं से भाग रहे हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए झारखंड में जो पिटाई हुई है।
0: सुना एक ही सवाल सभी सांसद उठा रहे हैं, ये एनडीए के सांसद हैं जो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी पहली बात क्यों नहीं चर्चा के लिए आना चाहते, उन्हें बार बार भगोड़ा बोला जा रहा है और उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन को क्यों नहीं सपोर्ट करते झारखंड में।
10: जी, उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है, पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे।
11: लगातार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दे पर डिस्कशन हो, जब एचएम तैयार हो गए जवाब देने के लिए अब लगातार गोल पोस्ट चेंज हो रहा है, वो लग रहा है।
12: पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग।
13: राहुल गांधी जवाब दो, दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड।
0: तो ये तस्वीरें सीधी संसद परिसर से, जहां अब एनडीए के सांसद कर रहे हैं प्रदर्शन। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे और खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सोकुडो।
16: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: बिजली का बिल पेड,
19: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
20: कैसे?
19: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
20: माही वे।
21: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन कभी कभी EMI डिफॉल्ट करते ही ग्राहकों को फोन लॉक होने या डिवाइस के फीचर बंद होने का डर सताने लगता है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत लोन पर खरीदे गए मोबाइल और लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इसके बाद लोन पर खरीदे गए मोबाइल या लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। दरअसल RBI ने डिवाइस डिसेबल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया तय की है, जिसमें ग्राहकों की प्राइवेसी और अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि डिवाइस लॉकिंग का इस्तेमाल रिकवरी के दबाव के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। डिफॉल्ट के बाद पहले 30 दिन तक डिवाइस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। 60 दिन के बाद कुछ फीचर्स सीमित किए जा सकते हैं। 90 दिन बाद ही डिवाइस डिसेबल करने की कार्रवाई संभव होगी और इनकमिंग कॉल, SMS और SOS जैसी जरूरी सुविधाएं चालू रखनी होंगी। RBI ने ये भी साफ किया है कि डिवाइस लॉकिंग के लिए मनमाने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल लेंडिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ग्राहकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी नए सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। डिवाइस लॉकिंग के लिए प्रमाणित OEM या OS आधारित सिस्टम का इस्तेमाल होगा, वहीं थर्ड पार्टी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कर्जदार और गारंटर की सीमित निजी जानकारी ही साझा की जा सकेगी और रिकवरी एजेंट तय समय के भीतर ही संपर्क कर सकेंगे। नए नियमों का मकसद रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना और ग्राहकों को अनावश्यक दबाव से बचाना है। साफ है कि EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को नए नियम से बड़ी राहत मिलने वाली है। डिवाइस लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के दायरे में होगी और ग्राहकों के जरूरी अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

छात्रों के मुद्दे पर अब बीजेपी के निशाने पर विपक्ष, एनडीए सांसदों के हाथ राहुल को चर्चा के चैलेंज वाले पोस्टर। मंगल मिलन में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी सांसदों ने लहराया तिरंगा। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज लोकसभा में दो अहम बिल पेश कर सकते हैं अमित शाह। अगली रणनीति के लिए खड़गे के साथ विपक्ष की बैठक, आज भी लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार। छात्र क्रांति में चौतरफा गिर गई सोरेन सरकार। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी के झारखंड बंद के दौरान सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन, अब भी धरने पर बैठे हैं छात्र, कहा अंजाम तक आंदोलन। उद्योगपति गौतम अदानी को अमेरिका से बड़ी राहत, यूएस की अदालत से सभी आपराधिक मामले खारिज। अदानी ने किया फैसले का स्वागत, कहा इंसाफ का भरोसा था। और पहाड़ से मैदान तक मॉनसून का हाहाकारी दृश्य, चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बहा पुल। राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई गाड़ियां, भोपाल में स्कूल बंद, विदिशा में बाढ़।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात कर रहे हैं संसद में चल रहे हंगामे की। मंगल मिलन बैठक के बाद एनडीए सांसद कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर निकल चुके हैं। रांची में छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर राहुल गांधी से जवाब की मांग की जा रही और छात्रों पर जो पुलिस का एक्शन हुआ है उसको लेकर विपक्ष के हंगामे के जवाब में एनडीए ने अब अपना मोर्चा खोल दिया है।
1: झारखंड में कल जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चली और काफी छात्र घायल हो गए उस मुद्दे को लेकर इस वक्त एनडीए के सभी सांसद संसद भवन के अंदर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जो सांसद हैं उनके हाथ में तख्ते, इस पर लिखा हुआ है झारखंड के छात्रों पर हुई बर्बरता पर राहुल गांधी जवाब दो, और राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए जो सांसद हैं वो लगातार यहां पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं संसद भवन के अंदर की, जहां पर जो एनडीए के सांसद हैं उनके हाथ में तख्तियां हैं और उस पर लिखा हुआ है झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। सर, क्या जवाब आप लोग मांग रहे हैं?
2: राहुल गांधी जी, अभी जिस तरीके से उन्होंने संसद को इस बार मानसून सत्र को चलने नहीं दिया जी, अब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि झारखंड में जो हो रहा है इसका जवाब राहुल गांधी दें।
1: तो राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए यहां पर जो एनडीए के सांसद हैं वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में तख्तियां भी हैं, साथ साथ लगातार नारेबाजी भी जो है वो सांसदों के द्वारा की जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो संसद के मकर द्वार के ठीक बाहर है, जहां पर ये सभी सांसद मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद तावड़े हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मांग आप लोग लेकर आ जाए?
3: सर, राहुल गांधी मांग रहे थे चर्चा, अभी चर्चा के लिए एचएम साहब तैयार है, तो राहुल गांधी भगोड़े भाग रहे।
1: इस तरह की बातें करते हुए यहाँ पर जो सांसद हैं एनडीए के वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एनडीए के सभी सांसदों के हाथ में जो है तख्तियां भी हैं, जिस पर कल जो बर्बरता हुई छात्रों पर, जिसमें छात्रों पर लाठियां चली, उन सब की भी तस्वीरें यहां पर लाई गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो कल झारखंड में हुआ उस मुद्दे को इस वक्त एनडीए यहां पर उठाता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। आज मंगल मिलन के बाद सीधे जो एनडीए के सांसद है वो मार्च करते हुए यहाँ पर नजर आए, और फिलहाल मकर द्वार के ठीक बाहर ये सांसद इकट्ठे हो गए हैं। अनुराग ठाकुर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और कई सांसद हैं जिनके हाथ में तख्ते हैं, जिस पर लिखा है झारखंड के छात्रों पर हुई बर्बरता पर राहुल गांधी जवाब दे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो क्रूरता हुई है उस पर भी राहुल गांधी जवाब दे। अनुराग ठाकुर मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों के हाथ में तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है राहुल गांधी जवाब दो, क्या मांग आज एनडीए के सांसद?
4: झारखंड में छात्रों के साथ जो हिंसा हुई है वो अत्याचार हुआ है, उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, राहुल गांधी और वहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार
1: जी।
4: मैं ये कहता हूं, जब ये कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको घायल किया जा रहा है, रात्रि के अंधेरे में कंटीली तारों पर उनको एक तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर यहां तक कि आंसू गैस के गोले और सब चलाए गए, राहुल गांधी कहां है
1: जी?
4: मूक दर्शक बने हैं, संसद से भागते हैं, संसद चलने नहीं देती, सदन को बंधक बना के रखा है कि चलने नहीं देंगे, सांसदों की आवाज को उठाने नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से संसद को बंद करा के ठप करके रख दिया है। जब गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं तब राहुल गांधी सदन में आना नहीं चाहते हैं
1: जी।
4: झूठ की दुकान एक और राहुल गांधी जी हो गए हैं, और दूसरा कांग्रेस ने जिस तरह से झारखंड के युवाओं के ऊपर अत्याचार किया है उनको इस्तीफे लेने भी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
1: इस तरह की बातें करते हुए अनुराग ठाकुर यहां पर नजर आ रहे हैं, और एनडीए के सभी सांसद इस वक्त संसद भवन के अंदर मार्च करते हुए मकर द्वार की तरफ बढ़ चले हैं। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।
0: तो लगातार संसद परिसर से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एनडीए के सांसद चाहे जितना भी बड़ा नेता हो वहां मौजूद है, हमें वहां पर नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, वहां पे संसदीय कार्य मंत्री भी नजर आए, और साथ ही नितिन नवीन भी बीजेपी अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे। तो आज रणनीति साफ है, घेरना राहुल गांधी को है, घेरना विपक्ष को है। तो अब तक जो काम विपक्ष करती आई थी वो काम अब एनडीए करती नजर आ रही है। उसने सवाल सीधा राहुल गांधी पर ही उठा दिए हैं। पूछते हैं कि वो क्यों भाग रहे हैं चर्चा से, उन्हें बार बार भगोड़ा बुलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यहाँ पर हिमांशु, बाजी पलटती हुई नजर आ रही है एनडीए, जो विरोध प्रदर्शन का रवैया तेवर हम देखते थे विपक्ष का, आज वो हम एनडीए का देख रहे हैं।
5: देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए के सांसद जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल जिस तरीके से झारखंड के अंदर छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़ी गई, आंसू गैस छोड़ा गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो अब फ्रंट फुट पे है, क्योंकि कल सरकार की तरफ से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये साफ कर दिया गया था कि सरकार जो है वो छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है और नियम के तहत चर्चा होगी और उसके बाद जो है पूरी चर्चा का जवाब जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है सदन में देंगे। और ये बात किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने सदन में कही थी। उन्होंने कहा था कि पूरा विपक्ष गृह मंत्री का जवाब उनको सुनना पड़ेगा, भागे नहीं वो बिना जवाब सुने। तो कहीं ना कहीं कल से ही सरकार फ्रंट फुट पे दिख रही है और कल विपक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि सिर्फ छात्र आंदोलन पर नहीं बल्कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर भी जो है वो चर्चा हो। सरकार ने कहा कि उनके पास बिजनेस बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो विधायी कार्य है उनको पास कराना भी है।
0: आप हमारे साथ बने रहे। आपको बता दें कि आज जब ये मार्च हो रहा था तो विपक्षी नेता प्रियंका गांधी संसद परिसर में आ रही थी और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त उन्हें सांसदों ने एनडीए के घेर लिया और सवाल पूछे। आ रही थी तो वहां पर मौजूद जो सांसद प्रेस को बाइट दे रहे थे, उन्होंने पूछा झारखंड क्यों नहीं गए। ये तस्वीरें आपने देखी प्रियंका गांधी की, जब वो संसद में आ रही थी उस वक्त उनसे सवाल पूछ रहे थे एनडीए के सांसद।
6: देखिए विपक्ष लगातार मॉनसून सत्र को चलने देना नहीं चाहता है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष अपनी गोल पोस्ट को बार बार बदल रहा है। सबसे पहले विपक्ष ने कहा नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पार्टी ने, एनडीए ने और संसद ने तय किया कि चर्चा होगी, नया कानून बनेगा। नया कानून भी बना, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज करते हुए ये कहा कि 20 तारीख को सदन चलो यात्रा जो हुआ था उस विषय में माननीय गृहमंत्री जी अपना बयान रखे। माननीय गृहमंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और कल पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेनजी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? आज हम
0: तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी इस मार्च में शामिल थे, उनसे बात की है हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह ने, सुनिए।
7: वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जवाब दो, विपक्ष भी इसी बात को लेकर के गृह मंत्री के जवाब की बात उनके द्वारा किया जा रहा है।
8: गृह मंत्री जवाब तैयार है राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब देने के लिए, वो सुनने तो आए, बहस होने तो दें और गृह मंत्री को सुने। अभी जो हमारा प्रोटेस्ट है कि दिल्ली में इतना हंगामा करते हैं राहुल गांधी, झारखंड में क्या हो गया? वहां बच्चों पर लाठी नहीं चल रही है क्या? आंसू गैस नहीं चल रहा है क्या? क्या मतलब है? उनकी सरकार तो कंधों पर है, कांग्रेस के हेमंत सोरेन की सरकार, तो वहां कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये है राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड। अगर शुद्ध भाषा में कहूं तो राहुल गांधी हिपोक्रेट है।
7: तो क्या आप लोग इसको सदन के अंदर भी
8: उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, चिंता मत करिए। धन्यवाद।
7: जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो आप सुन रहे थे किस तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के सांसद। उनका लगातार सवाल यही है कि जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, बयान देने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों नहीं संसद में आकर विपक्ष सुनना चाहता है। साथ ही झारखंड का मुद्दा भी इसी से जोड़ लिया गया है, क्योंकि है तो वो छात्रों का ही मुद्दा। तो सवाल यहाँ पर अब एनडीए के सांसद उठा रहे हैं कि आखिर जब वहां पर लाठी चली है तो राहुल गांधी वहां पे क्यों नहीं एक्शन मोड में नजर आते हैं। तो आज एनडीए की अपनी नई रणनीति, आज सुबह मंगल मिलन हुआ जहां पर अमित शाह और पीएम मोदी मौजूद थे, और उसके बाद संसद परिसर में ये आपको जो दिखा रहे हैं इस वक्त मार्च नजर आया, उसके बाद स्थिति आज वहां पर संसद परिसर में हंगामे की लग रही है। तो बड़ा मुद्दा यह है कि आज इसके बाद आखिर विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि विपक्ष की बैठक भी हुई है सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में। विपक्ष की भी अपनी बैठक थी जो वो रोज करते हैं करीब 10 बजे, जिसमें अपनी रणनीति तैयार करते हैं। तो आज बीजेपी और एनडीए के इस अटैक का काउंटर अटैक विपक्ष आखिर कैसे करेगा।
9: जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। अमित शाह मिसिंग है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। और ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको नजर आ रही है छाते के अंदर, पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो विपक्ष की तरफ से है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो ये नारे लगा रहे हैं कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। हाय हाय के नारे आपको लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ है सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ है विपक्ष, और उन लोगों का ये कहना है कि वो आखिरकार जवाब कब दिया जाएगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। विपक्ष के सारे सांसद यहाँ पर नारे लगाते हुए और यहाँ पर चर्चा की मांग करते हुए बाकी जो सांसद है वो नजर आई है। ये है संसद का मकर द्वार और यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने है। ऐश्वर्या परिवाल, दिल्ली आज तक।
0: तो आखिर आमने सामने आ ही गए सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद। ये तस्वीर आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए, दोनों का एक दूसरे को घेरने की कोशिश, सवाल पूछने की कोशिश।
9: लोग नारे लगा रहे हैं वही।
0: तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो कि एनडीए सांसदों की हैं, जो कि अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जवाब देंगे क्या झारखंड के मुद्दे पर। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जैसा कि होना ही था आमने सामने पहुंच ही गए आखिरकार दोनों पक्षों के सांसद, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, और वहां पर शोर शराबा और हंगामा भी नजर आया। क्या हुआ है आज संसद परिसर में?
5: देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि दोनों मुद्दों पे जो है चर्चा हो, छात्र आंदोलन पर भी और राम मंदिर में चंदा चोरी पर भी। सरकार की तरफ से यानी एनडीए सांसदों की तरफ से इस बात की मांग की जा रही है। संसद परिसर में पूरा मार्च निकाला गया पोस्टर बैनर के साथ, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री जवाब देंगे, राहुल गांधी आप क्यों भाग रहे हैं चर्चा से। और इसी को लेकर जो है लगातार जो है सत्ता और विपक्ष के अंदर जो है आमने सामने नारेबाजी होती रही। जब प्रियंका गांधी संसद के अंदर आई तो उनसे पूछा गया कि आप झारखंड क्यों नहीं गई है, क्यों नहीं वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने प्रियंका गांधी को घेरकर पूछने की कोशिश की। तो इसी तरीके का माहौल जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि आज सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा के लिए अगर वो तैयार है और विपक्ष ये कह रहा है कि दोनों मुद्दों पे चर्चा हो, तो कहीं ना कहीं सरकार जो यानी सत्ता पक्ष के जो सांसद है वो थोड़े से इस वक्त जो है वो आगे आकर जो है मोर्चा संभाल रहे हैं। और जो कल तक ये कह सकते थे कि एनडीए के सांसद उस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, आज वो इस तरीके का प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि आइए चर्चा कीजिए और चर्चा का जवाब भी सुनिए। और जो कुछ झारखंड में हुआ है उसका जवाब कौन देगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो है गठबंधन की सरकार है। आप क्यों नहीं वहां पे गठबंधन की सरकार में अगर है और आप उस लाठीचार्ज और छात्र आंदोलन लाठीचार्ज के खिलाफ और छात्र आंदोलन के साथ है, तो आपको समर्थन जो है उस सरकार से वापस ले लेना चाहिए। तो ये तमाम इशू है। और लेकिन जिस तरीके से आप देखें हंगामा संसद के बाहर चल रहा है यानी संसद परिसर में चल रहा है, तो सदन के अंदर भी लगातार इसी तरीके का हंगामा चलेगा जिस तरीके से मानसून सत्र के अंदर पहले से चलता आ रहा है। और ये अंतिम तीन दिन भी इसी तरीके से संसद में गतिरोध के बने रहेंगे।
0: जी बिल्कुल, और संसद की कार्यवाही जब शुरू होगी तो उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल संसद परिसर पर क्या चल रहा है वहां पर, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज।
10: झारखंड में कल छात्रों पे हुए लाठीचार्ज का विरोध अब सदन में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद आज तख्तियां लिए झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार से। मैम राहुल गांधी से जवाब मांग रही हैं आप लोग।
11: बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड में छात्रों को सरकार ने उन्हें जो उनका जो मांग नहीं सुना दिया है, उनको अत्याचार किया, उनको लाठी चलाई, घायल किया, आज क्यों राहुल गांधी चुप है?
10: राहुल गांधी के खिलाफ तख्तियां आपको दिखाई देंगी। झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। तो जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसपे लाठीचार्ज पर बयान की मांग कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी और विपक्ष के नेता। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरों में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी अब मांग कर रही है कि रांची में जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसके ऊपर जवाब वो मांग रहे हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी। मकर द्वार के ठीक बाहर एनडीए के भी अब सांसद दिखाई दे रहे हैं जो तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, आज तक।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: आवाज को।
1: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एंजेडा बदल गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मामला शांत हुआ तो पप्पू यादव के भगवा भेष में विरोध के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चढ़ावा चोरी के जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति थी, विपक्ष उससे क्या हासिल कर सका? क्या यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बैकफुट पर लाने का उसका प्लान कामयाब नहीं हो सका? हालांकि विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया।
2: वो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो।
1: यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव में आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के

0: को।
1: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एंजेडा बदल गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मामला शांत हुआ तो पप्पू यादव के भगवा भेष में विरोध के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चढ़ावा चोरी के जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति थी, विपक्ष उससे क्या हासिल कर सका? क्या यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बैकफुट पर लाने का उसका प्लान कामयाब नहीं हो सका? हालांकि विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया।
2: वो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो।
1: यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव में आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियों में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है।
3: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
4: आज सबसे बड़ा महापाप, सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को।
1: चढ़ावा चोरी की जांच और एक्शन के बीच टकराव जारी है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है, लेकिन संसद के मानसून सत्र में विपक्ष हमलों की धार तेज नहीं कर सका है। आज तक ब्यूरो।

0: कर सकते हैं शाह।
1: छात्र क्रांति में चौतरफा घिर गई है सोरेन सरकार। पुलिस लाठीचार्ज खिलाफ बीजेपी के झारखंड बंद के दौरान सड़क पर हो रहे हैं प्रदर्शन। अब भी धरने पर बैठे हैं छात्र का अंजाम तक आंदोलन।
0: उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत। यूएस की अदालत से सभी आपराधिक मामले खारिज। अडानी ने किया फैसले का स्वागत, कहा इंसाफ का भरोसा था।
1: और पहाड़ से मैदान तक मानसून का हाहाकारी दृश्य। चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बहा पुल। राजगढ़ में उफनते नाले में समा गई गाड़ियां। भोपाल में स्कूल बंद। विदिशा में बाढ़।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाट।
0: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। संसद सत्र के शुरुआत से पहले आज प्रदर्शन देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिला, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। और दोनों का मुद्दा क्या था? छात्रों के मुद्दे पर प्रोटेस्ट हुआ। एक तरफ एक पर आरोप लगाया जा रहा कि आप छात्रों के मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा कि आप जवाब के लिए सुनिए तो, संसद चलने तो दीजिए, बोलने के लिए तैयार हैं। और लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई है।
3: माननीय सदस्यगण, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है। और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया, मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले, सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है, अब आप चलाएं। और मुद्दों पर भी चर्चा होगी लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना, आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है सदन के अंदर तख्तियां बैनर लेकर आना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें, आप सहयोग करें। मेरा आपसे आग्रह है सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से, देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें, आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: लोकसभा की कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा, पोस्टर बैनर के साथ वो संसद भवन के अंदर पहुंच गए, जिस पर कड़ी आपत्ति स्पीकर ने जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर चर्चा होनी है तो उसके लिए चिल्लाने या इस तरीके से हंगामा करने से बात नहीं बनेगी, चर्चा तभी संभव है जब सभी शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा को होने दें।
0: देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को उठाने का जो समय होता है प्रश्नकाल, वहां प्रश्न ही नहीं पूछे जा पा रहे हैं क्योंकि इतना हंगामा चल रहा है। अब सत्ता पक्ष की तरफ से कह दिया गया है कि ऑपोजिशन जो मांग कर रहा था छात्रों के मुद्दे पर, गृहमंत्री से जवाब की मांग कर रहा था, उनके सदन में आने की मांग कर रहा था, वो सब सत्ता पक्ष ने मान लिया है। उसके बावजूद भी क्यों प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है, ये बड़ा सवाल है कि अगर जवाबदेही सिर्फ सत्ता पक्ष की है तो विपक्ष की भी उतनी है सदन चलाने की। और दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई, पूरा मॉनसून सेशन, और हर घंटे लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हर घंटे, हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है सदन चलाने में, और उसका नुकसान लगातार होता चला जा रहा है। टैक्स पेयर्स के पैसों का इतना नुकसान हो रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है।
1: मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, आखिरकार विपक्ष ने यही तो मांग की थी कि अमित शाह जवाब दे, 20 जुलाई का जो मुद्दा है उस पर जवाब दे, सिर्फ जेनरिक एक स्टेटमेंट ना दे दे। अगर उस पर राजी हो गया है सत्ता पक्ष तो फिर यहां पर विरोध किस बात का हो रहा है?
4: देखिए, विरोध हो रहा है बारीकियों का, मतलब क्या कहा था और क्या बन गया, या जो करते हैं एक नहीं दो पूरी होनी चाहिए, दो नहीं तीन पूरी होनी चाहिए, इस बात का विरोध हो रहा है। विपक्ष को लगता है कि चर्चा और पूरे विस्तार से चर्चा में कहीं ना कहीं जो निशाना है अमित शाह पे वो भटक जाएगा, और इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें कोई चर्चा नहीं चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में पेपर लीक पे, हमें पॉइंट ब्लैंक अमित शाह का स्टेटमेंट चाहिए, उनका स्टेटमेंट चाहिए, और इसी पे चाहिए कि उन्होंने लाठियां बांधी, गोलियां चलवाई या किसने चलवाई, इस पे जो है हमें साफ दो टूक जवाब चाहिए, इसको लेकर गृहमंत्री आए। दूसरा, प्रधानमंत्री माफी मांगे। तीसरा, राम मंदिर पे भी चर्चा हो, उसके लिए भी आप अभी कमिटमेंट कीजिए, ये नहीं कि एक पे चर्चा होगी तो दूसरी पे ना हो। और इस तरीके से देखिए ना, स्पीकर भी नेहा, उन्होंने आपके बोला कि प्रश्नकाल है, आप देखिए पूरे मानसून सत्र में पूरा प्रश्नकाल धुल गया, शून्यकाल धुल गया, सारा कामकाज धुल गया है, आखिरी के 2-3 दिन है तो ये नौबत आ गई है कि एनडीए और विपक्ष दोनों सांसद मकरद्वार पे प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट खेल रहे हैं। एक कह रहा है अमित शाह माफी मांगो, दूसरा कह रहा है राहुल गांधी माफी मांगो, और इसी में पूरा संसद वॉकआउट हो गया।
0: लेकिन मौसमी, इस बार तो विपक्ष से ही सवाल पूछा जाएगा कि सब सत्ता पक्ष राजी है तो आपको सदन चलाने देना चाहिए था, आपको सदन चलने देना चाहिए क्योंकि आम आदमी के मुद्दे आप नहीं उठने दे रहे हैं। आप अगर अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि हम मुद्दे उठा रहे हैं छात्रों के, तो इससे नुकसान भी तो हो रहा है आपकी छवि को कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं।
4: देखिए, इसमें राजीव ये है कि विपक्ष को लगता है कि आम आदमी का मुद्दा, राम मंदिर में चंदा चोरी भी है और सरकार चंदा चोरी पर भाग रही है, वो नहीं चाह रही चर्चा, ये विपक्ष को लगता है, और इसीलिए आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि आप दोनों शर्तों को पूरी करिए, दोनों मुद्दों पर चर्चा कीजिए। दूसरा, उनको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा पहले ही से मांग चुके हैं कि अगर आपने आदेश दिया था तो आप इस्तीफा दीजिए, तो वो नहीं चाहते कि ये पूरा मसला जो है 6 घंटे की चर्चा हो और लाठीचार्ज की जगह शिक्षा प्रणाली और पेपर लीक पे बात हो। उनको पॉइंट ब्लैंक चाहिए कि गृह मंत्री पर बात हो, गृह मंत्री इस्तीफा दे या ना दे, गलत किया उन्होंने या नहीं किया, या क्या वो इनकॉम्पिटेंट है या फिर वो दोषी है, तो इस तरीके से। पर विपक्ष अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हो रहा। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपने स्टेटमेंट मांगा था, हम तो पूरी चर्चा के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, राहुल गांधी कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, तो इसको लेके कहीं भी स्पीकर के वहां पे भी ये लोग गए हैं, बैठक भी हुई है, इसके बावजूद भी कल बीएसी की बैठक हुई है और उसके बाद आकर भी
1: ठीक है, आप बने रहिए इस बीच, अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं।
5: इसलिए होंगे कि झारखंड के युवाओं की आवाज बंद कर दो, चाहे कंटीली तारे लगाई जाए, चाहे लाठियां बरसाई जाए, चाहे आंसू गैस के गोले चलाए जाए, हर तरह का अत्याचार झारखंड के युवाओं पर किया, उसका दोषी कोई है तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी है।
0: तो जहां सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है विपक्ष, गृहमंत्री जवाब दें, दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि जो कल प्रदर्शन में लाठियां चली, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, या गैस का इस्तेमाल जो हुआ, जो पानी की बौछार हुई, तो उसके लिए हेमंत सोरेन, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। तो इधर अगर आप जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात करें तो दूसरी तरफ आपसे भी अब सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है। देखिए प्रदर्शन चल रहा है, एनडीए के सांसद हैं जो प्रदर्शन करते आज दिखे, वो भी आज तख्तियों के साथ पहुंचे, वो भी आज प्रदर्शन करते दिखे, और लाठीचार्ज पर झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, दिल्ली में तो हमें जो हिंसा भी देखने को मिली थी, लेकिन रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ।
3: सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा, और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया, और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो, और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए।
1: तो इस पोस्टर के साथ यहाँ पर एनडीए के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागे क्यों? क्योंकि जो उनकी मांग थी अब वो सत्ता पक्ष पूरी कर रहा है, इसके बाद इधर उधर की बात करके क्यों चर्चा से भाग रहे हैं राहुल गांधी या फिर विपक्ष के तमाम नेता? क्योंकि छात्र मुद्दे पर अब चर्चा के लिए तैयार हैं सरकार, और इस पर गृह मंत्री बयान भी देने के लिए तैयार है।
6: तरफ सत्ता पक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। अमित शाह मिसिंग है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। और ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको नजर आ रही है छाते के अंदर, पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो विपक्ष की तरफ से है, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो ये नारे लगा रहे हैं कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। हाय हाय के नारे यहाँ आपको लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ है सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ है विपक्ष, और उन लोगों का कहना है कि वो आखिरकार जवाब कब दिया जाएगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। विपक्ष के सारे सांसद यहाँ पर नारे लगाते हुए और यहाँ पर चर्चा की मांग करते हुए बाकी जो सांसद है वो नजर आई है। ये है संसद का मकर द्वार, और यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने है। ऐश्वर्या परिवाल, दिल्ली आज तक।
0: हमारे सहयोगी मौसमी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मौसमी, अब ऑपोजिशन मांग कर रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह मिसिंग है, लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं कि आप अगर जो स्टेटमेंट मांग रहे हैं वो स्टेटमेंट तो देंगे ही, चर्चा होगी तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे, उसमें से सारी स्टेटमेंट हो जाएंगे, लेकिन आप तो भाग रहे हैं अब चर्चा से।
4: देखिए यहाँ पे ऑपोजिशन को लगता है, कल राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता भी की, खड़गे साहब भी उनके साथ थे, और उसके बाद जेपी नड्डा साहब ने प्रेस वार्ता की, तो प्रेस वार्ता हो रही है। यहाँ पे किसी भी तरीके से एक सहमति बनती नजर नहीं आ रही। आप देखिए एफसीआरए से लेकर डिलिमिटेशन है राजीव, और वो दोनों बिल जो है अभी अधर में लटके हुए हैं। सेशन के आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि आप 2-2 दिन अलॉट कर दीजिए, 2 दिन राम मंदिर के लिए अलॉट कर दीजिए, और 2 दिन आप इसके लिए अलॉट कर दीजिए, लाठी चार्ज क्यों हुई, किसने कराई उस पर। लेकिन यहाँ पे एक बात तय है कि जिस तरीके से सरकार ने एक सियासी पलटवार किया है कि हम पूरी डिटेल्ड चर्चा के लिए तैयार है, उसको लेके बैकफुट पे कहीं ना कहीं विपक्ष आ गया है कि अगर डिटेल चर्चा होगी तो मामला झारखंड का भी आ जाएगा, मामला बाकी पेपर लीक्स का भी आ जाएगा, कई कांग्रेस शासित राज्यों की शिक्षा का भी आ जाएगा। इसको लेके उनको लगता है कि ये अच्छा पैतरा नहीं होगा। यही वजह है कि अब राहुल गांधी या सत्ता और विपक्ष जो अब इसको लेके तैयार नहीं है। वो बोल रहे राम मंदिर पे भी चर्चा कीजिए और डिटेल चर्चा उस पर नहीं कीजिए, सिर्फ अमित शाह पे चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से तू मैं एक तरीके से पूरी चल रही है।
1: ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बीच बड़ी खबर ये कि राज्यसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। दोनों ही संसद इस वक्त स्थगित हो गई है, लोकसभा 2 बजे तक के लिए, राज्यसभा 12 बजे तक के लिए। भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही, प्रश्नकाल तक नहीं हो पाया, जिसके लिए स्पीकर ने हिदायत भी दी विपक्ष को कि इस तरह से पोस्टर बैनर लाना ठीक नहीं है, कम से कम प्रश्नकाल तो होने दें।
0: तो प्रदर्शन दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष भी करता दिखा, विपक्ष भी करता दिखा, सदन के भीतर ओपोजिशन बहुत ज्यादा आक्रामक दिखा और बाहर भी। और हमारे सहयोगी मौसमी सिंह की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जब विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था।
7: यहाँ पे आप देखिए कि अब विपक्ष का धरना प्रदर्शन हो रहा है, इससे पहले हमने देखा था इस सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रहे थे, जवाब देने को कह रहे थे झारखंड में, और यहाँ बीजेपी के दफ्तर मिले में कहाँ मिलेगा चंदा, कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं लोग। मोदी गवर्नमेंट चंदा चोरी को लेकर स्पेसिफिकेगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि एक तरफ एनडीए का प्रोटेस्ट, तीसरी विपक्ष का प्रोटेस्ट, अब दोनों ही आमने सामने, और मानसून सत्र के आखिरी कुछ दिन इसी में घूमने वाले हैं। झारखंड को लेके सत्ता पक्ष ने बड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी पर, जहाँ पे कांग्रेस की साझा सरकार है जेएमएम के साथ, और कैसे में मकर द्वार प्रोटेस्ट का बड़ा केंद्र बन गया है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
1: इस बीच भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों को स्थगित तो करना पड़ा है, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए, सत्ता पक्षों विपक्षों दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं, उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एनडीए ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर चर्चा करनी है और मांग मान ली गई है तो विपक्ष अब चर्चा से क्यों बच रहा है।
8: जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धनी धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा आपसे, फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। देखिए ऐसा है उस बहस में हम और आप न उलझे, और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे। तो अगर शिक्षा परीक्षा से काम नहीं हो पा रहा है तो अयोध्या से काम चले, वो बात तो आपको हमको पता ही है कि बोरे भर के कहां गए थे, कंडों में पैसे निकले थे, और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी साजिश की गई। क्या एक दिन में इतने कॉल किए गए संभव है, क्या इतने कॉल किए गए हों और सरकार को न पता हो। सुनने में आया कि यहाँ जो छात्र नौजवान आए थे, नेटवर्क से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो भविष्य में सरकार पता नहीं क्या करे। इसलिए दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी और उनके संगी साथी दोनों इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं। जब ये प्रभु श्री राम को आगे नहीं बैठा रहे, बताओ आप प्रभु श्री राम जी का स्थान क्या होना चाहिए। अगर मैं सामान्य और आपसे एक सवाल करूं कि प्रभु श्री राम का स्थान कौन सा होना चाहिए, आपने देखा
9: और सुनने में आया कि वो
10: हम लोग ये मांग कर रहे हैं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री दिल्ली में, दिल्ली पुलिस उनका अंदर हाथ में, उनका माफी मांगने के लिए और जवाबदारी के लिए। 14 दिन हो गया, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, उस दिन से अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट हाउस का अंदर नहीं आते। इसी वजह से हम लोगों का कंटिन्यूस हमारा मांग था लापता अमित शाह जी का लेके आने के लिए। वो सभी भाजपा वाले हुए हैं, उनका समझ नहीं आ रही करना क्या है
11: इस वक्त हमारे साथ। बातचीत करने की मौजूद है सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी जवाब दो, विपक्ष भी इसी बात को लेकर के गृह मंत्री के जवाब की बात उनके द्वारा किया जा रहा है।
12: गृह मंत्री जवाब तैयार है राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब देने के लिए, वो सुनने तो आए, बहस होने तो दें और गृह मंत्री को सुने। अभी जो हमारा प्रोटेस्ट है कि दिल्ली में इतना हंगामा करते हैं राहुल गांधी, झारखंड में क्या हो गया, वहां बच्चों पर लाठी नहीं चल रही है क्या, आंसू गैस नहीं चल रहा है क्या, क्या मतलब है? उनकी सरकार तो कंधों पर है, कांग्रेस के हेमंत सोरेन की सरकार, तो वहां कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये है राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड। अगर शुद्ध भाषा में कहूं तो राहुल गांधी हिपोक्रेट है।
11: तो क्या आप लोग इसको सदन के अंदर भी
12: उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, चिंता मत करिए।
13: उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे।
0: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: प्रॉपर्टी बाजार में नया बूम लाने की जिम्मेदारी डेटा सेंटर्स उठाने के लिए तैयार हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों का डेटा स्टोर करने वाली ये सेंटर रियल एस्टेट बाजार के नए पावर हाउस बनने के लिए तैयार हैं। स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वर्षों में घरों की डिमांड बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बनने जा रहा है। दरअसल देश में 9030 मेगावाट क्षमता की डेटा सेंटर पाइपलाइन तैयार हो रही है। इस नए इकोसिस्टम की वजह से करीब 4.33 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे 2030 तक देश में 19.5 करोड़ वर्ग फुट रेजिडेंशियल स्पेस की जरूरत होगी। असल में डेटा सेंटर के सेटअप के साथ ही इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट, मजबूत बिजली सप्लाई, सड़कें और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से विकसित होंगी, जो घरों की मांग को बढ़ावा देंगी। इसका असर 5 से 15 किलोमीटर तक के दायरे में नजर आएगा। इस खास दायरे में बड़ी रेजिडेंशियल टाउनशिप और रिटेल मार्केट का विकास तेजी से होगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया के 20% डिजिटल डेटा का प्रोडक्शन करता है, जबकि उसकी क्षमता 4% है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ की भारी गुंजाइश है। ये नया ट्रेंड आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतों को भी प्रभावित करने वाला है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन इलाकों में जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। हालांकि इस दौड़ में देश के कुछ राज्य और शहर दूसरों के मुकाबले काफी आगे नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन डेटा सेंटर्स की वजह से मुंबई, पुणे जैसे रीजन में सबसे ज्यादा 5.4 करोड़ वर्ग फुट, कर्नाटक में 2.8 करोड़ और आंध्र प्रदेश में 2.3 करोड़ वर्ग फुट, उत्तर प्रदेश में 2.27 करोड़ और तेलंगाना में 2.16 करोड़ वर्ग फुट और तमिलनाडु में 1.94 करोड़ वर्ग फुट रेजिडेंशियल डिमांड का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात की गिफ्ट सिटी भी रेस में शामिल है। इस बड़े बदलावों का असर महानगरों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के रियल एस्टेट बाजार तक नजर आएगा। साफ है कि जिस तरह से पिछले 2 दशकों में आईटी पार्कों ने बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों की शक्ल बदल दी थी, ठीक उसी तरह डेटा सेंटर कॉरिडोर आने वाले वक्त में नए हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं। ये सेंटर्स अब डिजिटल दुनिया चलाने वालों के साथ साथ आपके सपनों के आशियाने की दिशा और कीमत भी तय करेंगे। आदित्य के राणा आज तक।

0: के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान आमने सामने सरकार और विपक्ष के सांसद, एनडीए के पोस्टर पर लिखा राहुल चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, कांग्रेस का सवाल शाह क्यों नहीं बोल रहे।
1: झारखंड पुलिस लाठीचार्ज पर राहुल से जवाब मांगने से पहले मंगल मेलन में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी सांसदों ने लहराया तिरंगा। गतिरोध के बीच आज दो बिल पेश

0: झारखंड पुलिस लाठीचार्ज पर राहुल से जवाब मांगने से पहले मंगल मिलन में पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह के साथ सभी सांसदों ने लहराया तिरंगा। गतिरोध के बीच आज दो बिल पेश कर सकते हैं शाह।
1: छात्र क्रांति में चौतरफा गिर गई सुरेंद्र सरकार। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी के झारखंड बंद के दौरान सड़क पर हो रहे प्रदर्शन, अभी धरने पर बैठे छात्र का अंजाम तक आंदोलन।
0: उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत, यूएस की अदालत से सभी आपराधिक मामले खारिज। अडानी ने एक फैसले का किया स्वागत, कहा इंसाफ का भरोसा था।
1: और पहाड़ से मैदान तक मॉनसून का हाहाकारी दृश्य। चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बहापुल, राजगढ़ में उफनते नाले में समा गई गाड़ियां, भोपाल में स्कूल बंद, विदिशा में बाढ़।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
4: लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है।
1: और अब बात झारखंड की करेंगे, जहां पर छात्रों के सवाल पर झारखंड में उबाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। रांची में कल सुबह से शाम तक बवाल रहा, छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर छात्रों और पुलिस बल में तनातनी दिखी। देर शाम पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया।
0: अब आज बीजेपी खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, जिसका असर कई हिस्सों में दिखाई भी दे रहा है। हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कल की और आज की अंतर है। कल तो लाठीचार्ज हुआ, रात में भी लाठीचार्ज हुआ है, रात में भी छात्रों को खदेड़ा गया। और अब आज बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रही है, जेएमएम और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है और उन्होंने बंद का आह्वान किया है और बीजेपी कार्यकर्ता आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं।
1: शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, बंद का कितना असर दिख रहा है?
5: देखिए, सुबह से अलग अलग जगहों पे जो बंद समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैफिक को बाधित कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी रांची के रातू रोड पर है और ये रातू रोड है प्रमुख चौराहा है। थोड़ी देर पहले जो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, वो भी यहीं पर थे, यहीं पर आगजनी की गई, यहीं पर प्रदर्शन किया गया। अभी भी सड़क पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर आगे कहां प्रदर्शन किया जाएगा, कहां पर बंद कराया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। थोड़ा हम पीछे चलते हैं और अपने सहयोगी नदीम को कहेंगे दिखाएं, जहां थोड़ी देर पहले आगजनी हो रही थी वहां पे अब ट्रैफिक जाके धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है और जो प्रशासन के लोग हैं वो भी वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर, हमने हरमू के अंदर देखा, डोरंडा के अंदर देखा और अरगोड़ा और अब रातू रोड, हर जगह पर बंद समर्थक पहुंच रहे हैं और बंद कराया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये नेहा कि जो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही है वो भी आज 12 बजे तक स्थगित हो गई है हंगामे के कारण। तो जो विधायक पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और तमाम लोग, वो अब वहां से भी निकल गए हैं। तो यानी विधायकों की भी मौजूदगी होगी अब सड़क के ऊपर और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो सड़क पर हैं ही लगातार बंद को सफल बनाने के लिए।

0: जी
1: ठीक है शशि भूषण, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन अब आपको रांची के ही किशोरगंज इलाके का हाल दिखाते हैं, वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट आप देखें।
2: छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के बाद बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। हम यहाँ किशोरगंज चौराहे पर है और टायर जला करके रास्तों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। आज झारखंड बंद का आह्वान है रांची के किशोरगंज में। यहाँ पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए झंडे लेकर के और अब उन्होंने यहीं से गाड़ियों को लौटाना शुरू कर दिया है। रास्तों को यहाँ से कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। शहर ठप करने की कोशिश उन्होंने कल जब विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे उसके बाद बीजेपी ने जब लाठी चार्ज हुई रात को छात्रों पर उसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। किशोरगंज की तस्वीर देख रहे हैं, देखिए वहां पर भी वो गाड़ियों को रोक रहे हैं, यहीं से पलटवा दिया है। शहर को बंद किया जा रहा है, पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान दिया गया है और उसी के साथ सड़कों पर टायर यहां पर जला दिया गया है। ये बीजेपी विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। सोरेन सरकार के खिलाफ अब सीधे नारेबाजी, सीधे बीजेपी ने मोर्चा खोला है और जो विरोध है वो लाठी चार्ज को लेकर के क्या संदेश आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से दिया जा रहा है सरकार को?
3: ऐसा है, हेमंत सोरेन का इस तरह स्थिति हो गई है कि कभी भी छात्र का हित का बात करें, आज तक जो भी नौकरी देते हैं।
2: आज का विरोध लाठी चार्ज को लेकर या पेपर लीक को लेकर?
4: देखिए आज का विरोध छात्रों पर लाठी चार्ज होने का है। जिस तरह से छात्र अपनी व्यवस्था बनाकर घेराव करने गए थे, उस पर आंसू गैस छोड़ना, कटीली तारों से उन्हें हर्म करना, ये लग रहा पाकिस्तान से आए हैं। इस खोखली सरकार राहुल गांधी वहां बयान दे रहा है, दोहरा चरित्र वाला राहुल गांधी यहां छात्रों का साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त है।
2: और सोरेन सरकार के खिलाफ, इस लाठीचार्ज के खिलाफ कार्यकर्ता जो है सड़कों पर टायर जला करके अब ये किशोरीगंज जो चौराहा है इसको ठप कर दिया है। पूरे रांची के अलग अलग इलाकों में जो है बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया लाठीचार्ज के खिलाफ, सोरेन सरकार के खिलाफ विपक्ष में बीजेपी ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। रांची में किशोरगंज से लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
5: वहीं रांची के कई हिस्सों में सुबह से बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बता रहे हैं आज तक संवाददाता शशि भूषण।
6: झारखंड बंद का असर अब दिख रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रातू रोड की। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने आगजनी की है सड़क पे और पूरा रास्ता इस वक्त बंद है। मतलब जैसे ऐसे दिन चढ़ रहा है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाए गए बंद का असर अब व्यापक तौर पर दिखने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष जो आदित्य साहू हैं उनके नेतृत्व में ये बंद इस वक्त करा रहे हैं समर्थक और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बंद समर्थक जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार के विरोध में। और थोड़ा आगे की तरफ हम चलते हैं और दिखाते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो जो यहाँ पर बंद करा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष खुद नेतृत्व कर रहे हैं इस बंद का, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो आदित्य साहू हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे, आदित्य साहू से हम बात करेंगे और हम उनसे बात करेंगे। जो तमाम समर्थक हैं वो देखिए यहाँ पे, देखिए ये बीजेपी के तमाम नेता प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, ये देखिए ये तमाम नेता इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है उनकी तरफ से और नारेबाजी लगातार हो रही है। जो तमाम
7: लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार,
6: तो ये प्रदर्शन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और नेता जो हैं वो पहुंचे हैं बंद को सफल बनाने के लिए।
1: तो ये बंद की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन बंद तभी सफल माना जाता है जब स्थानीय लोगों का भी उसमें जो है सपोर्ट हो। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। सत्यजीत, आज एबीवीपी की तरफ से भी मार्च का ऐलान है, उनकी क्या कुछ प्लानिंग है और उनकी मार्च को लेकर पुलिसिया व्यवस्था कैसी है?
8: देखिए पुराने विधानसभा से ही एबीवीपी का मार्च है, मांग वही है जो स्टूडेंट्स के मांग थे, वही मांग इनका भी है, जांच रद्द करो और रिफॉर्म्स। और कल जो लाठी चार्ज हुआ है उसके खिलाफ भी एबीवीपी में नाराजगी है, इसी को लेकर विधानसभा मार्च इन्होंने आयोजित किया है। अभी हम ओल्ड विधानसभा के सामने हैं, पहले यहीं पे माननीय बैठा करते थे और अब यहां से जो ये मार्च निकलेगा तो नए विधानसभा तक उसी रूट पे जाएगा जहां कल स्टूडेंट्स गए थे, जहां प्रोटेस्टर्स गए थे, और उसी तरह की तैयारी, जो तैयारियों की आपने बात की, उसी तरह की तैयारी है। कई जगह बैरिकेडिंग किए गए हैं। कल पुलिस थोड़ा सा जो है नरमी बरत रही थी, विधानसभा तक पहुंच गए थे प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। आज इनके लिए जो है तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां भी की गई है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं, क्या मांग है इनकी, क्या देखिए आप लोगों ने ये पोस्टर तो लिया हुआ है, मांग क्या है? कल जो लाठी चार्ज हुआ है उसके खिलाफ आज मार्च कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स का मांग था, तीन मांग की जांच करो, रद्द करो और रिफॉर्म्स करो।
0: विद्यार्थी परिषद आंदोलन के शुरू दिन से ही विद्यार्थियों के समर्थन में है कि जेपी 14वीं जेपीएससी का पीटी को रद्द किया जाए, जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म किया जाए, और जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में जो घोटाला हुआ है उसको पूर्णतः रद्द किया जाए, और सीआईडी नहीं सीबीआई जांच किया जाए, क्योंकि यदि सीआईडी जांच होगी तो यह सरकार तो अपने ऊपर लीपापोती करा देगी। जो भ्रष्ट पदाधिकारी, आज हम लोग जो कल छात्राओं पर लाठी चार्ज किया है, इन्होंने रात के अंधेरे में एक तो एक और झारखंड में लोग मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया दे रही है, और दूसरी ओर विद्यार्थियों छात्रा बहनों के ऊपर लाइट बंद कराकर पुलिस के मतलब बिना महिला पुलिस कर्मी के मौजूदगी में उनके ऊपर लाठी चार्ज करा रही है।
8: बल प्रयोग हुआ क्योंकि विधानसभा तक पहुंच गए।
9: कल जिस तरह हमारी छात्र बहनों के साथ लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए विद्यार्थी परिषद
5: लौटेंगे आपके पास। बीच रांची में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का अनशन आज 18वें दिन भी जारी है। कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, दिन भर छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शाम होते तक रांची पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।
1: एक ऐसा लाठी चार्ज जिस पर अब सियासत चल रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं। पुलिस के लाठी चार्ज में 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए, 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जख्मी छात्रों से बातचीत की, उनका दर्द जाना। आपको उन छात्रों की आप बीती सुनाते हैं।
10: कंधा टूटा,
11: दौड़ा दौड़ा के मारा गया, निर्दय जैसे हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया।
10: किसी की टांगे टूटी, किसी की पीठ पर लाठी।
11: ना लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा। रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा।
10: किसी के हाथ पर चोट,
11: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सबको।
10: 1, 2, 3, 4, 5 गिनती गिनते चले जाइए, इनके जख्मों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। कल रांची में सत्ता तंत्र ने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ जगह बदलती है, फितरत नहीं बदलती। चाहे दिल्ली हो या रांची, विरोध की बुलंद आवाज किसी भी सरकार को मंजूर नहीं। कल रांची में जो कुछ हुआ वो कितना भयावह और क्रूर था, ये इन छात्रों की आप बीती सुनकर हैरान हो जाएंगे।
11: लाठियों से मारा है, लाठियों से पूरा दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे पुलिस, लग रहा था कि हम लोग आतंकवादी हैं।
12: कोई हिंसा नहीं हुई है, फिर बाद में जब जनसंख्या बल कम हो गया उसके बाद दौड़ा दौड़ा के मारा।
13: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
10: दाद दीजिए इन छात्रों की दिलेरी को, घायल जरूर हुए हैं लेकिन ज्यादा घातक बनकर सरकार के सामने फिर से खड़े हैं। इन्होंने जख्म जरूर खाए हैं लेकिन हौसले को पस्त नहीं होने दिया। आज तक संवाददाता आशुतोष जब इन छात्रों के बीच पहुंचे तो 18 दिन बाद भी वही हिम्मत, वही दिलेरी नजर आई।
14: बड़ी संख्या में छात्रों का आंदोलन, 17 दिन भले बीत गए लेकिन अभी आंदोलन जारी है। देखिए ये लोग अपने निशान दिखा रहे हैं शरीर पर, ये देखिए ये लाठी डंडो, ये लाल दिखाई दे रहा है, ये लाठी डंडों के निशान है। मोबाइल टूट गया है, यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ निशान दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरह से पैरों पर ये निशान है। और इसी के बाद आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने जब शाम को लाठी चार्ज किया है तो किस तरह कार्यवाही की है, और इसके बाद छात्रों को काफी ज्यादा चोट आई है। इसी के साथ कई और छात्र हैं, और ऐसा नहीं कि 17 दिन बाद आंदोलन खत्म हो गया। अब छात्र टिक गए हैं कि जेएसएससी सीजीएल या तो विड्रॉ होगा नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा।
10: कल दिन भर इन छात्रों ने झारखंड की सरकार को एक पांव पर खड़े रहने को मजबूर कर दिया। विधानसभा घेराव के इनके इरादे के आगे झारखंड पुलिस परास्त तो होती नजर आई। छात्र तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए लेकिन जब शाम हुई, अंधेरा ढला तो झारखंड की पुलिस ने अपना असली चरित्र दिखाया।
5: इस
15: सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब जब डरती है

0: ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। अभी अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे।
1: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अंधेर कर दी की है, छात्रों पर जुल्म ढाए हैं, क्रूरता दिखाई है, अंधेरे में लाठियां चलाई गईं ताकि दुनिया से ज्यादती छिपाई जा सके, लेकिन छात्रों ने कदम पीछे नहीं खींचे, वो मोर्चे पर डटे हैं बुलंद इरादों के साथ। आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
2: हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ गए। आशुतोष, धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, अनशन भी चल ही रहा है, मार्च भी कर लिया है, सरकार ने मांगे मानी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, छात्र उनके पास क्या विकल्प बचा है?
3: उन्होंने पहले ही कहा था कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक रास्ता नहीं निकलता था। कुछ मांगों पर सरकार ने सहमति दी, बातचीत हुई, चर्चा हुई, विधानसभा मार्च होकर उन्होंने छात्रों का शक्ति प्रदर्शन देख लिया, लेकिन मंच के पीछे अभी भी कई जो छात्र हैं वो अनशन भी कर रहे हैं, ये आंदोलन भी यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ से अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि छात्र अनुशासन बनाए रखे, हम अपने नियम, अपने जो उसूल है, जो कोड ऑफ कंडक्ट, हम उस पर बने रहेंगे। अभी आप जिन लोगों को देख रही है, ये सविता और यहाँ पर तसीबा, ये तमाम लोगों का अनशन भी अभी लगातार चल रहा है। ये लोग प्रदर्शन मार्च में शामिल अगर नहीं हो पाए तो वो छात्र भी गए थे जो अनशन में शामिल थे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको मंच के दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको छात्रों का जमावड़ा दिख रहा था। कहीं पर लगा कि क्या लोगों की संख्या कम हो जाएगी, धीरे धीरे करके खासकर झारखंड में और मिलेनियल्स और उनकी पिछली पीढ़ी, कई वो माता पिता अभिभावक भी आए जिनके बच्चे यहाँ आंदोलन में आते रहे, क्योंकि बीती रात जो कुछ हुआ सूरज डूबने के बाद, ऐसे कई सारे छात्र जो पिटपिटा करके आए, और उसके बाद जो चोट थी, 6 छात्र अभी भी जो अस्पताल में है, अब ये बेचारे, ये लोग भी वहां पर थे, ये तो कह रहे थे कि हम तो गए थे हेमंत चाचा का बर्थडे मनाने के लिए, फिर क्या हुआ आपके साथ?
0: मैं तो गया था हेमंत चाचा का बर्थडे मनाने, पर चाचा ने हमें रिटर्न गिफ्ट में लाठी दे दिया केक की जगह।
3: तो आप लोग का असेंबली के पास तक पहुंच गए थे?
0: हाँ हाँ, हम लोग पहुंच गए थे वहां तक।
3: अंधेरे में जब कुछ हुआ सब कुछ, आप लोग निकले क्यों नहीं, क्योंकि वॉलंटियर्स तो कह रहे थे अब यहाँ से निकल जाए।
4: मैं भी वॉलंटियर से हूँ और मैं सबको संभाल कर निकाल ही रहा, जाइए मत, अभी आप बाहर का अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अंदर बैठिए, और अचानक से लाठी चलने लगी, पहले लाइट पहले बंद किया गया विधानसभा का, उसका चार्ज लाठी,
3: उसके बाद लाठी चार्ज, और इसीलिए कई सारे छात्र हैं, इसको भी पैर में चोट आई है, कई और भी छात्र थे जिनके पास किसी के
5: लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वही छात्रों पर लाठी चार्ज के बाद विपक्षी सोरेन सरकार की घेराबंदी की रणनीति की तैयारी है, जिसका असर सड़क पर दिख रहा है। छात्रों पर लाठी चार्ज के बाद सरकार की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस एक्शन पर अब सहयोगी कांग्रेस भी सवाल उठा रही है।
6: झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट, वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ है।
2: छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में विरोध अब साफ दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ मांझी से भी खास बातचीत की है।
7: झारखंड में कल छात्रों का महाआंदोलन हुआ, तो आज संसद में मकर द्वार पे प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हमारे साथ है महुआ मांझी। मैम, आप लोग बीते 2 हफ्ते से कम से कम गृहमंत्री के स्टेटमेंट की मांग करते हुए सदन नहीं चलने दे रहे हैं, गतिरोध चल रहा है, इसको बहुत लोग अब हिपोक्रेसी बोलेंगे कि आप यहाँ लाठीचार्ज पे बयान मांग रहे हैं, वहाँ झारखंड में आपकी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है।
8: देखिए, सबसे बड़ी बात कि झारखंड और दिल्ली की तो तुलना ही नहीं हो सकती। दिल्ली में जब पार्लियामेंट हाउस की तरफ छात्र बढ़े थे, तो वहां पे आपने उन पर लाठियां भी चलाई, पैलेट गन भी छोड़े, आपने आसुगस के गोले छोड़े। झारखंड में आपको पता होगा, कल जब छात्र आगे बढ़ रहे थे विधानसभा की तरफ, 8 बैरिकेड उन्होंने तोड़ा एक के बाद एक। 8 बैरिकेड को तोड़ने के बाद भी सरकार उन पर बल प्रयोग नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि छात्रों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो। और दूसरी बात कि यहाँ पे 25-30-35 दिन तक सरकार उनसे बात भी नहीं हुई। हमारे यहाँ लगातार बातचीत हो रही है, मंत्रिमंडल में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के मंत्री शामिल हैं, तीनों पार्टी के लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनकी 98% मांग मान ली गई है सरकार द्वारा।
5: वहीं झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
7: हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। सर, आप लोग अलायंस में हैं वहां पे, दिल्ली में जब पूरा आंदोलन चल रहा था दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, आपकी सरकार में आपके छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, टीयर गैस चला है, क्या कहेंगे आप?
9: देखिए, हमने कब नहीं कहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अहिंसक भीड़ है, अहिंसक छात्र अहिंसक तरीके से अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, इसका हम कंडेम करते हैं। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बंगाल से बुला करके छात्रों को जिसकी पढ़ाई ही नहीं हुई है वैसे छात्रों को बुला करके आंदोलन में शामिल कराते हैं और उसको हिंसक बनाने का प्रयास करते हैं, छात्रों को बदनाम करते हैं छात्र।
2: और अब लोग छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इसके लिए जो है इनको बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरा कोई तथाकथित साधु संत इस तरह की बात ना कर सके।
1: तो क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिर से हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ा जाएगा? क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की कार्ड बीजेपी ने तैयार कर ली है? समाजवादी पार्टी के कृष्ण और सुदामा दाम का भी क्या बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। लखनऊ से दिल्ली तक हर कदम फूंक फूंक कर रखा, लेकिन अब बीजेपी को मथुरा से नई किरण दिख गई। बीजेपी और आनुषंगिक संगठन हमेशा से कहते आए थे कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, लेकिन अब मथुरा से संत समाज ने इसका ऐलान कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की तैयारी है। समय तय हो चुका है, बस 6 दिसंबर 2026 का इंतजार है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या में कार सेवा हुई थी। मथुरा के हिंदू संगठनों ने कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की घोषणा करके हिंदुत्व की इस पिच को फिर गर्मा दिया है।
2: 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है।
1: मथुरा के कई हिंदू संगठनों और संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संत समाज ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। मथुरा के संतों ने पहले 9 अगस्त को कार सेवा की तैयारी की थी। इसके लिए बाकायदा हवन पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद मामला टल गया। अब संतों ने 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा करने का ऐलान किया है। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर ही बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची और फिर एक एक करके आधे हिंदुस्तान में भगवा लहरा दिया। मथुरा भी बीजेपी के एजेंडे में शुरू से रहा है। योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर खुलकर कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते।
3: सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च के बीच चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर दिसंबर में मथुरा में कार सेवा होती है तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व कितना टिकेगा ये समय बताएगा। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं यदुवंशी हूं, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है।
3: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मजारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती, समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।
4: पेट्रोल की बढ़ती लागत और E20 पेट्रोल को लेकर बनी आशंकाओं के बीच कार खरीदारों की पसंद बदलती दिख रही है। जो लोग कल तक पेट्रोल गाड़ियों को पहली पसंद मानते थे वो आज CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। नतीजा ये है कि भारतीय ऑटो बाजार में अल्टरनेट फ्यूल गाड़ियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सड़क पर उतर रही हैं, जिससे CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों की बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि जुलाई में कुल बिक्री में CNG हाइब्रिड और EV गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 40.6% पर पहुंच गई, वहीं पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 41.7% पर आ गई। एक साल पहले दोनों के बीच करीब करीब 13% पॉइंट्स का अंतर था, जो अब महज 1% अंक पर आ गया है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट मानी जा रही है, साथ ही E20 पेट्रोल को लेकर भी ग्राहकों के बीच कई सवाल बने हुए हैं, जिससे CNG वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 24% पर पहुंच गई है। वहीं EV का हिस्सा भी बढ़कर करीब 8% हो गया है। उधर हाइब्रिड गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है, और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों और पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी के बीच का अंतर तेजी से घटा है। ऑटो डीलर्स का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर बाजार में काफी भ्रम है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत सामने नहीं आई है जिसमें E20 की वजह से गाड़ियों में दिक्कत साबित हुई हो। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव ऐसे समय में आ रहा है जब कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री भी मजबूत बनी हुई है। नई लॉन्चिंग और वैकल्पिक ईंधन वाले मॉडल्स की बढ़ती संख्या ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। डेटा के मुताबिक जुलाई में पैसेंजर व्हीकल रिटेल बिक्री में 19% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं CNG का सबसे बड़ा वैकल्पिक ईंधन सेगमेंट बना हुआ है। उधर EV और हाइब्रिड गाड़ियां भी तेजी से बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं, और इससे ऑटो बाजार में ईंधन का समीकरण तेजी से बदल रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ग्राहकों का फोकस इंजन से ज्यादा रनिंग कॉस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी पर रहेगा। साफ है भारतीय कार बाजार में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पेट्रोल गाड़ियां अभी नंबर 1 हैं, लेकिन CNG हाइब्रिड और EV तेजी से उनके बराबरी की तरफ बढ़ रही हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो पेट्रोल गाड़ियों और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। आदित्य के राणा, आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

विपक्ष में घनघोर संग्राम में स्थगित हुई दोनों ही सदनों की कार्यवाही। झारखंड में छात्रों पर पुलिस या एक्शन पर राहुल से जवाब मांग रहा है एनडीए। पूछा क्यों भाग रहे नेता प्रतिपक्ष, शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। मंगल मिलन में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। गतिरोध के बीच आज दो बिल पेश कर सकते हैं। गतिरोध के बीच में 2 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही।

सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी का प्रदर्शन, बैठक में तय हो रही है छात्रों की अगली रणनीति, कहा अंजाम तक चलेगा आंदोलन। उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत, यूएस की अदालत से सभी आपराधिक मामले खारिज, अडानी ने किया फैसले का स्वागत, कहा इंसाफ का भरोसा था। और पहाड़ से मैदान तक मॉनसून का हाहाकार दृश्य, चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बहा पुल, राजगढ़ में उफनते नाले में समा गई गाड़ियां, भोपाल में स्कूल बंद तो विदिशा में बाढ़।

नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज रांची की रिपोर्ट से करते हैं। रांची में थोड़ी देर में छात्रों की बैठक शुरू होने वाली है। कल विधानसभा में लाठीचार्ज और सरकार से तीन दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद अब अगली रणनीति पर विचार करने के लिए छात्रों का एक कोर ग्रुप थोड़ी देर में बैठक करने वाला है। अब छात्रों का कहना है कि अब वो सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे, कोई मंत्रियों का दल किसी से नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे।

0: हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात होगी और जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ और रहेगा एजेंडा?
1: पहली शर्त यही है कि अब अगर कोई बातचीत होगी तो किसी मंत्री किसी दल से नहीं, सीधे मुख्यमंत्री से होगी। थोड़ी देर में छात्रों का जो कोर ग्रुप की बैठक है वो शुरू होगी। यहां से घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं कि लोग जो है अब अनुशासन बनाए रखें और इसके बाद कोर कमेटी फैसला लेगी क्या होगा। जो कोर कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं, बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है
2: आज का बैठक में? जैसे जो कल मुद्दा हुआ, सबसे बड़ी बात है कि होना ही चाहिए, ये निंदनीय बात है क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और उनका जन्मदिन पर छात्रों को मारना ये अच्छा शोभा नहीं देता है।
1: अब आंदोलन आपने कहा जारी रहेगा, आगे क्या रास्ता कैसे निकला, बातचीत करेंगे?
2: सुन लीजिए, पहले हुआ क्या, कुछ जो है हम लोग छात्र थे, हम लोग 15-20 दिन से यहाँ चल रहा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, कभी किसी तरह का पत्ता तक नहीं लेना, कोई आवाज आया कहीं ने कोई अभद्र व्यवहार किया। अब हमने यहाँ से निकले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा और विधानसभा तक हम लगता है वहां तक
1: उसके बाद हमने लगातार वो तस्वीरें भी देखी कि शाम के 6 बजे तक कुछ नहीं हुआ लेकिन अंधेरा हुआ, छात्र लौटने लगे और उसके बाद विधानसभा के बाहर बत्ती चली जाती है
0: जी,
1: और उसके बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं, बहुत सारे छात्र वो घायल हुए हैं। 12 बजे राज्य बैठक शुरू होनी है, इस पर रणनीति तय होगी कि अब अगर संवाद करना है तो संवाद के लिए भूमिका रूपरेखा क्या होगी।
0: ठीक है आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि झारखंड में रांची में इस समय एबीवीपी का प्रदर्शन भी चल रहा है और छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। आज एबीवीपी ने अलग से मार्च का ऐलान उसी रूट से किया जिस रूट से कर दिया था
3: और भारी तादाद में पुलिस बल लगाया गया है। पुलिस को भी पता था कि इनका आज का जो है वो कार्यक्रम है और इसी के तहत जो है यहाँ जैसे ही ये जुटना शुरू किए नए विधानसभा मार्च के लिए, इनको जो है पकड़ा गया। कहाँ ले जाया जा रहा है कुछ पता है?
4: आप देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। देखिए कि मुख्यमंत्री जी का किस तरह का आदेश है, लग रहा है कि हम झारखंड के आतंकवादी हैं, जबकि हम झारखंड के मूल

0: निवासी हैं, हम झारखंड के विद्यार्थी हैं। अगर झारखंड का विद्यार्थी आंदोलन नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? झारखंड में आके जेपीएससी का एग्जाम दिया, नहीं आंदोलन करेगा तो कौन आंदोलन करेगा? जेएससी का जिन्होंने एग्जाम दिया आंदोलन नहीं करेगा तो कौन आंदोलन करेगा? तो इस मुख्यमंत्री को शर्म करना चाहिए। हम
1: शांतिपूर्ण,
0: नहीं अभी तक ऐसा हम लोग को कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ ये जो बस है पुलिस का जो बस है उसमें हम लोग को ये करके कहीं दूर ले जाया जाएगा, इतना हमको जानकारी मिला है।
1: ठीक है, तो कहीं ले जाके इन्हें डिटेन करके रखा जाएगा ताकि इनका जो कार्यक्रम है विधानसभा मार्च का, वो सरकार चाहती है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वहां पे प्रोमुलगेटेड है, वहां नहीं जा सके। ये सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
2: अब आप ये तस्वीर भी देखिए, एबीवीपी के छात्र जिन्होंने आज प्रदर्शन का ऐलान था, कल के लाठी चार्ज के बाद आक्रोशित एबीवीपी आज प्रदर्शन कर रही थी। एबीवीपी ने मार्च का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि हम भी बिल्कुल विधानसभा जाएंगे और उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से कल सभी छात्र गुजरे थे। लेकिन उससे पहले इन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, एक बस आई है, उस बस में एक एक करके एबीवीपी के छात्रों को भरा जा रहा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ कर बसों में रखा गया ताकि वो मार्च निकाल ना पाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने झारखंड बंद का आज ऐलान किया है, सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे। तो एबीवीपी ने, जो कि छात्र संगठन है, उन्होंने आज मार्च का ऐलान किया था कल के विरोध में और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में। सत्यजीत हमारे संवाददाता लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यजीत, तो क्या अब मार्च नहीं हो गया? क्या सभी छात्रों को हिरासत में ले रही है झारखंड पुलिस? सत्यजीत, आवाज मिल रही है आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है राजीव, आवाज मिल रही है। और एबीपी का देखिए, ओल्ड विधानसभा से मार्च का कार्यक्रम था नए विधानसभा तक का, और जैसे ही वो यहाँ असेंबल होते हैं, गैदर करते हैं कि यहाँ से वो मार्च शुरू करेंगे, भारी तादाद में पुलिस उन्हें घेर लेती है और उसके बाद उन्हें बस में बिठाया जा रहा है, यानी डिटेन कर लिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मशक्कत किया गया पुलिस के तरफ से काफी, और ये स्टूडेंट्स जो है वो आरोप लगा रहे हैं, एबीपी के कार्यकर्ता जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो संवैधानिक राइट है उससे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। संवैधानिक तरीका से पीसफुल मार्च निकालना चाहते थे, जिस तरह से कल जो है लाठी चार्ज किया गया, और जेपीएससी का देखिए बस के अंदर जो है स्टूडेंट्स है, ये जो है देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पे उनको जो है बिठा रही है अंदर, और ये आप देखिए खिड़कियों को लॉक किया गया है ताकि जो है वो किसी से बात नहीं कर पाए। कहाँ ले जाया जा रहा है आपको?
3: भारत माता की, हेमंत सरकार चाहती है झारखंडी युवाओं का आवाज दबाने के लिए पुलिस के सहारे से, हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट एक लाइन में कितने छात्रों का गिरफ्तार कीजिएगा, आपके पास जेल में कितने जगह है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों छात्र अभी साथी हमारे पीछे हैं और देखते हैं आपके पुलिस में कितना दम है और कब तक गिरफ्तार करती है।
1: कहा जा रहा है कि डिटेन कर लिया गया है, डिटेन करके इनको जो है एक कहीं ऐसे डिस्टेंस पे ले जाया जाएगा जहां जो है इनको रखा जाएगा।
2: जी सत्य,
1: काम को छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डिटेन किया जा रहा है क्योंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है विधानसभा में और वहां मार्च करने की इजाजत इन्हें नहीं दी जा रही है। राजीव,
2: ठीक है सत्यजीत, नजर बनाए रखे, फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर आज बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, बंद का व्यापक असर भी दिख रहा है। थोड़ी देर पहले संवाददाता शशि भूषण ने एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए।
4: झारखंड बंद का असर अब दिख रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रातू रोड की। देखिये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है इन्होंने आगजनी की है सड़क पे और पूरा रास्ता इस वक्त बंद है। मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाए गए बंद का असर अब व्यापक तौर पर दिखने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष जो आदित्य साहू हैं उनके नेतृत्व में ये बंद इस वक्त करा रहे हैं समर्थक, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बंद समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार के विरोध में। और थोड़ा आगे की तरफ हम चलते हैं और दिखाते हैं जो कार्यकर्ता है वो जो यहाँ पर बंद करा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष खुद नेतृत्व कर रहे हैं इस बंद का। ये देखिए, ये तमाम नेता इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है उनकी तरफ से, और नारेबाजी लगातार हो रही है। तमाम
5: लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार।
4: तो ये प्रदर्शन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और नेता जो हैं वो पहुंचे हैं बंद को सफल बनाने के लिए। सहयोगी कैमरा पर्सन विमानन के साथ शशि भूषण आज तक।
2: 12:12 रिपोर्ट में आप अगली रिपोर्ट। संसद के अंदर और बाहर हुए हंगामे से जुड़ी हुई, संसद के अंदर से बाहर तक आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। कार्यवाही कुछ ही मिनट तक चल पाई, हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और संसद के बाहर भी आज प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर अब चर्चा से भागने का आरोप लग रहा है। यह आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है कि हम तो बातचीत करने के लिए, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, गृहमंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी अब राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं और झारखंड पर जवाब मांग रहे हैं। उधर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने भी प्रदर्शन किया है। इससे पहले एनडीए के मंगल मिलन की तस्वीर आई, पीएम मोदी समेत एनडीए के सांसद तिरंगा लहराते हुए नजर आए और इस प्रदर्शन में संबित पात्रा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
6: राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज करते हुए यह कहा कि 20 तारीख को सदन चलो यात्रा जो हुआ था उस विषय में माननीय गृहमंत्री जी अपना बयान रखे। माननीय गृहमंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
2: कल तक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, सत्ता पक्ष एनडीए भी प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया और हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
7: झारखंड में कल छात्रों पे हुए लाठीचार्ज का विरोध अब सदन में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद आज तख्तियां लिए झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार से। मैम राहुल गांधी से जवाब मांग रही हैं आप लोग?
8: बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण सरकार ने उन्हें जो उनका जो मांग नहीं सुना दिया है, अत्याचार किया, उनका लाठी चलाई, घायल किया,
7: राहुल गांधी के खिलाफ तख्तियां आपको दिखाई देंगी। झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। तो जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस पे लाठीचार्ज पर बयान की मांग कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी और विपक्ष के नेता, तो वहीं दूसरी तरफ इन तस्वीरों में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी अब मांग कर रही है कि रांची में जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसके ऊपर जवाब वो मांग रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी। मकरद्वार के ठीक बाहर एनडीए के भी अब सांसद दिखाई दे रहे हैं जो तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स आज तक।
2: इधर एनडीए के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हमने एनडीए को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा सत्ता पक्ष पर आज हमलावर दिखाई दी और उन्होंने कहा कि हमने इन्हें मजबूर किया सड़क पर आने के लिए और पहली बार देखा है कि सरकार के सांसदों का प्रदर्शन चल रहा है।
9: पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें।
2: इधर एनडीए के आरोपों की बौछार के बावजूद कांग्रेस आज भी अपने रुख पर कायम नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि उसे छात्र आंदोलन पर इधर उधर की बातें नहीं चाहिए बल्कि सीधा इस सवाल पर जवाब चाहिए कि दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था।
10: जहाँ पर एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी नारे लगाते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। अमित शाह मिसिंग है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। और ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको नजर आ रही है छाते के अंदर, पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो विपक्ष की तरफ से है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो ये नारे लगा रहे हैं कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। हाय हाय के नारे यहाँ आपको लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ है सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ है विपक्ष और उन लोगों का ये कहना है कि वो आखिरकार जवाब कब दिया जाएगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। विपक्ष के सारे सांसद यहाँ पर नारे लगाते हुए और यहाँ पर चर्चा की मांग करते हुए बाकी जो सांसद है वो नजर आई है। ये है संसद का मकर द्वार और यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने हैं। ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली आज तक।
2: तो बीजेपी राहुल गांधी पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे, उधर विपक्ष ने भी सरकार पर हमला जारी रखा। विपक्ष की तरफ से चढ़ावा चोरी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। आपको मौसम सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं।
11: यहाँ पे आप देखिए कि अब विपक्ष का धरना प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था इस सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रहे थे, जवाब देने को कह रहे थे झारखंड में। और यहाँ बीजेपी के दफ्तर मिलने में कहाँ मिलेगा चंदा, कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। लुकते चंदा चोरी को लेकर सुनाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ एनडीए का प्रोटेस्ट, डीसी का विपक्ष का प्रोटेस्ट, अब दोनों ही आमने सामने। और मानसून सत्र के आखिरी कुछ दिन इसी में घूमने वाले हैं। झारखंड को लेके सत्ता पक्ष ने बड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी पर, जहाँ पे कांग्रेस की साझा सरकार है जेएमएम के साथ, और कैसे में मकर द्वार प्रोटेस्ट का बड़ा केंद्र बन गया है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
2: अब बात अयोध्या राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से शुरू होने वाले इंटरव्यू की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आए हुए 5200 से ज्यादा आवेदनों में 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आज और कल साक्षात्कार लिया जाएगा।
12: अयोध्या के राम मंदिर में सीईओ पद की नियुक्ति होना है, जिसके लिए आज और कल फाइनल इंटरव्यू हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए अगर आवेदन की बात करें तो 5300 आवेदन पहले आए थे, जिसके बाद तकरीबन 58 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, और फाइनली अब 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फाइनल साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, जिसका आज और कल साक्षात्कार होना है। इन सीईओ पद के लिए सबसे बड़ी मानक है कि वह व्यक्ति 50 से 70 साल का होना चाहिए, साथ ही साथ मांस मदिरा से दूर होना चाहिए, हिंदू आस्था में विश्वास के साथ साथ मैनेजमेंट आना चाहिए, इन सभी मानकों पर पूरा होना चाहिए। 18 जिन उम्मीदवारों का फाइनल शॉर्टलिस्ट हुआ है, उनका 3 लोगों की कमेटी अब पूरी तरीके से उनका इंटरव्यू लेगी और फाइनल एक नाम राम मंदिर ट्रस्ट भेजेगी।
2: 12:12 रिपोर्टर में आप अगली रिपोर्ट पंजाब से है। एक वीडियो पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह बुरे फंसते दिखाई दिए। हरभजन सिंह ने कल एक वीडियो शेयर किया था, उन्होंने पोस्ट किया था, ट्वीट भी किया था। अब इस वीडियो में नशे की हालत में दो युवा दिख रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो पंजाब का है ही नहीं, मतलब इसे पंजाब का कहकर परोसा गया, बताया गया, पोस्ट किया गया, लेकिन बाद में ये पंजाब का निकला ही नहीं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि ये वीडियो पंजाब का नहीं, राजस्थान के श्री गंगानगर का है, और इसके बाद सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।
13: सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बुरे फंसे हैं हरभजन सिंह। पूर्व क्रिकेटर हैं, राज्यसभा सांसद हैं। पंजाब के दो युवकों की वीडियो बताकर 30 सेकंड की पोस्ट की गई सोशल मीडिया एक्स पर, जिसके बाद ये कहा गया कि चढ़दी कला का पंजाब था, लेकिन किस तरफ युवाओं को पंजाब को धकेला जा रहा है, नशे से कैसे ग्रस्त है पंजाब, और इसको पंजाब को, पंजाब के युवाओं को, जवानी को बचाने की जरूरत है। लेकिन इस पर क्योंकि 10 अगस्त रात, कल ही रात ये वीडियो पोस्ट किया गया, जिसके बाद डॉक्टर बलजीत कौर जो पंजाब की मंत्री हैं, उन्होंने इस पर क्लेरिफिकेशन और साथ साथ काउंटर अटैक किया कि ये वीडियो राजस्थान का है, पंजाब की छवि को भाजपा खराब कर रही है। और इस पॉलिटिकल रिएक्शन के बाद पंजाब पुलिस ने भी आज सुबह एक क्लेरिफिकेशन और इस वीडियो पर काउंटर किया कि ये वीडियो राजस्थान का है। सोशल मीडिया अकाउंट जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, हरभजन की वो वीडियो, वो पोस्ट जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, उनको इससे गुरेज करना चाहिए और इस तरीके से पंजाब पुलिस को टैग नहीं करना चाहिए, ना ही पंजाब बाबत इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए।
2: अगली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर गोलीबारी में असम के 11 ग्रामीणों के घायल होने की खबर है, और घायलों में 3 की हालत तो गंभीर है। ये घटना असम अरुणाचल सीमा पर धीमाजी जिले के गोगमुख राजस्व सर्कल के अंतर्गत आने वाले मिंगमांग बदाती इलाके में हुई है, और पुलिस ने कहा कि वो घटना की जांच कर रहे हैं। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर और ज्यादा पुख्ता की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
14: असम और अरुणाचल प्रदेश में ये जो सीमा विवाद है ये काफी पुराना है और कई बार यहां पर झड़प हो चुकी है और सोमवार को जब गोलीबारी हुई तब उसके बाद अब तक 11 लोग इसमें घायल हो गए हैं, 2 की हालत संगीन बताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक दोनों ही सरकार इस पूरे मसले पर बातचीत कर रही हैं, डीजीपी और सचिव स्तर पर बातचीत हो रही है, एक कैबिनेट मंत्री को भी भेजा गया है इलाके में और जो भी विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ये सीमा विवाद का अंतर्राज्यीय मुद्दा काफी पुराना है, ऐसे में अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है।
2: 12:12 रिपोर्ट में, अब रिपोर्ट उत्तराखंड से है। जोशीमठ से लगभग 37 किलोमीटर दूर तमक नाले के पास में कल फ्लैश फ्लड आया, उसने जमकर तबाही मचाई है। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच में बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब कुछ बह गया। इस सैलाब में लगभग 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज बह गया। 1 महीने पहले इस वैली ब्रिज को लगाया गया था। पुल के बहने से नीति घाटी से 13 गांव का संपर्क जोशीमठ तहसील मुख्यालय से कट गया है। अमेरिकी अदालत में भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को पूरी तरह से अब खारिज कर दिया गया है और इसे उनके समूह पर जो खतरा मंडरा रहा था, बड़ा कानूनी खतरा, वो अब टल गया है। न्याय विभाग की अपील पर जज ने मामले को, आपको बता दें कि विथ प्रीजुडिस बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि इन आरोपों को अब दोबारा नहीं उठाया जा सकता। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस फैसले से अडानी ग्रुप के अंतरराष्ट्रीय विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया है। इस फैसले के बाद गौतम अडानी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं अमेरिकी अदालत के फैसले का विनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। इस मुश्किल दौर में भी सच्चाई निष्पक्षता का जो ये फैसला है मैं इसका सम्मान करता हूं और सिस्टम और न्याय दिलाने की भारत की क्षमता पर कभी भरोसा उन्होंने नहीं किया। बारह बजे रिपोर्टर में रुक रहे हैं, अब छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: मुल्तानी खोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खोका कॉफ सिरप।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: EU सोच बदलो और बैंक भी।
1: In association with
0: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन कभी कभी EMI डिफॉल्ट करते ही ग्राहकों को फोन लॉक होने या डिवाइस के फीचर बंद होने का डर सताने लगता है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत लोन पर खरीदे गए मोबाइल और लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इसके बाद लोन पर खरीदे गए मोबाइल या लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। दरअसल RBI ने डिवाइस डिसेबल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया तय की है, जिसमें ग्राहकों की प्राइवेसी और अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि डिवाइस लॉकिंग का इस्तेमाल रिकवरी के दबाव के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। डिफॉल्ट के बाद पहले 30 दिन तक डिवाइस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। 60 दिन के बाद कुछ फीचर्स सीमित किए जा सकते हैं। 90 दिन बाद ही डिवाइस डिसेबल करने की कार्रवाई संभव होगी और इनकमिंग कॉल, SMS और SOS जैसी जरूरी सुविधाएं चालू रखनी होंगी। RBI ने ये भी साफ किया है कि डिवाइस लॉकिंग के लिए मनमाने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल लेंडिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ग्राहकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी नए सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। डिवाइस लॉकिंग के लिए प्रमाणित OEM या OS आधारित सिस्टम का इस्तेमाल होगा, वहीं थर्ड पार्टी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कर्जदार और गारंटर की सीमित निजी जानकारी ही साझा की जा सकेगी और रिकवरी एजेंट तय समय के भीतर ही संपर्क कर सकेंगे। नए नियमों का मकसद रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना और ग्राहकों को अनावश्यक दबाव से बचाना है। साफ है कि EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को नए नियम से बड़ी राहत मिलने वाली है। डिवाइस लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के दायरे में होगी और ग्राहकों के जरूरी अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।

यूपी कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी, निष्क्रिय जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। यूपी कांग्रेस में संगठन सृजन की नई कवायद, सक्रिय नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। यूपी की सियासत में आकाश आनंद की वापसी, पुराने तेवर के साथ दिखा नया सियासी अंदाज। 2 साल बाद यूपी में आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की तैयारी, दलित जेन जी गठजोड़ पर बहुजन समाज पार्टी की नजर। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद ने कहा कि सीएम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा बहुत पसंद है, लेकिन सच्चाई है कि पूरे यूपी में पुलिस वर्दी की आड़ में गुंडाराज। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी में अग्निवीर भर्ती पर बड़ा स्केड्यूल सामने आया, मेरठ से शुरू होगी भर्ती रैली, बरेली, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या में भी आयोजन। मेरठ में 17 अगस्त को अग्निवीर भर्ती रैली, बरेली में 14 से 30 सितंबर तक, लखनऊ में 11 से 28 जनवरी तक भर्ती। अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विपक्ष पर तीखा हमला, बोले कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा। अतीक अहमद के बेटे के काफिले पर बड़ी कार्रवाई, फतेहपुर के 2 टोल प्लाजा पर 11 वाहनों के खिलाफ FIR दर्ज। राम मंदिर के CEO पद के लिए आज हो सकता है इंटरव्यू, 18 चयनित आवेदक पहुंचेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन। CEO भर्ती प्रक्रिया पर जल्द फैसला, सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी इंटरव्यू लेगी। 2 दिन तक चलेगा CEO पद का इंटरव्यू, राम मंदिर परिसर के PFC में ही चयन प्रक्रिया होगी। 5200 आवेदनों में से 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को राहत नहीं, अदालत ने व्यापक हिस्से उनको न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक उनकी बढ़ाई। आरोपियों की हिरासत के खिलाफ बचाव पक्ष के अर्जे 12 अगस्त को धाराओं पर अदालत में सुनवाई होगी।

0: और अब आपको सीधा रांची लिए चलते हैं, जहां पर इस समय एबीवीपी प्रदर्शन जो है करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये छात्र संगठन है। इससे पहले आपको बता दें कि एबीवीपी के कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया, उनको बसों में भर कर ले गए हैं झारखंड पुलिस। लेकिन कुछ छात्र फिर भी सड़कों पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि हंगामा कर रहे हैं। एबीवीपी ने आज मार्च का आह्वान किया है, लेकिन उनके मार्च को आगे बढ़ने नहीं दे रही पुलिस। हमारे साथ संवाददाता सत्यजीत भी जुड़ गए हैं। सत्यजीत, क्या माफ कीजिएगा, शशिभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शशिभूषण, क्या मार्च अब भी होगा?
1: देखिए, एबीवीपी के लोगों को भरोसा है कि मार्च होगा, क्योंकि यहाँ पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजीव। थोड़ी देर पहले हम जब जुड़े थे तो हम बता रहे थे कि कैसे बस में एबीवीपी के वॉलंटियर्स को भर दिया गया था और बस को आगे ले जाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अभी देखिए, इतना प्रोटेस्ट किया, तगड़ा प्रोटेस्ट एबीवीपी के लोगों ने, और बस के आगे जिस तरह से उन्होंने जगह बना ली है, बस को बढ़ने नहीं दिया आप लोगों ने, और अब लगता है कि मार्च होगा आगे।
2: एकदम मार्च करेंगे, किसी भी हाल में मार्च करेंगे, क्योंकि ये बिकाऊ सरकार है और ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि जेपीएससी का पेपर लीक कर रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, और सेटिंग गेटिंग से नेताओं के बच्चे अफसर बन रहे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो कहाँ जाएंगे?
1: साथियों को तो डिटेन कर रही थी पुलिस, सब आप लोगों ने रोका है।
2: और कुछ नहीं कर पाएगी हम लोग के साथियों को, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। साथ साथ हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, सीबीआई जांच
1: दिखाते हैं। देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे आगे हैं, और यहाँ एबीवीपी के और भी वॉलंटियर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। जो छात्र हैं उनको डिटेन पहले ही किया गया, क्योंकि आप लोगों ने मार्च अभी शुरू नहीं किया था,
3: हम तो आगे क्या रणनीति? हमारे कार्यकर्ता एकत्रित ही हो रहे थे और इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ता जब कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के विरोध में हमारे कार्यकर्ता जब इकट्ठे हुए, तो उसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है।
1: ये आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? बस के आगे
3: बस
1: भी कुछ
3: आगे जाने दिया, जाने दिया जाएगा।
1: बस को नहीं जाने देंगे, बस को नहीं जाने देंगे, आगे भी बस के कार्यकर्ता है राजीव, पीछे भी हैं, और किसी कीमत पे इस बस को, जिसमें कि छात्र डिटेन करके रखे गए हैं, उसको नहीं जाने देंगे। जो छात्र डिटेन किए गए हैं उनसे बात करते हैं। देखिए, ये छात्र हैं जो अंदर डिटेन है।
3: इनकी सरकार, ये निकम्मी सरकार देख रहे हैं कि छात्रों का आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, केवल ये छात्रों की समस्याओं को सुनना बिल्कुल नहीं चाहती। ये बस चाहती है कि छात्रों को मारा जाए, पीटा जाए। पुलिस, कल आप देखा कल किस प्रकार से प्रदर्शन में लाठीचार्ज किया। आज वैसे हम लोग ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक राजभवन तक किया था, लेकिन शुरू होने से पहले हमें मतलब घसीटते हुए, जानवरों की तरह घसीटते हुए यहाँ पुलिस वैन में चढ़ाया गया है। क्या हम क्या जानवर
1: दिखाते हैं? देखिए, अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और देखिए छात्र जो अंदर हैं, लगभग आधे घंटे से आप लोग अंदर हैं, और आधे घंटे से आप लोग अंदर हैं, बाहर भी आपके साथी हैं, लेकिन मार्च अभी शुरू होने में देर हो रही है।
2: बिल्कुल, हमने तय किया था, हम काला पट्टा बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन सरकार लगातार डरी हुई है। सीएम आवास जिस दिन हम लोग घेर रहे थे, उस दिन भी हम लोग को रोका गया, आज तो प्रशासन ने सारी हदें पार कर दी
0: है। शशिभूषण, आप नजर बनाए रखें, एबीवीपी का प्रदर्शन चल रहा है, जिस बस में हिरासत में लिया गया उस बस को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करेंगे योगी के चुनावी यज्ञ की। छात्रों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं।

0: दिल्ली से लेकर झारखंड तक हंगामा बचा हुआ है, इंपैक्ट यूपी पर भी है। तो छात्रों के मुद्दे पर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी है जिसे विपक्षी दल उठा रहे हैं और हमलावर है। इस सियासत का असर दिल्ली से लेकर यूपी तक दिख रहा है और आज संसद परिसर में विपक्षी दलों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। वही एनडीए सांसद नेता विपक्ष राहुल गांधी को घेरते नजर आए। अब सीएम योगी ने भी चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी है।
1: संसद में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है।
2: जब भवन में इस वक्त एक चंदा चोरी, झारखंड में हुए जो छात्रों पर लाठीचार्ज वो और साथ साथ जो जंतर मंत्र पर लाठीचार्ज हुआ, इन तीनों मुद्दों को लेकर विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सांसद आमने सामने आ गए हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो चंदा चोरी का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में छात्रों पर हुई निर्दयता पर राहुल गांधी सवाल को इस तरह के दिख रहे।
1: इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है।
3: यहाँ पे आप देखिए कि आप विपक्ष का धरना का दर्शन हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था इस सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रहे थे, जवाब देने को कह रहे थे झारखंड में, और यहाँ बीजेपी के दफ्तर मिले में कहाँ मिलेगा चंदा, कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर पे, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और चंदा चोरी को लेकर लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ एनडीए का प्रोटेस्ट डीसी
1: का, यही वजह है कि एक और बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है। तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृह मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरो।
0: संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी हमला बोला है। मायावती ने कहा कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है,
4: अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में है, देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिली भगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है, और ये सब देश की जनता को सीधे सीधे तौर पर काफी कुछ नजर आ रहा है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी सियासत के बीच एक और बड़ी खबर है। आज से अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू शुरू हो रहा है और दो दिनों तक बताया जा रहा है कि ये चलेंगे। इस इंटरव्यू के लिए 18 आवेदक हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भवन भी पहुंचेंगे। 2 सितंबर को नए सीईओ का ऐलान हो सकता है। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, इंटरव्यूज की क्या कुछ तैयारियां हैं, तो पूरा मेरिट बेस पर होगा, लेकिन क्या रहेगी प्रक्रिया?
5: राजीव देखिए, प्रक्रिया कुल मिलाकर इस तरह की है कि 5000 से ज्यादा आवेदन इसमें हुए थे, छांट कर वो 55 पर आए और अब ये बचे हैं 18। एक पूर्व जस्टिस हैं जो इस पूरी 3 सदस्यीय कमेटी को लीड कर रहे हैं और वो ही इस पूरे प्रोग्राम के एक तरीके से देख रहे हैं। तो आज और कल का 2 दिन जो है वो बहुत अहम रहने वाला है अयोध्या के लिए। राम मंदिर परिसर में ये इंटरव्यूज होने हैं। 18 आवेदक जो शिक्षा, कॉर्पोरेट, सेना, अन्य अन्य क्षेत्रों से आते हैं। कुल मिलाकर इसमें एक आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, तमाम फाउंडेशंस भी इसमें हैं। तो अब देखना यह है कि इन 18 में से वो 3 नाम कौन से होते हैं, क्योंकि कमेटी का काम है वो 18 में से कुल 3 नाम निकालेगी और वो 3 नाम एक रिपोर्ट के माध्यम से ट्रस्ट को सौंपेगी। फिर ट्रस्ट उन 3 नामों को लेकर मंथन करेगा और अगली जो ट्रस्ट की बैठक 2 सितंबर को होनी है, माना यह जा रहा है कि उसमें ट्रस्ट की तरफ से नाम का ऐलान हो जाएगा कि राम मंदिर का अगला CEO कौन होगा। उसका काम यह होगा जो प्रबंधन और प्रशासनिक जो कार्य है राम मंदिर के, उसकी जिम्मेदारी CEO की होती है।
0: 2 सितंबर को ऐलान भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया समर्थ आपका जानकारी के लिए। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इधर बीजेपी उन क्षेत्रों पर खासा फोकस करे, ध्यान दे रहे जहां पर पिछले चुनावों में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के प्रत्याशियों का चयन भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तैयारी भी नई कार्यकारिणी का गठन करके जमीनी ताकत बढ़ाने की है। वहीं BSP ने आकाश आनंद की रैली के साथ चुनावी रण का आगाज कर दिया है। तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उन इलाकों पर अब ध्यान केंद्रित किया है जहां पर 2022 में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। सहारनपुर इसमें है, मुरादाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ मंडल के लगभग 18 जिलों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। जल्द ही 2022 में कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों की समीक्षा होगी। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। जाति और सामाजिक समीकरणों पर खासा फोकस होगा और इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर भी फीडबैक लिया जाएगा।
6: भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कमर कस कर तैयार है। 2027 के चुनाव में हम विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देंगे, 2017 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो हारी हुई सीटें हैं उसके लिए एक अलग रणनीति पार्टी ने बनाई है। हम उसमें बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के ऊपर तक की रणनीति पे काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार उन विशेष सीटों पर जहां पर हम हारे थे उनको जीतने के लक्ष्य के साथ हम जब सरकार के किए हुए कामों, ईमानदार नेतृत्व को जनता के बीच में रख रहे हैं और पूरी रणनीति बनाते हुए सामाजिक समीकरण को देखते हुए हम उन विधानसभा सीटों को इस बार जीतेंगे जो कि हम पिछली बार हार गए थे।
7: देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के उत्तर प्रदेश की द्वितुल्य जनता के अंदर, उत्तर प्रदेश की महान जनता के अंदर नाराजगी व्याप्त है। जनता में आक्रोश है क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया नहीं। आज छात्र नौजवान सड़कों पे हैं, वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं जो है आदरणीय उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जो है वो अपने, उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो अपनी अस्मिता को लेकर के परेशान है। किसान अपने आय दुगनी कराने के लिए परेशान है। जिस तरीके से आज चारों तरफ जो है लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है। विकास कोई हुआ नहीं, लोग विकास की राह देख रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी है वो सारे विकास जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते जा रहे हैं।
0: और अब यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारियों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने और चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है ताकि चुनाव में इस बदलाव का सीधा असर दिख सके।
1: छात्रों के मुद्दे पर प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस ने यूपी में संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के प्लान पर काम शुरू कर दिया।
8: आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है।
1: प्रयागराज की रैली में मिले समर्थन से कांग्रेस बेहद उत्साहित है। इसी कड़ी में अब उसने यूपी में संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। खबर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जल्द ही नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके तहत कई जिलों और शहरों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। संगठन में फेरबदल के लिए नवनियुक्त सह प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक महीने में रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सौंपी जाएगी। एक दिन पहले दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई बैठक में इस रणनीति का पूरा खाका तैयार किया गया। दरअसल प्रयागराज में राहुल के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस को 2027 के लिए नई उम्मीद जरूर मिली है। वैसे तो यूपी विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही थी और पार्टी को हासिल सिर्फ इतना रहा कि विधानसभा में खाता खुल गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के जरिए कांग्रेस ने यूपी में जो वापसी की, उसे 2027 में दोहराने की कोशिश जरूर करेगी।
9: इम्पैक्ट तो भयंकर है, आप छात्रों से पूछो ना, कितना गजब का उत्साह है, इतना जबरदस्त उत्साह छात्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे इम्पैक्ट का पता लगता है। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है और केंद्र की सरकार घबरा गई है। मोदी जी, अमित शाह जी इतनी हिम्मत नहीं कर रहे कि राहुल गांधी की आंख मिला के संसद में जवाब दे सके। इससे पता लगता है कितना इम्पैक्ट है।
1: कांग्रेस पार्टी अभी से राहुल गांधी की लोकप्रियता का माहौल बना रही है। कांग्रेस की ये रणनीति समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग में भी उसके लिए कारगर हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि सीट नहीं, जीत को प्राथमिकता दी जाएगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले बीएसपी ने भी कमर कसी है और कल हाथरस में रैली करके मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अपने पहले अभियान का आगाज किया है। इस रैली में आकाश ने अखिलेश पर ऐसा तंज कसा कि सियासत गरमाते देर नहीं लगी।
1: करीब दो साल बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रैली कर हुंकार भरी। बीजेपी सरकार पर हमला बोला, राहुल गांधी को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव पर तंज कसा और अपने बयानों से भविष्य वाली रणनीति का संकेत दिया।
10: तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना एड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए।
1: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। और इसी कड़ी में जब आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद में हुंकार भरी तो योगी सरकार सबसे ज्यादा निशाने पर रही।
10: मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप?
1: बीएसपी के खिसकते जनाधार और एक के बाद एक मिल रही चुनावी हार के बीच पार्टी प्रमुख मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद से सियासी चमत्कार की उम्मीद है। यही वजह है कि चुनावों के ऐलान से पहले ही आकाश आनंद ने मोर्चा संभाल लिया है और इस रैली में उन्होंने इशारों इशारों में राहुल गांधी को घेर लिया।
10: जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके सत्ता, अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे।
11: मुद्दा ये नहीं है कि किसको अंकल कहो और किसको दादाजी कहो, हिम्मत हो तो कह लेना मोदी जी को। मुद्दा ये है कि बहुजन मिशन को आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों क्यों गिरवी रख रहे हैं, आरक्षण विरोधियों के हक में क्यों बात कर रहे हैं, संविधान विरोधी भाजपा के हक में क्यों बात कर रहे हो, आप और आपकी बुआ जी दोनों के दोनों लोग बहुजन मिशन को क्यों बेच रहे हैं, क्या मिल रहा है आप?
1: लेकिन आकाश आनंद की इस रैली में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव पर ली गई चुटकी की हो रही है, जिसमें उन्होंने अखिलेश को अंकल बता दिया, जिसे जैन जी को लुभाने वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
10: आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ।
12: बहस में हम और आप न बोलिए, सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
0: रुक रहे हैं शोर से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वहीं डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

विपक्ष में घन घोर संग्राम में स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही। झारखंड में छात्रों पर पुलिस एक्शन का डाउल से जवाब मांग रहा है एनडीए। ऊषा क्यों भाग रहे नेता प्रतिपक्ष शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी एनडीए सांसदों ने लगाया तिरंगा। संसद में शाह को पेश करने हैं दो बिल। गतिरोध के बीच 2 बजे शुरू होगी कार्रवाई। पीएम और स्पीकर से मिली रिजिजू। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर। सड़क पर टायर जलाकर बीजेपी का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। बैठक में तय हो रही है छात्रों की अगली रणनीति। गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत। यूएस की अदालत ने सभी आपराधिक मामले खारिज किए। अडानी ने किया फैसले का स्वागत। कहा इंसाफ का भरोसा था। और पहाड़ से मैदान तक मानसून का हाहाकारी दृश्य। चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बहा पुल। राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई गाड़ियां। भोपाल में स्कूल बंद। विदिशा में बाढ़।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद में लगातार गतिरोध जारी और आज भी विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ओम बिरला सभी दलों से अपील करते हुए नजर आए कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन नहीं चलता है तो उनका मन व्यथित होता है। सुनिए।
1: माननीय सदस्यगण, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया। मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले, सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है, अब आप चलाएं। और मुद्दों पर भी चर्चा होगी लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना, आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है सदन के अंदर तख्तियां बैनर लेकर आना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें, आप सहयोग करें। मेरा आपसे आग्रह है सदन चलाने में सहयोग करें।

0: मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यक्ति दुखी होता है सदन में चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें
1: और अब रुक करेंगे नॉन स्टॉप 100 का।

छात्रों के मुद्दे पर अब बीजेपी के निशाने पर विपक्ष, एनडीए सांसदों के हाथ, राहुल को चर्चा के चैलेंज वाले पोस्टर। छात्रों के समर्थन में एनडीए सांसदों का जोरदार प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी, पोस्टर पर लिखा चर्चा ने राहुल गांधी ना भागे। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से मांगा जवाब, पूछा राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी और सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा, अमित शाह नितिन नवीन रहे मौजूद। एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराकर एकजुटता का संदेश दिया, साथ ही वंदे मातरम के नारे लगाए। संसद परिसर में बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को घेरा, कहा झारखंड क्यों नहीं गई। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा, 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। स्पीकर ओम बिरला ने कहा सदन में तख्ती लाना ठीक नहीं। गृहमंत्री छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले शिक्षा, परीक्षा, राम मंदिर के मुद्दों पर होनी चाहिए बहस। सरकार की घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक। झारखंड में छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का राज्यव्यापी बंद का ऐलान। ना झारखंड बंद के आह्वान का दिखने लगा असर, रांची में कई जगह टार जलाकर विरोध प्रदर्शन। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलडोजर लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम हेमंत सोरेन का खुला पत्र, मांगों पर कार्रवाई का भरोसा, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी बनाने का दावा। झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग के राहुल गांधी ने बताया गलत, छात्रों की बात सुनकर तत्काल समाधान करे सरकार इसकी अपील। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो का सरकार पर हमला, बोले अब सरकार से बात नहीं करेंगे। महतो का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले हमारी सरकार हमारी आवाज को चलना चाहती है, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में हुए भर्ती। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सीजेपी संस्थापक दीप के ने जताया समर्थन, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर की बातचीत। जेबीएससी पूर्व चेयरमैन एल के आंगते गिरफ्तार, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा का जिम्मा देने का आरोप। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर ईडी का शिकंजा, आर्थिक लेनदेन की होगी जांच। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी को बताया दिखावा। जेबीएससी जेएसएससी विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस जेएमएम पर हमला, बाबूलाल बोले झारखंड में नौकरियां भेज दी गई, छात्रों की लड़ाई को बताया अगस्त क्रांति। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने 2022 में कमजोर प्रदर्शन वाले सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल के 18 जिलों पर फोकस बढ़ा दिया है। बीजेपी पार्टी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के साथ कमजोर बूथ, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर खास रणनीति तैयार कर रही है। बंगाल एसआईआर ट्राइब्यूनल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस रफ्तार से सुनवाई हुई तो अगला चुनाव आ जाएगा। यूपी कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी, निष्क्रिय जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। यूपी कांग्रेस में संगठन सृजन की नई कवायद, सक्रिय नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। यूपी की सियासत में आकाश आनंद की वापसी, पुराने तेवर में दिखा नया सियासी अंदाज। 2 साल बाद यूपी में आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की तैयारी, दलित जेंजी गठजोड़ पर बहुजन समाज पार्टी की नजर। बीएसपी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद ने कहा सीएम को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा बहुत पसंद, लेकिन सच्चाई है कि पूरे यूपी में पुलिस वर्दी की आड़ में गुंडा राज चल रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी में अग्निवीर भर्ती का बड़ा शेड्यूल, मेरठ से शुरू होगी भर्ती रैली, बरेली, लखनऊ, वाराणसी में अयोध्या में भी होगा आयोजन। 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली, बरेली में 14 से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 से 28 जनवरी तक भर्ती। अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विपक्ष पर तीखा हमला, बोले गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। राम मंदिर श्रावा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा। अतीक के बेटे अली के काफले पर बड़ी कार्रवाई, फतेहपुर में 2 टोल प्लाजा पर 11 वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राम मंदिर में सीओ पद के लिए आज हो सकता है इंटरव्यू, 18 चयनित आवेदक पहुंचेंगे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन। सीओ भर्ती प्रक्रिया पर जल्द होगा फैसला, सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी लेगी इंटरव्यू। 2 दिन तक चलेगा सीओ पद का इंटरव्यू, राम मंदिर परिसर के पीएफसी में होगी चयन प्रक्रिया। राम मंदिर श्रावण चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को राहत नहीं, अदालत ने न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ाई। आरोपियों की हिरासत के खिलाफ बचाव पक्ष की अर्जी 12 अगस्त को धाराओं पर अदालत में होगी सुनवाई। हिमाचल में मानसून का कहर, बाढ़ भूस्खलन से 157 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा सड़कें बंद, बिजली पानी की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया।

हिमाचल में बीती रात भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण हाईवे और वैकल्पिक मार्ग यातायात के लिए बंद। दार्जिलिंग में तेज बारिश में जोर बंगलो पोशोक रोड पर 25% हिस्सा बहा, धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। कालिम्पोंग सिक्किम मार्ग बाधित। टोंक में मानसून की पहली जोरदार बारिश, सड़क पर बहा सैलाब, तेज बहाव में बहे वाहन। विदिशा में बारिश का कहर, उफनती बेतवा ने मचाई तबाही। बाढ़ में फंसे लोगों और मवेशियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर, अलकनंदा और गंगा का बड़ा जलस्तर, नदी किनारे पुलिस अलर्ट। पुरी में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव। चेन्नई में बारिश का असर, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते दिक्कतों का सामना। बूंदी में बारिश का सैलाब, सड़क पर बहती बाइक और स्कूटी, करीब घंटे भर की बारिश ने किया शहर का ये हाल। चमोली में बेली ब्रिज बहने के बाद एनडीआरएफ लापता व्यक्ति को खोजने में जुटी, राहत बचाव में जुटा प्रशासन। तेरा गांव का जोशीमठ तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा, भारत चीन सीमा मार्ग बंद। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बोल्डर नाले में गिरे, नदी किनारे खेतों और सेब के बगीचों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के विकास नगर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। विकास नगर में कहीं सैलाब के तेज बहाव में वाहन फंसे तो कहीं राहगीरों की जान आफत में पड़ी। प्रयागराज में गंगा यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, संगम पर स्नान करना प्रभावित। कानपुर में मानसून के बीच गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रमुख घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, अलर्ट जारी। बीजेपी सांसद हरभजन सिंह ने राजस्थान के श्रीगंगानगर का वीडियो पंजाब को बताकर शेयर किया। वीडियो में युवक जॉम्बी ड्रग लिए बताए जा रहे हैं। पंजाब की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का बीजेपी नेता पर पलटवार का, राजस्थान के श्रीगंगानगर का वीडियो पंजाब को बताने का लगाया आरोप। गाजियाबाद के लोनी में 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान की छत ढही, मलबे में दबे 3 लोगों का रेस्क्यू, 1 घायल। वाराणसी के शिव मंदिर में सावन की शिवरात्रि पर उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सहारनपुर में सावन में शिव भक्ति का दिखा अलग रंग, कांवड़ लेकर निकली महिलाएं, रास्ते बनाई रील। शिवरात्रि पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार, महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों में होड़। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि, दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार में टूटा कांवड़ियों का रिकॉर्ड, 5.25 करोड़ लोगों ने लिया गंगा जल। यूपी के बागपत में महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, पूरा महादेव, पहली बार पिंक प्लान, पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट वहां के लिए तैयार। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, लाल किले के पास दंगल पार्क में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले 21 तोपों की सलामी की हुई रिहर्सल। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, शोपियां में जिला प्रशासन निकाली भव्य तिरंगा रैली। रक्षाबंधन से पहले नागपुर में सरहद के प्रहरियों के लिए अनोखा कार्यक्रम, देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 3 लाख राखियां। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर खास आयोजन, स्विमिंग, कायाकिंग और कैनोइंग का विशेष समर कोचिंग कैंप आयोजित। देहरादून दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाली तीज उत्सव के मौके पर आयोजित महिला संवाद और सम्मान समारोह के बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जमीन अतिक्रमण विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 से अधिक ग्रामीण घायल। यूपी के भदोही में अश्लील हरकत की शिकार करने पहुंची लड़की को दारोगा ने भगाया, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने किया निलंबित। इटावा में सैफई थाने में महिला कांस्टेबल ने किया आत्महत्या, पति गिरफ्तार, परिजनों ने प्रताड़ना और आर्थिक दबाव का लगाया आरोप। सूरत में मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल, शख्स की मौत के बाद परिजनों का पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में सड़क से गुजरते समय 10 साल के मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गुजरात के खेड़ा में 4 वाहनों की भिड़ंत, केले से भरी पिकअप पलटी, टला बड़ा हादसा। गुजरात के दाहोद में विश्व आदिवासी दिवस की रैली के दौरान पुलिस पर पथराव, हमले में 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज, 13 गिरफ्तार। जूनागढ़ में खड़ी बाइक पर लिपटा दिखा विशाल अजगर, युवकों ने सावधानी से हटाकर जंगल की ओर छोड़ा। औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी विकराल आग, ट्रक चलकर खाक। जयपुर में पैदल जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने लूटी चेन, स्नैचिंग के बाद लुटेरों से भिड़ी महिला।

0: पेलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरते घेरते कांग्रेस झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर घिर गई है। संसद भवन के बाहर आज बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की। इसी मुद्दे पर आज तक ने कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत सोरेन से सवाल किया कि क्या छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर उन्हें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बात की है। इस पर खड़गे ने कहा कि 100 मुद्दे होते हैं, उस पर अलग अलग डिस्कशन होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने अपने नेताओं को हेमंत सोरेन से बात करने के लिए बोला है, इस पर खड़गे बिना जवाब दिए चले गए।
1: सर, हेमंत सोरेन से बात हुई क्या? सर, झारखंड में आपकी बात हुई
2: है? नहीं, हमारे लोग डबल स्टैंडर्ड
3: है। वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 वो सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
1: सर, अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन?
0: बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बेहद दिलचस्प स्थिति तब पैदा हो गई जब नारेबाजी कर रहे बीजेपी सांसदों के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई।
4: राहुल जी ने झारखंड के
0: वही बीजेपी का यह आरोप है कि दिल्ली में छात्र प्रदर्शन पर सरकार से जवाब मांगने वाले राहुल गांधी झारखंड में छात्रों पर लाठी चार्ज पर खामोश क्यों हैं?
5: ये होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएमएचएम जब जब सदन में आए तब तब ये सदन से भागे। तो बस हमारा उनसे कहना है, सदन से भागिए नहीं, शांति से सुनिए सदन में और रांची जाइए। पर वो सदन में सुन नहीं रहे और रांची जा नहीं रहे।
6: झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेन जी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है, और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलक बिलक कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? आज हम जानना चाहते हैं।
0: वहीं झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज खिलाफ आज बीजेपी का झारखंड बंद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन ने लाठीचार्ज के विरोध में आज विधानसभा मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एबीवीपी के इन छात्रों को हिरासत में ले लिया।
5: गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं, और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। और इससे पूर्व भी सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अभी आपने देखा कि अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में प्रयोग होने वाले इस विधेयक पे भी अंत में वो भाग खड़े हुए राज्यसभा में। वहां से लेके कितने ही ऐसे बिल थे जिनके के ऊपर, मतलब वहां से शुरू करिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले में, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। तो आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएमपीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत, और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ, जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं और उसकी ट्यूनिंग जो अब्रॉड से होती है इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। और इसलिए यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर, जहां इवन इनसे सीनियर नेता खड़गे जी राज्यसभा में हैं, पिछली बार अधीर रंजन चौधरी थे लोकसभा में, तब ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता था। उससे पूर्व याद करिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, इवन अटल जी की सरकार के समय में सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय क्या कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता था? नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी और अडवाणी जी, तब कभी ऐसा सीन देखने को मिलता था? तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए आज राहुल गांधी जी का आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है। और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सब ने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाहर एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद।
2: एक सेकेंड, अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, बताइए, बोलिए सर।
0: वाकई यहां पर एक छोटे से ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
2: वो डिस्चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
13: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, बड़े आराम से।
15: वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।
16: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
17: देखिए, ये हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से ये ट्रस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन सब ट्रस्ट को अपने अधीन करना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट इनके अधीन रहे और सरकार जिस पे जाए जब चाहे शिकंजा कर सके।
18: FCRA में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं उनको ये देश को बताना चाहिए कि विदेशी धन भारत में आएगा तो उसका स्रोत क्या है, पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसकी जानकारी और निगरानी रखना क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है? खड़गे साहब को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि FCRA किसी संस्था का के खिलाफ कानून थोड़े है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
0: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
5: प्रॉपर्टी बाजार में नया बूम लाने की जिम्मेदारी डेटा सेंटर्स उठाने के लिए तैयार हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों का डेटा स्टोर करने वाली ये सेंटर रियल एस्टेट बाजार के नए पावर हाउस बनने के लिए तैयार हैं। स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वर्षों में घरों की डिमांड बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बनने जा रहा है। दरअसल देश में 9030 मेगावाट क्षमता की डेटा सेंटर पाइपलाइन तैयार हो रही है। इस नए इकोसिस्टम की वजह से करीब 4.33 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे 2030 तक देश में 19.5 करोड़ वर्ग फुट रेजिडेंशियल स्पेस की जरूरत होगी। असल में डेटा सेंटर के सेटअप के साथ ही इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट, मजबूत बिजली सप्लाई, सड़कें और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से विकसित होंगी, जो घरों की मांग को बढ़ावा देंगी। इसका असर 5 से 15 किलोमीटर तक के दायरे में नजर आएगा। इस खास दायरे में बड़ी रेजिडेंशियल टाउनशिप और रिटेल मार्केट का विकास तेजी से होगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया के 20% डिजिटल डेटा का प्रोडक्शन करता है, जबकि उसकी क्षमता 4% है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ की भारी गुंजाइश है। ये नया ट्रेंड आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतों को भी प्रभावित करने वाला है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन इलाकों में जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। हालांकि इस दौड़ में देश के कुछ राज्य और शहर दूसरों के मुकाबले काफी आगे नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन डेटा सेंटर्स की वजह से मुंबई, पुणे जैसे रीजन में सबसे ज्यादा 5.4 करोड़ वर्ग फुट, कर्नाटक में 2.8 करोड़ और आंध्र प्रदेश में 2.3 करोड़ वर्ग फुट, उत्तर प्रदेश में 2.27 करोड़ और तेलंगाना में 2.16 करोड़ वर्ग फुट और तमिलनाडु में 1.94 करोड़ वर्ग फुट रेजिडेंशियल डिमांड का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात की गिफ्ट सिटी भी रेस में शामिल है। इस बड़े बदलावों का असर महानगरों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के रियल एस्टेट बाजार तक नजर आएगा। साफ है कि जिस तरह से पिछले 2 दशकों में आईटी पार्कों ने बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों की शक्ल बदल दी थी, ठीक उसी तरह डेटा सेंटर कॉरिडोर आने वाले वक्त में नए हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं। ये सेंटर्स अब डिजिटल दुनिया चलाने वालों के साथ साथ आपके सपनों के आशियाने की दिशा और कीमत भी तय करेंगे। आदित्य के राणा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुनी छात्रों की गूंज, शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। मंगल मिलन में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ सभी एनडीए सांसद ले रहा है तिरंगा, संसद में शाह को पेश करने हैं दो बिल, गतिरोध के बीच 2 बजे शुरू होगी कार्रवाई। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर, सड़क पर टायर जलाकर बीजेपी का प्रदर्शन, हिरासत में ले गए कार्यकर्ता, बैठक में तैयारी हो रही है छात्रों की अगली रणनीति। उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी राहत, यूएस की अदालत ने सभी आपराधिक मामले खारिज किए, अडानी ने किया फैसले का स्वागत, कहा इंसाफ पर भरोसा था। और बाहर से मैदान तक मानसून का कहर, चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बाहर पुल, राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई गाड़ियां, भोपाल में स्कूल बंद, विदिशा में बाढ़।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातों। अपनी खास पेशकश का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर दिख रहा है। सड़क पर टायर जलाकर बीजेपी विरोध कर रही है। हिरासत में कई कार्यकर्ता लिए गए हैं और पुलिस एक्शन के दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रांची सहित कई शहरों में बीजेपी का ये प्रदर्शन जारी है। आज झारखंड बंद का आह्वान बीजेपी द्वारा किया गया था। एबीवीपी के छात्रों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, बंद और प्रदर्शन का कितना असर दिख रहा है? बीजेपी के अलावा क्या जो लोग किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है वो भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं?
1: नहीं, आज बीजेपी का ही बंद कॉल था और अलग अलग पॉकेट और कॉर्नर्स में बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। जैसे रातू रोड में आदित्य साहू बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद खुद उतरे थे बंद करवाने। अड़गोड़ा चौक वो सड़क है जहां से जो है मंत्रालय के लिए विधानसभा के लिए रास्ता जाता है, वहां टायर जलाकर रोड जाम किया गया। इसके अलावा हरमू चौक और इसके अलावा किशोरगंज चौक, कई इलाकों से इस तरह की खबरें आई। रामगढ़ जो है NH वहां पे भी जो है इसी तरह का दृश्य दिखा। इसके अलावा एबीपी का जोरदार प्रदर्शन है। ओल्ड विधानसभा के सामने वो जुटे थे और उसके बाद जो है उन्हें मार्च करना था नए विधानसभा तक, लेकिन पुलिस ने उनको लोड कर लिया पहले ही जब वो गैदर किए। उसी वक्त जो है उनको भारी पुलिस बल आकर उनको बस में लोड करती है। उनको ले जाना चाहती थी लेकिन आगे और पीछे कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते रहे और बस अभी तक मूव नहीं कर पाई है। हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ है। हम लोगों ने देखा कि एक लड़की थी जो अनकॉन्शियस हो गई, एक लड़का था जो चतरा से आया है और वो रो रहा था, लिटरली उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे कि लगातार तैयारियां की लेकिन जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसको जगह नहीं मिल पाता है। इस तरह का करप्शन यहाँ पे, ये उनका आरोप था। शशि, क्या देखा आपने? ये जो रोशनी करके लड़की थी, बदहोश हो जाती
2: लड़की आई है,
0: ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच अब रुक करेंगे अपनी खास पेशकश अगस्त में आफत का।

अगस्त का महीना चल रहा है, देश से लेकर विदेश तक कोहराम मचा हुआ है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं, चमोली में बादल फटने से पहाड़ों में आए मलबे ने एक लोहे के पुल को भी नहीं बख्शा और अपने साथ बहा ले गया। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश से आफत है। एमपी से लेकर राजस्थान तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसके अलावा कोलंबिया में आए भूकंप से तबाही का मंजर दिख रहा है। कोलंबिया में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई इमारतें ढह गई। और सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों पर मानसूनी आफत की। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद पहाड़ से आए मलबे ने काफी तबाही मचाई। नीति घाटी में तमक नाले में आए उफान के बाद तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से लोहे का पुल बह गया और इसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। कुछ ही सेकेंड लोहे का पुल तिनके की तरफ पानी के मलबे में बहता दिखाई दिया। गाली ब्रिज बहने के साथ वहां मौजूद कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में बारिश से भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तिनके की तरह बहता ये पुल देखिए, इससे आप मलबे का आवेग समझ सकते हैं।

0: अगस्त में आसमान से बरस रही है आफत। बादल फटने के बाद चमोली में तबाही का मंजर। पहाड़ों से आए मलबे ने सब कुछ बहाया। सावन का महीना चल रहा है और देवभूमि में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। चमोली की नीत घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों से आ रहे मलबे को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगी। गनीमत ये रही कि वो बच गया। लेकिन सैलाब के रौद्र रूप में एक गाड़ी बह गई। एक और तस्वीर देखिए, पहाड़ों से आए मलबे की रफ्तार इतनी तेज है कि लोहे का पुल ताश के पत्तों की तरह बह रहा है। महज 30 से 35 सेकंड में मलबा अपने साथ पुल को ले गया। पुल बहने से नीत घाटी के 13 गांव का जोशीमठ से संपर्क टूट गया है।
1: ये एकदम से याद दिलाता है पिछले वर्ष जो उत्तरकाशी की धराली की आपदा थी 5 अगस्त को जब वहाँ पे आया था, उसी तरह की ये जो बहाव आया है, ये फ्लड जो आया है, उसी तरह की याद दिलाता है। ऐसे में पूरा पुल बह चुका है। वहीं प्रशासन की टीमें जा चुकी हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो चुका है। वहीं प्रशासन का कहना है एक व्यक्ति के अभी तक लापता होने की सूचना मिली है।
0: नीति घाटी में मलबा तो बह गया लेकिन अपने पीछे एक तबाही का मंजर छोड़ गया है। अब चमोली पुलिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।
2: जो तमक नाला है उसका पुराना भी इतिहास रहा है कि अतिवृष्टि में वो नाला काफ़ी बढ़ करके आ जाता है और वहाँ पे पुल बहने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये अभी कुछ ही समय पहले अतिवृष्टि के कारण जो नाला उफान पे आया है उसकी वजह से पुल वॉश आउट हुआ है और साथ में जो प्रारंभिक हमें सूचना मिलती है कि ग्रिफ के एक वर्कर वहाँ पे थे, वो भी बहे हैं। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने तत्काल मौके पे भेज दिया है। हमारी प्रशासनिक टीम भी मौके पे पहुंच रही है।
0: बादल फटने के बाद आए मलबे ने भारी तबाही मचाई है। नदी किनारे के खेतों में मलबा, पत्थर और बोल्डर से भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली से कमल नयन सिडोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और वही हिमाचल प्रदेश कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। किरण बाजार और बराड़ के बीच पहाड़ी से अचानक बड़े पत्थर और मलबा दरकने से सड़क पर गुजर रही एक कार इसकी चपेट में आ गई और इसी से वो पत्थरों के नीचे दब गई। हादसे के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों सवारों को गाड़ी से बाहर निकाला है। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में एक व्यक्ति को कुछ चोटें आई हैं जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर के खनेरी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तो कार के ऊपर मलबा गिरने से 2 व्यक्ति इसकी चपेट में आ गए के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया और अब उनका उपचार चल रहा है। तस्वीरें देखिए क्या हालत हुई है इस कार की। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और मलबा दरकने से ये कार दरअसल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसमें सवार दोनों लोगों की जान बच गई। और अब आज मध्य प्रदेश की जहां लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी में उफान के चलते आसपास के घाट और मंदिर पानी में डूब गए हैं। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव को जोड़ने वाले छोटे पुल पर नदी का पानी ऊपर से बह रहा है जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। भोपाल में कुछ ही घंटे की बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं भोपाल में आज भी सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

0: पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसूनी आफत, मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। विदिशा से लेकर भोपाल तक हर जगह पानी ही पानी। अगस्त का महीना चल रहा है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानों पर भी आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते एमपी के विदिशा में हालात बिगड़ गए हैं। क्या गांव, क्या शहर, क्या घाट और क्या मंदिर, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के किनारे के घाट और मंदिरों में पानी घुस गया है। वहीं कुछ छोटे मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। नदी में उफान के चलते हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिया के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, जहां स्कूली बच्चों को लोग गोद में लेकर पुलिया पार करने पर मजबूर हैं। वहीं विदिशा के वामन खेड़ा और पथरिया गांव में पानी भर चुका है, जहां से लोगों को एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। विदिशा ही नहीं, भोपाल भी इस वक्त आसमानी आफत का सामना कर रहा है। सोमवार को महज कुछ घंटों की बारिश से भोपाल के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। भोपाल के शिवनगर, गीतानगर, कल्याण नगर में कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसके चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है।
1: हम भोपाल के भानपुर इलाके में मौजूद है। यहाँ खेजड़ा इलाके की ओर जाने वाला ये जो सीमेंट का रोड है, वो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो डूब चुका है। आगे कितना गहरा पानी है इसका अंदाजा नहीं है। जो लोग अमूमन इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उनका कहना है कि अब इस रास्ते पे आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो जो करोद की तरफ से नाला बहता हुआ आता है, वो यहाँ आगे जाता है और उसी का पूरा पानी ओवरफ्लो होके इस वक्त अगर आप देखें दूर दूर तक, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा।
0: लगातार हो रही बारिश और जल भराव के चलते लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि हर साल बारिश में यही हाल होता है। विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर और भोपाल से रविश पॉल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात कोलंबिया में आए शक्तिशाली भूकंप की, जहां 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया है। इसने भारी तबाही मचाई। अब तक भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 111 तक पहुंच चुका है। करीब 87 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया के वेस्ट और सेंट्रल इलाके की कई इमारतें ढह गई हैं। पेरेरा, केली, मनीजालेस और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान है। इसे पिछले एक दशक में देश का सबसे बड़ा भूकंप दर्ज किया गया है।

0: कोलंबिया में मचा कोहराम। भूकंप के झटकों से कांपा साउथ अमेरिकी देश। ढाई कई इमारतें, मलबे में दबे लोग, कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह तबाही का मंजर लेकर आई। सुबह करीब 7:30 बजे कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद हर तरफ कोहराम मच गया। ये तस्वीर कोलंबिया के पेरेरा की है, जहां भूकंप के तेज झटकों से इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। एक और तस्वीर देखिए, ये पेरेरा के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां भूकंप के झटके आने के बाद टेबल के नीचे बैठकर अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। भूकंप से मचे हाहाकार की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज झटकों से एक अस्पताल की इमारत का ऊपरी हिस्सा गिर गया और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पश्चिमी कोलंबिया के साथ साथ सेंट्रल कोलंबिया में भी कई इमारतें ढह गईं। पेरेरा, कैली, मनीजाले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पाल्मार के पास था। भूकंप की गहराई 107 किलोमीटर थी। कोलंबिया की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान तेज करने को कहा है। कोलंबिया में आए इस भूकंप के झटके इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा तक महसूस किए गए हैं। इससे पहले वेनेजुएला में इसी साल जून में शक्तिशाली भूकंप आया था, जहां हजारों लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो
1: इस बुलेटिन में साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है। विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियों में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है। माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो। बीस जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस एक्शन हुआ तो ये मुद्दा संसद में सबसे बड़े गतिरोध की वजह बन गया। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा रहा। अब जब सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो चर्चा को तैयार है, तब भी तकरार थमती नहीं दिख रही। छात्रों के आंदोलन पर संसद में जबरदस्त सियासी शोर है। पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जब गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर बयान देंगे तो विपक्ष के हमले नहीं थमेंगे। यही वजह है कि एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि गृहमंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष को शांति से सुनना होगा। विपक्ष की रणनीति तैयार है, वहीं सरकार अमित शाह के जवाब से पलटवार की तैयारी में है, जो संसद में जल्द ही दिखाई दे सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं यदुवंशी हूं, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है,
1: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है। वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मजारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द-गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पेट्रोल की बढ़ती लागत और E20 पेट्रोल को लेकर बनी आशंकाओं के बीच कार खरीदारों की पसंद बदलती दिख रही है। जो लोग कल तक पेट्रोल गाड़ियों को पहली पसंद मानते थे, वो आज CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। नतीजा ये है कि भारतीय ऑटो बाजार में अल्टरनेट फ्यूल गाड़ियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सड़क पर उतर रही हैं, जिससे CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों की बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि जुलाई में कुल बिक्री में CNG, हाइब्रिड और EV गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 40.6% पर पहुंच गई। वहीं पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 41.7% पर आ गई। एक साल पहले दोनों के बीच करीब करीब 13% पॉइंट्स का अंतर था, जो अब महज 1% अंक पर आ गया है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट मानी जा रही है। साथ ही E20 पेट्रोल को लेकर भी ग्राहकों के बीच कई सवाल बने हुए हैं, जिससे CNG वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 24% पर पहुंच गई है। वहीं EV का हिस्सा भी बढ़कर करीब 8% हो गया है। उधर हाइब्रिड गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों और पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी के बीच का अंतर तेजी से घटा है। ऑटो डीलर्स का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर बाजार में काफी भ्रम है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत सामने नहीं आई है जिसमें E20 की वजह से गाड़ियों में दिक्कत साबित हुई हो। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव ऐसे समय में आ रहा है जब कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री भी मजबूत बनी हुई है। नई लॉन्चिंग और वैकल्पिक ईंधन वाले मॉडल्स की बढ़ती संख्या ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। डेटा के मुताबिक जुलाई में पैसेंजर व्हीकल रिटेल बिक्री में 19% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं CNG का सबसे बड़ा वैकल्पिक ईंधन सेगमेंट बना हुआ है। उधर EV और हाइब्रिड गाड़ियां भी तेजी से बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं और इससे ऑटो बाजार में ईंधन का समीकरण तेजी से बदल रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ग्राहकों का फोकस इंजन से ज्यादा रनिंग कॉस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी पर रहेगा। साफ है, भारतीय कार बाजार में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पेट्रोल गाड़ियां अभी नंबर 1 हैं, लेकिन CNG, हाइब्रिड और EV तेजी से उनके बराबरी की तरफ बढ़ रही हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो पेट्रोल गाड़ियों और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। आदित्य के राणा, आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

गृह मंत्री का जवाब सुनने का साहस दिखाएं राहुल गांधी, बीजेपी ने कहा सदन को अपनी सनक और उद्दंडता से बंधक बनाया। पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुनी छात्रों की गूंज, शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। मंगल विलन में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। संसद में शाह को पेश करने हैं दो बिल, गतिरोध के बीच थोड़ी देर में शुरू होगी कार्यवाही। पीएम और स्पीकर से मिले रिजिजू।

0: से मैदान तक मानसून का हाहाकारी दृश्य। चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बह गया पुल। राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई गाड़ियां। भोपाल में स्कूल बंद। विदिशा में बाढ़।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे तेरे छात्र वर्सेस मेरे छात्र, यही तो हो रहा है इस वक्त संसद में, क्योंकि संसद का गतिरोध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा स्थगित, राज्यसभा स्थगित, जमकर हंगामा किया जा रहा है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह कहां है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि जब अमित शाह बोलने को तैयार है तो फिर राहुल गांधी सदन में क्यों नहीं है। छात्रों को लेकर जमकर हंगामा है। दिल्ली में जो जंतर मंतर पर हुआ उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। गृह मंत्री की मांग, एक बार फिर से लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, आपको दिखाते हैं।
2: अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।
3: सेडिशन एंड पासिंग ऑफ द केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 आफ्टर इट इज कंसीडर्ड एंड पास्ड बाय लोकसभा 1.5 hours. Consideration and passing of the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha 3 hours.
2: Now the tribunal. ji.
4: Sir, आवाज बंद करो, sir, आवाज बंद करो, हंगामा बंद करो. Respected. Sir, I lay on the table of the House, papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Hangama band karo.
2: Band karo hangama. Item number 4, Mananiya Shri Ramnath Thakur ji.
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभापटल पर रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 5, माननीय श्री नित्यानंद राय जी।
6: महोदय, मैं आपकी पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 6, माननीय श्री BL वर्मा जी।
7: महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख प्रपत्र सभापटल पर रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 7, माननीय श्री सुरेश गोपी जी।
8: रेस्पेक्टेड सर, विद योर परमिशन आई राइज टू ले द पेपर्स ऑन द टेबल ऑफ द हाउस लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 6 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सर।
2: आइटम नंबर 7, माननीय श्री, आइटम नंबर 8, माननीय श्री बंडी संजय कुमार जी।
9: मैं आज की पुनर्शित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूं।
2: आइटम नंबर 9, माननीय श्री कमले।
0: और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सरकारी सूत्र बता रहे हैं सिर्फ बयान नहीं, मुद्दे पर चर्चा चाहती है सरकार। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या जानकारी यहाँ पर, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार?
10: जी बिल्कुल हिमांशु, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ स्टेटमेंट नहीं बल्कि पूरी चर्चा के पक्ष में है, और इसीलिए जो मुद्दे विपक्ष उठाएगा उन सभी मुद्दों पर न सिर्फ सरकार के मंत्री जवाब देंगे, बल्कि गृह मंत्री जब जवाब देंगे तो न सिर्फ जंतर मंतर में जो हुआ बल्कि झारखंड और उसके बाद पंजाब और जो अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में जो घटनाएं हुई है जिसमें छात्रों ने प्रदर्शन किया है, उस पर भी सरकार अपना मत आगे रखना चाहती है। सरकार का ये मानना है कि गृह मंत्री का स्टेटमेंट तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगा, अगर चर्चा होनी है तो पूरी तरह से चर्चा हो जिसमें न सिर्फ जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ बल्कि इसके अलावा झारखंड और अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों के अलग अलग कोनों में जो धरना प्रदर्शन हुए उन सभी पर सरकार अपना मत रखना चाहती है।
0: लेकिन पीयूष, एक बात बताइए, अभी तक विपक्ष का इस पर क्या रवैया रहा है, क्योंकि सत्ता पक्षी सांसद कह रहे हैं कि अमित शाह बोलने को तैयार है लेकिन राहुल गांधी तो गायब है, तो कब ये चर्चा संभव है?
10: देखिए, अगर चर्चा की संभावना की बात करें तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं

0: बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं दिख रही है। उसका कारण ये कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा चालू होती है उस वक्त हम लगातार हंगामा होते हुए देखते हैं विपक्ष की तरफ से, और वो लगातार मांग करते हैं कि
1: देखिए ये हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हंगामा लगातार जारी है। शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई की ओर।
2: उसी वक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां, 38वां, 39वां, 40वां और 41वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।
3: आइटम नंबर 14, माननीय श्री पीसी मोहन जी, माननीय श्री भास्कर मगरे जी, हाँ जी आप बोलिए, भास्कर मगरे जी आप बोलिए माइक प्लीज।
4: रिस्पेक्टेड सर, आई राइज टू ले फाइनल एक्शन टेकन स्टेटमेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2025-26 एज लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 14 इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू।
3: आइटम नंबर 15, माननीय श्रीमती जून मालिया जी।
5: सर, आई राइज टू ले 392nd रिपोर्ट ऑन एनेबलिंग इंक्लूसिव डिजिटल एंड सस्टेनेबल बस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी रेगुलेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर नेक्स्ट जेन मोबिलिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you, sir.
3: Item number.
1: कार्य वो बड़ी खबर आपको बता दे, FCRA बिल को लेकर ये बड़ी खबर है और विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है, यानी कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि FCRA बिल सरकार वापस ले, ये कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। देखिए हंगामा लगातार जारी है, अब TMC ने भी बिल वापस लेने की मांग की है। FCRA बिल वापस लेने की मांग पर विपक्ष भी अड़ा हुआ है, इसमें कांग्रेस भी है, TMC भी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से ये मांग की गई है कि FCRA बिल सरकार को वापस लेना चाहिए।
2: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की तीसरी एवं सातवीं रिपोर्ट में अंतर्निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति जो वक्तव्य में दर्शाई गई है सदन के पटल पर रखता हूँ।
3: आइटम नंबर 17, माननीय श्री कमलेश पासवान जी।
6: महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 17 पर लिखित ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2026-27 पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।
3: आइटम नंबर 18, माननीय श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी।
7: Respected Speaker sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a statement pertaining to Ministry of
1: गतिरोध बरकरार है, ये आपने देख लिया। पीयूष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में, सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या हो क्या रहा है, मतलब ये मेरे छात्र वो तुम्हारे छात्र और इसको लेकर हंगामा जारी है, किस बात को लेकर इतना हंगामा है?
8: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, मेरे छात्र वर्सेस तुम्हारे छात्र, और यही कहने का आज सुबह भी संसद के बाहर दिखा, क्योंकि जब एनडीए के सांसद आज मार्च करते हुए निकले तो उन्होंने झारखंड में जो हिंसा हुई छात्रों के खिलाफ वो मुद्दा उठाया, वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज है छात्रों को, उस छात्रों के ऊपर उस मुद्दे को लगातार पिछले एक से डेढ़ हफ्ते से लगातार उठा रही है, और इसी वजह से संसद नहीं चल पा रही है। आज सुबह जब प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट मकर द्वार के बाहर देखा गया तो संसद अंदर भी यही चीज देखा गया, जहां पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और मांग करता रहा कि गृहमंत्री हमेशा सदन में आए जवाब दे, लेकिन अब जो सरकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है हिमांशु, उसके तहत ये चीज साफ हो गई है कि सरकार सिर्फ गृहमंत्री के एक स्टेटमेंट कराने के पक्ष में नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है कि इस पूरे मुद्दे पर डिटेल डिस्कशन हो, यानी पूरी प्रॉपर चर्चा हो इसके अंदर, और हर मुद्दे पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, गृहमंत्री उसमें खुद जवाब देंगे, जो भी प्रश्न विपक्ष के द्वारा पूछा जाएगा, उसका जवाब गृह मंत्री देंगे, ये साफ साफ आश्वासन।
9: पीयूष, यही तो बात आम जनता नहीं समझ पा रही है कि जब दोनों ही तरफ से तैयारी है तो फिर बात कहां पर अटकी हुई है। अच्छा पीयूष, ये और बताइए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है FCRA, अब कांग्रेस और टीएमसी कह रही है कि इस बिल को वापस लेना चाहिए सरकार को, इसको लेकर अभी कैसा हंगामा हो रहा है और क्या बात सामने आ रही है?
8: जी देखिए, आज राज्यसभा की BAC यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। इस कमेटी मीटिंग के अंदर जो आगे आने वाले बिल हैं सरकार जो लेकर आ रही है उसके बारे में सरकार ने बताया कि ये बिल्स जो हैं हम लेकर आने वाले हैं। और उसी बैठक में जब FCRA को लेकर चर्चा हुई तो फिर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो इस बिल के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, सरकार को इसको बिल्कुल विड्रॉ कर लेना चाहिए। हालांकि कुछ ये मांग भी उठाई कुछ सांसदों ने कि इसको JPC में भेज देना चाहिए।
9: और यही हंगामा चला रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, वो दो तस्वीरें देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि आखिर क्यों हंगामा है। अब देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ में जो हुआ। अब विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह कहाँ है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि अमित शाह तो बोलने को तैयार है लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं है। और इसी के चलते हुए ये गतिरोध अभी तक चला आ रहा है, हंगामा दोनों तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए, संसद के बाहर कैसे हंगामा हुआ ये आपने देखा। अब कांग्रेस कैसे निशाना साध रही है अमित शाह को लेकर, वो पवन खेड़ा के बयान आपको सुनवाते हैं।
10: सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ। सब भागेंगे, रुको तो भैया, सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए। ये RSS के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये RSS के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। अब ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। आप, हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं।
11: पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के MP प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दे।
12: गृह मंत्री जवाब तैयार हैं राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब देने के लिए, वो सुनने तो आए, बहस होने तो दें और गृह मंत्री को सुने। अभी जो हमारा प्रोटेस्ट है कि दिल्ली में इतना हंगामा करते हैं राहुल गांधी, झारखंड में क्या हो गया, वहां बच्चों पर लाठी नहीं चल रही है क्या, आंसू गश्त नहीं चल रहा है क्या, क्या मतलब है? उनकी सरकार तो कंधों पर है, कांग्रेस के हेमंत सोरेन की सरकार, तो वहां कुछ नहीं बोलेंगे। तो यह है राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड। अगर शुद्ध भाषा में कहूं तो राहुल गांधी हिपोक्रेट है।
13: जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे तीन मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। 15-20 दिन हो गया, सॉरी 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं।
14: मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो, उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब
9: लिए चलते हैं। वो आपको संसद किरण रिजिजू अपनी बात रख रहे हैं।
15: आइटम नंबर 21, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी।
16: माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 पर विचार किया जाए।
15: प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य श्री,
9: तो संसद का हंगामा आप देख रहे हैं और एक दूसरे पर निशाने यहाँ पर साधे जा रहे हैं। कई बयान सामने आए हैं, वो सुनाते हैं आपको।
17: राहुल गांधी जी वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, राहुल गांधी जी वहाँ होम मिनिस्टर नहीं है। दिल्ली में क्या हुआ है उसका होम मिनिस्टर अमित शाह जिम्मेदार है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री दिल्ली में, दिल्ली पुलिस उनका अंदर हाथ में, उनका माफी मांगने के लिए और जवाबदारी की। 14 दिन हो गया पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, दिन से अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से।
18: दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए।
19: दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां RTI फाइल हुए वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी। और उसी के साथ सरकार ने कहा था कि आप कोई भी बच्चों पे FIR नहीं करेंगे, तो आप 0 FIR कैसे फाइल करते हैं 15 साल की बच्ची पे 25 साल की उम्र दिखाकर। तो ये सब चीजें हैं, और चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए।
20: उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे।
21: जो कुछ सदन में इस सत्र में घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते।
9: और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार चर्चा को तैयार है। ये खबर आ रही है, विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। विपक्ष घेराव कर रहा था मकर द्वार पर, तो आप देख ही रहे होंगे ना मकर द्वार पर किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। अब चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी मकर द्वार पर। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, विपक्ष लगातार घेराव कर रहा था मकर द्वार पर, हम देख रहे थे, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि सरकार तैयार है बातचीत को, चर्चा को।
0: देखिए बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो इंडिकेशन मिले हैं वो ये हैं कि पहले जो है छात्रों के जो आंदोलन है उसके ऊपर चर्चा हो जाए, और उसके बाद सरकार जो है राम मंदिर पे भी चर्चा के लिए तैयार है। इस तरीके की बातचीत जो है सरकार की तरफ से कही जा रही है, यानी कि सरकार अब हर चर्चा के लिए तैयार होगी। विपक्ष की मांग है, अब देखना यह है कि विपक्ष का छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार होगा पहले, क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरे छात्र आंदोलन पर जो है वो चर्चा हो जाए नियमों के तहत, और उसके बाद गृह मंत्री जो है वो जवाब दें, और उसके बाद अगर विपक्ष की मांग होती है राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर तो उस पर भी सरकार जो है वो चर्चा के लिए तैयार है।
9: अब बिल्कुल, और यहाँ पर चर्चा की बात की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ हिमांशु जुड़ने के लिए। तो देखिए, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था। मकर द्वार पर आपको याद होगा दानपेटी को लेकर एक दानपेटी बनाई थी, पप्पू यादव भी आए थे, राहुल गांधी भी उसमें शामिल हुए थे, डिंपल भी उसमें, अखिलेश भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन ये तो हम सब सुन रहे हैं कि सत्ता पक्ष तैयार है, विपक्ष तैयार है, चर्चा को तैयार है, लेकिन चर्चा हो कहां रही है? आम लोग यही तो जानना चाह रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एफसीआरए बिल को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, एफसीआरए बिल को लेकर टीएमसी ने भी बिल वापस लेने की मांग की है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से बिल वापस लेने की मांग की जा रही है। अब डीएमके बीजेडी ने भी जेपीसी में भेजने की मांग की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी भेजने की मांग की गई है। एफसीआरए बिल को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की से मांग की जा रही है। और यहां वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
3: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: years of finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक. देखते रहिए आज तक.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा।
4: पहाड़ों पर मॉनसून ने कैसा हाहाकार मचाया है उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। शोर करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी मार से लोहे का बड़ा पुल बहता चला जाता है। दिल दहला देने वाला ये मंजर उत्तराखंड के जोशीमठ का है, जहां एक दिन पहले तमक नाले के पास आए फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। तस्वीरें देखिए, तबाही किस तरह आई, देखिए किस तरह पानी तेज रफ्तार से आ रहा है। सामने एक छोटा ट्रक और जेसीबी है। पानी को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगा। पानी की मार को लोहे का पुल भी नहीं सह पाया और सैलाब में बह गया। उत्तराखंड के कई जिलों में मॉनसून तेवर दिखा रहा है। नैनीताल से चमोली तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 13 अगस्त तक राहत के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

गृह मंत्री का जवाब सुनने का साहस दिखाए राहुल गांधी, बीजेपी ने कहा सदन को अपनी सनक और दंडता से बंधक बनाया, पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुनी छात्रों की गूंज, शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। मंगल मिलन में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा, संसद में पेश हुआ केरल का नाम बदलने और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन बिल, हंगामे के बीच आया विधेयक। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर, सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी का प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ता हिरासत में, महिला प्रदर्शनकारी बेहोश, मांगे पूरी होने तक आंदोलन करेंगे छात्र। आज से शुरू हुई राम मंदिर के नए सीईओ की खोज, फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए 18 दावेदार, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन तक करेगी साक्षात्कार। और पहाड़ से मैदान तक मानसून का हाहाकारी दृश्य, चमोली में आए फ्लैश फ्लड से बहा पुल, राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई कई गाड़ियां, भोपाल में स्कूल बंद, विदिशा में बाढ़।

0: तो देखिए, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि झारखंड के रांची में जो जमकर हंगामा हुआ, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। विधानसभा मार्च की कल तैयारी थी, विधानसभा का मार्च होता है और उसके बाद होता है लाठीचार्ज, कई छात्र घायल होते हैं, जमकर हंगामा होता है। अब उसके बाद क्या होता है, मार्च में लाठियां बरसाई जाती हैं, हिरासत में एबीवीपी के कार्यकर्ता लिए जाते। कल जो हुआ उसको लेकर आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, एक बार फिर से मार्च निकाला जा रहा था, निकलता भी है, छात्र एकजुट भी होते हैं, लेकिन आज कई सारे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है। बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया था और उसके बाद जमकर हंगामा होता है। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे जो लोग थे वो बेहोश हो गए, एक तो गर्मी, उमस और उसके ऊपर से प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और फिर पुलिस का लाठीचार्ज।
1: आप थोड़ा तस्वीरें भी देखिए, देखिए ये जो एबीवीपी के वर्कर्स हैं उनको यहाँ अब बस में भर करके यहाँ से पुलिस आगे ले जाना चाह रही है, लेकिन चूंकि बस के बाहर जो सामने रास्ता है वहाँ पर भी छात्र बैठ गए हैं, संगठन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसके लोग बैठ गए हैं, तो मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए। लेकिन हर तरफ आपको दिखाते हैं, देखिए पुलिस बल की कितनी मौजूदगी है यहाँ पे, थोड़ा नजर डालिए, देखिए एक एक पुलिस के जवान चार चार लाठियां लेकर के खड़े हैं, एक लाठी एक हाथ में, ये चार लाठियां एक साथ किस पर मतलब चलाएंगे, चार लाठी
2: पे नहीं चलाना,
1: चार लाठी क्यों लेकर, ये देखिए चार लाठी, अब देखिए तीन लाठी, एक एक पुलिस के जवान दो दो तीन तीन लाठियां लेकर के खड़े हैं। अब ये लाठियां कहां चटकेगी, कहां इसका इस्तेमाल होगा, देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो आगे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखिए जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वर्कर्स हैं उनको एक एक करके पुलिस की जो वैन है उसमें डाला जा रहा है और ये यहां से इनको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ से थोड़ा बातचीत करने के प्रयास करते हैं, क्या कुछ छात्रों से बात हो पाती है, हमारी जो एबीवीपी के लोग हैं उनसे बातचीत हो पाती है, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये छात्र हैं यहाँ पे, अंदर की तस्वीरें क्या है, देखिए देखिए अंदर अंदर देखिए, गाड़ी के अंदर भी धक्का मुक्की हो रही है, छात्रों के साथ गाड़ी के अंदर भी धक्का मुक्की।
3: ये हेमंत सोरेन जी के पूरा गुंडागर्दी चल रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे कुछ ही कार्यकर्ताओं से इनको डर, पेट में खुजली का दर्द होने लगा है। चोर सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड
1: हो रहा है, अंदर क्या, अंदर क्यों धक्का मुक्की।
4: आज जिस तरह झारखंड सरकार के द्वारा विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अब मार्च स्टार्ट किए थे उससे पूर्व उनको अरेस्ट कर लिया गया, मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे सरकार पे।
5: हेमंत सोरेन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो झारखंड में सीट बेचना बंद करे और युवाओं के साथ खेलवाड़ करना बंद करे।
6: लोगों को डिटेन किया जा रहा, हम लोग कौन सा देश विरोधी काम किए, ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना तलवार है, ना पुलिस प्रशासन का जबरन किया गया, एक एक व्यक्ति को दस दस लोग मिल मिल करके उठाया है। हेमंत सोरेन की वर्दी में, सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं, ये गुंडे,
7: ये गुंडी, ये गुंडा सरकार कैसे कल लाठियों पर बरसाई विद्यार्थियों को, आज अपने कानून को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, दमनकारी नीतियों के साथ बरकरार कर रही है।
8: आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है तो झारखंड के विद्यार्थियों की कृपा से है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने झारखंड का पूरे विद्यार्थियों का भविष्य बेच दिया और बेचने के बाद जब विरोध कर रहे हैं तो हम लोग को यह मिल रहा है।
9: ये सरकार के खिलाफ है, ये सरकार के नीतियों के विरोध में ये काला झंडा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार की ना तो नीति ठीक है और ना ही नियत ठीक है, नियत भी ठीक रहेगी तभी जाकर नीति सही बनेगी।
0: तो देख रहे, जमकर प्रदर्शन, जमकर हंगामा हुआ, कल जो हुआ लाठीचार्ज, अब उसके विरोध में आज बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया, एबीवीपी की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया और मार्च निकाला गया। जब एबीवीपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे तो आज भी लाठीचार्ज हुआ, अब इस दौरान महिला कार्यकर्ता भी यहां पर घायल हुए हैं और हमारे सहयोगी शशि भूषण उस वक्त वहां पर मौजूद थे।
1: मतलब ये कहाँ से आई हैं, आप लोग के संगठन से जुड़ी?
10: मांडर से आई हुई है और ये हमारी छोटी बहन है।
1: आपकी बहन है?
10: हम लोग मांग के लिए अपने आए हैं, जैसे सी और जेपीसी सीजीएल जो पेपर लीक हुए पूरा झारखंड में, हम लोग आज 17-18 दिन होने चला है लेकिन सरकार के कान में तक जू तक नहीं रेंगती है। क्या हम लोग झारखंडी नहीं है? क्या हम लोग झारखंडी युवा नहीं है? क्या झारखंड की बेटी नहीं है? झारखंड के बेटा नहीं है?
1: क्या नाम है आपकी बहन का? कहाँ पढ़ाई करती है? क्या तैयारी कर रही है?
10: बताइए थोड़ा, बताइए।
11: मेरा नाम रोशनी कुमारी है, हम पुलिस का फॉर्म भरे थे, मेरा 2024 में मेरा रिजल्ट हो गया है और हम लोग मांडर का पढ़ाए, मांडर में, मांडर गाँव, मेरा मांडर का पढ़ाई पढ़ाई की हम
2: तो आज किस लिए आई थी? सरकार से मांग करने के
11: लिए? अपना हक मांगने आए हैं। 2500 दे को तो बर्बाद कर दिया है सरकार। हम लोग को स्कॉलरशिप जाना चाहिए, लड़की लोग को स्कॉलरशिप तो दे ही नहीं रहा। 2500 दे को महान बना दे रहा है। 25 हम लोग को स्कॉलरशिप दीजिए, उतना हक है तो हम लोग स्कॉलरशिप दीजिए। मेरे माँ बाप एक रोटी का वक्त कमाता है तो खाते है, नहीं कमाता तो एक रात भूखे रहते हैं। उसके लिए तो कुछ कीजिए। नहीं 2500 दे दिया, जे करना है से करो। हम लोग को स्कॉलरशिप चाहिए और स्कॉलरशिप के अलावा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को।
2: नौकरी चाहिए, नौकरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अभी ऐसी स्थिति, तबीयत इनकी ठीक नहीं है, तो आप हॉस्पिटल ले जाएंगे इनको? मतलब आप
10: ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। अभी इनका थोड़ा सा, अभी जस्ट अभी आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट पहले अभी प्रशासन के थ्रू इधर लाया गया ताकि पानी वानी अभी थोड़ा पिलाए गए दीदी को।
0: तो अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो देख लिया। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा प्रदर्शन शुरुआत से लेकर अभी तक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सत्यजीत जी बताइए कि अब क्या हो रहा है, अब छात्रों की रणनीति आगे की क्या है?
12: देखिए वहां पे जो है प्रोटेस्ट, जो एबीवीपी मार्च निकालना चाहता था, पुराना असेंबली जो है वहां असेंबल किया था, सभी गैदर किया था, लेकिन तभी भारी पुलिस बल जो है उसका प्रयोग किया गया। वो वहां आ जाते हैं और मार्च नहीं करने देते हैं। कल उन्हें पता था जिस तरह से एजिटेशन हुआ, तो आज जो है वो मार्च नहीं निकालने दिया गया, लेकिन भारी मशक्कत करनी पड़ी। बस में लोड किया गया तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उसके बाद वो बस के आगे सो जाते हैं, पीछे भी कार्यकर्ता चले जाते हैं, जबरदस्त नारेबाजी हुई और पुलिस फोर्स बुलाया जाता है। उसके बाद जो है किसी तरह से भारी मशक्कत के बाद उन्हें होटवार खेलगांव के स्टेडियम में रखा जाएगा, डिटेन किया गया है। और अब आगे की रणनीति क्या होगी इस पर जो है स्टूडेंट भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी ये मना किया था कि CGL एग्जाम्स जो है JSSC द्वारा आयोजित, उसको वो सीधे तौर पर रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरवेंशन था हाईकोर्ट का, क्योंकि जब रिजल्ट निकला था तो नियुक्ति ना हो उस पर, उसको लेकर जो है स्टूडेंट्स चले गए थे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने साक्ष मांगा था, PIL जो है बाद में सरकार के फेवर में आया कि आप नियुक्ति कर सकते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को डेटो किया। तो ऐसे सूरत में उसमें आखिर सरकार कैसे इंटरवीन करेगी, इस पर असमर्थता जताई सरकार ने।
0: लेकिन फिर भी एक रास्ता यहां पर निकालना होगा, क्योंकि बहुत लंबा यह किस्सा जा रहा है। प्रदर्शन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं तो रांची में 18 दिन हो चुके हैं और कल तो जो हुआ वो सभी ने देखा, जमकर लाठीचार्ज हुआ। जब अपने हक की बात कहने के लिए छात्र विधानसभा का मार्च कर रहे थे, जोरदार लाठीचार्ज उस वक्त हुआ। जब लाठीचार्ज हुआ तो बताया जा रहा है 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घायल हुए। अब जब घायल हुए हैं तो वहां पर हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी मौजूद थे, जो शुरुआत से लेकर अभी तक एक एक तस्वीर आपको इस आंदोलन से जुड़ी दिखा रहे हैं। घायलों से उन्होंने बातचीत की, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
13: किसी का कंधा टूटा,
14: दौड़ा दौड़ा के मारा गया, निर्दय हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया।
13: किसी की टांगे टूटी, किसी की पीठ पर लाठी।
14: ना लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा। रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा।
13: किसी के हाथ पर चोट,
14: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़की सबको।
13: एक दो तीन चार पाँच गिनती गिनते चले जाइए, इनके जख्मों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। कल रांची में सत्ता तंत्र ने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ जगह बदलती है, फितरत नहीं बदलती। चाहे दिल्ली हो या रांची, विरोध की बुलंद आवाज किसी भी सरकार को मंजूर नहीं। कल रांची में जो कुछ हुआ वो कितना भयावह और क्रूर था, ये इन छात्रों की आप बीती सुनकर हैरान हो जाएंगे।
14: लाठियों से मारा, लाठियों से पूरा दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, पुलिस लग रहा था कि हम लोग आतंकवादी हैं।
15: कोई हिंसा नहीं हुई है, फिर बाद में जब जनसंख्या बल कम हो गया उसके बाद दौड़ा दौड़ा के मारे। अस्त्रों
16: गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ये देखिए अस्त्रों गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
13: दाद दीजिए इन छात्रों की दिलेरी को, घायल जरूर हुए हैं लेकिन ज्यादा घातक बनकर सरकार के सामने फिर से खड़े हैं। इन्होंने जख्म जरूर खाए हैं लेकिन हौसले को पस्त नहीं होने दिया। आज तक संवाददाता आशुतोष जब इन छात्रों के बीच पहुंचे तो 18 दिन बाद भी वही हिम्मत वही दिलेरी नजर आई।
17: बड़ी संख्या में छात्रों का आंदोलन, 17 दिन भले बीत गए लेकिन अभी आंदोलन जारी है। देखिए ये लोग अपने निशान दिखा रहे हैं शरीर पर, ये देखिए ये लाठी डंडो, ये लाल दिखाई दे रहा है, ये लाठी डंडो के निशान है। मोबाइल टूट गया है, यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ निशान दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह से पैरों पर ये निशान है। और इसी के बाद आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने जब शाम को लाठीचार्ज किया है तो किस तरह कार्यवाही की है और उसके बाद छात्रों को काफी ज्यादा चोट आई है। इसी के साथ कई और छात्र हैं और ऐसा नहीं कि 17 दिन बाद आंदोलन खत्म हो गया, अब छात्र टिक गए हैं कि जेएसएससी सीजीएल या तो विड्रॉ होगा नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा।
13: कल दिन भर इन छात्रों ने झारखंड की सरकार को एक पांव पर खड़े रहने को मजबूर कर दिया। विधानसभा घेराव के इनके इरादे के आगे झारखंड पुलिस परास्त तो होती नजर आई। छात्र तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए लेकिन जब शाम हुई, अंधेरा ढला तो झारखंड की पुलिस ने अपना असली चरित्र दिखाया।
18: सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। अभी अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच जाएंगे।
13: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अंधेर कर दी की है, छात्रों पर जुल्म ढाए हैं, क्रूरता दिखाई है, अंधेरे में लाठियां चलाई गईं ताकि दुनिया से ज्यादती छिपाई जा सके लेकिन छात्रों ने कदम पीछे नहीं खींचे, वो मोर्चे पर डटे हैं बुलंद इरादों के साथ। आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: अब देखिए झारखंड के रांची में ये सब हो रहा है और झारखंड में विपक्ष में कौन, बीजेपी, तो बीजेपी को हमलावर होना था। रक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी के सांसद है रांची से संजय सेठ, वो निशाना साध रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार पर, सुनिए।
19: जो सिचुएशन हमने देखा कल, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए, क्या देख रहे हैं सर आप इस सिचुएशन?
20: देखो कल हेमंत सरकार ने जो बर्बरता दिखाई, जो दमनात्मक कार्रवाई की, दिन में तो की, लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन किया, टीयर गैस किया, रात को 8:30-9 बजे उस समय लाठी चार्ज किया, हमारी बेटियों गंदी गंदी गालियां दी गई और हद तो तब हो गई जब रक्त बहा। मुख्यमंत्री जी इतना कोई संवेदनहीन हो सकता है कोई मुख्यमंत्री? क्या आप बच्चों से एक्सक्यूज करने के बदले, अस्पताल जाने के बदले आप झारखंड की पुलिस को और रांची जिला प्रशासन को शाबाशी दे रहे हो कि आपने बहुत धैर्य से, बहुत शांति से पूरे मार्च को निपटा दिया? हद हो गए मुख्यमंत्री जी, झारखंड के बच्चों का खून बहा है, बेटियों का खून बहा है, जरा तो पीड़ा दिखा देते, जरा तो संवेदना कर देते, नहीं करोगे ना? और यहाँ बैठे राहुल गांधी एंड कंपनी, एक ट्वीट से हो लिया, जाओ राहुल गांधी जी रांची जाओ, सैकड़ों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, कौन उनका देखने जाएगा, कौन एक्सक्यूज कर लेगा, कौन माफी मांगेगा उनसे? आप राजनीति करते हो लेकिन देश की जनता आपको देखती है।
0: तो देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष भी अब सोरेन सरकार को लगातार घेर रही है और सड़क तक अब वो हम प्रदर्शन आंदोलन देख ही रहे हैं। अब राहुल गांधी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं इस कायर जो कार्रवाई की गई है छात्रों पर उसको लेकर।
21: झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, we do not recommend it, we do not support it, we are very clear, koi confusion nahi hamare mind mein, to peaceful jab tak protest ho raha hai, kab us protest ko hinsa se attack karna uske khilaf hai।
0: तो जो भी हुआ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जमकर हंगामा हुआ, रात के वक्त पर हुआ जो बताया जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस और जेएमएम में विरोध अब देखा जा रहा है। महुआ मांझी का बयान आपको सुनवाते हैं।
2: झारखंड में कल छात्रों का महाआंदोलन हुआ तो आज संसद में मकर द्वार पे प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हमारे साथ हैं महुआ मांझी। मैम, आप लोग बीते दो हफ्ते से कम से कम गृहमंत्री के स्टेटमेंट की मांग करते हुए सदन नहीं चलने दे रहे हैं, गतिरोध चल रहा है। इसको बहुत लोग अब हिपोक्रेसी बोलेंगे कि आप यहाँ लाठीचार्ज पे बयान मांग रहे हैं, वहाँ झारखंड में आपकी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है।
3: देखिए, सबसे बड़ी बात कि झारखंड और दिल्ली की तो तुलना ही नहीं हो सकती। दिल्ली में जब पार्लियामेंट हाउस की तरफ छात्र बढ़े थे तो वहां पे आपने उन पर लाठियां भी चलाई, पैलेट गन भी छोड़े, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े। झारखंड में आपको पता होगा कल जब छात्र आगे बढ़ रहे थे विधानसभा की तरफ, 8 बैरिकेड उन्होंने तोड़ा एक के बाद एक। 8 बैरिकेड को तोड़ने के बाद भी सरकार उन पर बल प्रयोग नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि छात्रों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो। और दूसरी बात कि यहाँ पे 25-30-35 दिन तक सरकार उनसे बात भी नहीं हुई। हमारे यहाँ लगातार बातचीत हो रही है, मंत्रिमंडल में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के मंत्री शामिल हैं, तीनों पार्टी के लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनकी 98% मांग मान ली गई है सरकार द्वारा।
0: और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वहीं डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: बात कोलंबिया की करेंगे। कोलंबिया में एक शक्तिशाली भूकंप आया है जिसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 मापी गई है। यह बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीबन 700 ऐसे लोग हैं जो इस भूकंप की वजह से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 32 ऐसे शहर हैं कोलंबिया में जहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में बहुत से शहरों में भारी नुकसान की खबर आ रही है। इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और जो बाहरी देश हैं उनकी तरफ से भी सहायता भेजी गई है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

गृहमंत्री का जवाब सुनने का साहस दिखाए राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा सदन को अपनी सनक और उदंडता से बंधक बनाया। पूछा झारखंड क्यों नहीं, वहां पर सुने छात्रों की गूंज। शाह के जवाब पर अड़ी है कांग्रेस। मंगल मिलन में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सभी एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। हंगामे के बीच लाया गया केरल का नाम बदलने और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन बिल। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर। सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी का प्रदर्शन। एबीवीपी कार्यकर्ता हिरासत में, महिला प्रदर्शनकारी बेहोश। मांगे पूरे होने तक आंदोलन करेंगे छात्र। आज से शुरू हुई राम मंदिर के नए सीईओ की खोज। फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए 18 दावेदार, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिनों तक करेगी साक्षात्कार। और पहाड़ से मैदान तक मानसून का हाहाकारी दृश्य। चमोली में फ्लैश फ्लड से बहा पुल। राजगढ़ में उपनते नाले में समाई गाड़ियां। भोपाल में स्कूल बंद तो विदिशा में बाढ़।

0: का स्वागत है आपका, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अब शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: छात्रों के मुद्दे पर अब बीजेपी के निशाने पर है विपक्ष। एनडीए सांसदों के हाथ में राहुल को चर्चा के चैलेंज वाले पोस्टर्स दिखे। छात्रों के समर्थन में एनडीए सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी के पोस्टर पर लिखा चर्चा से राहुल गांधी ना भागे। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से मांगा जवाब, पूछा कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी और सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा। अमित शाह और नितिन नवीन भी रहे मौजूद। एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराकर एकजुटता का दिया संदेश, साथ ही वंदे मातरम के नारे लगे। संसद परिसर में बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को घेरा, कहा कि झारखंड क्यों नहीं गए। लोकसभा में आज फिर से विपक्ष ने किया हंगामा, कार्यवाही स्थगित की गई। स्पीकर ओम बिरला

पर तो बहस होनी चाहिए। संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का हमला, बोले कि सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जा रहा। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं गृहमंत्री जी सदन में आकर हर विषय पर उत्तर देने के लिए तैयार हैं, आप भागिए मत। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राज्य के छात्रों की गूंज राहुल जी को सुनाई नहीं दे रही। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक। रांची में एबीवीपी छात्रों को हिरासत में लेने में पुलिस नाकाम, सड़क पर ही सोकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। चंद्रशेखर आजाद का झारखंड में छात्रों के आंदोलन का समर्थन, कहा कि हम संसद सत्र खत्म होने के बाद रांची जाऊंगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी गलत। झारखंड में छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का राज्यव्यापी बंद आज। आज झारखंड बंद के आह्वान का असर भी दिखा, रांची में कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बुलडोजर लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम हेमंत सोरेन का खुला पत्र, मांगों पर कार्रवाई का भरोसा, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी बनाने का दावा। झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग पर राहुल गांधी ने इसे बताया गलत, सरकार से छात्रों की बात सुनकर तत्काल समाधान की अपील। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो का सरकार पर हमला, बोले कि अब सरकार से बात नहीं करेंगे। देवेंद्र महतो का सरकार पर आरोप, बोले सरकार हमारी आवाज को चलना चाहती है, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिबके ने समर्थन जताया, छात्र नेता देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बात। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल किंग्याते गिरफ्तार, और ब्लैकलिस्ट कंपनी को परीक्षा का जिम्मा देने का आरोप है। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर ईडी का शिकंजा, आर्थिक लेनदेन की भी जांच होगी। एफसीआरए बिल को जेपीएससी में भेज सकती है सरकार, कांग्रेस और टीएमसी ने वापस लेने की मांग की। सिम शुभेंदु अधिकारी ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी में उनकी लैंडिंग हुई और खराब मौसम के कारण मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में विमान को उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्तों तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी है, कहा कि हर किसी को मेडिकल केयर चुनने का अधिकार है। तमिलनाडु विधानसभा में नीट खत्म करने के प्रस्ताव पर डीएमके ने दिया समर्थन, सर्वसम्मति की मांग। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी को बताया दिखावा, जेपीएससी जेएसएससी में सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस जेएमएम पर हमला, बाबूलाल मरांडी ने कहा झारखंड में नौकरियां बीच दी गई, छात्रों की लड़ाई को उन्होंने अगस्त क्रांति बताया। यूपी विधानसभा 2027 को लेकर बीजेपी ने कमजोर प्रदर्शन वाले सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ मंडल के 18 जिलों में फोकस बढ़ाया। बीजेपी पार्टी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर कमजोर बूथों, जातीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों पर खास रणनीति तैयार कर रही है। बंगाल एसआईआर ट्रिब्यूनल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस सप्ताह से सुनवाई हुई तो फिर अगला चुनाव आ जाएगा। यूपी कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी, निष्क्रिय जिला अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। यूपी कांग्रेस में संगठन सृजन की नहीं बात, सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। यूपी की सियासत में आकाश आनंद की वापसी, पुराने तेवर में सियासी अंदाज दिखाई दिया। 2 साल बाद यूपी में आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की तैयारियां, दलित जेन जी गठजोड़ पर बहुजन समाज पार्टी की नजर। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद ने कहा कि सीएम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा बहुत पसंद है, लेकिन सच्चाई यह कि यूपी में पुलिस वर्दी की आड़ में गुंडा राज चल रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी में अग्निवीर भर्ती पर बड़ा स्केड्यूल, मेरठ से शुरू होगी भर्ती रैलियां, बरेली, लखनऊ, कानपुर और अयोध्या में भी आयोजन। मेरठ में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली, बरेली में 14 से 30 सितंबर तो लखनऊ में 11 से 28 जनवरी तक भर्ती। अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप और विपक्ष पर अतीक हमला, बोले कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर निष्पक्ष जांच जारी है। अतीक के बेटे अली के काफिले पर कार्रवाई, फतेहपुर के 2 टोल प्लाजा पर 11 वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राम मंदिर में सीओ पद के लिए इंटरव्यू शुरू, 18 चयनित आवेदक पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन। सीओ भर्ती प्रक्रिया पर जल्द ही फैसला, सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी ले रही है इंटरव्यू। दो दिन तक चलेगा सीओ पद का इंटरव्यू, कमेटी 3 आवेदक का नाम चयन करके ट्रस्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक नए सीओ के नाम पर आधिकारिक घोषणा 2 सितंबर को।

0: बरामद चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 गिरफ्तारियों को जो है लोगों को राहत नहीं है, अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है 22 अगस्त तक। आरोपियों की हिरासत के खिलाफ बचाव पक्ष की अर्जी 12 अगस्त को धाराओं पर अदालत में सुनवाई। दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही, रुक रुक कर हो रही है बारिश, इस बीच में कई जगहों पर पानी भी भरा, ट्रैफिक रफ्तार भी थी। राजस्थान के झालावाड़ में मूसलाधार बारिश, टापू में तब्दील हुआ सरकारी स्कूल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बच्चों का रेस्क्यू करती दिखी। महाराष्ट्र के ठाणे में जोरदार बारिश के चलते नदी नालों में उफान, जलाशय झीले पानी से लबालब। हिमाचल के कुल्लू में चलते गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से गिरा मलबा, बड़े बड़े पत्थर और गाड़ी दब गई, दुर्घटना में 2 लोग घायल। चमोली में वैली ब्रिज बहने से एनडीआरएफ अब लापता युवक को खोजने में जुटी है, राहत बचाव में जुटा है प्रशासन। हिमाचल में मौसम का कहर, बाढ़ भूस्खलन से अब तक 157 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा सड़कें बंद, बिजली पानी की व्यवस्था प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान भी जताया। हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, हाईवे और वैकल्पिक मार्ग प्रभावित हुए। दार्जिलिंग में तेज बारिश के चलते जोर बंगलो पेशोक रोड पर 25% हिस्सा बह गया, धीमी पड़ी ट्रैफिक की भी रफ्तार और कालिम्पोंग सिक्किम मार्ग बाधित। राजस्थान के टोंक में मानसून की पहली जोरदार बारिश, सड़कों पर सैलाब सा बहा, कई वाहन भी इसमें बह गए। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, संगम पर स्नान भी प्रभावित हुआ है। कानपुर में मानसून के बीच में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और प्रमुख घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अलर्ट भी जारी। बीजेपी सांसद हरभजन सिंह ने राजस्थान के श्रीगंगानगर का वीडियो पंजाब का बताकर शेयर किया और वीडियो में युवक जॉम्बी ड्रग लिए हुए बताए जा रहे हैं। पंजाब की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का बीजेपी पर निशाना और कहा कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का वीडियो और पंजाब का उन्होंने बताया। गाजियाबाद के लून में 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान की छत ढह गई, मलबे में 3 लोग दबे, इनका रेस्क्यू जारी, 1 घायल। वाराणसी के शिव मंदिर में सावन के शिवरात्रि पर उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सहारनपुर में सावन में शिव भक्ति का अलग रंग दिखा, कांवड़ लेकर निकली महिलाएं रास्ते में रील बनाई, बोली कि पूरे साल रहता है सावन का इंतजार। सावन के शिवरात्रि पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों की कतार, महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों में हो। हरिद्वार में सावन के शिवरात्रि को दक्षिणेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हरिद्वार में टूटा कांवड़ का रिकॉर्ड और 4 करोड़ से ज्यादा ने गंगा जल। यूपी के बागपत में महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, पूरा जो है महादेव के रंग बिरंगा और पिंक प्लान भी दिखा, पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट के भी इंतजाम दिखे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी तेज, लाल किले के पास में दंगल पार्क में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, शोपियां में जिला प्रशासन ने निकाली भव्य तिरंगा रैली। रक्षाबंधन से पहले नागपुर में सरहद के प्रहरियों के लिए अनोखा कार्यक्रम, देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 3 लाख राखियां। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर खास आयोजन, स्विमिंग कायाकिंग और कनोइंग का विशेष समर कोचिंग कैंप आयोजन। देहरादून दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाली तीज उत्सव के मौके पर आयोजित महिला संवाद और सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जमीन अतिक्रमण विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 से ज्यादा ग्रामीण घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के भदोही में अश्लील हरकत की शिकायत करने पहुंची लड़की को दरोगा ने भगा दिया, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने निलंबित भी कर दिया है आरोपियों पर केस भी। इटावा में सैफवे थाने में महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर दी, पति गिरफ्तार, परिजनों ने प्रताड़ना और आर्थिक दबाव का आरोप लगाया। सूरत में मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल, शख्स की मौत के बाद परिजनों का पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का भी आरोप। महाराष्ट्र के जालना में सड़क से गुजरते समय 10 साल के मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला, सीसीटीवी में कैद भी घटना। गुजरात के खेड़ा में 4 वाहनों की जोरदार भिड़ंत, केले से भरी हुई पिकअप पलट गई, टला बड़ा हादसा। गुजरात के दाहोद में विश्व आदिवासी दिवस की रैली के दौरान पुलिस पर पथराव, हमले में 200 से ज्यादा लोगों पर FIR, 13 गिरफ्तार। जूनागढ़ में खड़ी बाइक पर लिपटा दिखा विशाल अजगर, लोगों ने सावधानी से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। और अयोध्या में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों की टक्कर, इसमें आग भी लग गई, ट्रक भी जलकर राख। जयपुर में पैदल जा रही महिला बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की और उसके बाद महिला लुटेरों से भिड़ गई। बिहार के बेगूसराय में गंगा घाट पर स्नान के दौरान कांवड़ियों और स्थानीय लोगों में मामूली कहासुनी के बाद झड़प, दो पक्षों में जमकर मारपीट। पटना में 10वीं की छात्रा लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला स्कूल ड्रेस और बैग, आक्रोशित परिजनों ने आगजनी की, सड़क जाम कर दी। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्करी का खुलासा, उत्पाद विभाग की टीम ने लाखों की शराब की जब्त, कार ड्राइवर गिरफ्तार। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने बरसाई लाठी तो भागे छात्र। महाराष्ट्र के बीड में बिजली के खंभे पर काम करते समय कर्मचारी को लगा करंट, मौके पर मौत। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने दो बच्चों को जहर दे दिया फिर आत्महत्या कर दी। घटना से पहले वीडियो बनाकर पति से परेशान होने के बाद बताया, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में एक गांव में पूजा का प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, घटना के बाद अफरा तफरी। बिहार के कटिहार में पति को लेकर सड़क पर भिड़ गई दो पत्नियां, हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चला। झांसी में ट्रेन के अंदर टिकट चेकिंग स्टाफ को केक काटते हुए उनका वीडियो वायरल, मामले में रेलवे ने लिया संज्ञान। राजस्थान के नौगढ़ में पुलिस ने रिटायर्ड जवान के मकान में चल रहा अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, लगभग 20 करोड़ का माल बरामद। पश्चिमी कोलंबिया में जबरदस्त भूकंप से भारी तबाही, 7.4 तीव्रता के इस भूकंप में 132 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की से लौटते समय गुप्त मिलिट्री फ्लाइट ली, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और सशस्त्र बलों में 6 नई नियुक्तियां की, मेजर जनरल पायलट अली अब्दुल्लाही और सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ और ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बना दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए सैनिकों की एक और टुकड़ी और मिसाइलें भेजने की तैयारियां कर रहा है। सैनिकों की तैनाती रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी याबलोको पार्टी को सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव लड़ने से रोका, अदालत ने चुनावी पंजीकरण रद्द कर दिया है। और हम बड़ी खबर आपको देते हैं, संसद में मॉनसून सत्र में कई अहम बिलों पर मुहर भी लगी है। लोकसभा में हंगामा नारेबाजी के बीच में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन बिल 2026 और केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला जो बिल है वो पास हो गया है, पारित हो गया है। वहीं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए लिया गया है, जिसके बाद से विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच में लोकसभा की कार्यवाही तो अब बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दो अहम बिल इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन बिल 2026 और केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल पारित हो गया है, वो भी हंगामे के बीच। इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, FCRA के संबंध में बड़ी खबर है। FCRA बिल को लेकर संसद में बिल को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद हैं, वो तो क्लियर दिख भी रहे हैं और दल अपना रुख भी इस पर कई स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस और TMC ने तो इस बिल को वापस लेने की मांग की ही है, वहीं DMK और BJD इसे JPC में भेजने की मांग कर रहे हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजा जाए मांग कर रहे हैं, कई और भी दल यही मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने यह मुद्दा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी उठाया और इसको JPC में भेजा जा सकता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से भी ये मांग की गई ऑपोजिशन के दलों की तरफ से कि इसको ऐसे ही पारित नहीं किया जाना चाहिए, इसको BSE में भेजा जाना चाहिए, इसको जो है JPC में भेजा जाना चाहिए। तो संसद में गतिरोध लगातार जारी है और आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने हंगामा ऐसा किया कि कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो ओम बिरला ने सभी दलों से अपील की कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन नहीं चलता है तो उनका मन व्यथित होता है।
1: माननीय सदस्यगण, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया। मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा, और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले, सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है, अब आप चलाएं। और मुद्दों पर भी चर्चा होगी लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना, आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है सदन के अंदर तख्तियां बैनर लेकर आना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें।
0: झारखंड से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। अभी झारखंड के मंत्री हैं, कल भी इनका बयान लगातार आ रहा था जब प्रदर्शन चल रहा था, और अब आज वो कह रहे हैं कि झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। अब जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं उस समय की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब लाठीचार्ज हुआ, रात रात तक छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन इरफान अंसारी कह रहे हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ।
2: ये नकली लोग हैं, ये लोग युवाओं के प्रति इनका कोई इमोशनल नहीं है। युवाओं को, उनके आंदोलन को ये लोग हाईजेक करना चाह रहा है। निश्चित तौर पर मुझे गर्व है जो आंदोलन करे उस युवाओं पर, कि आप लोगों ने कल कहा कि हमारे धरना को भाजपा के लोगों ने क्रश करने का काम किया। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार युवाओं के साथ है, खड़ी है, हम उनकी मांगों पर गहन विचार कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने भी कहा हमारे कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का राइट सबको है, लेकिन जिस प्रकार कल हुआ हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पांच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं, रास्ता निकलेगा। आज देखिए विधानसभा तक अगर आ गया हमारा युवा तो इसका मतलब क्या है, हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा का कोई मॉरल हक नहीं है।
0: उनकी पुलिसिया कार्रवाई अत्याचार और आपकी पुलिसिया कार्रवाई कानून व्यवस्था, लेकिन अब तो उसको भी स्वीकारने से इनकार कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं इरफान अंसारी, मंत्री हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई की ही नहीं है, जबकि तस्वीरें सब कुछ बोल रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: पापा
6: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: बिलोट चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.
12: 25 saalon se, jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
13: 19 इयर्स की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैंने जिम में क्रश बनाया था।
14: उसी से रिलेशनशिप था क्या?
13: यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि
14: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना
13: है। मैं 19 साल की थी ना, फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूं। मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर, ये तो टीचर, ऐसा। तो शी वाज लाइक कैमरा के आगे क्या कर रही हो, क्या है ये, टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो। फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें, तो
14: यू लॉस्ट योर मॉम आल्सो?
13: आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड देन आई लॉस्ट हर। तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के बाद बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। हम यहाँ किशोरगंज चौराहे पर है और टायर जला करके रास्तों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। आज झारखंड बंद का आह्वान है रांची के किशोरगंज में। यहाँ पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए झंडे लेकर के और अब उन्होंने यहीं से गाड़ियों को लौटाना शुरू कर दिया है। रास्तों को यहाँ से कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। शहर ठप करने की कोशिश उन्होंने कल जब विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे उसके बाद बीजेपी ने जब लाठीचार्ज हुई रात को छात्रों पर उसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। किशोरगंज की तस्वीर देख रहे हैं, देखिए वहां पर भी वो गाड़ियों को रोक रहे हैं, यहीं से पलटवा दिया है। शहर को बंद किया जा रहा है, पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान दिया गया है और इसी के साथ सड़कों पर टायर यहां पर जला दिया गया है। ये बीजेपी विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। सोरेन सरकार के खिलाफ अब सीधे नारेबाजी, सीधे बीजेपी ने मोर्चा खोला है और जो विरोध है लाठीचार्ज के खिलाफ कार्यकर्ता जो है सड़कों पर टायर जला करके अब ये किशोरीगंज जो चौराहा है इसको ठप कर दिया है। पूरे रांची के अलग अलग इलाकों में जो है बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया लाठीचार्ज के खिलाफ, सोरेन सरकार के खिलाफ विपक्ष में बीजेपी ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। रांची में किशोरगंज से लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
5: देखिए ये हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से ये ट्रस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उन सब ट्रस्ट को अपने अधीन करना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट इनके अधीन रहे और सरकार जिस पे जाए जब चाहे शिकंजा कस सके।
6: FCRA में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं उनको ये देश को बताना चाहिए कि विदेशी धन भारत में आएगा तो उसका स्रोत क्या है, पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसकी जानकारी और निगरानी रखना क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है? खड़गे साहब को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि FCRA किसी संस्था का के खिलाफ कानून थोड़े है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

गृह मंत्री का जवाब सुनने का साहस दिखाए राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा सदन को अपनी सनक और उदंडता से बंधक बना। पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुने छात्रों की गूंज। शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस।

केरलम का नाम बदलने वाला बिल और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन बिल। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर। सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी का प्रदर्शन। एबीवीपी कार्यकर्ता हिरासत में। महिला प्रदर्शनकारी बेहोश। मांगे पूरी होने तक आंदोलन करेंगे छात्र। आज से शुरू हुई राम मंदिर के नए सीईओ की खोज। फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए 18 दावेदार। 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन

0: राजीव ढोंडियाल, अगस्त का महीना चल रहा है और देश से लेकर विदेश तक कोहरा मचा हुआ है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात काफी खराब हो गए। चमोली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए मलबे ने एक लोहे के भारी भरकम पुल को भी नहीं छोड़ा और अपने साथ बहा ले गया। वहीं पहाड़ों के साथ साथ मैदानों तक भी बारिश से हालात काफी खराब हो गए हैं। MP से लेकर राजस्थान तक बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। इसके अलावा कोलंबिया में शक्तिशाली भूकंप ने तबाही का मंजर बिछा कर रखा। कोलंबिया में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं।
1: पानी को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे।
0: सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों पर बरस रही मानसूनी आफत की। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए मलबे ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। नीति घाटी में तमक नाले में आए उफान के बाद तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से लोहे का पुल बह गया। पुल बहने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। कुछ ही सेकेंड में लोहे का कितना बड़ा, कितने टन वजनी पुल है, ये तिनकों की तरह पानी और मलबे में बहता दिखा। वैली ब्रिज बहने के साथ साथ वहां मौजूद कई गाड़ियां भी इसके चपेट में आ गई।

0: अगस्त में आसमान से बरस रही है ऑफर। बादल फटने के बाद चमोली में तबाही का मंजर। पहाड़ों से आए मलबे ने सब कुछ बहाया। सावन का महीना चल रहा है और देवभूमि में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों से आ रहे मलबे को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगी। गनीमत ये रही कि वो बच गया। लेकिन सैलाब के रौद रूप में एक गाड़ी बह गई। एक और तस्वीर देखिए, पहाड़ों से आए मलबे की रफ्तार इतनी तेज है कि लोहे का पुल ताश के पत्तों की तरह बह रहा है। महज 30 से 35 सेकंड में मलबा अपने साथ पुल को ले गया। पुल बहने से नीति घाटी के 13 गांव का जोशीमठ से संपर्क टूट गया है।
1: ये एकदम से याद दिलाता है पिछले वर्ष जो उत्तरकाशी की धराली की आपदा थी 5 अगस्त को जब वहाँ पे आया था, उसी तरह की ये जो बहाव आया है, ये फ्लड जो आया है, उसी तरह की याद दिलाता है। ऐसे में पूरा पुल बह चुका है। वहीं प्रशासन की टीमें जा चुकी हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो चुका है। वहीं प्रशासन का कहना है एक व्यक्ति के अभी तक लापता होने की सूचना मिली है।
0: नीति घाटी में मलबा तो बह गया लेकिन अपने पीछे एक तबाही का मंजर छोड़ गया है। अब चमोली पुलिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।
2: जो तमक नाला है उसका पुराना भी इतिहास रहा है कि अतिवृष्टि में वो नाला काफ़ी बढ़ करके आ जाता है और वहाँ पे पुल बहने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये अभी कुछ ही समय पहले अतिवृष्टि के कारण जो नाला उफान पे आया है उसकी वजह से पुल वॉश आउट हुआ है और साथ में जो प्रारंभिक हमें सूचना मिल रही है कि ग्रिफ के एक वर्कर वहाँ पे थे वो भी बहे हैं। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने तत्काल मौके पे भेज दिया है। हमारी प्रशासनिक टीम भी मौके पे पहुंच रही है।
0: बादल फटने के बाद आए मलबे ने भारी तबाही मचाई है। नदी किनारे के खेतों में मलबा पत्थर और बोल्डर से भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली से कमल नयन सिडोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब बात मध्य प्रदेश के, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है और इस उफान के चलते आसपास के घाट और मंदिर पानी में डूब गए हैं। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव को जोड़ने वाले छोटे पुलों पर नदी का पानी ऊपर से बह रहा है जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं भोपाल में कुछ घंटों की बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं भोपाल में आज भी स्कूल बंद है।

0: पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसूनी आफत, मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, विदिशा से लेकर भोपाल तक हर जगह पानी ही पानी। अगस्त का महीना चल रहा है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानों पर भी आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते एमपी के विदिशा में हालात बिगड़ गए हैं। क्या गांव, क्या शहर, क्या घाट और क्या मंदिर, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के किनारे के घाट और मंदिरों में पानी घुस गया है। वहीं कुछ छोटे मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। नदी में उफान के चलते हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिया के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, जहां स्कूली बच्चों को लोग गोद में लेकर पुलिया पार करने पर मजबूर हैं। वहीं विदिशा के वामन खेड़ा और पथरिया गांव में पानी भर चुका है, जहां से लोगों को एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। विदिशा ही नहीं, भोपाल भी इस वक्त आसमानी आफत का सामना कर रहा है। सोमवार को महज कुछ घंटों की बारिश से भोपाल के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। भोपाल के शिवनगर, गीता नगर, कल्याण नगर में कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसके चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है।
1: हम भोपाल के भानपुर इलाके में मौजूद है। यहाँ खेजड़ा इलाके की ओर जाने वाला ये जो सीमेंट का रोड है, वो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो डूब चुका है। आगे कितना गहरा पानी है इसका अंदाजा नहीं है। जो लोग अमूमन इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उनका कहना है कि अब इस रास्ते पे आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो जो करोद की तरफ से नाला बहता हुआ आता है, वो यहाँ आगे जाता है और उसी का पूरा पानी ओवरफ्लो होके इस वक्त अगर आप देखें दूर दूर तक, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा।
0: लगातार हो रही बारिश और जल भराव के चलते लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि हर साल बारिश में यही हाल होता है। विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर और भोपाल से रविश पॉल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब बात राजस्थान की, जहां आसमान से आफत बनकर पानी बरस रहा है। राजस्थान के बूंदी, टोंक और झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। बूंदी और टोंक में कुछ ही घंटों की बारिश से बाजारों में पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जिसकी चपेट में कई बाइक और स्कूटी भी आई और बह गई। वहीं झालावाड़ में भारी बारिश के चलते एक सरकारी स्कूल में पानी घुस गया। बच्चों को यहां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
3: राजस्थान की सड़कों पर सैलाब, आसमान से आफत बनकर बरसा पानी। बूंदी से लेकर झालावाड़ बारिश ने किया हाल बेहाल। मानसूनी बारिश के चलते राजस्थान के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी इलाके की है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया। बूंदी के नागदी बाजार, सदर बाजार और मीरा गेट वाली सड़क पर पानी मानो नदी की तरह बहने लगा और इसकी चपेट में खड़ी कई बाइक और स्कूटी आ गईं, जो तिनके की तरह पानी के साथ बहने लगीं। ये तस्वीर देखिए, जहां अपनी बाइक को बचाने के लिए बाइक सवार पानी में दौड़ा, लेकिन तेज बहाव के चलते उसे पकड़ नहीं पाया। बाइक ही नहीं, सड़क पर खड़ी स्कूटी भी पानी के तेज बहाव में बह गई। बूंदी ही नहीं, टोंक में भी आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। भारी बारिश के बाद टोड़ा रायसिंह इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया और इसकी चपेट में कई बाइक सवार आ गए। बूंदी ही नहीं राजस्थान के झालावाड़ में भी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। जहां लगातार हो रही बारिश के चलते एक सरकारी स्कूल में पानी भर गया और देखते ही देखते स्कूल एक टापू में तब्दील हो गया। स्कूल में पानी भर जाने की वजह से करीब 35 बच्चे और स्कूल टीचर फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए SDRF टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित निकाला। बूंदी से भवानी सिंह और झालावाड़ से चेतन गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो।
2: प्रभात, कोलंबिया में आए शक्तिशाली भूकंप के जहां 7.4 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया और इस भूकंप ने तबाही मचाई है। अब तक भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 111 तक पहुंच चुका है। वहीं लगभग 87 लोग इस समय घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया के वेस्ट और सेंट्रल इलाके में कई इमारतें ढह गई हैं। डराने वाली तस्वीरें आई हैं, यहां पेरेरा केली और मनीजालेस और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ये नुकसान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक में देश में दर्ज किया गया ये सबसे तेज भूकंप बताया जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, अभी 111 ये आंकड़ा है। घायलों की संख्या भी ज्यादा है, 7.4 की तीव्रता का भूकंप। आप देखिए, लोग सड़कों पर थे लेकिन कितना जोरदार ये कंपन था।

0: कोलंबिया में मचा कोहराम। भूकंप के झटकों से कांपा साउथ अमेरिकी देश। ढाई कई इमारतें, मलबे में दबे लोग, कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह तबाही का मंजर लेकर आई। सुबह करीब 7:30 बजे कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद हर तरफ कोहराम मच गया। ये तस्वीर कोलंबिया के पेरेरा की है, जहां भूकंप के तेज झटकों से इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। एक और तस्वीर देखिए, ये पेरेरा के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां भूकंप के झटके आने के बाद टेबल के नीचे बैठकर अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। भूकंप से मचे हाहाकार की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज झटकों से एक अस्पताल की इमारत का ऊपरी हिस्सा गिर गया और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पश्चिमी कोलंबिया के साथ साथ सेंट्रल कोलंबिया में भी कई इमारतें ढह गईं। पेरेरा, कैली, मनीजाले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है।
1: हर घर तिरंगा यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा लहराने की अपील की।
2: आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दे, विकसित भारत का संकल्प ले। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
3: भारत माता की जय।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अगस्त में आसमान से बरस रही है आफत। बादल फटने के बाद चमोली में तबाही का मंजर। पहाड़ों से आए मलबे ने सब कुछ बहाया। सावन का महीना चल रहा है और देवभूमि में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। चमोली की नीत घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों से आ रहे मलबे को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगी। गनीमत ये रही कि वो बच गया। लेकिन सैलाब के रौद्र रूप में एक गाड़ी बह गई। एक और तस्वीर देखिए, पहाड़ों से आए मलबे की रफ्तार इतनी तेज है कि लोहे का पुल ताश के पत्तों की तरह बह रहा है। महज 30 से 35 सेकंड में मलबा अपने साथ पुल को ले गया। पुल बहने से नीत घाटी के 13 गांव का जोशीमठ से संपर्क टूट गया है। नीत घाटी में मलबा तो बह गया लेकिन अपने पीछे एक तबाही का मंजर छोड़ गया है। अब चमोली पुलिस SDRF और NDRF की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बादल फटने के बाद आए मलबे ने भारी तबाही मचाई है। नदी किनारे के खेतों में मलबा, पत्थर और बोल्डर से भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली से कमल नयन सिडोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है,
2: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है। वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे UCC इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ओह सॉरी।

0: and don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
2: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
3: करीब दो साल बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रैली कर हुंकार भरी,
4: जय भीम।
3: बीजेपी सरकार पर हमला बोला, राहुल गांधी को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव पर तंज कसा और अपने बयानों से भविष्य वाली रणनीति का संकेत दिया।
5: तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड अपना एड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए।
3: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। और इसी कड़ी में जब आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद में हुंकार भरी तो योगी सरकार सबसे ज्यादा निशाने पर रही।
5: मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप?
3: बीएसपी के खिसकते जनाधार और एक के बाद एक मिल रही चुनावी हार के बीच पार्टी प्रमुख मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद से सियासी चमत्कार की उम्मीद है। यही वजह है कि चुनावों के ऐलान से पहले ही आकाश आनंद ने मोर्चा संभाल लिया है और इस रैली में उन्होंने इशारों इशारों में राहुल गांधी को घेर लिया।
5: जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके सत्ता, अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे।
6: मुद्दा ये नहीं है कि किसको अंकल कहो और किसको दादाजी कहो, हिम्मत हो तो कह लेना मोदी जी को। मुद्दा ये है कि बहुजन मिशन को आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों क्यों गिरवी रख रहे हैं, आरक्षण विरोधियों के हक में क्यों बात कर रहे हैं, संविधान विरोधी भाजपा के हक में क्यों बात कर रहे हो, आप और आपकी बुआ जी दोनों के दोनों लोग बहुजन मिशन को क्यों भेज रहे, क्या मिल रहा है आप?
3: लेकिन आकाश आनंद की इस रैली में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव पर ली गई चुटकी की हो रही है, जिसमें उन्होंने अखिलेश को अंकल बता दिया, जिसे जैन जी को लुभाने वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
5: आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ।
7: इस बहस में हम और आप न बोलेंगे, जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

साहस दिखाए राहुल गांधी, बीजेपी ने कहा सदन को आपकी सनक और उद्दंडता ने बंधक बनाया। पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुनी छात्रों की गूंज, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की, कहा स्वतंत्रता सेनानियों को दे श्रद्धांजलि, एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर, एबीवीपी कार्यकर्ता हिरासत में, महिला प्रदर्शनकारी बेहोश, मांगे पूरे होने तक आंदोलन करेंगे छात्र। हेमंत सोरेन के मंत्री बोले हमने नहीं किया लाठीचार्ज। आज से शुरू हुई राम मंदिर के नए सीईओ की खोज, फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए 18 दावेदार, 3 सदस्यों की समिति का 2 दिनों तक साक्षात्कार, अयोध्या के पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा भी दावेदार।

0: राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई कई गाड़ियां, भोपाल में स्कूल बंद, विदिशा में भी बाढ़।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ईरान की फौज में बड़ा फेरबदल, अमेरिका इजराइल करेंगे हमला। अमेरिका से भिड़ेंगे नए कमांडर। ट्रंप ने ईरान से क्यों मांगा हर्जाना? ईरान ने दिया बारूदी तहखाना। ईरान की डर से प्लेन छोड़कर निकले ट्रंप। ट्रंप के प्लेन बदलने से अमेरिका

नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान के घुटने टिका दिए, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का सच सामने ला रही है। यही नहीं, उनके भीतर ईरान का ऐसा डर है कि वो अपना विमान छोड़ के, एयरफोर्स वन विमान छोड़कर एक गुमनाम विमान से निकलने पर मजबूर क्यों हुए, वो हम आपको विस्तार से कहानी बताएंगे। और ये कई बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर। दूसरी तरफ अब ट्रंप भी ईरान की तरह हर्जाना मांग रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास महाविनाश, दिल दहला देने वाली तस्वीर एक नजर आई है जहां कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज की रणभूमि में कई बड़ी खबरें हैं, हम आपको विस्तार से उनके बारे में बताएंगे। ईरान अब तक का सबसे बड़ा सैन्य फेरबदल कर रहा है और यह सैन्य फेरबदल क्यों हुआ? क्या ईरान को किसी बड़े खतरे का डर है? समय क्या ईरान ने अपने बारूदी तहखाने में क्या छिपा रखा है जो उसने दिखाया? और एक बड़े महायुद्ध का एक ट्रेलर दिखाया उसने, नया मोड़ क्या आ सकता है इस युद्ध में, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे ईरान के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे एक दो नहीं तीन तीन विमान का इस्तेमाल किया जब वो तुर्की से जा रहे थे, अंकारा से निकल रहे थे, अपने विमान में नहीं गए। क्या था वो इंटेलिजेंस अलर्ट? और फिर हम आपको बताएंगे कि वेनेजुएला के बाद अब कोलंबिया में भी महाविनाश की एक तस्वीर सामने आई है, दिल दहला देने वाली भूकंप की ये तस्वीरें हैं। आखिर दक्षिण अमेरिका में एक के बाद एक ये तबाही क्यों इस समय मच रही है? लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने चार दिन पहले हुए एक बड़े सैन्य गठबंधन की हवा निकाल दी है। दरअसल ये जो सैन्य गठबंधन है, ये कहने को तो तीन सुन्नी मुस्लिम देशों के बीच हुआ, एक सऊदी अरब, दूसरा तुर्की और तीसरा पाकिस्तान। बड़ी खबर ये कि हूथी विद्रोहियों ने मिसाइल हमले किए सऊदी अरब के कमर्शियल जहाज में। हम आपको उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे कि उसमें जबरदस्त आग लग गई, दो पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन पलटवार करने की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की। यह हमला बाबल मंदब के पास हुआ। यमन में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक बड़े मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में जहां पाकिस्तान के दो नागरिक मारे गए हैं, वहीं इंडोनेशिया का भी एक नागरिक इसमें मारा गया है। दरअसल यमन में जो हूथी विद्रोही है, ईरान समर्थित मिलिशिया, ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों की तरफ से बयान कोई सामने नहीं आया है, लेकिन इस हमले से पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पाकिस्तान जिसके भाड़े के सैनिक दुगनी तनख्वाह के लिए सऊदी अरब में तैनात किए जा रहे हैं, आज वो सऊदी अरब के जहाजों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपने नागरिकों की। 8 अगस्त को तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ था कि एक पर हमला हुआ तो ये तीनों पर हमला माना जाएगा, और नेटो जैसी, नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसके जैसी शर्त के कारण इसे मुस्लिम नेटो या सुन्नी मुस्लिम नेटो का नाम भी दिया जा रहा है शिया ईरान के खिलाफ। लेकिन हम आपको इस समय तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, समझिए कैसे सऊदी अरब और यमन में सऊदी अरब समर्थित सरकार लगातार हमले कर रहा है जो हूथी विद्रोही दल है सऊदी अरब के इंटरेस्ट पर, उनके ठिकानों पर। इन हमलों का जवाब देने के लिए सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ समझौता किया। तुर्की से समझौता तो तकनीक है, यानी वो ड्रोन देगा, लड़ाकू विमान की तकनीक देगा, लेकिन सऊदी अरब ने तो, पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब में करीब 13,000 सैनिक, कई ड्रोन, अपने JF-17 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात कर दिया है। बदले में पाकिस्तान को $3 अरब यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की भीख भी मिल गई है पाकिस्तान की सेना को, लेकिन इसके बावजूद वो सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। पाकिस्तान भी हूथी विद्रोहियों से डरता है, या यूं कहे ईरान से घबराता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं एक और दूसरी बड़ी खबर की ओर जो इस समय ईरान से आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने ईरान की सेना और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का नया कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। इस फेरबदल के साथ सुप्रीम लीडर ने नए IRGC

दे दिया है कि वो सेना को दुश्मन के खिलाफ बेहद शक्तिशाली और आक्रामक अभियान मिलिट्री ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह तैयार रखे। दरअसल ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं, इस बात के पुख्ता इनपुट उन्हें मिले हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही देश मिलकर आने वाले दिनों में ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। ईरान के महत्वपूर्ण ऊर्जा और सैन्य ठिकानों पर एक हवाई हमला या मिसाइल हमला हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए ईरान के ग्राउंड फोर्सेस कमांडर और रक्षा अधिकारियों ने अपने सभी टॉप जनरल्स को अलर्ट मोड पर रहने के लिए और अमेरिकी बेसिस और अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों पर एक साथ निर्णायक हमला करने की रणनीति तैयार करने को कह दिया है। इसके अलावा आज ही ईरान ने एक और नया वीडियो जारी किया है। इसमें IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की जो एरोस्पेस फोर्स कमांडर है माजिद मुसावी, इसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं। माजिद मुसावी ने कहा है कि जिस रफ्तार से ईरान अपनी मिसाइलों को और अपने ड्रोन को लॉन्च करने की क्षमता कर रहा है या फिर अब नई मिसाइलों को हासिल कर रहा है, वो युद्ध से पहले के मुकाबले आने वाले समय में और भीषण पलटवार करने की स्थिति में है या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने की स्थिति में है। IRGC का पूरा जो लीडरशिप चेंज है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खमेनेई के अलावा लगभग हर फोर्स के कमांडर को मार गिराया था और यह मैं आपको समझाने का यहां प्रयास भी करूंगा कि किस तरह से नई लीडरशिप आई, क्यों आई। ईरान का ये जो नया सैन्य नेतृत्व है ना, ये मुज्तबा खमेनेई के बेहद करीबी है। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप, न्यू जनरेशन लीडरशिप अब टेक ओवर कर रही है। यानी मेजर जनरल अहमद वहीदी, ये कमांडर इन चीफ है IRGC के, ये ब्रिगेडियर अहमद वहीदी थे, अब मेजर जनरल हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही, ये कमांडर चीफ ऑफ स्टाफ है आर्म फोर्सेस के। इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल किमर्स हैदरी, ये डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है। अच्छा, ये सब बेहद अनुभवी अधिकारी हैं जिनको तैनात किया गया है। आपको याद होगा जब अमेरिका और इजराइल की रणनीति थी कि वो ईरान की टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि उनके पास तो 7 दर्जे की लीडरशिप तैयार है, आप एक को मारो उनकी जगह दूसरा तैयार है, दूसरे को मारो उसकी जगह तीसरा तैयार है। और अब ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं। मेजर जनरल अहमद वहीदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। गिरिला वॉरफेयर में ये बहुत माहिर है। इनका जो अलकुद्स फोर्स था, कुछ फोर्सेस के पुराने अनुभव के साथ साथ ये ईरान के सबसे घातक रणनीतिकार भी माने जाते हैं। मेजर जनरल अली अब्दुल्ला इलाही जो चीफ ऑफ स्टाफ है आर्म फोर्सेस के, ईरान की पारंपरिक सेना और IRGC, अब इनका काम क्या है, ये तालमेल बैठाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल अली अब्दुल्ला इलाही ये संयुक्त सैन्य अभियान में तालमेल बिठाने में माहिर है। अब बात करते हैं ब्रिगेडियर हैदरी की। ब्रिगेडियर जनरल हैदरी जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ये आर्म फोर्सेस और ईरान की सेना दोनों में ग्राउंड फोर्सेस के प्रमुख के रूप में आ रहे हैं। यानी जमीनी सेनाओं की सुरक्षा कैसे ईरान को वो एक अभेद्य सुरक्षा कवच दे सकते हैं, मॉडर्न वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी में इनको महारत हासिल है। फिर अब बात करते हैं एडमिरल, रियर एडमिरल अली आजमजाई, अली आजमजाई, रियर एडमिरल अली आजमजाई अजमाई, ये कमांडर IRGC की जो नौसेना है, वो नौसेना जिसने हॉर्मूज को फारस की खाड़ी में अमेरिका के युद्धपोतों को रोकने के लिए एसिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर, यानी अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर घुस नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी नावों से फास्ट अटैक बोट्स के संचालन में ये बेहद आक्रामक टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। फिर हुसैन तायब, ये बसीज फोर्सेस के मुखिया हैं। हुसैन तायब ये प्रमुख हैं बसीज फोर्सेस के। IRGC की तरह खुफिया फौज है और इन्हें आंतरिक सुरक्षा, जासूसी नेटवर्क और टोह लेकर अपने घर में कौन दुश्मन है उसकी टोह लेने में इन्हें माहिर माना जाता है। बहुत लंबा इनका अनुभव है। अब हम बात करते हैं मेजर जनरल मुस्तफा इज़ादी की। मेजर जनरल मुस्तफा इज़ादी जो डिप्टी कमांडर इन चीफ हैं IRGC के, दरअसल ईरान इराक युद्ध जो हुआ था उसमें ये एक यंग ऑफिसर थे। तो आप देखिए 80 के दशक में और तब से लेकर अब तक इनको कितना अनुभव है। इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं, साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दोनों के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। यानी
इनके पास टेक्नोलॉजी का अचूक अनुभव है और इसराइल के लिए ये जो नया फेरबदल है ना, ये एक बहुत सीधा संदेश है। पहले से ज्यादा आक्रामक और अप्रत्याशित हमला करने में ईरान अब तैयार है, उससे पहले दुश्मन पर कार्रवाई कर की जा सकती है। यानी आपको याद है जिस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात करते हैं कि दुश्मन हमला करे उससे पहले ईरान हमला कर देगा, दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देगा। ये जो नई लीडरशिप है ये पूरा उसकी उस पूरे प्रिंसिपल पर काम कर रही है। इस बदलाव से ईरान ने देश के भीतर कमजोर कड़ी हटाकर जो जासूसी का नेटवर्क है उसको और मजबूत करने का भी विचार किया है कि औपचारिक तौर पर तो उसे हटा देंगे लेकिन जासूसी करते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं आज की सबसे सनसनीखेज खबर, जिसमें खुलासा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो सुरक्षा तंत्र है वो ईरान से कितना घबरा रहा है। अमेरिका के अखबार ने दावा किया है कि ईरान के हमले के डर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा एयरपोर्ट पर अपने एयरफोर्स वन को छोड़ दिया। अंकारा से वो एक तीसरे विमान में सवार हुए जिसका इस्तेमाल धोखा देने के लिए यानी डिसेप्शन के लिए किया गया था, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस स्टाफ और अपने साथ चल रहे पत्रकारों को भी यह सच नहीं बताया। ये घटना 8 जुलाई की है। डोनाल्ड ट्रंप उस समय तुर्की में थे, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक से लौट रहे थे। हम आपको इस समय अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें देखिए। आप ये तस्वीर देखेंगे साफ होता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से एयरफोर्स वन में वो दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कतर से साल 2025 में जो विमान उन्हें गिफ्ट मिला था उस विमान में है, लेकिन अंकारा से लौटते समय उन्होंने इस विमान को छोड़ दिया ये कहकर कि वो पुराने नीले रंग के एयरफोर्स वन में जा रहे हैं, उसमें सवार तो हुए। उन्होंने कहा कि वो आखिरी बार अपने पुराने विमान में उड़ान भरना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप उस विमान में सवार हुए, हाथ हिलाकर लोगों से विदाई भी ली, लेकिन जो दुनिया को नहीं पता चला, दूसरी तरफ एक जो खाना लोड करने वाला ट्रक होता है उसकी ट्रॉली में वो अंदर चले गए, उस विमान के अंदर नहीं बैठे, दूसरे दरवाजे से निकलकर एयरफोर्स के एक C-32A विमान में सवार हो गए और वहां से वो यूके के यूनाइटेड किंगडम के RAF के मिलिट्री बेस में पहुंचे। अब देखिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें दिखा रहा हूं। आपको दिख रहा है ये जो केटरिंग का ट्रक है, अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आखिरी बार अपने उस नीले एयरफोर्स वन में बैठना चाहता हूं। तो देखिए ये केटरिंग का ट्रक आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, फूड ट्रक एयरफोर्स के विमान के पास अब आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी उस प्लेन में घुसे तो लेकिन इस ट्रक में चले गए और फिर ये ट्रक वो दूसरे विमान के पास उनको लेकर गया। अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना डिसेप्शन करना पड़ा क्यों? क्योंकि तुर्की और ईरान दोनों पड़ोसी देश हैं, उनको डर यह था कि जब उनका विमान टेक ऑफ करेगा तो कहीं एयरफोर्स वन को निशाना ना बना दिया जाए। आप सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ईरान से इतना डर लगता है कि वो अपने विमान में नहीं गए। ये देखिए ये फूड ट्रक आया, अमेरिका के राष्ट्रपति इस विमान में गए, अपने विमान में अंदर तो घुसे लेकिन विमान के अंदर से दूसरे फूड ट्रक के जरिए दूसरे विमान में चले गए। उन्होंने ये गेम प्लान बनाया, ट्रंप ने विमान बदला, उनका जो बाकी क्रू था, बाकी पत्रकार जो थे, बाकी अधिकारी थे, वो नॉर्मल एयरफोर्स वन में आए। अगर इतना बड़ा खतरा था उनकी जान को तो लोगों की जान को उन्होंने क्यों जोखिम में डाला? लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया, ये व्हाइट हाउस का एक पुराना प्लान था। आप ये सोचिए वो जो केटरिंग ट्रक, ये देखिए ये पत्रकार चढ़ रहे हैं, उनकी टीम चढ़ रही है, ये केटरिंग ट्रक है, ये दूसरी तरफ इसकी ट्रॉली ऊपर गई, राष्ट्रपति अंदर घुसे और फिर इस ट्रक में आके बैठ गए और फिर वहां से दूसरे प्लेन में चले गए जो यूके चला गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक छत की ऊंचाई एयरफोर्स वन के पुराने विमान के दूसरे दरवाजे के बराबर थी, इसीलिए ट्रंप दूसरे दरवाजे से उस ट्रक में सवार हुए और फिर वो ट्रक उनको घुमाकर C-2A विमान की तरफ पहुंच गया और डोनाल्ड ट्रंप उस विमान में सवार हुए और फिर उनका जो पुराना एयरफोर्स वन था ना, वो पत्रकारों को और बाकी व्हाइट हाउस के स्टाफ को लेकर उसने उड़ान भरी। पत्रकारों को हिदायत ये दी गई थी कि वो अपनी खिड़की के जो शटर है उसको डाउन कर दें ताकि पता ना चले कि कौन विमान में है और कौन नहीं है। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा डर अमेरिका के राष्ट्रपति के मन में था ईरान को लेकर।
अब यूनाइटेड किंगडम यूके के आरएएफ मिलिट्री बेस की हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये आपने पहले तुर्की की तस्वीर दिखाई, अब तुर्की की तस्वीर के बाद अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि अंकारा से उड़ान भरने के बाद शाम 6:26 पर वो एयरफोर्स वन विमान उतरा जिसे कतर ने गिफ्ट किया था, जिसे ट्रंप ने अपने पुराने एयरफोर्स वन विमान में सफर की दलील देकर छोड़ दिया था। इसके बाद रात 10:20 पर एयरफोर्स का C-32A प्लेन उतरा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सवार थे। इसके 9 मिनट बाद यानी 10:29 पर अमेरिका के राष्ट्रपति का पुराना एयरफोर्स वन विमान वहां उतरा। यहां आकर ट्रंप अपने पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए और उससे ऐसे उतरे जैसे यूके उसी विमान में पहुंचे हो। यहां से फिर वो कतर के गिफ्ट किए गए विमान से अमेरिका पहुंचे। रास्ते में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी खिड़की का शटर गिराने के लिए क्यों कहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनकी जान को खतरा रहता है, अगर वो गए तो उनके साथ पत्रकारों की जान भी जाएगी। लेकिन सच यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एयरफोर्स के C-32A विमान में सफर किया, जबकि पत्रकार और आधा व्हाइट हाउस स्टाफ वो पुराने एयरफोर्स वन विमान से ही आए जिस पर दरअसल खतरा था। और अब खबर दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कुदरत के खौफनाक तांडव ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 7.4 प्रचंड तीव्रता, 2 मिनट तक कांपती रही धरती और एक के बाद एक बहुमंजिला इमारतें पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। परेरा और केली शहरों में हाहाकार मचा। अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, हजारों लोग इस समय लापता हैं। तबाही की दिल दहला देने वाली ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखिए।

0: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 10 अगस्त 2026 की सुबह जब लोग अपने काम की शुरुआत कर रहे थे, ठीक 7:34 पर धरती अचानक थर्रा उठी। रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता वाले इस प्रचंड भूकंप ने पूरे कोलंबिया में तबाही मचा दी। इस भूकंप की सबसे खौफनाक बात ये रही कि लगभग 2 मिनट तक धरती लगातार हिलती रही। ऐसा शायद ही कभी होता है। यही वजह है कि मजबूत से मजबूत इमारतें भी तिनके की तरह बिखर गईं। इस महाविनाश की सबसे भारी कीमत कोलंबिया के पश्चिमी शहरों को चुकानी पड़ी है। परेरा शहर इस आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना है, जहां अकेले 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ढह गया।
1: इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार को चिढ़ा रहा है, ये बड़ी खबर। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
10: In association with
11: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: जवाब दो,
5: जवाब दो, जवाब दो।
6: संसद में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक। इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक ओर बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है, तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृह मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरों।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

गृहमंत्री का जवाब सुनने का साहस दिखाएं राहुल गांधी, बीजेपी ने कहा सदन को अपनी सनक और उद्दंडता से बंधक बनाया। पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुनी राहुल ने छात्रों की गूंज, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस।

स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों को दे श्रद्धांजलि, एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर, आंदोलन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, विपक्ष ने राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की, युवाओं को मिलेगा न्याय। आज से शुरू हुई राम मंदिर के नए सीईओ की खोज, फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए 18 दावेदार, 3 सदस्यों की समिति का 2 दिनों तक साक्षात्कार, अयोध्या के पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा भी दावेदार।

0: बहा पुल, राजगढ़ के उफनते नाले में समा गई गाड़ियां, भोपाल में स्कूल बंद, विदिशा में भी बाढ़।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

आज आजादी का दिन मना रहा है बलूचिस्तान। हैरान है पाकिस्तान, परेशान है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जुल्मों से उकता चुका है बलूचिस्तान। बलूचों की हक की जगह गोलियां दे रहा है पाकिस्तान। अपनों की शहादत कब तक सहेगा बलूचिस्तान? अब मचेगा घमासान, अलग पहचान बनाकर रहेगा बलूचिस्तान। आज खुले आसमान के तले लहरा रहे हैं आजादी के झंडे। पाकिस्तान को चिढ़ाते हुए और बलूचिस्तान के सपनों को अब पंख लगाते हुए।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। आज शाबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर यानी पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ, उनकी नींद उड़ गई होगी क्योंकि उनके जुल्मों से तंग आकर बलूचिस्तान ने आज अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान ने कहा है वो आजाद है। पाकिस्तान के झंडे नहीं बल्कि बलूचिस्तान का नया झंडा लहरा रहा है अलग अलग इमारतों पर, और कई जगह पाकिस्तान की सेना और पुलिस को तैनात किया गया है, वो झंडे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में जहां भी बलूच लोग मौजूद हैं, जहां जहां बलूच लोग मौजूद हैं, वो अपना खुद का ध्वज लहराने में गर्व महसूस कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप में हो चाहे अमेरिका में। आप ये सोचिए, पिछले 80 साल पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा करके रखा बलूचिस्तान पर। पाकिस्तान ने धोखेबाजी की, जुल्म किए, शिकार करते रहे वो बलूचिस्तान में लोगों का, लेकिन बलूच लोग आज भी अपनी अलग पहचान चाहते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से पहले वो एक अलग देश थे। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी बलूचिस्तान या कलात बिल्कुल अलग था। उनका दावा यह है कि जल्द उनकी अपनी करेंसी, अपना पासपोर्ट और अपना दूतावास, उसका भी वो ऐलान करेंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बलूचिस्तान का एक अलग दूतावास होगा। पाकिस्तान के हुक्मरान इस समय अपने ही घर में कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। कूटनीति हो, सैन्य नीति हो, राजनीति हो, अर्थनीति हो, हर मोर्चे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर देश को और दोजक की आग में झोंकते जा रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी का एक जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह खबर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के आवाहन पर लोगों का जमावड़ा हुआ। पार्टी के वकील और नेता कोर्ट के बाहर जुट रहे हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं। बार बार अफवाहें उठ रही हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। इमरान खान की क्या हालत है इस समय, क्यों नहीं कोई किसी को उनसे मिलने दिया जा रहा है? उनकी पार्टी और नेताओं का कहना है कि गुरुवार को सांसद उनसे मिलना चाहते थे, उनसे मिलने जाएंगे, और अगर मुलाकात इस बार नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले मुलाकात नहीं करने दी है, अगर मुलाकात नहीं करने दी तो पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा। कुछ ऐसे ही हालात पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है, जहां पाकिस्तानी सरकार संगीनों के साए में स्थानीय मुद्दों को लगातार नजरअंदाज करके चुनाव कराने की कोशिश कर रही थी, गैर कानूनी चुनाव करा रही थी। तीसरे दौर के मतदान से पहले इतनी हिंसा हुई कि पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ी। दूसरी तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का रक्षा समझौते के 48 घंटे में उसकी पोल खुल गई। अरामको की जो रिफाइनरी है उस पर हूथियों ने ड्रोन हमले किए। गठबंधन की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, एक जहाज को निशाना बनाया गया, दो पाकिस्तानी उसमें मर गए, कुल मिला के 3 लोग मरे हैं, लेकिन कोई ये मक्का अग्रीमेंट जो है, ना तुर्की ने कुछ किया, ना सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। जब पाकिस्तान 14 अगस्त को भारत से अलग होने या अपने स्वतंत्रता को मनाएगा तो उसका एक प्रांत उससे पहले ही 3 दिन पहले क्यों अपनी आजादी मना रहा है? आखिर क्या है इसकी वजह? बलूचिस्तान में लोग किस तरह मना रहे हैं आजादी का ये जश्न? देखिए ग्राउंड जीरो से इनपुट्स लेकर आज तक की खास रिपोर्ट। बलूचिस्तान में यह बगावत नहीं है, यह स्वतंत्रता संग्राम है, और इस स्वतंत्रता संग्राम को लेकर शाबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, सब बेहद परेशान है, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं पूरे बलूचिस्तान में जहां पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का प्रशासन है ही नहीं, वहां केवल बलूच लोगों का राज चल रहा है।
1: 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त 2026, याद कर लीजिए इस तारीख को, क्योंकि कुछ तारीखें इतिहास की ऐसी इबारत होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए यादों का खजाना बन जाती हैं। बलूचिस्तान के लिए 11 अगस्त एक ऐसी ही तारीख है। 1947 में आजादी मिलने का जो सपना बलूचिस्तान ने संजोया था, इतने दशकों बाद आज भी संघर्ष की वो दास्तान जारी है। पाकिस्तान के जुल्मों को झेलते झेलते बलूचिस्तान के सब्र की सीमा जब टूट गई तो वो बगावत पर उतर आया। विद्रोह की चिंगारी हर इलाके में फैलने लगी तो पाकिस्तान की फौज ने जुल्म और बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन पाकिस्तान के चंगुल से हर हाल में आजाद होने की छटपटाहट के बीच बलूचिस्तान के लोगों ने आजादी की अपनी तारीख को एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया। और अपने लोगों को याद दिलाया कि 11 अगस्त उनकी आजादी का दिन है और 2026 में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से वो इस दिन को मना रहे हैं। बलूचिस्तान में रहने वाले भी दुनिया भर में जहां भी कोई बलूच रहता है वो भी पाकिस्तान की पहचान से अलग होकर आज का दिन किसी त्योहार की तरह मना रहे हैं। त्योहार आजादी का, त्योहार एक नई शुरुआत का, त्योहार अपने सालों पुराने सपनों को पूरा करने का। खुले और नीले आसमान के तले लहराता ये झंडा किसी गुलामी का प्रतीक ना होकर उनका अपना है, अपनी पहचान है। जो जहां भी है वो अपने तरीके से आजादी के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। अब आजादी की ये धुन सुनिए। बलूचिस्तान को 1947 के बाद से ही पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। मिनरल्स के मामले में बेहद संपन्न होने के बाद भी बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान दोयम दर्जे का बर्ताव करता आया है। साथ ही बलूचिस्तान को बिना मंजूरी के यहां चीन की बड़ी कंपनियों को निवेश का न्योता भी दिया गया, जिससे बलूचिस्तान के लोग खासे नाराज हैं। बलूचिस्तान ने आज यानी 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वैसे बलूचिस्तान का आजादी दिवस पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त से 3 दिन पहले आता है। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नामक समूह की तरफ से एक ऑनलाइन संदेश भी जारी किया गया, जिसमें बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच, पश्तून, हिंदू, सिख और सभी धर्मों के लोगों को बधाई दी गई है। इसके साथ ही समूह ने दुनिया भर से गुहार लगाई है कि वो बलूचिस्तान की आजादी को मान्यता दे। बलूचिस्तान की इस मुहिम को कई जगह समर्थन भी मिल रहा है। ओडिशा में युवाओं ने एक बाइक रैली निकाली और बलूचिस्तान की आजादी के पक्ष में नारेबाजी भी की।
2: लॉन्ग लाइफ बलूचिस्तान, लॉन्ग लाइफ बलूचिस्तान,
1: रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जारी ऑनलाइन बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग हर साल 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम सिर्फ अपनी आजादी का जश्न नहीं मनाते बल्कि दुनिया से ये भी मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। बयान में मांग की गई है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत कहने या मानने के बजाय इसे एक स्वतंत्र देश कहा जाए। बलूचिस्तान को विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां खुद निभाने का अधिकार है। इसमें आगे कहा गया है कि बहुत जल्द बलूचिस्तान का पासपोर्ट, मुद्रा और दूतावासों की शुरुआत होगी और सही समय पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसमें कहा गया कि बलूचिस्तान के नेतृत्व को एकजुट करने की कोशिश जारी है और इतिहास में पहली बार हम एकजुट होकर कब्जा करने वाली ताकतों को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए और पाकिस्तान की जेलों में बंद बलोचों का भी जिक्र किया गया है और कहा है कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: दरअसल पाकिस्तान की सेना ने 1947 से लगातार बलूच लोगों का नरसंहार किया है, दोहन किया है वहां के रिसोर्सेस का। आइए हम आपको विस्तार से अब यह समझाने का प्रयास करते हैं, दरअसल बलूचिस्तान इस समय चाहता क्या है। 1947 से आज तक कई बार पाकिस्तान ने धोखेबाजी की। दरअसल 1947 में कलात या बलूचिस्तान एक बिल्कुल अलग देश था। जिन्ना तो वकील थे बलूचिस्तान के अलग रहने के, लेकिन अगस्त 1947 में अहम इलाके कलात को आजादी मिली थी, पाकिस्तान इससे मुकर गया। यानी मोहम्मद अली जिन्ना पहले बलूचिस्तान के वकील थे, कलात के वकील थे, और फिर पाकिस्तान के सदर बनते ही उन्होंने वो इससे बिल्कुल पलट गए। जिन्ना ने कलात के फैसले को पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रित करना शुरू कर दिया जैसे ही पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथ में आई। सेना का दबाव बनाकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया, जबकि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश था। इसके अलावा जो वहां के कीमती खनिज है, ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान, और अभी अमेरिका की भी नजर रेयर अर्थ पर है, बलूचिस्तान खनिजों से भरपूर है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं वहां नदारत है। पाकिस्तान का लगभग 45% हिस्सा बलूचिस्तान है। हक की मांग करने पर सेना और पुलिस दमन करती है वहां लोगों का, हेलीकॉप्टर में ले जाके जिंदा लोगों को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया जाता है, कोलतार में उनको जिंदा उबाल दिया जाता है। इस तरह का दमन पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में कर रही है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट वहां बना तो लिया, लेकिन उससे फायदा बलूच लोगों को नहीं मिल रहा है, ना उनको नौकरियां वहां मिल रही है, ना उनको उससे कोई फायदा मिल रहा है। स्थानीय मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है पाकिस्तान की जो पंजाबी सेना है, वो बलूचों को सेकेंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट करती है, और इसीलिए बलूच ये कहते हैं अब हम अपनी आजादी लेकर रहेंगे। अच्छा, लगातार वहां पर परेशानियां जो हो रही हैं, अब हम आपको जो ACLED जो संस्था है, जो दुनिया भर में कहीं भी अगर टेरर होता है, कोई इंसिडेंट होता है, उसके आंकड़े ये संस्था इकट्ठा करती है। 2022 में जैसे ही BLA उभर कर आई, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी, अब उन्होंने कहा हम आजादी के लिए लड़ाई करेंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी के आते ही 2022 में 867 जो इंसिडेंट्स हुए उसमें 784 लोग मारे गए। 2023 में यह संख्या 904 हुई, 2024 में 1425 में 2191 और 2026 में अब तक 1470 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनमें मरने वालों की तादाद 2052 या 2187 या 1102। हर साल अगर आप देखें तो यह संख्या, लोगों के मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां बता दूं कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ड्रामा बंद करे। पाकिस्तान की जो ये देखिए, ये कठपुतली सरकार जो बलूचिस्तान में है वो पाकिस्तान के झंडे बांटने का दिखावा कर रही है, पुलिस के साथ सेना के साथ मिलकर आवाम को वहां पर झंडे पाकिस्तान के दिए जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि 14 अगस्त से पहले यही झंडे लगेंगे, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना वो कह रहे हैं हम अपना झंडा यहां पर लगाएंगे, और आज 11 अगस्त को उन्होंने अपना झंडा लगाना शुरू भी कर दिया है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे से बलूचिस्तान पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। पाकिस्तान ने वहां इंटरनेट बंद कर दिया है, जबरदस्ती पाकिस्तान का झंडा बांटा जा रहा है। बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया है, और इसीलिए पाकिस्तान की सेना अब सड़क पर उतर आई है, बाजारों में उतर रही है, और लोगों को झंडे थमाकर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने की ये कोशिश कर रही है। ১৯৪৭ से लगातार बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान ने अन्याय किया है, और वैसे तो यह अन्याय लगातार 1947-48 से चला भी जा रहा है, लेकिन पांच ऐसे अलग अलग वर्ष हैं जो बेहद महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले 1947 11 अगस्त को बलूचिस्तान के बाकी हिस्से जिसमें करात, खलात, लेजबेला, मकरान ये शामिल थे, आजादी इनको मिल गई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें अड़ंगा लगाया। वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे बलूचिस्तान के, कलात के वकील थे, बलूचिस्तान की आजादी का मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन फिर वो बदल गए और पाकिस्तान की सेना को उन्होंने भेज दिया 1947 में। 27 मार्च को सेना के दबाव से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक सूबा बनाने की साजिश रची गई, पाकिस्तान की सेना वहां चली गई। दरअसल पाकिस्तान का ये 43% इलाका तो है, लेकिन जनसंख्या यहां केवल 6% है पूरे पाकिस्तान की अगर देखी जाए, और इसीलिए यहां के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते, अधिकार केवल पाकिस्तान के पंजाब सूबे को पूरी तरह से मिलते हैं। फिर 1955 जब पूरे पाकिस्तान को एक यूनिट की, अलग अलग चार सूबे नहीं होंगे, केवल एक यूनिट है पाकिस्तान, एक यूनिट योजना के तहत बलूचिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान प्रांत का हिस्सा बनाया गया और उसकी अलग पहचान पूरी तरह से उस समय छीन ली गई। फिर 1970 1 जुलाई को चार रियासती जो राज्य बने या चार प्रांत बने, वो चार प्रांत कौन से थे, पाकिस्तान का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। पूर्व चीफ कमिश्नर वाले प्रांत को मिलाकर बलूचिस्तान प्रांत का एक अलग गठन किया गया। तो ये चार तस्वीरें, और अब 2026 बगावत तेज, BLA की सेना के साथ झड़पे तेज, हिंसक प्रदर्शन, और 11 अगस्त को आजादी का ऐलान, एक बहुत बड़ा संदेश बलूचिस्तान का कि अब बलूचिस्तान आजाद है, अब अपनी करेंसी और अपना झंडा दोनों लाने की उनकी तैयारी है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वहीं डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसूनी आफत, मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, विदिशा से लेकर भोपाल तक हर जगह पानी ही पानी। अगस्त का महीना चल रहा है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानों पर भी आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते एमपी के विदिशा में हालात बिगड़ गए हैं। क्या गांव, क्या शहर, क्या घाट और क्या मंदिर, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के किनारे के घाट और मंदिरों में पानी घुस गया है। वहीं कुछ छोटे मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। नदी में उफान के चलते हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिया के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, जहां स्कूली बच्चों को लोग गोद में लेकर पुलिया पार करने पर मजबूर हैं। वहीं विदिशा के वामन खेड़ा और पथरिया गांव में पानी भर चुका है, जहां से लोगों को एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। विदिशा ही नहीं, भोपाल भी इस वक्त आसमानी आफत का सामना कर रहा है। सोमवार को महज कुछ घंटों की बारिश से भोपाल के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। भोपाल के शिवनगर, गीतानगर, कल्याण नगर में कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसके चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। लगातार हो रही बारिश और जल भराव के चलते लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि हर साल बारिश में यही हाल होता है। विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर और भोपाल से रविश पॉल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

गृह मंत्री का जवाब सुनने का साहस दिखाया राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा सदन को अपनी सनक और उद्दंडता से बंधक बनाया। पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुनी छात्रों की गूंज। शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस।

0: सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, विपक्ष ने राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की, युवाओं को मिलेगा न्याय। आज से शुरू हुई राम मंदिर के नए सीईओ की खोज, फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए 18 दावेदार, 3 सदस्यों की कमेटी का 2 दिन तक साक्षात्कार, अयोध्या के पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा भी दावेदार। भारत ने चीन से फिर दोहराया एलएसी पर शांति से ही सुधरेंगे आपसी रिश्ते, विदेशी मंत्रालय का बयान, द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा सीमा के हालात का असर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा सर्वे लेकर आए हैं जो बताएगा कि देश में मौजूदा समय में जेन ज़ी का मिजाज क्या है। इस सर्वे से आप इसलिए और कनेक्ट महसूस करेंगे क्योंकि हर घर में जेन ज़ी या जेन अल्फा मौजूद है और वो देश की मौजूदा सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, उनका मूड कैसा है। पूरे देश में ये सर्वे सी वोटर ने किया है। हर राज्य के करीब हर जिले में 18 साल से 35 साल तक के युवाओं की टेलीफोनिक सर्वे के जरिए राय ली गई और इसका सैंपल साइज 1270 है। इसे 8 अगस्त को किया गया है। हमने युवाओं से पूछा कि जेन ज़ी के लिए सबसे अहम चुनावी मुद्दा क्या है, उनको वोट देने का मुख्य आधार क्या है, क्या सोशल मीडिया की सियासी राय बनने में बड़ी भूमिका रहेगी, क्या राजनीतिक दल जेन ज़ी के मुद्दों को अपना समझते हैं और क्या समझने की कोशिश करते हैं, क्या आप अपनी ही जाति के प्रत्याशी को वोट देना पसंद करेंगे और वोटिंग के समय उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता जेन ज़ी के लिए कितनी जरूरी है। अगर बड़ी पार्टियां युवाओं को टिकट दे तो कितने युवा उन्हें वोट देंगे और सबसे जरूरी सवाल, क्या सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल युवा सही मानते हैं। यह सर्वे इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पिछले 2 महीने से देश में 2 बड़े छात्र आंदोलन हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जेन ज़ी मौजूदा सियासत को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं और आज हम इसी मुद्दे पर दंगल में चर्चा करेंगे। ये सर्वे के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेन ज़ी क्या सोचते हैं और उस पर राजनीतिक दल और उसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से इस पे अपनी भूमिका रखेंगे, आशुतोष हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में शामिल होंगे और सत्य प्रकाश मिश्रा भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में शामिल होंगे। तो सर्वे की शुरुआत इससे पहले करते हैं। सबसे पहले पहला मुद्दा, करीब 8 सवाल है और एक एक करके हम सवाल आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ जेन ज़ी ने उस पर अपनी क्या रखी है वो भी आपके सामने रखने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को आप चुनावी मुद्दा मानेंगे? तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, 53% कुल जेन ज़ी कहते हैं कि हम ये सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और उसपे आपको देखना होगा कि एनडीए समर्थक भी करीब 56.7% जेन ज़ी मानते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सड़क, बिजली, पानी 8.2%, महंगाई भी 13.1% मानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे इस पहले सवाल से ये होगा कि एनडीए समर्थक में भी 56.7% रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और कुल 53% जेन ज़ी मानते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि वोट देने का मुख्य आधार क्या होगा, यह दूसरा सवाल हमने पूछने की कोशिश की। तो नेता, कौन नेता है जिसके आधार पर हम वोट देंगे, ये कहने वाले करीब 20% है, जिसमें एनडीए समर्थक 22.9 और विपक्ष के समर्थक 23.1% जेन ज़ी मानते हैं कि नेता देखकर हम वोट डालेंगे, पार्टी देखकर वोट डालेंगे 16.1, 12.6 विपक्ष के और 13.9 कुल अगर हम देखें तो, उम्मीदवार देखकर वोट डालेंगे 7.8, 8.7 विपक्ष के लोग मानते हैं और 7.7 कुल मिलाकर, लेकिन मुद्दा देखकर वोट डालेंगे, सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पक्ष में पड़े हैं तो वो मुद्दा देखकर वोट डालने के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट पड़े हुए हैं। 33.3% जेन ज़ी समझते हैं कि हम मुद्दा देखकर वोट डालेंगे, यानी सबसे बड़ा टेक अवे कि मुद्दा आज की स्थिति में सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और उसके साथ साथ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इन मुद्दों को देखकर जेन ज़ी वोट डालेंगे। बाकी सवाल भी

0: इसी के हाथों में सूजन आ गई है। क्या शिक्षक, क्या विद्यार्थी, क्या परीक्षार्थी, जो भी थे, हर दो चोट के बाद अनेक उतरेंगे।
1: अजय आलोक जी, दो सवाल अभी फिलहाल हमने सामने रखे हुए और उसमें सबसे बड़ा टेक अवे यह नजर आता है कि जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ और उसके साथ साथ चुनाव में भी नेता से भी ज्यादा मुद्दा अहम होगा।
2: साहिल जी, सबसे पहले शुरू करने के पहले मैं आपको एक, आज सावन में शिवरात्रि है, इसको क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं? ये भी मुद्दा है, जानते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव, ये भी बहुत मूल मुद्दा है। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक ही फजा, सरतन से जुदा, ये भी मुद्दा बनता है। मुद्दे तो हमेशा आते हैं और जाते हैं। स्थाई मुद्दा क्या है? जिसपे जनता को भरोसा हो कि कौन आदमी डिलीवर करेगा, जिसकी अपनी एक विश्वसनीयता हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो करके दिखा चुका हो। मुद्दे हमेशा इस देश में, आप ये बताइए तो, 1952 से चुनाव हो रहे हैं, सब यहां बैठे हुए हैं, कब इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, ये कब मुद्दा किस चुनाव में नहीं रहा है? ये स्थायी मुद्दे हैं, परमानेंट मुद्दे हैं, ये अगले 100 साल तक परमानेंट रहेंगे। जब तक विकसित भारत नहीं बनेगा उसके बाद भी 20 साल तक ये, 1947 के बाद तक ये मुद्दे रहेंगे। हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि बेरोजगारी रहनी है, भुखमरी खत्म हो गई है, कोई भूखे नहीं मरता इस देश में। ये कब से हुआ? ये पिछले 10 सालों से हुआ। कैसे हुआ? इसी से क्रेडिबिलिटी बनती है। नेतागिरी कोई एक दिन की फसल नहीं होती है, जो इस देश में होते आ रहा था 70 साल से। फलाना परिवार में पैदा हो जाइए, आपको सर्टिफाइड नेता बन गए, जरा गैंडियों के नाम से गैंडी हटा दीजिए, लड़वा लीजिए कहीं से चुनाव, 5,000 वोट भी नहीं आएंगे। क्रेडिबिलिटी क्या है? कौन से आपने संघर्ष किया, कौन से आप पक के निकले हैं, कौन सा आपने संगठन किया है, कौन से आपकी क्रेडिबिलिटी, क्या आपने जनता के लिए किया, ये जनता जानना चाहती है। आज का जंजी जानना चाहता है। जंजी के सवाल सरकार से होते हैं, लेकिन जंजी विपक्ष को नहीं पूछता है, ये आप लोग भूल रहे हैं हमेशा। किसी भी आंदोलन में जंजी ने विपक्ष को नहीं पूछा, विपक्ष से उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। उसको पता है कि विपक्ष नहीं कर पाएगा, उसको पता है कि हमारे जो भी मुद्दों का समाधान होगा सरकार ही करेगी, चाहे वो फिर केंद्र की सरकार हो, चाहे झारखंड में हो रहा हो, किसी भी। हम तो खुद कह रहे हैं, मैंने आपको खुद कहा था आपके डिबेट में, कि झारखंड में छात्रों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म यूज नहीं करने दिया। इसकी मैं तारीफ करता हूं, एक राजनीतिक दल के नाते हमारी भी इच्छा हुई थी, जाए क्यों नहीं जाए, हमारा नैतिक समर्थन आज उन्होंने झारखंड बंद किया है, लेकिन छात्र उसमें नहीं आए। हमारे ABVP है, हमारा भारतीय जनता पार्टी है, छात्र वहां के छात्र नहीं आए आंदोलन में। तो मुद्दे समय के हिसाब से बदलते हैं। NDA की प्रति लोगों का लगाव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड कैडर का लगाव हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं स्वाभाविक उनका लगाव दूसरी तरफ होगा, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में विपरीत विचारधारा वाले भी एक मंच पे आते हैं कि पहले इसको हटाओ। ये देश में कोई नया नहीं हुआ, ये देश में पहले भी हुआ, कांग्रेस को हटाने के लिए सब एक मंच पे आए थे। भारतीय जनता पार्टी तो मर्ज कर गई थी 1977 में, 1989 में VP सिंह के साथ सबको मिल गए थे कि कांग्रेस को हटाओ। मुद्दा क्या था दोनों जगह? भ्रष्टाचार। आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने का क्या मुद्दा है? भ्रष्टाचार नहीं, देश को बदल रहे
1: भ्रष्टाचार भी 11.9% जनता मानते हैं, जेंजी के 11.9 यानी टॉप 3 मुद्दे अगर हम देखें,
2: इसके पहले का 40 साल का
1: एजुकेशन,
2: पहले के 40 अब नहीं आज तक का भी 25 साल,
1: अगर टॉप 3 मुद्दे देखें तो उसमें एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़े मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। और ये बात मैं मानता हूं कि हर चुनाव में मुद्दा ही सबसे बड़ा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव दर चुनाव स्थिति बदलती रहती है। 2014 के चुनाव में हमने देखा कि भ्रष्टाचार यह सबसे बड़ा मुद्दा बना था, विकास की राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन उसके बाद नेता पर भी चुनाव लड़ने लग गए। तो इसके वजह से चुनाव में मुद्दे तो अहम रहते हैं, लेकिन कौन से मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं लोग, यह भी तो देखना होगा। और आज की स्थिति में जब जेंजी राजनीति ड्राइव कर रहे हैं, फिर वो झारखंड हो या देश में दिल्ली में, उनके सबसे बड़े मुद्दे एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर भी तो ध्यान देना होगा ना कहीं
2: 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड लूंगा बस। मैं कह रहा हूं साहिल जी कि इस देश में जेंजी की आज हम बात कर रहे हैं, एक शब्द कॉइन हो गया जेंजी। आप ये बताइए मुझे, इस देश में युवाओं ने कब राजनीति को ड्राइव नहीं किया, लेकिन हमेशा उनको डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई रहता था। जयप्रकाश आंदोलन हुआ, यह छात्रों का आंदोलन था, जो गुजरात से निकला, बिहार में चला, पूरे देश में फैल गया, सारे आंदोलनकारी छात्र थे, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी

0: गुजरात यूनिवर्सिटी हो कहीं हो, युवाओं की फोर्स हमेशा रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारी एवीवीपी कोई भारतीय जनता पार्टी के अनुष्ठान नहीं है, ये आरएसएस का एक अंग है। और इसमें कब से एंट्री होती है, 15 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से। जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी, जिसको आज हम 97 के बाद का बॉर्न का मानते हैं, जिनको हम आज के 30 साल से नीचे का युवा मानते हैं, इस देश की राजनीति में हमेशा परिवर्तन, आज से नहीं 1975-76 से इस देश की राजनीति में युवाओं का, 30 साल से नीचे के युवाओं का हमेशा अहम योगदान रहा है, इसको कभी नकार ही नहीं सकते हैं। इसलिए बस आज की तारीख में जेनजी इंपॉर्टेंट हो गया, ये मानना बिल्कुल गलत है। हमेशा से युवा मजबूत थे।
1: कभी कभी
0: नरेंद्र मोदी का अगर आप निकाल
1: समय, के समय पे बदलता रहता है।
0: 18 से 30 वर्ष, 25 वर्ष की आयु में
1: के बाद जेनजी ने जो सत्ता बदल कर दिया था,
0: जो
1: उन्हें दोबारा सतह पर आने के लिए 1990 आना पड़ा, मंडल की राजनीति आनी पड़ी, 2014 आना पड़ा, और आज भी एक बार फिर सड़क पर जेनजी उतरा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए सवाल यहां पर जरूरी है और इसीलिए सवाल हम पूछ रहे हैं। चरण सिंह सप्रा, नेता से ज्यादा मुद्दे बड़े हैं, नेता से ज्यादा मुद्दे बड़े हैं।
2: साहिल जी, आपने ठीक कहा, आपका सर्वेक्षण जो कह रहा है कि मुद्दे बड़े हैं, और मुद्दों में भी उन्होंने देखिए क्या लिखा है, रोजगार लिखा है, स्वास्थ्य का मुद्दा लिखा है, और शिक्षा का मुद्दा जो है वो भी बड़े तरीके से है। क्योंकि आज की जो जेंजी है ना, वो घोषणावीर नहीं चाहती है, वो ज्ञानवीर व्यक्ति चाहती है अपना नेतृत्व जो उनका करे। वो चाहते हैं कि कोई अनपढ़ नहीं, कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारा नेतृत्व करे, कोई फर्जी डिग्री वाला नहीं, कोई असली डिग्री वाला हमारा नेतृत्व करे। ये जेंजी चाहती है, ये आपके जो आंकड़े हैं इससे नजर आता है। जेंजी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है वो बाजार ना बने, वो मुनाफाखोरी का जरिया ना बने, उसके ऊपर बोलियां ना लगे, वो कहीं पर आउटसोर्स होने वाला शिक्षण व्यवस्था ना हो, इसीलिए ये सारी तमाम गड़बड़ियां जो है वो हो रही है। जेंजी जो है वो सतर्क है, और जेंजी जो है आने वाले समय के अंदर इस देश की मूवमेंट को लीड करेगा। और अभी इन्होंने जो बात थोड़े देर पहले कही, इन्होंने एक शब्द वापरा, गांधी शब्द वापरा, उससे भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि गांधी शब्द निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि जिसको ये इस शब्द से नवाजते हैं वो क्यों नवाजते हैं? क्योंकि इनको अपने मोगैम्बो को खुश करना है, और ये भूल जाते हैं कि इस परिवार के दो महान नेताओं ने इस देश के लिए आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहादत दी है। ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि आदरणीय पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इस देश की उस इमारत की नींव को भी मजबूत किया, और इमारत को भी मजबूत किया जिस इमारत पर खड़े होकर के इस देश के शाह और तानाशाह आज मुजरा करते हैं। मुजरे की बात करते हैं ना, ये इमारत की नींव जो है ये उसी गांधी परिवार ने रखी है। आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी आपको मजबूत नींव वाली इमारत दी है और उसके आप मुजरा करते हो, उसके ऊपर खड़े होकर के आपने इस देश का बेड़ा गर्क किया, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया, आर्थिक विषमता हो गई है इस देश के अंदर, नौकरियों में बेड़ा गर्क हुआ है, महंगाई में बेड़ा गर्क हुआ है, इस देश की विदेश नीति का बेड़ा गर्क आपने किया है। इस देश का बेड़ा गर्क करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जेंजी जो है वो सड़कों पर है, आपके काबू में नहीं आता, आपको पैलेट गन चलानी पड़ती है, आपको AK-47 चलानी पड़ती है, आपको पिस्टल चलानी पड़ती है। बिहार के अंदर सिवान में 3-3 छात्र घायल हुए, एक को गोली गले के पास से गई, एक को शोल्डर में लगी है, एक के घुटने में लगी है। क्या इसका
1: दोनों के लिए मुझे एक बात
2: नहीं
1: कहनी
2: देना
1: है।
2: चाहिए
1: दोनों पार्टियों के लिए,
2: अमित शाह को,
1: क्योंकि एक सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक विपक्षी दलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के लिए एक बात कहनी है। राजनीतिक मुद्दे पर या एक दूसरे के नेता के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके आप डिबेट लंबी खींच सकते हैं, लेकिन देश का युवा अपने मन में बिल्कुल क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है कि उसे क्या चाहिए राजनीति से। उसके मन में यह बात बिल्कुल साफ है कि उनके मुद्दे क्या है। उनके मन में अपना रोजगार यह सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके मन में शिक्षा यह सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके मन में महंगाई यह सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके मन में करप्शन यह सबसे बड़ा मुद्दा है, और बाकी सारे मुद्दे उनके लिए पीछे हैं और उस पर वो ज्यादा जोर नहीं देना चाहते। और इसलिए आशुतोष, क्या कारण आपको लगता है? अजय आलोक ने एक बात तो सही कही कि हर चुनाव दर चुनाव यही
0: साहिल जी मुझे 30 सेकंड्स दीजिए।
1: आलोक जी आपके पास आता हूं,
0: साहिल जी मुझे
1: मैं आऊंगा आपके पास, मैं जरा बाकी सवाल भी है,
0: 30 सेकंड्स
1: आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। अजय आलोक जी थोड़ा थोड़ा सब्र करिए, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास,
0: 30 सेकंड
1: अजय आलोक जी आता हूं आपके पास। आशुतोष
0: मैं उसके बाद
1: नहीं आता हूं आपके पास,
0: 30 सेकंड दीजिए।
1: क्योंकि आप कुछ बोलेंगे उसके बाद फिर वापस पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाएगी। आज मुझे पॉलिटिकल डिबेट नहीं करनी है, और मेरी मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जिस नेता का जो नाम है उसी नाम से आप भी संबोधित करें तो अच्छा होगा, फिर उनको मैं रोक नहीं पाऊंगा और फिर इसी पे डिबेट होती रहेगी। आप जरा देखिए कि आईना दिखाने की कोशिश है राजनीतिक दलों को कि जेन ज़ी आप लोगों के बारे में क्या सोच रहा है, और वो भी सवाल मुझे लेने हैं। इसीलिए आशुतोष जी, चार हमने जो दो सवाल फिलहाल रखे हुए हैं उससे एक बात साफ होती है कि जेन ज़ी के मन में एक बात क्लियर है कि उनके सामने क्या मुद्दे हैं। यह बात भी ठीक है जो अजय आलोक कह रहे हैं कि हर चुनाव में एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन चुनाव के नतीजे और आज की स्थिति में जो चीज दिखाई दे रही है उसको देखकर आप इस सर्वे को देखकर क्या कहेंगे, और उसके बाद सत्य
3: प्रकाश। देखिए साहिल, मैं एक बात में तो अजय आलोक की बात से सहमत हूं कि इस देश में जब भी चुनाव होता है तब हमेशा बेरोजगारी महंगाई ही मुद्दा होता है, लेकिन फिर सरकारें क्यों बदलती हैं? सरकारें इसलिए बदलती हैं क्योंकि कौन उन मुद्दों को सुलझा सकता है इस पर निर्भर करता है कि वो किसको वोट देगा। इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी कही जाती है। जब कोई सरकार होती है और वो तमाम दावों करने के बाद उन मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रहती है तब उस सरकार की साख पर खतरा पैदा होता है और तब उसके खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश पैदा होता है और फिर वो उसको छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट देता है जिसके बारे में सोचता कम से कम ये उनके मुद्दों को सुलझा सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में क्या है, मैं आपको बताऊं कि देखिए जब छात्र इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड के अंदर हो चाहे वो जंतर मंतर के अंदर हो, वो अकारण तो नहीं है। वो जो उनका गुस्सा दिखाई पड़ रहा है वो सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, वो विपक्ष के खिलाफ गुस्सा नहीं है। आप पिछले 12 साल से सत्ता के अंदर हैं, अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं तो बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई कब होगा इस समस्या का समाधान, ये असली सवाल है। इसीलिए मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि इस पूरे मामले से अब केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जाग जाना चाहिए। अगर अभी भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिन शब्दों के माध्यम से इनके शिक्षा मंत्री ने कहा था ये तो दहशतगर्दियों की बी टीम है, तो फिर उनको नुकसान होगा। ईमानदारी की बात यह है कि आज उदारता के साथ, विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं और हम इन मुद्दों को समझाने में नाकाम रहे। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने तब क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी खाते में आएंगे, क्या वो हुआ क्या? अगर ऐसा होता तो आज स्थिति नहीं होती। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सीधी सी बात है, सुरजीत भल्ला जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और कहा कि इंडिया आज फ्रजाइल 5 नहीं, फ्रजाइल 2 में है। ये सुरजीत भल्ला के बयान, ये सरकार के आलोचक नहीं है, ये सरकार के साथ काम कर चुके हैं, मौजूदा सरकार के प्रिय रह चुके हैं। अगर वो ये कहते हैं कि आज भारत फ्रजाइल 5 नहीं बल्कि फ्रजाइल 2 में है, इनके साथ साथ सुभाष चंद्र गर्ग हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जो वित्त सचिव रह चुके, उन्होंने कहा है कि भारत फ्रजाइल, वो सुरजीत भल्ला से कदम आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं फ्रजाइल 2 नहीं बल्कि अब अकेला रह गया है। ये सब बातें जब होने लगती हैं तब सरकार को गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। यही गलती मनमोहन सिंह ने की थी 2011
1: में। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है आशुतोष? क्या ये बात सही नहीं है आशुतोष जो अजय आलोक कह रहे थे, ये बात भी सही है कि आप ये सर्वे कभी भी करा लीजिएगा। हर बार लोग आकर यही कहेंगे कि महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, हर बार लोग आकर यही कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, हर बार लोग आकर यही कहेंगे कि सड़क बिजली पानी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन वोट का पैटर्न हर बार चेंज होता है, तो इस बार नया क्या है?
3: देखिए साहिल, मैंने शुरू में कहा कि मैं अजय आलोक जी के इस बात से सहमत हूं जब भी आप करेंगे, क्योंकि ये आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें अगर पूरी नहीं होंगी तो वो अपने अपने मुद्दे को सामने रखेगा और दुनिया में कहीं भी वो मुद्दे सामने। सवाल क्या, सवाल साख का है कि इनको सुलझा कौन सकता है जो, और मैं सर्वे पे उतना नहीं जाता हूं, मैं ये जाता हूं कि जो इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर, जिन जी इकट्ठा हुआ, बच्चे इकट्ठा हुए और जिसका रेजोनेंस पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ा, मिजोरम में लोगों ने टॉर्च लाइट प्रोसेशन निकाले, वो क्यों निकाले? क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षाएं थी, भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं, तो पूरी नहीं हो रही थी। बेरोजगारी आज चरम के ऊपर है, उसको स्वीकार करें ना स्वीकार, और झारखंड में भी, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूं, झारखंड में भी बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन अगर 18 राज्यों में आपकी सरकार होगी, केंद्र में आपकी 3 बार की सरकार होगी,
1: 2019 के चुनाव हुए थे तब हर सर्वे नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता था, लेकिन आज की स्थिति में इस सर्वे में दिखता है कि नेशनल सिक्योरिटी नंबर 5 पर है जेन ज़ी के सर्वे में, लेकिन उसके साथ साथ क्या देखकर वोट करेंगे ये जब सवाल पूछा जाता है तब लीडर और पार्टी से ज्यादा मुद्दा यह सबसे आगे रखा गया है जेन ज़ीज़ की तरफ से, और करीब करीब हर राज्य में, यह नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, करीब करीब हर राज्य में अगर जेन ज़ी वोटर्स की संख्या देखे तो 20% से ज्यादा वोटर जेन ज़ी पाए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पार्टी या नेता देखकर वोट नहीं देंगे। ये क्या बदलाव है या हमेशा ऐसा ही देखा गया है?
4: देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आपने कहा 219 में पहले पायदान पर था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एनडीए सरकार ने एक स्थिति पाई, उसको मजबूत किया, तो मुद्दा पांचवें स्थान पर है। एक सवाल लोकतंत्र में हमेशा रहता है कि चूहे और दूध की हिफाजत बिल्ली को तो नहीं करने देंगे ना, तो नेता होगा कौन? सामाजिक न्याय से दो नेता निकले, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। बिहार की जनता ने किसे चुना 20 साल तक? नीतीश कुमार जी को। क्यों? क्रेडिबिलिटी थी, साख था। तो अभी बताया ना आशुतोष जी ने कि मुद्दा हमेशा रहेगा, अजय जी ने कहा, लेकिन उसको डिलीवर कौन करेगा? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो देश में 12 साल से है उसने बेरोजगारी महंगाई पर काम नहीं किया? क्या जो 50,000 डॉक्टर बनते थे आज 1,32,000 नहीं बन रहे हर साल? क्या इंटर्नशिप की योजना नहीं आई? शोध में पैसे नहीं बढ़ाए गए? कॉलेजों की संख्या नहीं बढ़ी? क्या शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का? ये सारे मुद्दों पर एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो। कभी नहीं सुना था मैंने कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदियां भी हैं। आज करीब करीब राज्य सरकारें महिलाओं को कुछ ऐसा तो दे रही है ना जो पहले कभी नहीं दिया गया। प्रेरणा आप किसी से ले सकते हैं। तो सवाल है कि डिलीवर कौन करेगा, मुद्दे की रक्षा कौन करेगा? मुद्दा तो है, हमेशा रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा रहेगा, देश का विकास रहेगा, आर्थिक दर रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन उस मुद्दे पर काम कौन करेगा? अभी कह देंगे कि राहुल गांधी जी के परिवार ने वो कहा ना कि शहादत दी है, आपने बाकी सबका योगदान कम कर दिया ये कहकर कि उन्होंने ही देश को हलवा खिलाया है, बाकी लोग तो हलवा लूट कर चले गए।
1: लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है, मुझे याद है 2014 का पूरा कैंपेन जहां पर अब की बार मोदी सरकार के नाम से कैंपेन चलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा लीडरशिप मॉडल था जो पेश करके बीजेपी ये कह सकती थी कि हम एक नया मॉडल इस देश में लाना चाहते हैं, एक नेता को प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन आज की स्थिति में जेंजी आकर कहते हैं कि नेता और पार्टी छोड़कर हम मुद्दे के आधार पर वोट देना चाहते हैं सत्यप्रकाश जी, और सवाल मेरा यही है, ये बदलाव क्यों हुआ? क्या नेता से ज्यादा मुद्दों पे आधारित राजनीति जेंजी पुश करना चाहते हैं?
4: मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो नेता उन मुद्दों को लेकर जीता है, जिसमें कमिटमेंट होता है इन मुद्दों को लेकर के, वही नेता उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में मुद्दे हमेशा महत्वपूर्ण रहे, मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी थी, मुद्दा महत्वपूर्ण था भ्रष्टाचार का, लेकिन उस मुद्दे को जिया किसने? वीपी सिंह ने जिया उस मुद्दे को, मंडल कमीशन को जिया किसने? अगर
1: फेस लगता है,
4: आडवाणी
1: चेहरा लगता है,
4: यात्रा लेकर निकले थे, वो मुद्दा महत्वपूर्ण था उस समय, जिया किसने? वाजपेयी जी ने जिया, आडवाणी जी ने जिया, गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में 6 साल तक चली। मुद्दा नेता को अलग नहीं कर सकते, नेता मुद्दों को जिएगा तो देश में बदलाव आएगा।
1: जंतर मंतर के आंदोलन में कोई एक फेस बनकर नहीं उभरा था। अण्णा हजारे के आंदोलन में मैं भी अण्णा की टोपी पहन के लोग घूम रहे थे, क्योंकि अण्णा हजारे उस पूरे आंदोलन का चेहरा बनकर बाहर निकले थे। झारखंड के आंदोलन में कोई एक चेहरा बनकर नहीं निकला, वो विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का आंदोलन के तौर पर उसे देखा गया। यह बहुत बड़ा फर्क ये भी देश में कहीं ना कहीं दिख रहा है, और वो सर्वे के जरिए दिख रहा है। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल यहां पर, और उसके बाद मैं पैनल में डिस्कशन ओपन करूंगा क्योंकि बाकी सारे सवाल भी मुझे रखने हैं, क्या ऐसी बात है कि जिसके आधार पर भूमिका एजेंसी बनाते हैं, नंबर एक, और क्या आज की स्थिति में जो राजनीतिक दल या नेता यहां पर है, क्या वो उनके मुद्दों को समझते हैं, एजेंसी क्या समझते हैं उस बात को लेकर? तो आगे के सवाल भी जरा एक बार देख रहे थे। तीसरा सवाल जो पूछा गया था, बड़ी स्क्रीन पर दिखाइएगा, सोशल मीडिया की सियासी राय बनाने में कितनी भूमिका है? 50% जेंजी मानते हैं कि हाँ सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है, 24.6% कहते हैं कि नहीं ये बड़ी भूमिका नहीं है। चौथा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक दलों को आईना दिखाने वाला सवाल, क्या राजनीतिक दल जेंजी के मुद्दों को समझते हैं? हाँ कहने वाले सिर्फ 20.7% है, एनडीए के समर्थक में भी 26% लोग जेंजी समझते हैं कि हाँ राजनीतिक दल जेंजी के मुद्दों को समझते हैं, जबकि 58.7% जेंजी समझते हैं कि राजनीतिक दल हमारे मुद्दों को नहीं समझते। तीसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया था कि क्या आप अपनी जाति के प्रत्याशी को ही वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में यह सवाल बार बार उठाया गया, महाराष्ट्र में भी यह सवाल बार बार उठाया गया। हां कहने वाले सिर्फ 24.4%, 48% जेंजी कहते हैं कि हम हमारी जाति के प्रत्याशी को ही वोट देना पसंद नहीं करेंगे, हम मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। सातवां सवाल, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वोटिंग के समय उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी जरूरी आप समझते हैं, यानी पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है जो कैंडिडेट जिसको आप सांसद बनाकर भेजने वाले हैं, विधायक बनाकर भेजने वाले हैं। ये सवाल, जब ये सवाल पूछा गया तब उसमें भी ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे, यानी 74.6% जनसी समझते हैं कि हम युवाओं को हम शैक्षणिक योग्यता देखकर वोट देंगे। और कितनी, अगर बड़ी पार्टियां युवाओं को टिकट देते हैं तो क्या आप उनको वोट देंगे? 74.6% मानते हैं कि हम, अगर युवा प्रत्याशी दिया जाता है तो हम उन्हें वोट देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम नजर डालें, नंबर्स पे नजर डालें, तो ये बात साफ नजर आती है कि फिलहाल संसद के भीतर सिर्फ 26 सांसद ऐसे हैं जो जेंजी कहला सकते हैं, 40 के नीचे उनकी उम्र है, जबकि पूरे देश में केवल 300 विधायक ऐसे हैं कि जो 40 के नीचे उनकी उम्र हम देख यहां पर सकते हैं। तो अजय आलोक जी, एक बात साफ है कि राजनीतिक दलों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है उनका, उनको लगता है कि हमारे मुद्दों को वो नहीं समझ रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, नेता कोई भी हो।
0: जवाब देने के पहले मुझे सपरा जी को, सचतो जी को बस दो दो लाइन बस याद दिलाना, और कुछ नहीं। देखिए, मैंने गैंडी गैंडी बोला, इनको बहुत खराब लगा, लेकिन ठीक है, तो आप ही गांधी बोल लेते, सपरा जी तो खुद ही गैंडी गैंडी करने लगे। जो सही नाम है वही बोला ना, तो वही देश भी बोलेगा। एक चलता है ना, ट्रेंड चलता है।
1: अजय आलोक जी,
0: गया ना मैं,
1: अजय आलोक जी ये मत करिए, आप मुझे बताइए लोकसभा के भीतर, लोकसभा के भीतर नेता विपक्ष का क्या नाम रखा हुआ है? ये बेवजह की बहस करने का कोई मतलब
0: की बात इन्होंने की,
1: कृपया करके आप उसको
0: दो प्रधानमंत्री की शहादत की बात की,
1: जो नाम रखा गया वही नाम,
0: मैं बहस का मुद्दा नहीं बना रहा।
1: क्या नाम से बुलाते हैं राहुल गांधी को?
0: ठीक है, मैं बहस का मुद्दा नहीं बना रहा।
1: किस नाम से बुलाते हैं? तो आप डिबेट पे आकर ये सब नाम क्यों लेते हैं? बेवजह बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा बहस करते हैं, अच्छे प्रवक्ता है, कृपया करके ये सब बातें मत करिएगा।
0: मैं बेवजह बहस,
1: ये बेवजह की बात
0: आपको पता है,
1: आपको भी पता है,
0: मैं बेवजह बहस नहीं करता हूं, उन्होंने खुद बोला,
1: मामला भटक जाएगा उसमें।
0: अब दोष प्रधान,
1: मैंने इसीलिए पूछा, लोकसभा के स्पीकर नेता विपक्ष को किस नाम से बुलाते हैं?
0: दोनों प्रधानमंत्री की, दोनों प्रधानमंत्रियों, मैं आगे बोल लूं, दोनों प्रधानमंत्रियों की शहादत नहीं थी। इंदिरा गांधी जी गई जनरल सिंह भिंडरवाला के कारण, किसने खड़ा किया जनरल सिंह भिंडरवाले को और सिख आतंकवाद? खुद इंदिरा गांधी ने। ये क्या पूरे देश को नहीं पता है? जेंजी को पता होना चाहिए, पढ़े जेंजी। जनरल सिंह भिंडरवाले को किसने खड़ा किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने खड़ा किया? और तभी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, शहादत हुई है। खुद से आतंकवादी खड़ा कीजिएगा, वो आतंकवादी आपको मार देगा, अपने आप को शहीद कहिएगा। एलटीटी को किसने खड़ा किया? प्रभाकरन को किसने खड़ा किया? राजीव गांधी ने खड़ा किया। आईपीएफ करके हमारे इतने सारे इंडियन सोल्जर्स को मरवा दिया श्रीलंका में। अपने से आतंकवादी खड़ा करोगे, खुद को आतंकवादी आपको डस लेंगे और आप शहीद हो गए। ये होती है शहादत, शहादत का अपमान मत कीजिए। दूसरी बात, आशुतोष जी आपने कहा सरकार के प्रिय, सरकार के प्रिय तो बहुत लोग होते हैं भाई साहब। समय का फेर होता है, समय का फेर होता है सरकार का प्रिय होना। पूर्व राज्यपाल और बहुत सारे सांसद भी सरकार के प्रिय थे। आज तो बड़ा इकोनॉमिक काउंसिल की याद आ रही है, सरकार के प्रिय तो आप भी थे जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए थे। क्या कहां हैं आप? सरकार के प्रिय अपने हिसाब से लोग होते हैं, इसलिए सरकार का प्रिय किसी को मत कहिए। नेशनल सिक्योरिटी में सर्वे 5वें नंबर पे आया कि जेंजी इसको नंबर 5 का मानता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस जेंजी ने 2005 के बाद पैदा, 2014 के बाद पैदा होने वाले लोगों ने, और 2014 में जो 10 साल के हो गए थे, जिनकी आज उम्र लगभग 22 साल 23 साल हो रही है, वो बॉम्ब ब्लास्ट भूल गए हैं। उन्होंने नहीं देखा ट्रेनों में ब्लास्ट होते हुए, बसों में ब्लास्ट होते हुए, टेररिस्ट एक्टिविटी होते हुए, सिनेमा हॉल में लिखा हुआ कि कोई भी अलार्म बजे बाहर भागो, ये नहीं देखा। ये 14 के पहले हमने देखा है, जब बीपी सिंह का आंदोलन हुआ था, हम लोग भी सो कॉल जेंजी थे, 17-18 साल की उम्र थी। आशुतोष जी हम लोग से एक दो साल तीन साल बड़े होंगे, वो भी जेंजी थे। उस वक्त क्या माहौल था? वाह वाह वाह, बोफोर्स मैया गई, खा गई कांग्रेस 186 करोड़ रुपया। हर वक्त का माहौल अलग होता है, हर वक्त का समय अलग होता है। आज जो ये माहौल हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये 12 साल के नरेंद्र मोदी की उपलब्धता है कि आज देश का व्यक्ति और देश का जेंजी नेशनल सिक्योरिटी को नंबर 5 पे दे रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। और आप कह रहे हैं कि कोई इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं थे? जंतर मंतर आंदोलन का चेहरा अभिजीत दीप के कंटाल कंटाल पता नहीं क्या क्या, रोज दिन आप लोग उसका इंटरव्यू चलाते रहते हैं, जा जाकर उसको लाइव करते हैं। आप कहते हैं कोई चेहरा नहीं बना? झारखंड में महतो, देवेंद्र महतो, उसको रोज दिन लोग चला रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, चेहरा नहीं बना? अंधा आंदोलन का कोई चेहरा नहीं बना? केजरीवाल आज तक रोटी खा रहे हैं पंजाब और दिल्ली की, चेहरा नहीं बना?
1: मैंने तो कहा आंदोलन का चेहरा बना। अन्ना आंदोलन इसीलिए जाना जाता है कि अन्ना आंदोलन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अन्ना हजारे उसका चेहरा थे। अभिजीत आंदोलन नहीं कहा जाता जंतर बंतर के आंदोलन को, या झारखंड के आंदोलन को देवेंद्रनाथ आंदोलन नहीं कहा जाता।
0: यही फर्क,
1: क्या बात कर रहे हैं आप अजय आलोक जी? इतनी तो राजनीतिक समझ तो मुझे भी है, मैं भी देख सकता हूँ। मैं भी अन्ना की टोपी पहन के वहां पर लोग घूमते थे और कई सारे लोग उसमें घुसे हुए थे। इस बार किसी एक नेता का नाम लेकर आंदोलन नहीं किया गया था,
0: दूर रखा।
1: और जैसे इंटरव्यू अभिजीत दिपके का किया गया, वैसे इंटरव्यू देवेंद्रनाथ महतो का भी किया गया। आपको क्यों दर्द हो रहा अगर अभिजीत दिपके का इंटरव्यू किया जाता है?
0: पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी खेती करनी चाहिए। जंतर मंतर का आंदोलन और कुछ नहीं था, राजनीतिक खेती थी जिसमें रासायनिक डाला गया। और उस रासायनिक का सबसे बड़ा
1: उदाहरण, बात का भी जवाब दीजिए, क्यों जेन ज़ी समझते हैं कि राजनीतिक दल उनके मुद्दों को नहीं समझ रहे, इस बात का भी जवाब दीजिए।
0: कमिश्नर का ट्रांसफर
1: अजय आलोक जी, सर्वे में जो दिखाई देता है कि जेन ज़ी समझते हैं कि राजनीतिक दल उनके मुद्दों को नहीं समझ रहे, इसका भी जवाब दीजिए। ऐसा क्यों उनको लगता है और बड़े पैमाने पर लोगों को उनको लगता है?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जेन ज़ी ऐसा समझता है, क्योंकि अगर जेन ज़ी अगर ऐसा समझता, सबसे बड़ी बात, सिर्फ आंदोलन करने वाले जेन ज़ी नहीं है, इस देश में 40 करोड़ जेन ज़ी हैं। दोनों आंदोलन, झारखंड हो चाहे जंतर मंतर हो, दोनों आंदोलन की टोटल स्ट्रेंथ निकाल दीजिए ना वहां पे पहुंचने वाले लोगों की, तो 2 लाख भी क्रॉस करेगी। यही है हमारे जेन ज़ी। एक रिप्रेजेंटेशन को आप पूरे जेन ज़ी की भावना नहीं कह सकते हैं। जेन ज़ी बिल्कुल समझता है। आज हमारे AVVP के सदस्य हैं,
1: 70 लाख
0: पूर्ण टाइम है, वो जेन ज़ी नहीं है।
1: अजय आलोक जी, यही लॉजिक जेन ज़ी नहीं है। एनएसयूआई लागू होगा क्या? रांची के सड़कों पर भी ये लॉजिक लागू होगा क्या?
0: क्या लॉजिक? कौन सी लॉजिक?
1: यही लॉजिक
0: कि सड़कों पे या दिल्ली
1: एक दो लाख इकट्ठा होते हैं, उनको जेन ज़ी नहीं समझना चाहिए।
0: उसमें नहीं, जेन ज़ी की भावना नहीं है, पूरे जनरलाइज देश की जेन ज़ी की भावना नहीं। मैं कह रहा हूं व्यवस्था से जो परेशान है वो भी हमारे
1: जवाब,
0: व्यवस्था जो
1: चलेंगे।
0: एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की जिम्मेदारी क्या है?
1: ठीक है,
0: एक रेस्पॉन्सिबल सरकार की जिम्मेदारी है, व्यवस्था से जो परेशान है उसको आप ठीक कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपका फेलियर है।
1: ठीक,
0: मैंने शुरू से कहा ये बात, ऐसा नहीं कि मैंने जंतर मंतर में ये बात नहीं की थी और मैं आज तो ये बात कह रहा हूं।
3: देखिए, आज आलोक जी मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं आज उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत दुखी हूं अंदर से। और मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जो लोग नाथूराम गोडसे को अपना आराध्य मानते हैं, कभी गांधी जी की शहादत को, इंदिरा गांधी की शहादत को, राजीव गांधी की शहादत को समझ नहीं सकते। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा उनको ये नहीं कहना चाहिए जो आलोक जी ने आज कहा, इंदिरा गांधी को लेकर और राजीव गांधी को लेकर गलत उन्होंने कहा। दूसरी बात क्या है, ये जेन ज़ी का असर क्या है? अभी भी सरकार समझ नहीं रही, अभी भी अजय आलोक जैसे प्रवक्ता नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट, आपका आभारी रहूंगा। आपने बोला मैंने, आपने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब।
0: मैं आभारी रहूंगा, मैंने क्या गलत
3: किया? मैंने आपको जवाब दे दिया, अब आप समझे ना समझे। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि ये
0: इस देश की जनता
3: मैंने आपके बीच में नहीं टोका, प्लीज अभी ना टोके। आप दूसरे बीजेपी के प्रवक्ताओं के तरीके से बात ना करें, मैं आपका सम्मान करता हूं, प्लीज। देखिए, मैं महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज देश की फिजा ऐसी हो रही है, जेन ज़ी का आक्रोश इतना ज्यादा है कि देश के गृहमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पिछले 20 दिन से संसद में नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? कौन सी चीज है? मैं उन अमित शाह को जानता हूं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो आक्रामक रहते थे। अजय आलोक जी, मैं भी कुछ बोल दूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी, प्लीज। आप ऐसे प्रवक्ता नहीं है, आप इस तरीके से बात मत करिए। बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनको तमीज नहीं आती है, आपको आती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बीच में डिस्टर्ब ना करें आप। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये क्यों है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले 20 दिन से संसद में नहीं आए, कौन सी मजबूरी है? मैं उनको उन अमित शाह के तौर पर जानता हूं गुजरात के समय से, जो फ्रंट से लीड करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के सवालों के तगड़े से जवाब देते थे। आज क्या मजबूरी है? मजबूरी यह बदलाव आया है कि इस देश की जेन ज़ी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए आज सरकार की हालत है। और ये जो ये जो, जो, जो लोग खड़े हुए हैं वो जवाबदेही चाहते हैं, और सरकार जवाबदेही से बच रही है पूरी तरीके से। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आलोक जी और इनके जैसे प्रवक्ता अभी भी अगर अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का अपनी बोली से नुकसान कर रहे हैं। इस बात को अमित शाह समझ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को मोहन भागवत समझते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कहते हैं कि ये ईमानदार जनता है। आप उसको नहीं समझ रहे, आप बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, प्लीज इस बात को समझिए।
1: अजय आलोक जी, जवाब दीजिए।
0: आशुतोष जी आप गजब बात करते हैं। मैंने कहा कि जो हमसे संतुष्ट नहीं है वो भी हमारे अपने हैं। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों जेंजी हैं, मैं जेंजी को नहीं समझूंगा। मेरा बेटा मुझसे बहस करता है, मेरी बेटी बहस करती है, मेरी भतीजी बहस की कि लाठी चलाने की क्या जरूरत थी। जनपद में जंतर मंतर की एपिसोड में मुझसे बहस किया उन्होंने, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे अगर पार्लियामेंट पे चढ़ रहे थे इसलिए लाठी चलानी पड़ी, तो क्यों चढ़ रहे थे? उन्होंने इतना तक कहा कि अराजक तत्व आ गए तो इनको रोकने की जिम्मेदारी क्यों थी। इवन कि जब टेररिस्ट पकड़े गए पंजाब में और पंजाब के कमिश्नर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये दिल्ली गए थे जंतर मंतर डिस्टर्ब करने, दिल्ली पुलिस की सूचना पे हमने पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने पकड़ लिया उसके बाद उसको हटा दिया आपकी सरकार ने, क्यों ये क्यों हटाया? क्या जवाब देंगे आप? ये जनरेशन सवाल पूछती है और अगर सवालों का आप जवाब नहीं देंगे तो आप कल्प्रिट हैं।
1: ये भी नहीं सवाल पूछा कि सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी?
0: ग्रे मैटर है,
1: जंतर मंतर पे जो लोग बैठे थे उनसे सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी, ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा?
0: जंतर मंतर और जंतर मंतर
1: घर पे पूछा कि नहीं पूछा? आपने उदाहरण दिया इसके लिए
0: जानने की जरूरत है। जंतर मंतर में 20 जंतर मंतर में 19 दिनों तक सरकार से बातचीत की मांग ही नहीं की गई, कभी नहीं बोला गया कि हमको सरकार से बात करनी है। बैठे हुए धरना पे एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, फोटो ऑप चल रहा है, पिज्जा बर्गर चल रहा है। सरकार से तो बातचीत की तब बात शुरू हुई जब 20 तारीख को हिंसा हुई, तब ये लोगों ने शुरू किया। सरकार ने 19 तारीख को पूछा, दिल्ली पुलिस से कमिश्नर पूछा आपका प्लान क्या है, कुछ नहीं बोलना था। और वहां पे रांची में पहला प्रायोरिटी क्या था? हमारी मांगे ये हैं, सरकार अपना प्रतिनिधि भेजे।
1: आई एम श्योर सप्रा जी कि आपके घर में भी यही सवाल पूछे जाते होंगे
0: 17 दिन
1: जो अजय आलोक जी के घर में पूछे जा रहे हैं, और ये वाजिब सवाल जेंजी आज के दिन में पूछ रहा है और उसी सवालों के जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरे सर्वे में एक निकल कर आया है, क्या राजनीतिक दल उनके मुद्दों को समझते हैं क्या? और ज्यादातर जेंजी कहते हैं कि नहीं समझते, और उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ जंतर मंतर के आंदोलन के साथ साथ अलग आंदोलन खड़ा करने से या गूंज का आंदोलन करने से आपको लगता है कि जेंजी आपके साथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि राजनीतिक दल, मौजूदा राजनीतिक दल यह आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, और इसीलिए सीजेपी और वहां पर झारखंड में कोई नया नेता आकर कहता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपको भी तो सीख की जरूरत है। यह सर्वे आपके लिए भी एक बड़ा आईना दिखाने वाला सर्वे हम मान सकते हैं।
2: देखिए साहिल जी, निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो हमेशा सीख लेता रहेगा, हम तो सीख ही रहे ना, और विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है। विपक्ष जो है जनता के सवाल और जो छात्रों के सवाल है उसको रास्ते पर सदन से लेकर के सड़क तक हम उठाते आए। जो छात्रों की गूंज की बात की है वो सड़क पर हमारी आवाज है, और संसद में राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये सत्ताधारी पक्ष को समझना पड़ेगा, उनके प्रवक्ताओं को समझना पड़ेगा कि उनके नेता तो इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहते रहे हैं, दुर्गा कहते रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने तो अपनी बुद्धिहीनता का प्रमाण दे दिया, इन्होंने अपना मानसिक दिवालियापन जो है वो यहाँ पर दिखा दिया है। इन्होंने अब बीच में मत बोलिए ना, मानसिक दिवालिया। देखिए आपका मानसिक
1: क्लैरिफाई कर दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने
0: भाई अपने नेता की कमी पड़ गई,
1: अधिकृत तौर पर यह बात कही थी कि उन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा, यह बात आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। देखिए डिबेट पे सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के पटल पर ही क्लैरिफाई कर दिया था कि मैंने कभी दुर्गा नहीं कहा। चलिए
2: मैं ये कहता हूँ कि जो बुद्धिहीनता का प्रमाण इन्होंने आज दिया है, या मानसिक दिवालियापन का या पागलपन का प्रमाण दिया है, कल शाह और तानाशाह पार्लियामेंट में खड़े होकर वही बात कह दें जो आलोक शर्मा ने कही है इंदिरा गांधी जी के बारे में।
0: अरे भाग क्यों रहे पार्लियामेंट से,
2: गांधी जी के बारे में पार्लियामेंट में जाकर के खड़े होकर के कह दे ना। आपका ये पागलपन है जो आपने आज जनता के सामने दर्शाया है। दो शहादतों का अपमान, दो शहादतों का अपमान
0: थी, और आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई,
2: का अपमान किया
0: आपकी समर्थित सरकार थी, राजीव गांधी की हत्या हो गई। आपसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलेगा।
2: साहिल जी मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनको फ्रेम से हटाइए, साहिल जी इनको फ्रेम से हटाइए, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था ये अन्याय।
1: बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए, वो सुन रहे हैं।
2: हाँ, ये अन्याय हो रहा है, और ये आलोक शर्मा जैसे बहुत मैंने पेल दिए हैं आज तक, मुझे भी 40 साल हो गए भाई। तो मेरे सामने जब भी बैठोगे ना तो जरा जरा
1: आलोक शर्मा जी आप ही के प्रवक्ता है, आज आलोक जी
0: प्रवक्ता है,
1: आलोक शर्मा जी तो आप ही के प्रवक्ता।
2: आलोक, हाँ, ये जो आलोक है ना, ऐसे
0: बदमाशी आ गई,
2: ऐसे मैंने कई पेल दिए हैं। तो मैं तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे पानी मैंने देखे हैं, 40 साल मुझे हो गए। सवाल का जवाब ये है कि आज जो ये आंकड़े बता रहे, ये आंकड़ों में जो बात कर रहे हैं कि जाति पर ये जेंजी वोट नहीं देने वाला है, तो ये आपके लिए अलार्म बेल है। ये जो दूसरी अलार्म बेल बज रही है कि शैक्षणिक, मैंने शुरू में कहा कि देश का जो जेंजी है वो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहता है, अनपढ़ नहीं चाहता, फर्जी डिग्री वाला नहीं असली डिग्री वाला चाहता, ये मैंने पहले ही कह दिया। और ये अभी आज तक के इंडिया टुडे के इस सर्वेक्षण में भी आ रहा है,
0: राइफल शूटिंग वाला।
1: चलिए सत्यप्रकाश मिश्रा
2: ठिकाने में रखिए,
1: जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, एक बड़ा टेक अवे इससे यह भी निकलता है कि जेंजी एक नई राजनीतिक परिभाषा लिखना चाहते हैं चुनाव में, ना वो जाति के आधार पर वोट देना चाहते हैं, जाति देखकर वोट नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतारे। और सबसे बड़ी बात, वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रही है, उनके मुद्दे नहीं समझ पा रही है। यह राजनीतिक परिभाषा नए सिरे से लिखने की जरूरत राजनीतिक पार्टियों को भी होगी अगर ये बात सही निकलती है।
4: देखिए साहिल जी, इस देश की राजनीति में हमेशा ऐसा रहा है। इंदिरा गांधी जब अध्यक्ष थी, कांग्रेस बनाई, युवा तुर्क नेता कहलाते थे चंद्रशेखर, उसी पार्टी को छोड़कर जीपी आंदोलन में साथ आए, और नीतीश कुमार जी जैसे लोग उसी छात्र आंदोलन से निकले, मुलायम सिंह जी भी उसी आंदोलन से निकले। तो देश की राजनीति में जो युवा होता है उस समय, वर्तमान समय में, उससे आगे बढ़ने की वो बात करता है, और जाति की राजनीति नहीं है, क्योंकि जाति समाज में एक सच्चाई है, उसके प्रतिनिधित्व की भी राजनीति है। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि एक ही जाति के लोग हर जगह सत्ता में काबिज हों। एक सवाल बहुत बड़ा है, एक प्रश्न और पूछना चाहिए था कि कांग्रेस जो लगातार एक परिवार के नेतृत्व में चलती रही है, इसके बारे में जेनजी की राय क्या है? परिवार को उठा के फेंक दिया, 50 से नीचे सीट इसी जेनजी ने ले आया, गिर करके 99 पर पहुंचे हैं। तो गिरेबा में अपना भी झांका कीजिए सप्रा जी, ये देश का जेंजी सोच और विचार में कांग्रेस से बहुत समृद्ध, उससे बहुत आगे और मेच्योर हुआ है। उसने लगातार तीन बार लगातार सरकार चुनी है। कह रहे कि राजनीतिक दल उनकी मंशा, उनकी महत्वाकांक्षा या उनके मुद्दे नहीं समझ रहे। अगर नहीं समझ रहे होते तो नई कई पार्टियां नहीं बनती, राजनीतिक दलों ने समझा।
2: के बारे में भी दो शब्द बोल दीजिए,
1: ये सबसे बड़ी बात है। आशुतोष जी, आखिर में 20 सेकंड
4: बीच में बोल देते,
1: क्या नई राजनीतिक भाषा लिखने की तैयारी राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के वजह से जेंजी ये कह रहे हैं कि हमारी भाषा वो नहीं समझ पा रहे, नए सिरे से वो राजनीति को देखना चाहते हैं, ये बात सही है?
3: देखिए साहिल, इस सर्वे में एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस देश का पॉलिटिकल क्लास जो है वो अभी भी अनर्गल बातें कर रहा है, वो युवाओं के मुद्दों से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है, और ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब युवाओं का भरोसा पॉलिटिकल क्लास से खत्म होता है तब दिक्कतें पैदा होती है। अभी भी जरूरत है कि भारत के जो तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष की पार्टियां हैं वो गंभीर मुद्दों में चर्चा करें, एक दूसरे पर गाली गलौज ना करें।
1: और जब जब युवाओं को यह लगता है कि अपने मुद्दे राजनीतिक पार्टियां उठा नहीं पा रही है, जो फिलहाल राजनीति है वो नहीं उसको एड्रेस कर पा रही है, तो नए सिरे से आंदोलन खड़े होते हैं, और यही चीज आज फिलहाल देश में दिखाई दे रही है। और एक और एक अहम सवाल जो हमने पूछा था, उसके साथ में ये कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगा। जो आखिरी सवाल हमने पूछा था कि क्या आप सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को सही मानते हैं, तो सही मानने वाले 21.4%, कुछ हद तक सही है 15.1%, सही नहीं है कहने वाले करीब 30%, और बिल्कुल सही नहीं है ये कहने वाले भी करीब करीब 21% जेंजी है वो कहते हैं। यानी ज्यादातर जेंजियों को लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जेंजी का मूड हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, राजनीतिक पार्टियां इससे क्या सबक लेती है, इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
9: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
11: Jahan jurm, wahin kahani. Jahan kahani, wahin saazish. Jahan saazish, wahan crime tha. Jurm chahe kitna hi uljha ho, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
12: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खोल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों।
1: आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको समझना चाहता हूँ इस वक्त है और वो बोलता है।
0: मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर।
1: मैं 28 साल का एक इंसान और बहुत पॉलिटिकली अवेयर हूं, वेल स्पोकन बच्चे।
0: आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा,
1: सब कुछ याद रखा जाएगा। वहां पर भी इक्वली स्ट्रांग, इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली वर्कन छात्र आंदोलन हुआ था जितना दिल्ली में और बॉम्बे में हुआ था।
0: इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें, बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं।
1: पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, ये लोग जो है दाल भात खाते थे, उससे उन्होंने आंदोलन किया था। क्या आप लोग सिर्फ इसलिए आपको पिज्जा बर्गर की तलाश थी, क्या आपको अपने किस्म का प्राउड मिला था? माफ कीजिएगा,
0: आप लड़ते रहें, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है।
1: मेरे खास दो आंदोलन कम से कम एक बहुत दिनों बाद लहर आएगी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 10 अगस्त 2026 की सुबह जब लोग अपने काम की शुरुआत कर रहे थे, ठीक 7:34 पर धरती अचानक थर्रा उठी। रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता वाले इस प्रचंड भूकंप ने पूरे कोलंबिया में तबाही मचा दी। इस भूकंप की सबसे खौफनाक बात ये रही कि लगभग 2 मिनट तक धरती लगातार हिलती रही। ऐसा शायद ही कभी होता है। यही वजह है कि मजबूत से मजबूत इमारतें भी तिनके की तरह बिखर गई। इस महाविनाश की सबसे भारी कीमत कोलंबिया के पश्चिमी शहरों को चुकानी पड़ी है। परेरा शहर इस आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना है, जहां अकेले 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। वहीं कैली शहर भी मलबे का ढेर बन चुका है, जहां 20 से ज्यादा विशाल व्यावसायिक और आवासीय इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गई है। शहर का एक बड़ा अस्पताल भी भूकंप की चपेट में और घायलों की जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। भूकंप का एपिसेंटर सैन जोस डेल पाल्मर से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व सैन जोस डेल पाल्मर में था और ये जमीन के करीब 107 से 110 किलोमीटर की गहराई में था। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। दक्षिण अमेरिका में एक के बाद एक भूकंप इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि प्रशांत महासागर की ओर से नाजका प्लेट लगातार पूर्व की ओर खिसक रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस रही है। इन दो विशालकाय प्लेटों के आपस में टकराने और नीचे धंसने से जमीन की गहराइयों में भारी दबाव बनता है, जो रह रहकर इस तरह के भीषण तबाही और महाभूकंप के रूप में बाहर आता है। कोलंबिया में मौतों का आंकड़ा 160 के पार जा चुका है। 810 लोग घायल हैं और 3000 से ज्यादा लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। आज तक
1: राजस्थान की सड़कों पर सैलाब, आसमान से आफत बनकर बरसा पानी, बूंदी से लेकर झालावाड़ बारिश ने किया हाल बेहाल। मानसूनी बारिश के चलते राजस्थान के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी इलाके की है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया। बूंदी के नागदी बाजार, सदर बाजार और मीरा गेट वाली सड़क पर पानी मानो नदी की तरह बहने लगा और इसकी चपेट में खड़ी कई बाइक और स्कूटी आ गईं, जो तिनके की तरह पानी के साथ बहने लगीं। ये तस्वीर देखिए, जहां अपनी बाइक को बचाने के लिए बाइक सवार पानी में दौड़ा, लेकिन तेज बहाव के चलते उसे पकड़ नहीं पाया। बाइक ही नहीं, सड़क पर खड़ी स्कूटी भी पानी के तेज बहाव में बह गई। बूंदी ही नहीं, टोंक में भी आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। भारी बारिश के बाद टोड़ा रायसिंह इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया और इसकी चपेट में कई बाइक सवार आ गए। बूंदी ही नहीं, राजस्थान के झालावाड़ में भी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। जहां लगातार हो रही बारिश के चलते एक सरकारी स्कूल में पानी भर गया और देखते ही देखते स्कूल एक टापू में तब्दील हो गया। स्कूल में पानी भर जाने की वजह से करीब 35 बच्चे और स्कूल टीचर फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए SDRF टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित निकाला। बूंदी से भवानी सिंह और झालावाड़ से चेतन गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: उठने का साहस दिखाएं राहुल गांधी, बीजेपी ने कहा सदन को अपनी सनक और उद्दंडता से बंधक बनाया, पूछा झारखंड में क्यों नहीं सुनी छात्रों की गूंज, शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की, कहा स्वतंत्रता सेनानियों को दें श्रद्धांजलि, एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का व्यापक असर, आंदोलन को लेकर सीएम सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, विपक्ष ने राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की, युवाओं को मिलेगा न्याय। आज से शुरू हुई राम मंदिर के नए सीईओ की खोज, फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए 18 दावेदार, 3 सदस्यों की कमेटी का 2 दिनों तक साक्षात्कार, अयोध्या के पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा भी दावेदार। और भारत ने चाइना से फिर दोहराया एलएसी पर शांति से ही सुधरेंगे आपसी रिश्ते, विदेश मंत्रालय का बयान, द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा सीमा के हालात का असर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: दिन हो गया वो स्टेटमेंट देने की तैयार नहीं, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसा हम एक बार बोलते तो उसके बाद निकल जाएंगे।
3: देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख ले।
4: आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं।
5: सरकार तानाशाही रास्ते पे चल रही, सरकार का ये रुख अड़ियल है, सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमित शाह को संसद में घेरने की रणनीति बनाने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। आज संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक ही बात कही, गृहमंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत। हालात यहां तक हो गए कि संसद परिसर में एनडीए के प्रदर्शनकारी सांसद और विपक्ष के प्रदर्शनकारी सांसद आमने सामने आ गए, जैसे सब कुछ एक मजाक बन गया हो। तुम्हारा लाठी चार्ज, तुम माफी मांगो, हमारा लाठी चार्ज, हम क्यों माफी मांगे, बस यही तर्ज था और देश की संसद ठप थी। आज सवाल यही है कि तेरे और मेरे की इस राजनीति में जो पूरा का पूरा लोकतंत्र है वो कहीं पर थमा हुआ है। उधर झारखंड में कल छात्रों के प्रदर्शन में लाठी चार्ज का मसला भी एक तरह से आर पार की ही नौबत ले आया है। बीजेपी इस पर राहुल गांधी से जवाब मांग रही है, कह रही है कि सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करके निकल जाने से नहीं होगा या सवाल का जवाब देने से नहीं होगा। जिस तरह आपने जंतर मंतर पर अनेकों वीडियो बनाए और बढ़ चढ़कर आंदोलन उठाया, यहां पर छात्रों की सुध कौन लेगा जिन पर लाठियां चली हैं। उधर झारखंड की विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के प्रदर्शन को राजनीतिक बनाने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। कल जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की धांधली के विरोध में विधानसभा तक पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। हजारों छात्रों को रोकने की कोशिशें, आंसू गैस, वाटर कैनन, कल की तस्वीरें दिखा दीजिए, धन्यवाद। आंसू गैस, वाटर कैनन, कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग से भी हुई थी। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की ओर से दावा हुआ कि पुलिस ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं की है, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या छात्रों पर दोनों ओर के नेता घिर गए हैं? क्या जंतर मंतर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे राहुल गांधी पर अब गोलपोस्ट बदलने की का बीजेपी का जो आरोप है वो सही है? जंतर मंतर वर्सेस झारखंड, छात्रों पर किसका पाखंड? हल्ला बोल में चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का अजब नजारा देखिए, सदन में हंगामा और संसद के बाहर गूंजे सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे को जवाबी ना। जुलाई के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पुलिस कार्रवाई पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग पर पलटवार के लिए एनडीए की नई रणनीति है, राहुल गांधी भागो मत। एनडीए इस बात पर भी राहुल गांधी को घेर रहा है कि झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठी चार्ज पर राहुल गांधी का वैसा तेवर नहीं दिख रहा जैसा जंतर मंतर पर दिखा।

0: झारखंड के, झारखंड के,
1: झारखंड
0: छात्रों,
1: झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए।
2: सरकार कल से दलील दे रही है कि जंतर मंतर के मसले पर संसद में चर्चा के बाद अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उनका जवाब सुनना होगा।
3: तो धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का, इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद।
2: बीजेपी पहले की संसद की चर्चाओं के दौरान अमित शाह के बयान के वक्त राहुल गांधी के सदन छोड़ने पर भी उन्हें घेर रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने संसद सत्र की शुरुआत नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग के साथ शुरू की थी और अब आर पार अमित शाह पर है।
4: स्पीकर के पास गए हम, हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है।
5: तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।
6: तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। आइदर पॉसिबिलिटी, इनको हटा जाना चाहिए।
7: हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका एजुकेशन पे बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग, उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं।
2: संसद में छिड़ी लड़ाई के बीच झारखंड में छात्रों का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। कल झारखंड विधानसभा तक पहुंचे छात्रों पर आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठी चार्ज से बल प्रयोग हुआ था। आज इस मुद्दे पर बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया था। एबीवीपी ने रांची में सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने फिर से लाठी चार्ज किया और करीब 40 छात्रों को हिरासत में लिया गया।
8: मैं सोरेन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो झारखंड में सीट बेचना बंद करे और युवाओं के साथ खेलवाड़ करना बंद करे।
9: सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं, ये गुंडे।
10: ये सरकार की ना तो नीति ठीक है और ना ही नियत ठीक है।
2: झारखंड के छात्रों के बहाने बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रही है, पार्टी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रही है।
11: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई?
12: वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया
13: का है, इस तरह वो इश्यू अलग है। सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
11: सर अपने नेताओं को बोला बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन?
2: वैसे झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा है कि छात्रों का आंदोलन राजनीतिक बनाया गया।
14: जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है।
2: झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन में 18 से अधिक छात्रों और 14 पुलिस वालों के घायल होने का दावा है। कैमरे में लाठी चार्ज की तस्वीरें रिकॉर्ड होने के बावजूद राज्य सरकार के मंत्री लाठी चार्ज से इनकार कर रहे।
15: कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस
2: झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर सोरेन सरकार को सफाइयां देनी पड़ रही हैं, तो इधर छात्रों पर बल प्रयोग के खिलाफ बयान देने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए को मुद्दा मिल गया है। अमित शाह का जवाब सुनने से भागने का आरोप लगाकर बीजेपी राहुल गांधी पर संसद को बंधक बनाने का आरोप लगा रही है। उधर एनडीए के मंगल मिलन में आज फिर एकजुटता दिखाई गई। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, महुआ मांझी सांसद जेएमएम के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण भारती सांसद एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के और चंदन कुमार प्रवक्ता जेपीएससी जेएसएससी न्याय जांच मंच के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेएसएससी और जेपीएससी दोनों जो एग्जाम्स में धांधली का आरोप है उन एग्जाम्स की तरफ से एक न्याय

0: बना है और उसी के वो प्रवक्ता हैं चंदन जी जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी आपके साथ शुरू करूं मैं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि एक बार चंदन जी के पास चलें क्योंकि छात्रों की मांग हमेशा राजनीतिक शोर में सियासी शोर में दब जाती है और इसीलिए चंदन जी सबसे पहले आपके पास आते हुए हमने एक मंत्री को सुना वो तो कह रहे हैं लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। बीते दिन क्या क्या हुआ था उससे भी पहले आप बताइए कि आप लोगों की मांग क्या क्या है और किस मांग पर सबसे ज्यादा बात अटकी हुई है और तीसरी तरफ इस वक्त स्थिति क्या है आप लोगों के आंदोलन की। चंदन जी
1: जी नमस्कार, मैं बताना चाहता हूं कि तीन बार वार्ता हुई मंत्रिमंडल के साथ, चार चार मंत्री हमारे साथ वार्ता के दौरान आए लेकिन हमारे मांगों पर 60% बातों पर सहमति बन पाई। जहां पर हम लोग की मांग थी कि टीडीपल एजेंसी के द्वारा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं का आयोजन किया गया है इसको अविलंब रद्द किया जाए, साथ ही साथ उस पर सीबीआई जांच किया जाए, साथ ही साथ जेएसएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं चाहे पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, नगर निगम ग्रेजुएट लेवल हो, जेएसएससी सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो, चाहे फील्ड वर्कर हो, सभी परीक्षाओं में निपटाएं पाई गई है। और टीडीपल एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वो 4800 के ग्रेड पे जो जेएसएससी के द्वारा पीजीटी का एग्जाम कराए गए थे वो इंग्लिश में प्रथम श्रेणी आए थे, मतलब फर्स्ट रैंकर थे। तो 4800 ग्रेड पे नौकरी पाने के बाद वो 4200 के ग्रेड पे का नौकरी बीएसओ के पद पर वो पड़ैया हाट में गोड्डा जिला में पदस्थापित था। और बता रहा हूं कि कल के आंदोलन में हम लोगों के बीच
0: एक सेकंड चंदन जी एक सेकंड आपको टोक रही हूं, एक सेकंड टोक रही हूं आपको, आ रही हूं आपके पास। जिस अभय तिवारी की आप बात कर रहे हैं कल 9 बजे में हमने ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था, वो दिखा दीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो कितने अलग अलग कितने एग्जाम्स निकाला। और हमने तो चंदन जी पूरा रिसर्च किया, साला साली मौसा का बेटा, मतलब उसके सारे रिश्तेदार, कम से कम 10 ऐसे रिश्तेदार हैं
1: उनकी उनकी।
0: ये देखिए ये पूरा फैमिली ट्री देखिए जिस जितनों की नौकरी लगी
1: है। मैम उनकी वाइफ,
0: बिल्कुल
1: अभय तिवारी की वाइफ जो है स्वीटी पांडे, जिसके बारे में अभी तक कोई मीडिया चैनल जिक्र नहीं कर रहा है। हाँ। स्वीटी पांडे एसओ के पद पर कार्यरत है, वो
0: अभी भी
1: गिरिडीह जिले के रहने वाली है, जो किसी प्रकार के उसके पास जानकारी पढ़ने में नहीं है, वो झारखंड में कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने थाने, कोई जानकारी नहीं है। वैसे व्यक्ति एसओ बन के हमारा जो है कार्यरत है, अब सोच सकते हैं कितने बड़े अनियमितताएं पाई गई। हम लोगों ने लगातार सरकार के आईना दिखाने का काम किया, हमेशा सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया कि इस प्रकार से निमता हो गई, पीजीटी में सीटें को किस तरह से बेचा गया, कंप्यूटर सीबीटी के माध्यम से कंप्यूटर हैक करके आंसर को मारा गया। जो अभ्यर्थी अगर वो बताना चाहता हूं कि पीजीटी में होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड का डिग्री होना चाहिए, तो जो भी पीजी करते हैं वो यूजीसी नेट और सीएसआर नेट के एग्जाम में जरूर बैठते हैं, लेकिन वो उसमें कटअप देखते होंगे कि सीएसआर नेट और यूजीसी नेट में लगभग 40-50% से 60% होती है, लेकिन इस यहां पर देखेगा कि पीजीटी में लगभग 90% से 95% तक स्कोर किए, तो कहां से नहीं आ सकती है कि सीबीटी के माध्यम से एग्जाम हो रही थी, हाइक करके आंसर मारे गए हैं, लैब असिस्टेंट में ऐसे भी किए गए हैं
0: जी। हम लोग दिखा भी रहे कि अभय तिवारी ने कितना एग्जाम निकाला था, 12 परीक्षा उसने 13 साल में पास भी किया। मुझे ये बताइए कि सरकार कह रही कि अभय तिवारी को तो हमने अरेस्ट कर लिया है ना, जो ये टीडीपीएल कंपनी थी उसको भी, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसके खिलाफ भी वो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। आप लोग क्या अभी भी चाहते हैं सीबीआई जांच हो, और कितने एग्जाम्स आप लोग रद्द करने की बात कर रहे हैं, कितने पर सरकार तैयार है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2-3 एग्जाम तो अभी कोर्ट में है, उनको हम कैसे कैंसिल करें। दोनों पर आपका जवाब चंदन जी।
1: कोर्ट में सरकार खींच के ले जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जितने भी परीक्षाएं हुई है सब में धांधली हुई और खुलकर बेची गई है। झारखंड में पेपर लीक नहीं होते, यहां पर नौकरियां खुलम खुली बेची जाती है। मैं पीजीटी का भी अभ्यर्थी था, लैब असिस्टेंट के भी अभ्यर्थी था, मैं जैसे सीजल के भी अभ्यर्थी था, मैं जेपीएससी का भी अभ्यर्थी था, मैं बैकलॉग जेपीएससी की परीक्षा दिया था, मैं एफआईआर का भी एग्जाम दिया था, लेकिन किसी में हम लोगों को नौकरियां नहीं लग सकती है क्योंकि यहां पर सेटिंग में भी कंपटीशन है। एफआईआर और एसीएफ में आप देख सकते हैं कि 170 पद का था जिसमें से 540 लोगों ने सेटिंग किया था, सेटिंग में कंपटीशन है, तो छात्र जो पढ़ने लिखने वाले मेघावी छात्र हैं वो ऐसे छट जा रहे हैं। और यहां पर ब्लैक लिस्ट एजेंसी के द्वारा एग्जाम्स करवाए जाते हैं और यहां के जो चेयरमैन होते हैं और सचिव होते हैं वो पैसे लेकर उसको टेंडर देते हैं और टेंडर लेने के बाद जितने में बेचे जाते हैं उसका कमीशन लेते हैं। यहां सुधीर गुप्ता जो जेएसएससी का सचिव है उनके पास हम लोग न्याय के लिए जाते हैं, किसी चीजों को बात रखने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं कोर्ट जाइए मैं कोर्ट से देख लूंगा। मैं कहना चाहता हूं सुधीर गुप्ता का, कोर्ट तेरा बाप का है क्या? अगर सुधीर गुप्ता तुम न्याय नहीं दे सकते छात्रों को तो तुम कुर्सी छोड़ो। से पहली बात है कि सुधीर गुप्ता हम जैसे छात्रों को कोर्ट भेज देता है, कोर्ट में हम लोग को मोटी पैसे लगती है, और सुधीर सुधीर गुप्ता अपने बाप के पैसा से लड़ाई नहीं लड़ती है, सुधीर गुप्ता हम ही जैसे के जो टैक्स के पैसा होता है उसी से सरकार के पैसे से लड़ता है और उसमें भी पैसा कमीशन खाता है। आज सुधीर गुप्ता का बारे में खुलासा हुआ कि 27% जेसीसी सीजल को पेपर को बेचने में कमीशन खाया था। इतना बड़ा दुष्ट आदमी को जिस पर सीबीआई जांच चल रही है उसको जेसीसी का सेक्रेटरी बना के रखा है। और बताते हो ये अजिता भट्टाचार्य जो कि यहाँ पर जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं उनकी वाइफ को जेपीसी के सदस्य बना के रखा है। अनीमा हासदा और आपका जमाल अहमद ये सब इस्तीफा देने के चोरी करने से दिखा रहे हैं कि हम चोरी नहीं किए, बचने के लिए साइड दिखा रहे हैं, इस्तीफा देकर साइड होना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष हो और पूरी जांच हो, सभी परीक्षा को निष्पक्ष जांच किया जाए और दूध का दूध पानी पानी हो, क्योंकि छात्र जो है अब रुकने वाले नहीं है। लगातार देख रहे हैं कि हम लोग खुले आसमान में भींग कर और हम लोग अपने आंदोलन को संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को कर रहे हैं, लेकिन कल मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की ओर से पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक जालियांवाला बाग की तरह जो किया, चारों तरफ से पुलिस ने लाइट को बंद करके चारों तरफ से घेर के लाठी चार्ज किया, मुझे भी लाठी चार्ज किया गया। मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं आपके लाइव डिबेट में जुड़ा हुआ हूं।
0: बिल्कुल चंदन जी, हमारे साथ महुआ मांझी जी हैं, सांसद हैं जेएमएम से। महुआ जी, मुझे लगता है कि आप सीधा उनसे संवाद करें, क्योंकि जो छात्रों का गुस्सा आप देख रहे हैं, कल रात की तस्वीरें दिखाई है, मतलब लाइट ऑफ करके, लाइट ऑफ करके वहां पर जी
1: महुआ मांझी जी से
0: जी दोनों को दिखा
1: दीजिए। मैं पूछ सर महुआ माझी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर जब नीट का एग्जाम का लीक हुआ था वहां समर्थन देने के लिए पहुंची थी, आज रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, रांची जो राज्यसभा के उस सांसद होने के बाद भी आज छात्रों से बात करने के लिए क्यों नहीं आ रही है? ये गठबंधन की सरकार जो है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है, झारखंड के छात्रों को ठग रही है। बताता हूं कि झारखंड में 40% खनिज संपदा होने के बाद इसके पास बालू, कोयला, अभ्रक, यहाँ पर सोना भी आ गया, सोना का भी खान है, वो बेचने के लिए सब चीजें, लेकिन छात्रों का भविष्य बेचाएगा तो महुआ मांझी रहे, चाहे हेमंत सोरेन रहे, चाहे कोई भी सरकार रहे, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे।
0: ठीक, महुआ जी।
2: जी देखिए, सबसे पहले तो छात्रों के साथ पूरी तरह से हम लोग एकमत हैं, उनका गुस्सा जायज है, उनकी बातें बिल्कुल जायज है। मैं भी बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स दी हूँ, मैंने नेट क्वालिफाई किया है, मुझे समझ में आता है कि उनकी क्या व्यथा है, क्या दर्द है। और लगातार पहले भी जब जब छात्र हमारे पास आए हम लोगों ने सहयोग किया। अभी का जो मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया है कि एक भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईडी से अपील की है, वो कह रहे हैं कि ईडी खुद वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे और छात्रों को न्याय दिलाए। उन्होंने कहा जो सीआईडी है उसके ऊपर रिटायर्ड जस्टिस को बैठा दिया जाए और वो उसकी मॉनिटरिंग करे कि कहीं भी उन ईडी सीआईडी के जांच में भी कोई गड़बड़ी ना हो। और ये जो अभय की बात आपने कही, जिन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं, अभी अभी आपने कहा कि 2013 से उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स पास किए, तो 2013 मैंने उस समय 2014 में बीजेपी की सरकार थी, इसका मतलब बीजेपी के कार्यकाल से ही उन्होंने अपने घोटाले शुरू किए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार 2019 में बनी है, तो 2019 के पहले भी ऑलरेडी 5-6 साल तक ये गड़बड़ी कर चुके थे, बहुत सारे एग्जाम पास कर चुके थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा झारखंड 2000 साल में बना है और तब से लेकर 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा, जिसमें उनके 3-3 मुख्यमंत्री बने और उस कार्यकाल में जेपीएससी में बहुत सारी अनियमितताएं थी। और उस समय जो बार बार जेपीएससी का घेराव होता था और उस समय सीबीआई जांच बैठाई गई थी, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। और उसमें आपको पता होगा कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों के बहुत सारे नेताओं के रिलेटिव्स उसमें नौकरी कर रहे हैं, जिन पर अभी भी केसेस चल रहा है और सीबीआई जांच का नतीजा अभी तक नहीं आया है।
0: ठीक है, लेकिन जब अभी बच्चे, महुआ जी एक सवाल है सिर्फ कि आप सीबीआई जांच की जो मांग है बच्चों की, उसको मांगने में क्या आप लोगों को दिक्कत है? क्योंकि ये तो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। ईडी को एक सेकंड, ईडी जांच के लिए सुनिए ना मैम, सवाल तो सुन लीजिए। ईडी के जांच के लिए स्टेट के अप्रूवल की जरूरत थोड़ी है। ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वो कहीं भी किसी भी राज्य में कर सकता है ना जांच, तो ईडी को क्यों बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी?
2: नहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ईडी, नहीं नहीं, ईडी तो केंद्रीय जांच एजेंसी है, इसीलिए हाँ। लोगों का भरोसा हो, इसलिए वो कह रहे हैं, ईडी से अपील कर रहे हैं कि ईडी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। और जो वो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर दोषी उनके अपने घर का भी हो तो भी उस पर कड़ी कार्रवाई हो, तो भी उसे सजा मिले। और कल गिरफ्तारी भी हुई है, कई उसके पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और रेजिग्नेशन हुआ है। और ये सच कह रहे हैं कि जो पदाधिकारी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जिनका जिनका नाम लिया, मैं भी सरकार से अपील करूंगी कि ऐसे लोगों को उनके पद से अविलंब हटाया जाए ताकि छात्रों का विश्वास सरकार पर बनी रहे और छात्र भविष्य है हमारे और ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सच में बहुत दुखद है। और आने वाले समय में उनके साथ ऐसा ना हो। और उस समय से ये जो घुन लगा हुआ है सिस्टम में ना, ये आज का नहीं है, जब से ये झारखंड राज्य अलग हुआ है, क्योंकि जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 के जो सीबीआई केसेस है वो अभी भी चल रहे हैं, उस समय से अनियमितता है और सिस्टम में घुन और दीमक उसी समय से लगा हुआ है, जिसे धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। तरह तरह से योजनाएं लाकर, मरंगोम की स्कॉलरशिप योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सीएम एक्सलेंस स्कूल, मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग 300 बच्चों को कोटा के इंस्टीट्यूट से जोड़कर कराना।
0: लेकिन एक आखिरी जवाब जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी,
1: के मुद्दे पर बात करिए, सरकार क्या कर रही है उस पर बात ना करें, सरकार क्या कर रही है छात्रों का भविष्य को बेचे जा रही है उस पर आप बात करें।
2: नहीं,
1: किस प्रकार से मैं कहना
2: चाहता हूँ
1: उसको जेपीएससी और जेएससी की परीक्षाओं से डिवायर किया जाए, उसको चिन्हित करके जेपीएससी और जेएससी जैसे परीक्षाओं में बैठने से डिवाइड किया जाए और उसको होर्डिंग लगाकर सब जगह उसका नाम के साथ, फोटो के साथ, उसका एड्रेस के साथ उसको जो है फ्लैशिंग किया जाए ताकि पता लगे कि यही लोग हैं, यही छात्र लोग हैं जो पैसे वाले अमीर बाप के नालायक बच्चे हैं, जो हम जैसे लोगों का नौकरियां वो खरीद लेते हैं और हम मेहनत करने वाले दिन रात आस में लगे रहते हैं कि इस बार पास करेंगे, इस बार हमारा भविष्य बनेगी।
0: बिल्कुल, मैं समझती हूँ चंदन, आप जो कह रहे हैं ना, चंदन
1: आरोप लगा रहते हैं, बीजेपी बोलेगी जेएमएम को, जेएमएम बोले बीजेपी, ये सत्ता के भोगी लोग जो है छात्रों को दर्द को नहीं समझेंगे, हम लोग खुले आसमान में, मेरे को टाइफाइड हुआ है, पुलिस ने लाठियां मारी है, इन लोग को दर्द नहीं समझ में आएंगे, सिर्फ आरोप पर प्रत्यारोप लगाएंगे। अगर सरकार अभी है तो जांच को, दूध का दूध और पानी का पानी करने में क्या अंतर है, सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी सरकार की ओर से जांच करने दीजिए, एसआईटी भी जांच करा लीजिए आप, ईडी अपना मनी लॉन्ड्रिंग देख लेगी, सीबीआई जांच कराने में क्या जाती है, परीक्षा को रद्द करने में क्या जाती है, परीक्षा को रद्द करिए पहले आप।
0: महुआ जी एक लाइन, उसके बाद में जाऊंगी प्रदीप जी और आलोक जी के पास।
2: देखिए अभी अभी जैसे मुझे जितनी जानकारी है उसमें कई परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश हो चुका है, सिर्फ सीजीएल को रद्द इसलिए नहीं किया कर पा रही है सरकार, क्योंकि जैसा कि उनका बयान मैंने सुना है कि ये चूंकि सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सीजीएल का रिजल्ट आया था और बहुत सारे युवा उसमें नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं और वो सरकार के दायरे में नहीं है।
1: न्यायालय के मामले में सीआईडी के द्वारा साच को छुपाया गया है सीआईडी के द्वारा।
0: अच्छा, और देखिए ना, आप जब मामला महुआ जी यहाँ तक पहुँचा, अच्छा, तो आपके जो ये
2: सामने इस पर अविलंब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और सिर्फ सीजीएल का बात नहीं है, पीजीटी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे,
2: इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: आप सांसद हैं, वो खुद कह रही हैं,
1: आप जेल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप फील्ड वर्कर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप एक्साइज कॉन्स्टेबल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, सभी में नौकरियां को बेची गई है। एक सिंडिकेट ने पकड़ाया था तमाड़ में 69 लोगों को और उसको देखिएगा कि बेल करके छोड़ दिया गया। इस सरकार में बहुत प्रकार के सिंडिकेट काम कर रहे हैं, पेपर माफिया काम कर रहे हैं और कोचिंग माफिया भी पकड़ाया है, लेकिन उस पर कहां करवाई और कहां रुक गई इस पर भी खुलासा करें।
0: बिल्कुल, और ये महुआ जी देखिए ना, आखिरकार जब बच्चों ने इतना मतलब अपना आंदोलन किया, लगातार कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग आप लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं, आखिर ऐसा क्या डर है, क्यों इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, इतनी बड़ी मांग क्या है इसमें, आप ईडी खुद ही कह रहे हैं।
2: डर तो नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच का रिजल्ट आने में सोचिए कि फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी कितना साल हो गया, 15-16-17 साल हो गए, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आया, जो भाजपा और उनके सहयोगी दलों के रिश्तेदारों के लोग जो अभी
0: हम लोगों ने ये भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था महुआ जी, हमने दिखाया था कि सीबीआई का भी जो कन्विक्शन रेट है, बिल्कुल सीबीआई का भी जो कन्विक्शन रेट है ऐसे मामलों में वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी सीआईडी देखिए 2 करोड़ का आरोप है जिस जेपीएससी चेयरमैन पर
2: 90 दिनों के अंदर।
0: सुनिए ना मैम, मेरा भी थोड़ा सुन लीजिए, जेपीएससी का जो आपने फॉर्मर चीफ को पकड़ा है अब सीआईडी ने, 2 करोड़ का डील उसने स्ट्राइक किया था टीडीपीएल के साथ, इतना दबाव छात्रों का, इतना लाठी उनको डंडे खाने पड़े तब जाकर उनको मतलब अरेस्ट किया गया है, तो यही वजह है ना कि छात्रों में इतना गुस्सा भर जाता है। अब सीबीआई जांच की मांग बच्चे कर रहे हैं, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा या तो, या फिर वो करना, बिल्कुल, और ये हो रहा था ना, नाक के नीचे हो रहा था तभी बच्चों का गुस्सा है, लेकिन अब आप लोग राहुल गांधी पर ही ऑफेंसिव कर दिए हैं। प्रदीप भंडारी जी, मैं लौट रही हूँ, प्रदीप भंडारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास भी, चंदन जी एक बार प्रदीप जी और आलोक जी से एक रिस्पॉन्स ले लूँ, उसके बाद अरुण जी आपके पास भी। प्रदीप जी, अब आप लोग ये कह रहे कि राहुल गांधी भाग रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, मतलब ये अपमैनशिप का गेम चलता रहेगा क्या ये संसद? मतलब मैं ऐसी भाषा बोलना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहां पर सिर्फ ये सुबह सुबह मतलब कल क्या नारेबाजी करनी है, बस उसी की तैयारी होकर सब आते हैं।
3: अंजना जी, अपमैनशिप की बात नहीं है, सच्चाई की बात है, छात्रों की बात है, और राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। और मैं डेटा के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, जुलाई 26 को राहुल गांधी कहते हैं कि भाई गृहमंत्री अमित शाह को स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर जवाब देना चाहिए। जुलाई 29 को राहुल गांधी कहते हैं कि भाई गृहमंत्री अमित शाह डिबेट पे पूरा का पूरा जवाब दें। अगस्त 6 को राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह को पूरा जवाब देना होगा कि क्या दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा एक्शन किसने का, क्या स्थिति रही। अगस्त 9, 2026 को राहुल गांधी कहते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए था। अब जब गृहमंत्री अमित शाह पूरा का पूरा जवाब दे रहे हैं, तो इससे तो यही साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन से जिस नाम पे कांग्रेस पार्टी ने पूरी की पूरी सदन को ठप किया था, गृह मंत्री पूरा डिटेल रिप्लाई देने के लिए तैयार है, तो फिर इनको क्यों घबराहट हो रही है? इनको घबराहट इसीलिए हो रही है कि जब जब गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी बोले हैं, इनका झूठ दोष देश के सामने हुआ है, क्योंकि देश देखा है कि छात्रों की बात करते हैं पर झारखंड में ये पॉलिटिकल धृतराष्ट्र के रूप में एक्ट करते हैं। ये छात्रों की बात करते हैं पर झारखंड में छात्रों के ऊपर 10 घंटे में 4 बार लाठीचार्ज करते हैं, और इन्हीं का मंत्री इरफान अंसारी के लिए लाठीचार्ज नहीं हुआ है क्या? राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को बोला है कि इरफान अंसारी को हटाओ, तो बात राहुल गांधी पे आती है, क्योंकि राहुल गांधी की सरकार है, उनका काम धरने करने का नहीं है। राहुल गांधी का काम है जवाबदेही देना, हमारा जहां काम है जवाब देना, हम तो तैयार है, संसद चलने दो, हम जवाब दे देंगे। गृहमंत्री तो हर दिन संसद में आ रहे पर संसद चलने नहीं दे रहे। अब जो 15 दिन से इनकी मांग थी जिसपे अग्री हो गए, तो क्यों घबरा रहे? क्योंकि इनको पता है कि जब गृहमंत्री बोलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ बात इसकी नहीं है, ये तस्वीर देखिए, कल रात को 9 बजे आपने भी दिखाई थी आपके शो पे ब्लैक एंड व्हाइट पे, इनकी केरला की स्थिति ऐसी है कि पिछले 36 दिनों से जो छात्र जो है नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, उनको घास खाना पड़ रहा है सीएम हाउस के बाहर धरना करने के लिए। तो कांग्रेस तो डीएनए छात्र विरोधी रहा है, पर ये एक बार नहीं हुआ अंजना जी। फरवरी 10 2021 को ये लोग ने चिल्लाया कि प्रधानमंत्री जवाब दे, जब प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया तो संसद से भाग गए। दिसंबर 10 2025 में जब गृहमंत्री ने इलेक्टोरल रिफॉर्म से जवाब देना शुरू किया तो संसद से भाग गए। अगस्त 10 2023 को जब प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना चालू किया संसद से भाग गए। तो ये हमेशा भागते हैं, और अभी ये संसद इसलिए नहीं चलने दे रहे क्योंकि अगर वॉकआउट करेंगे तब भी गृहमंत्री बात करेंगे तब भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो हमारा तो सीधा सवाल है, 15 दिन से कांग्रेस जो बोल रही है,
0: गोल पोस्ट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? पहले नीट पर, एक सेकंड प्रदीप जी, पहले नीट पे पेपर लीक पर चर्चा चाहते हैं, उसके बाद हुआ कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जब इस्तीफा हुआ उसके बाद से नहीं, अब अमित शाह पहले बयान दें, अमित शाह बयान दें, हमको उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं है, पहले वो बताएं कि क्या उन्होंने इसका ऑर्डर दिया था नहीं दिया था। भाई बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना आलोक जी।
4: नहीं, अमित शाह जी को कांग्रेस के सांसदों ने बाहर पकड़ के गाड़ी में बंद कर रखा है, संसद में घुसने ही नहीं दे रहे कांग्रेस के और विपक्ष के सांसद। अमित शाह जी जाते हैं गाड़ी को हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं, अमित शाह जी संसद की सीढ़ियों पे जा ही नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि कमजोर और बेवकूफ सरकार है। मुझे लगता है कि अगर आपको जवाब देना है तो विपक्ष रोक ही नहीं सकता, भाई सरकार आपकी है, 56 इंच की सरकार है, चाणक्य की सरकार है, लेकिन मैं समझता हूँ बोगस सरकार है। ये पोस्टर दिखाने से कुछ नहीं होता, संसद में जाइए और भाषण दीजिए। अगर विपक्ष वॉकआउट करेगा तो विपक्ष,
3: अरे भैया संसद चलने दो ना आलोक जी,
4: सुनो ना भाई, मैं आपके बीच में नहीं,
0: प्रदीप जी गलत बात है, गलत बात है, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने, बोलिए बोलिए आलोक जी, पूरा कीजिए जल्दी से। अरुण जी
4: दुर्भाग्य यह है कि 21 दिन से ना संसद चल पा रही है, क्योंकि सरकार चलाना नहीं चाहती है। सरकार इसलिए नहीं चलाना चाहती है कि राम मंदिर के ऊपर अगर बयान देंगे तो सारा रिकॉर्ड पे आएगा, और जब सांसद बोलेंगे कि आरएसएस के तमाम और बीजेपी के तमाम लोगों ने चोरी की है, उस पर वो पूरा रिकॉर्ड पे आएगा, वो रिकॉर्ड पे नहीं आने देना चाहते हैं। अब बात आती है कि भाई हम रोक रहे हैं या कौन रोक रहा है। पहली बार हुआ है कि जो सरकार है वो ही पोस्टर लेकर निकल गई है, मतलब विपक्ष जवाब दे। अब बात आती है झारखंड की बहुत अच्छी अच्छी बातें आई, 2 करोड़ की वो आरोप लगे हैं, अंजना जी आपने भी कहा 2G में 1,76,000 करोड़ के आरोप लगे थे, क्या हुआ उसका? कोलगेट में सारे बरी हो गए, इन्होंने सरकार बदल दी, पूरे देश का विश्व में बदनाम कर दिया। अभी 4 दिन पहले बोफोर्स पे इस्तीफा, बोफोर्स पे डिसीजन आया है, क्या डिसीजन है वो? केवल आरोप लग गए, अरे हमने तो आरोप लगने पे भी अरेस्ट किया है, 3 पेपर रद्द हुए हैं, 3 इस्तीफे हुए हैं, 20 लोग अरेस्ट हैं। आप बताइए नीट के पेपर में 2024 से लेकर आज तक कितने लोग अरेस्ट हैं, जरा बता दीजिए मुझे। 2017 से लेकर 26 तक 5 बार पेपर आउट हुआ, एक चिड़िया का बच्चा भी जेल में नहीं है उनके लिए। अब बात आते हैं कि साहब सीबीआई जांच क्यों नहीं, सीबीआई जांच क्यों नहीं? अरे भाई सीबीआई जांच की तो 12 साल से जांच चल रही है, उसका क्या हुआ? उसके भी तो भाई एक बार सीबीआई जवाब दे दे। 2024 में भी सीबीआई जांच हुई थी, सबको बरी कर दिया। 2026 में भी सीबीआई जांच हुई थी, उसके बाद 21 जून में फिर गड़बड़ हुई। 21 जून में जिस कंपनी ने गड़बड़ की, आज भी वो कंपनी वहीं पर बनी हुई है। अब कंपेयर कर लेते हैं, टीडीपीएल के तो तमाम लोग हमने जेल में डाल दिए, इनोवेटिव व्यू कंपनी के यहां तक सीबीआई दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंचे? जिसका 21 जून को भी जिसने बायोमेट्रिक में घपला किया, तमाम खबरें पड़ी हैं। यहां तो ईडी पहुंच गई, वो नीट और एनटीए वाले। एक मिनट अंजना जी, अंजना जी एक मिनट, अंजना जी एनटीए के यहां आज तक ईडी क्यों नहीं पहुंची? एनटीए के चेयरमैन जो पूरी तरह से भ्रष्टतम रहे, आज तक उनसे किसी ने पूछताछ क्यों नहीं की? यहां तो सीआईडी जांच भी हो रही है, ईडी भी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं सीबीआई की जांच का कन्विक्शन रेट क्या है? आप सीबीआई को उलझा दीजिए, 10 साल तक सीबीआई उलझाए रखेगी।
0: चंदन जी से पूछ लेते हैं ना, एक छात्र छात्र भी चुकी ये लोग बैठे हुए आंदोलन पे आलोक जी, और आप संवाद करने के लिए तैयार हैं, तो चंदन जी वो कह रहे हैं सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, आप लोग क्यों मांग रहे हैं?
4: हम फिर कह रहे हैं सीबीआई जांच केवल डिस्ट्रैक्ट करने का,
0: बच्चों की मांग है, बच्चों की मांग है,
1: एजेंसी जो सीआईडी है वो सरकार के लिए काम करती है। हमारी मांग है पहले परीक्षा को अभिलंब रद्द किया जाए, और पहली बात है 11वीं से 13वीं जेपीसी जो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें घोर अनियमितता पाया गया था, डिजिटल कॉपी डिजिटली जांच किए गए थे।
0: चंदन जी सुनिए
1: पहले
0: एक सेकंड, एक
1: मैं बता रहा हूँ टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा,
0: उनकी बात, ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उनकी बात तो सुन के जवाब दे दीजिए, आप ही को जवाब देना है।
4: सबसे ज्यादा
0: अच्छा पहले बोल लीजिए,
4: मैं चंदन जी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अभय तिवारी के 5 पेपर बीजेपी के शासन में आउट हुए, यह चंदन जी ने बताया किसी को? नहीं बताया चंदन जी ने, कोई नहीं बताएगा ये चीज। ये जो पूरा आपने चार्ट आज तक पे दिखाया, इनमें से कितने लोग भाजपा के शासन में
0: जवाब दिए हैं
4: वो भी जरा खुलासा कर दीजिए।
1: 2 करोड़ रुपया हेल्प संयाते को दिया था और 20% कमीशन पर बात हुई थी, तो आप कहाँ पे थे? आप उसका कहाँ ध्यान दिए थे? आपका कहाँ है अभी काम करता है? आपका एसआईटी कहाँ काम करती है? सीआईडी कहाँ काम करती है? मैं पूछना चाहता हूँ कि 11वीं से 13वीं जेपीसी में घोर धांधली हुई, उस समय आप कहाँ थे? 11वीं से 13वीं जेपीसी में बताता हूँ कि वैसे सहायक अध्यापकों द्वारा कॉपी जांचा गया।
0: दो लोग एक साथ चिल्लाएंगे तो नहीं होगा, एक बार वो बोल ले फिर मैं आपसे फौरन जवाब ले लूंगी। चंदन जी आप थोड़ा सा पेशेंस दिखा दीजिए, आलोक जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं उनसे जवाब लूंगी, उसके बाद अरुण जी फौरन आ रही हूँ आपके पास, बोलिए आलोक जी।
4: अंजना जी एक मिनट,
0: चंदन जी एक सेकंड, चंदन जी आपका ऑडियो हमने नीचे किया है, प्लीज वेट कर लीजिए, एक बार आलोक जी बोल ले फिर तुरंत।
4: अंजना जी ये भाजपा ने पूरे आंदोलन को हाईजेक किया।
0: अच्छा,
4: बिहार से बंगाल से असामाजिक तत्व भरकर ट्रकों में लाए हैं, मैं वो वीडियो भी चलाऊंगा।
0: तो ये चंदन जी भी कहीं से आए हुए हैं क्या?
4: हकों को खाने का काम भाजपा कर रही है,
0: ये चंदन जी भी कहीं से लाए गए हैं क्या?
4: और कल ही आशुतोष मिश्रा का जो आज तक की रिपोर्ट है उसको भी चलाइए, क्या है उसमें? क्या किसी असामाजिक तत्व ने किसी पुलिस वाले के फेस पर चेहरे पर ब्लेड मारा कि नहीं मारा? ब्लेड मारने के बाद क्या इसके बाद ब्लेड मारने के बाद पूरा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? लाठी चार्ज ब्लेड मारने के बाद हुआ है, और ब्लेड मारने वाला कौन है वो भी आइडेंटिफाई हुआ है। चंदन आपके पूरे आंदोलन को इन लोगों ने हाईजेक कर लिया, आप लोग समझ नहीं रहे हैं।
0: ठीक है,
4: ये लोग राजनीति कर रहे हैं।
0: ठीक है, ये चंदन जी को तो अब हो गया, आलोक जी अब आपका हो गया, आलोक जी हो गया, अब लगातार आप ही नहीं बोलेंगे। चंदन जी को आप ऑथेंटिक रांची का मान रहे हैं या उनको भी मान रहे हैं कि कहीं बाहर से लाया? अगर मान रहे हैं कि रांची के आंदोलनकारी हैं तो उनकी बात भी सुनिए, बात सुनिए, बोलिए चंदन जी।
1: देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए थे और वहां पर जो गंदगियां फैला रहे थे, तो वैसे लोगों को मैं चाहता हूं कि झारखंड सरकार की पुलिस, इसका जितने भी जांच कमेटी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा दे, उसको चिन्हित करे और पर्दाफाश करे। बात रहे ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं जब रघुवर दास के कार्यकाल था ने, उस समय भी मैं मजबूती के साथ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा था। जब झारखंड संयुक्त झारखंड को 11-13 भाग में बांटा था तो रघुवर दास के खिलाफ मैंने लड़ा था, काला झंडा दिखाने का काम किया था, उसमें भी लाठियां चार्ज किया गया था। लेकिन इस सरकार में आप जो दूध के धोले नहीं है, आप लोग ने और गंदी तरीके से छात्रों का भविष्य को बेचने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में किस प्रकार से महाघोटाला हुआ, जल्दीबाजी में किस प्रकार से अपनी नियुक्तियां दिया, सीडीपीओ जो 64 पदों की बहाली थी जिसमें से 22 अनारक्षित पदों में सिर्फ 18 जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोगों को नौकरी दिया गया, क्योंकि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो है टीडीपीएल वो उत्तर प्रदेश की है। तो सरकार अपना पक्ष को बहुत बढ़िया से झाल रही है, लेकिन मैं सच्चाई के साथ अवगत कराना चाहता हूं दुबे जी कि आपकी सरकार जो है सबसे भ्रष्ट सरकार है और आपके जितने भी विधायक और मंत्री हैं वो महाभ्रष्ट हैं और वैसे वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को जेपीसी और जेसीसी में बैठाए गए हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो व्यापारी हैं। आप सोचिए कि आपका सुधीर गुप्ता 27% कमीशन के साथ खेला करता है, आपका सोचिए जेपीसी के चेयरमैन एल खिंगाते 20% कमीशन के साथ खेला करता है और सरकार के कितने विधायक मंत्री इसमें संलिप्त होगा इसका कहना
0: ठीक है। चलिए चंदन जी आपने अपनी बात कह ली है, और आलोक जी अगर ये आरोप है कि कुछ वहां पर लोग आ गए थे बाहर से, ऐसा आरोप दिल्ली में भी लगा था, इसकी वजह से पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट मत कीजिए। वहां पर आज भी बच्चे इस बारिश में बैठे हुए हैं, मुझे नहीं याद है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने इतना लंबा आंदोलन बारिश में भीगते हुए किया है या नहीं किया है आज के कम से कम पिछले 10-15 दशक में, एक दशक में 10-15 साल में, लेकिन ये बच्चे वहां पर इस उम्र में डटे हुए हैं, तो सबको डिस्क्रेडिट मत कीजिए। जो चंदन जी पूछ रहे हैं उसका सवाल सुन के जवाब दीजिए, वो मांग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आलोक जी, अरुण भारती जी इंतजार कर रहे हैं, अरुण भारती जी, लेकिन कुल मिलाकर 13 ये लाठीचार्ज, मेरा लाठीचार्ज, तुम्हारा ज्यादा बुरा था, हमारा ज्यादा बुरा था, तो यही हो गया ना, क्योंकि नीट पर यहां हुआ फिर फौरन वहां पर छात्र हो गया। और अगर कोई भी ये मानता है, देखिए छात्रों ने दोनों जगहों पर किया, कोई भी ये मानता है कि क्रेडिट लेना चाहता है कि हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, छात्र इकट्ठा हुए हैं, और जैसे यहां पर दिल्ली में भी जंतर मंतर पर छात्र आए थे, बाकी अन्य लोग आए हो जिसमें कुछ लोग ऐसे माने जा सकते हैं जो कि जानबूझकर वहां पर उपद्रव कर रहे हो, या फिर हो सकता है झारखंड में ऐसा हुआ हो, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कल रात में बच्चों को मारा गया है। तस्वीरें दिखाइए, एक बार सुना दीजिए वहां जो छात्राएं बोल रही है ना, वो जरा सबको सुना देते हैं, फिर देखते हैं ये कौन से राज्य की छात्राएं हैं। सुनाइए कल रात में जो हुआ है वहां पर। तेरा मेरा की लड़ाई में कब तक बच्चों को उलझा के रखिएगा आप लोग?
5: अंजना जी, सबसे पहले जब मैं अभी सुन रहा था आलोक शर्मा जी को, महुआ मांझी जी को, तो बस वही बात समझ में आ रही थी, इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि नीतिगत तौर पर ये बिल्कुल खाली हो रखे हैं। राहुल गांधी जी यहां संसद को बाधित करके लगातार, उनके पास कोई स्पष्ट नहीं है, कुछ हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, मूल मुद्दों पर आते हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, हम लोगों ने छात्रों के मुद्दों को दिल्ली में सपोर्ट किया था, छात्रों के मुद्दों को हम रांची में सपोर्ट करते हैं, और देखिए हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि जो मूल मांगे हैं उस पर आइए। बच्चे क्या मांग रहे हैं? बच्चे मांग रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कीजिए और सीबीआई की जांच कराइए। समस्या कहां है? महुआ मांझी जी बोल रही थी 2000 में भाजपा, ये सारी कहानी, अरे जनवरी 2024 में भी आपके परीक्षा लीक हुई थी, अभी इसके बाद सितंबर में भी हुई है, आप बताइए उसको उस वक्त भी आप ही की सरकार थी महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अब आलोक शर्मा जी बोल रहे हैं कि इसमें भाजपा घुस गई, ये घुस गई, यहां छात्रों ने इतना अच्छा काम किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया है, जंतर मंतर पर आप सभी लोग जाकर के सॉलिडैरिटी दिखा रहे थे, आप ये बताइए कि आपका रांची आते ही आपका मापदंड दोहरा कैसे हो सकता है? महुआ मांझी जी की बात सुन रहे थे कि हमने छात्रों की 98% बातें मान ली, दो बच गई, वाह बहुत बढ़िया, जो दो माननी थी वो नहीं मानी, और इसके बाद 100% लाठियां, ये कौन सा तर्क है? छात्र इस देश के छात्र हैं, न मेरे हैं न तेरे हैं, अगर लाठीचार्ज जंतर मंतर पर हुई उसका भी हम समर्थन नहीं करते, लेकिन झारखंड में जो हुआ उसका भी समर्थन नहीं करते। आप मुद्दे पर आइए, हर मुद्दा जो है वो राजनीति का विषय नहीं हो सकता है, कुछ जो मुद्दे होंगे राजनीति से ऊपर उठ करके देखने होंगे, और उन मुद्दों को देखने के लिए आप तेरा छात्र मेरा छात्र, तेरा लाठीचार्ज मेरा लाठीचार्ज नहीं करेंगे, आप मूल मुद्दों पर रखेंगे, मूल मुद्दों पर आइए। आपके राज्य में पेपर लीक हुआ, JSSC झारखंड सरकार का है, आयुक्त को आपने नियुक्त किया था, आपकी CID जांच करके बोल रही है कि 150 में से 120 प्रश्न लीक हुए हैं, आपकी SIT कर रही है, नहीं सब कुछ ठीक है, आपकी सरकार ही जांच भी कर रही है, विरोधाभास भी है, और आपके मंत्री तो अनाप शनाप बहुत कुछ बक रहे हैं जो कि कहीं से स्वीकार्य नहीं है। उस मंत्री का विरोध होना चाहिए इरफान अंसारी का, जिस तरह से आके गलत बयानी कर रहा है। छात्रों की जो मूल मांगे हैं, मुख्यमंत्री जी ने, जब मैंने यह भी सुना था कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात की, उनकी बात सुन ली, कितनी अच्छी बात सुनी, की बात सुनने के बाद फिर लाठी बरसा दिए। अरे भाई, आप छात्रों की मूल मुद्दों पर आइए, उनकी जो मांग है आप उस मांग पर बात कीजिए। आप मानने जा रहे हैं या नहीं, अगर दिल्ली में आप जंतर मंतर पर गए थे तो यहां पर भी आपकी, वहां पर देखिए, आपने छात्रों ने मांगा कि इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। यहां जो छात्र मांग रहे हैं, इस्तीफा तो नहीं मांग रहे हैं। शिक्षा का जो पोर्टफोलियो है मुख्यमंत्री के पास, इस्तीफा तो नहीं मांग रहे हैं। आप उनसे आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कीजिए और सीबीआई की जांच कीजिए। महुआ जी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप अपने मुख्यमंत्री जी को समझा रही हैं कि जो मूल मांगे हैं, जैसे दिल्ली में मान ली गई थी, आप क्यों नहीं मान ले रहे हैं।
0: महुआ जी एक जवाब दीजिए, फिर सबको दिखा
5: जी।
2: देखिए ऐसा ऐसा है कि कई परीक्षाओं को रद्द करने के लिए हामी भरी है, जो हमारे यहाँ से प्रतिनिधि मंडल गए थे, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजीटी के मंत्रीगण थे। तो उन्होंने कहा कि बाकी एग्जाम्स को रद्द करने की बात उन्होंने मान ली है, सिर्फ सीजीएल को मान रद्द करने का पावर उनके पास नहीं है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे उसका रिजल्ट वगैरह आउट हुआ था। बहुत सारे लोग उसमें नौकरी भी कर रहे हैं, जिससे उनका परिवार चल रहा है, बच्चों का फीस भर रहे हैं या बुजुर्गों का, तो वो चूंकि न्यायालय के आदेश के बिना उसे रद्द नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसा भी छात्र चाहेंगे वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा मोहलत वो चाहते हैं। और बाकी उनकी जो भी मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, और वो उन्होंने बार बार अपील की है। अभी उनका फेसबुक पोस्ट भी देख लीजिए, उनका बयान भी देख लीजिए, लगातार वो छात्रों से ये कह रहे हैं कि आपकी जो
0: उनका दर्द ये है ना महुआ जी, बिल्कुल महुआ जी, वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर आप गई थी, वहां यहाँ पर छात्रों से क्यों नहीं मिलने आई, ये भी चंदन जी बार बार पूछ रहे हैं।
2: देखिए यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पर सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था जो वहां के राज्य के हैं। हम लोग पार्लियामेंट सेशन चूंकि दिल्ली में चल रहा है, हमें अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी लेवल पर हमेशा होता है कि जिसको जिस काम का, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी को जिम्मेदारी दी थी छात्रों से वार्ता करने की, उसी तरह से पार्टी की तरफ से वहां के जो अभी तत्कालीन मंत्री हैं कांग्रेस के, आरजेडी के और जेएमएम, उनको जिम्मेदारी मिली थी, इसीलिए वो लोग वार्ता करने गए।
0: चलिए जल्दी से एक जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, अब तो हेमंत सोरेन जी आप लोगों को परजीवी कह रहे हैं।
3: देखिए अंजना जी, होम मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ, कल आज तक रात को लाठी चार्ज हुआ, 10 घंटे में 4 बार लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस चलाया गया, एक्सपायर्ड आंसू गैस चलाया गया, कई छात्र कह रहे हैं कि उनपे पैलेट चलाया गया। जवाबदेही राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की। राहुल गांधी जो यहां पे सवाल पूछ रहे थे, जहां उनकी सरकार, उनने क्या अकाउंटेबिलिटी ली? पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलने दे रहे क्योंकि पार्लियामेंट में जब ये डिस्कस होगा तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात, ये अभी बात कर रहे थे सीबीआई प्रोब की, सोनिया गांधी ने आज आर्टिकल लिखा है सीबीआई प्रोब को वेलकम करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह से, तो अगर आपकी नीयत साफ है तो सीबीआई प्रोब से क्यों घबरा रहे? छात्रों को शो के ऊपर गाली क्यों बक रहे? छात्र राजनीतिक व्यक्ति है और दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को ले आए थे, दुबई से ले आए थे, हर तरफ से ले आए थे, तब सब कुछ ठीक था। और अगर देश का छात्र आके झारखंड के छात्र को सपोर्ट कर रहा है, कोई पुष्पा के ड्रेस मार रहा है, तो उन सबको आप जो है भाड़े का कह रहे हैं? इतनी नफरत करते हो किसान के बेटे से क्योंकि वो रील मेकर नहीं है? तीसरा, जिन्होंने बोला नीट में नहीं पकड़े गए, ये रही दैनिक जागरण की रिपोर्ट, हर जो व्यक्ति जिसने लीक किया गया वो पकड़ा गया। बुरी मेन बात है,
0: टाइम इतना ही। प्रदीप जी मुझे रोकना पड़ रहा है, जल्दी से चंदन जी आपकी दो लाइनों से आज के शो का अंत करते हैं क्योंकि आप लोगों की आवाज बहुत जरूरी है। अगर जंतर मंतर पर यहां पर छात्र थे, लगातार हमने उनको भी, उनकी भी आवाज बुलंद की है, आप लोग भी झारखंड में जब ये कर रहे हैं, तो दो लाइन में जो भी आप बोलना चाहें आप लोगों की मांग को लेकर।
1: जी धन्यवाद। पहली बात है कि मैम, टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितना भी प्रतियोगिता परीक्षाएं की गई है, जिसमें नियुक्ति हो गई है, जो प्रक्रिया में है, सभी को अविलंब रद्द किया जाए। साथ ही साथ इस सरकार के कार्यकाल में जितने भी जेएसएससी के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाएं कराए गए हैं, जिसमें टीडीपीएल एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर, जो पीजीटी में प्रथम रैंक लाए इंग्लिश में, साथ ही जेएसएससी सीजीएल में, और सीआईटी जांच के दौरान देखे होंगे कि जेई के जो डायरेक्टर थे अभी मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं।
0: सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि टीडीपीएल जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने जितने भी एग्जाम्स कराए हैं उनको रद्द किया जाए। अभी भी एक डेडलॉक, तो एक लॉक जैम बना हुआ है, नजर हमारी इस पर रहेगी, लेकिन आज रात ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर देखिएगा, हम आपको बताएंगे क्या सर्दी गर्मी बरसात का पैटर्न बदल गया है, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश प्रलय इस वक्त आया हुआ है। इसके बाद आपको बताएंगे कि झारखंड में छात्रों पर पड़ी लाठी को वहां के मंत्री लाठी चार्ज क्यों नहीं मानते, और आखिर में बताएंगे कि किम जोंग उन के हैकर्स यूक्रेन के पीछे क्यों पड़े। देखते रहिए।

0: Papa.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
7: इत्ता माही वे।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: years of finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: बहुत टायर्ड हो गई।
6: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच. हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें.
3: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: कोलंबिया में मचा कोहराम। भूकंप के झटकों से कांपा साउथ अमेरिकी देश। ढही कई इमारतें, मलबे में दबे लोग, कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह तबाही का मंजर लेकर आई। सुबह करीब 7:30 बजे कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद हर तरफ कोहराम मच गया। ये तस्वीर कोलंबिया के पेरेरा की है, जहां भूकंप के तेज झटकों से इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। एक और तस्वीर देखिए, ये पेरेरा के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां भूकंप के झटके आने के बाद टेबल के नीचे बैठकर अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। भूकंप से मचे हाहाकार की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज झटकों से एक अस्पताल की इमारत का ऊपरी हिस्सा गिर गया और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पश्चिमी कोलंबिया के साथ साथ सेंट्रल कोलंबिया में भी कई इमारतें ढह गईं। पेरेरा, कैली, मनीजाले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पालमार के पास था। भूकंप की गहराई 107 किलोमीटर थी। कोलंबिया की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान तेज करने को कहा है। कोलंबिया में आए इस भूकंप के झटके इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा तक महसूस किए गए हैं। इससे पहले वेनेजुएला में इसी साल जून में शक्तिशाली भूकंप आया था, जहाँ हजारों लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो।
1: सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वहीं डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियां खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मैं शकील, शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी, कहा गृह मंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड रहा बंद आंदोलन को लेकर सीएम सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। राम मंदिर के नए सीईओ को लेकर इंटरव्यू जारी, शॉर्टलिस्ट हैं 18 दावेदार, 2 सितंबर को होगा ऐलान। भारत ने चीन से फिर दोहराया एलएसी पर शांति से ही सुधरेंगे आपसी रिश्ते। शो की शुरुआत रांची में चल रहे छात्र आंदोलन वाली खबर से करते हैं। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है, अब तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। इन सबके बीच आज बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब पूरे मामले पर जबरदस्त राजनीति हो रही है।
1: सबने देखा कि रांची में छात्रों पर लाठियां चली, सबने देखा कि लाठीचार्ज में छात्र घायल हुए। लेकिन झारखंड के मंत्री को ये तस्वीरें नहीं दिखी। मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि किसी छात्र पर कोई लाठी नहीं चलाई गई।
2: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया।
1: इतना ही नहीं, इरफान अंसारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो गए थे और उन्होंने हेमंत सोरेन को मारने की साजिश भी रची।
2: कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहाँ चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था।
1: बहरहाल, अगर प्रशासन ने छात्रों पर कल बल प्रयोग न किया होता तो ये तस्वीरें न देखने के लिए मिलती। बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया।
3: भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आगजनी की है सड़क पे और पूरा रास्ता इस वक्त बंद है। मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाए गए बंद का असर अब व्यापक तौर पे दिखने लगा है।
1: झारखंड बंद के साथ ही लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया।
4: देखिए, एबीवीपी कार्यकर्ताओं को अब बस में बिठाया जा रहा है, पुलिस ने डिटेन कर दिया है और अब विधानसभा मार्च उनका नहीं होगा। पुलिस ने यहीं उनको घेर लिया था, उनका विधानसभा मार्च का कार्यक्रम था। अभी आपको उधर दृश्य दिखाते हैं, कैसे ठेल के पुलिस जो है उनको अंदर ले जा रही है, बस में चढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यानी विधानसभा मार्च नहीं करने देगी, भारी मशक्कत पुलिस के साथ हो रही है, खींचा तानी जो है वो चल रहा है। एबीपी के कार्यकर्ताओं को बस में बिठाया जा रहा है, यहीं डिटेन कर लिया जाएगा, यानी विधानसभा मार्च करने की इजाजत जो है वो इनको नहीं दी जा रही है।
1: आरोप है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया।
5: सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं ये गुंडे।
4: हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है तो झारखंड के विद्यार्थियों की कृपा से है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने झारखंड का पूरे विद्यार्थियों का बहिष्कार बेच दिया और बेचने के बाद जब विरोध कर रहे हैं तो हम लोग को ये मिल रहा है।
1: अब सूबे के सूबेदार कह रहे हैं कि सारे युवाओं के साथ अन्याय केंद्र सरकार कर रही है।
6: केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नीतियों की वजह से करोड़ों करोड़ों छात्रों की रोजगारें भी जा रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, छोटे बड़े प्रतिष्ठानें, मझोले प्रतिष्ठानें बंद हो जा रही हैं।
1: इन तमाम सियासत के बीच आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। रांची से सत्यजीत और शशिभूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात संसद में मचे संग्राम की, जहां चर्चा के नाम पर सिर्फ हंगामा हो रहा है। आज एक बार फिर संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। क्या कुछ हुआ संसद में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
7: जिन सांसदों को संसद के अंदर देश के मुद्दों पर चर्चा करनी, वही सांसद पूरे मॉनसून सत्र में संसद परिसर में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जंतर मंतर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर कब जवाब देंगे, तो एनडीए पूछ रही है कि राहुल गांधी चर्चा से भाग क्यों रहे हैं।
8: पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट देखिए।
9: गृह मंत्री जवाब तैयार हैं राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब देने के लिए, वो सुनने तो आए, बहस होने तो दें।
7: मानसून सत्र के शुरुआत में जिस जंतर मंतर को लेकर हंगामा मचा था, लेकिन झारखंड में लाठी चार्ज के मुद्दे ने

0: गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तो वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं।
1: वो इश्यू अलग है, सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं।
2: इस हंगामे के बीच लोकसभा में दो बिल बिना चर्चा के पास हुए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन बिल 2026 और केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल पारित हो गया है। वहीं वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा FCRA बिल को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद सामने आया है। कांग्रेस और TMC ने बिल वापस लेने की मांग की तो DMK और BJD इसे JPC को भेजने के पक्ष में। विपक्षी दलों ने ये मुद्दा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उठाया। इस बीच संसद में अभी भी चर्चा का इंतजार है, जो कि हंगामे के बीच बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज तक ब्यूरो
3: बजे तक स्थगित की जाती है।
4: यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले BSP ने भी कमर कस ली है। कल हाथरस में रैली कर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अपने अभियान का आगाज किया। इस रैली में आकाश ने अखिलेश और राहुल गांधी पर तंज कसा।
5: करीब दो साल बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रैली कर हुंकार भरी तो BJP सरकार पर हमला बोला और राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा।
6: कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं।
5: राहुल और अखिलेश को अंकल कहकर आकाश आनंद ने जनजी को लुभाने वाली राजनीति की ओर कदम बढ़ाया है, सुनिए।
6: अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी।
5: आकाश आनंद अखिलेश को अंकल कहकर भले ही व्यंग मार रहे हों, मगर अखिलेश उनके इस बयान को नजरअंदाज कर रहे हैं।
7: उस बहस में हम और आप न उलझे, और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
5: अखिलेश ने तो बयान को हवा में उड़ा दिया, मगर कांग्रेस को ये बयान चुभ गया।
8: मुद्दा ये नहीं है कि किसको अंकल कहो और किसको दादाजी कहो, हिम्मत हो तो कह लेना मोदी जी को। मुद्दा ये है कि बहुजन मिशन को आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों क्यों गिरवी रख रहे हैं, आरक्षण विरोधियों के हक में क्यों बात कर रहे हैं।
5: आकाश आनंद सीधे सीधे जनजी कनेक्शन तलाश रहे हैं और यूपी के CM भी नौजवानों की ही बात कर रहे हैं।
9: आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहन और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे।
5: चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर यूपी में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। यूपी की सरकार जिस लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ थपथपाती है, उसी मुद्दे पर आकाश आनंद सरकार को घेर रहे हैं।
6: क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज?
5: BSP के खिसकते जनाधार और एक के बाद एक मिली चुनावी हार के बीच पार्टी प्रमुख मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद से सियासी चमत्कार की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: उधर यूपी में राम मंदिर पर सियासत थमने का

नाम नहीं ले रही, चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद के लिए कुल 18 उम्मीदवारों को चुना गया है और उन्हीं 18 लोगों की इंटरव्यू अभी जारी है।

0: संसद का मॉनसून सत्र भले ही राम मंदिर से डाइवर्ट होकर झंझी आंदोलन पर शिफ्ट हो गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राम मंदिर को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन जारी है।
1: जब ये प्रभु श्री राम को आगे नहीं बैठा रहे, बताओ आप।
0: विपक्ष संसद में भी चंदा चोरी पर सरकार से जवाब मांग रहा है, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कह रहा है।
2: सरकार ने कहा था कि आप कोई भी बच्चों पे एफआईआर नहीं करेंगे, तो आप जीरो एफआईआर कैसे फाइल करते हैं 15 साल की बच्ची पे 25 साल की उम्र दिखाकर। तो ये सब चीजें हैं, और चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए।
0: इस बीच राम मंदिर में नए सीईओ के लिए इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। सूत्रों की माने तो 18 आवेदकों का चयन हुआ है। ये इंटरव्यू 2 दिन तक चलेंगे। 3 आवेदक का नाम चयन कर ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 2 सितंबर को 1 सीईओ की नियुक्ति की घोषणा होगी।
3: इस सीईओ पद के लिए सबसे बड़ी माने की कि वह व्यक्ति 50 से 70 साल का होना चाहिए, साथ ही साथ मांस मदिरा से दूर होना चाहिए, हिंदू आस्था में विश्वास के साथ साथ मैनेजमेंट आना चाहिए, इन सभी मानकों पर पूरा होना चाहिए।
0: राम मंदिर पर जारी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
4: आपकी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार होगी तो ही विकास करा पाएगी। जिनके मन में आपकी आस्था के प्रति सम्मान का भाव नहीं, वे विकास भी नहीं करा सकते।
0: सियासत के धर्मयुद्ध में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का पूरा खेल जारी है।
5: हम अब आदमी को चुनौती देते हैं कि अगर वो वास्तव में मुसलमान हैं और मुसलमानों के हितैषी हैं, तो अखिलेश यादव जी के सामने कहें कि 4 बार मुसलमानों ने 20% वोट दे करके अखिलेश जी समाजवादी पार्टी यादव को मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप खाली ऐलान करो।
0: सियासत में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार धर्म की ये लड़ाई राम मंदिर के चंदे को लेकर है। जिस मंदिर को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष अब चुनावी बिसात बिछा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इनमें पानी भर जाने से स्कूली बच्चों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया कि अब सब जगह उनकी तारीफ हो रही है।
0: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं। उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
7: कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही, तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत।
8: तुम्ही बघू शकता
9: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
7: तर आजची न्यूज इथे संपते। रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
0: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रख दी। इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
10: का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया, और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है, और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है ये आपने दिल्ली तक पहुँचाना चाहिए, मेरी मांग है।
0: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की। बोले ये जन अल्फा है जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
8: कर्ज पंजवडेरे रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज यावर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
0: इन बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था, मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी, वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचा दी। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, करजत, आज तक।
6: अब बात बाजार की, आपको बताते हैं कि कैसा रहा शेयर बाजार का हाल और सोने चांदी की कीमतों में कितना हुआ इजाफा।
0: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 388 अंक टूटकर 78,154 और निफ्टी 112 अंक की गिरावट के साथ 24,472 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितता और साप्ताहिक FNO एक्सपायरी से पहले बढ़ी उतार चढ़ाव के चलते घरेलू शेयर बाजार पर दबाव रहा। शेयर बाजार की कमजोरी के बीच रुपए में भी गिरावट देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 95.43 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी डॉलर में मजबूती के चलते रुपए पर दबाव रहा। हालांकि विदेशी निवेशकों की हालिया खरीदारी से रुपए की गिरावट कुछ सीमित रही, वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा और सोना 1,849 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,52,490 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,907 रुपए बढ़कर 2,34,280 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। आज तक ब्यूरो।
6: अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें अपनी जान का खतरा मंडरा रहा है। 8 जुलाई को तुर्की में ट्रंप के सफर को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है।
0: क्या ट्रंप को ईरान से जान का खतरा है? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान के हमले के डर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंकारा एयरपोर्ट पर अपने एयरफोर्स वन को छोड़ दिया। अंकारा से वो एक तीसरे विमान में सवार हुए जिसका इस्तेमाल धोखा देने के लिए किया गया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस स्टाफ और अपने साथ चल रहे पत्रकारों को भी धोखे में रखा। यह घटना 8 जुलाई की है, जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में हुई नाटो की बैठक के बाद अमेरिका लौट रहे थे। आप ये तीन तस्वीरें देखिए, जिनसे ये साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से तुर्की तक का सफर उस नए एयरफोर्स वन से किया था जो उन्हें कतर ने साल 2025 में गिफ्ट किया था, लेकिन अंकारा से लौटते समय उन्होंने उस विमान को छोड़ दिया, ये कहकर पुराने नीले रंग के एयरफोर्स वन में सवार हुए कि वो आखिरी बार पुराने विमान से उड़ान भरना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप उस विमान में सवार भी हुए और हाथ हिलाकर लोगों से विदाई भी ली, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से उस विमान से उतर गए और फिर उसके साथ इंतजार कर रहे अमेरिकी एयरफोर्स विमान C-32A में सवार हो गए। यहाँ से वो UK के RAF मिल्डन हॉल मिलिट्री बेस पहुंचे। चूंकि तुर्की और ईरान पड़ोसी देश हैं और अंकारा के आसमान से उड़ान भरने वाला विमान सीधे ईरान के हमले की जद में आ सकता है, वहीं अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को यह खबर थी कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान को निशाना बना सकता है, लिहाजा उन्होंने गेम प्लान के तहत ट्रंप का विमान बदला। अंकारा से उड़ान भरने के बाद शाम 6:26 पर वो एयरफोर्स वन विमान उतरा जिसे कतर ने गिफ्ट किया था और जिसे ट्रंप ने अपने पुराने एयरफोर्स वन विमान में सफर की दलील देकर छोड़ दिया था। इसके बाद रात 10:20 पर एयरफोर्स का C-32A प्लेन उतरा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सवार थे। इसके 9 मिनट बाद यानी रात 10:29 पर अमेरिकी राष्ट्रपति का पुराना एयरफोर्स वन विमान उतरा। आज तक ब्यूरो।
6: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: बिजली का बिल पेड,
3: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
4: इतना माही वे।
5: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: पापा।
13: सॉरी यार ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
14: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
13: छक्का?
14: सब कैशलेस हो गया
13: है। ला भाई मेरा बैट।
14: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
13: चार्ज हुआ यार।
15: बैट किसका है?
16: टाटा AIG है तो भरोसा है।
17: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
3: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें 7 तक देखते रहिए आज तक

0: पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसूनी आफत, मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। विदिशा से लेकर भोपाल तक हर जगह पानी ही पानी। अगस्त का महीना चल रहा है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानों पर भी आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते एमपी के विदिशा में हालात बिगड़ गए हैं। क्या गांव, क्या शहर, क्या घाट और क्या मंदिर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के किनारे के घाट और मंदिरों में पानी घुस गया है। वहीं कुछ छोटे मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। नदी में उफान के चलते हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिया के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, जहां स्कूली बच्चों को लोग गोद में लेकर पुलिया पार करने पर मजबूर हैं। वहीं विदिशा के वामन खेड़ा और पथरिया गांव में पानी भर चुका है, जहां से लोगों को एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। विदिशा ही नहीं, भोपाल भी इस वक्त आसमानी आफत का सामना कर रहा है। सोमवार को महज कुछ घंटों की बारिश से भोपाल के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। भोपाल के शिवनगर, गीता नगर, कल्याण नगर में कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसके चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। लगातार हो रही बारिश और जल भराव के चलते लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि हर साल बारिश में यही हाल होता है। विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर और भोपाल से रविश पॉल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: ये ब्रिज आएगा।
2: पहाड़ों पर मॉनसून ने कैसा हाहाकार मचाया है, उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। शोर करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी मार से लोहे का बड़ा पुल बहता चला जाता है। दिल दहला देने वाला ये मंजर उत्तराखंड के जोशीमठ का है, जहां एक दिन पहले तमक नाले के पास आए फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। तस्वीरें देखिए, तबाही किस तरह आई, देखिए किस तरह पानी तेज रफ्तार से आ रहा है। सामने एक छोटा ट्रक और जेसीबी है। पानी को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगा। पानी की मार को लोहे का पुल भी नहीं सह पाया और सैलाब में बह गया। उत्तराखंड के कई जिलों में मॉनसून तेवर दिखा रहा है। नैनीताल से चमोली तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 13 अगस्त तक राहत के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
3: देखिए, ये हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से ये ट्रस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन सब ट्रस्ट को अपने अधीन करना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट इनके अधीन रहे और सरकार जिस पे जाए जब चाहे शिकंजा कर सके।
4: FCRA में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं उनको ये देश को बताना चाहिए कि विदेशी धन भारत में आएगा तो उसका स्रोत क्या है, पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसकी जानकारी और निगरानी रखना क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है? खड़गे साहब को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि FCRA किसी संस्था का के खिलाफ कानून थोड़े है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी, कहा गृह मंत्री का जवाब सुनने का दिखाए साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों के घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। रांची में देवेंद्रनाथ महतो ने अस्पताल से लिखा पत्र, लाठी चार्ज वालों पर हो रही कार्रवाई। बीजेपी ने आज झारखंड रखा बंद रखा था। एयर इंडिया के पायलट की मेडिकल रिपोर्ट में गांजा पीने की पुष्टि। 4 अगस्त की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में 17 यात्री हुए थे जख्मी। भारत ने फिर से दोहराया चीन को कहा, एलएसी पर शांति से ही सुधरेंगे आपसी रिश्ते।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। आज विशेष में बात करेंगे तबाही की, इन तस्वीरों की जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं। सोमवार को उत्तराखंड के चमोली में ये तबाही आई है। फ्लैश फ्लड के ऐसे वीडियोस आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बहते हुए पानी और मलबे का इतना फोर्स कि लोहे का 40 मीटर लंबा पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। इन तस्वीरों ने पिछले साल उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा की तस्वीरों को ताजा कर दिया। चमोली की इस तबाही में और क्या नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
3: ब्रिज आएगा, वह ब्रिज आएगा।
4: पहली नजर में ये कोई फिल्मी सीन लगता है,
5: छोड़ दे।
4: जैसे कोई बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा, लेकिन ये ना तो कोई फिल्मी है और ना कोई एआई वीडियो है, ये असली तस्वीरें हैं। पीछे से पानी आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है। बाइक सवार एक शख्स इस वीडियो को बना रहा है और दूसरा बाइक तेजी से चला रहा है। दिख रहा है कि कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। एक जेसीबी मशीन दिख रही है और वो भी पीछे की तरफ चल रही है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ऑपरेटर मौजूद है जो उसे चला रहा है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये फ्लैश फ्लड यहां तक आ सकता है। उसे लग रहा है कि वो खुद को और अपनी इस जेसीबी मशीन को बचा लेगा। देखते जाइए कि ये जेसीबी वाला बच पाता है कि नहीं। तब तक जो शख्स इस वीडियो को बना रहा है वो खुद को बचाने के लिए ऊपर जाने वाले एक रास्ते पर बढ़ गया और नीचे दिख रहा है कि तुरंत पानी उस जेसीबी मशीन तक और उसके बगल में खड़े एक और पिकअप वाहन तक आ गया। बहुत फोर्स के साथ पानी आया, पिकअप वाहन तो पलट गया। तभी पीछे से आवाज भी आती है कि ये मरेगा। पीछे से पुल टूटकर बहता हुआ दिख रहा है। इधर पिकअप वाहन भी बह रहा है, लेकिन जेसीबी अपनी जगह पर खड़ी है। वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से उसे बचा लिया जाए। वीडियो खुलता है तो पूरी तबाही साफ साफ दिख रही है। बहुत तेज गति से पूरा मटमैला पानी, बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर आते दिख रहे हैं। दिख रहा है कि जेसीबी वाला धीरे धीरे अपनी मशीन को पीछे कर रहा है। जितनी देर का ये वीडियो है उसमें तो जेसीबी वाला सुरक्षित दिख रहा है। अब एक और एंगल से ये वीडियो आपको दिखाते हैं। ये दूसरी तरफ से वीडियो बनाया गया है जिसमें दिख रहा है कि चमोली के नीति घाटी के तमक नाले में फ्लैश फ्लड आने की शुरुआत हो रही है। पूरा नाला खाली है, सूखा दिख रहा है और धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है।
6: जल्दी जा, कुदर रहा है।
4: नीचे दिख रहा है कि एक शख्स बाइक लेकर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है। वो पहले बहाव को देखकर थोड़ा रुका और फिर तेजी से निकल गया।
6: जल्दी जा, कुदर रहा है।
4: बाइक वाला तो पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया लेकिन पानी तब तक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतनी ऊपर से वीडियो बनाने वाले भी घबराए हुए लग रहे हैं। आगे ये पानी नदी में मिलता हुआ दिख रहा है। नीचे कुछ लड़के वीडियो बनाने के लिए इसके नजदीक भी जाते हैं और यह है तीसरा एंगल। यह इस तबाही का सबसे खतरनाक वीडियो है।
3: ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा।
4: देखिए कितनी तेजी से पानी आ रहा है। पानी साफ साफ इस पुल के ऊपर से बहता दिख रहा है। तब तक वीडियो बनाने वाला किनारे हटता है और इसके तुरंत बाद ये पुल ऐसे बहने लगता है जैसे लोहे का नहीं, लकड़ी का या कागज का रहा हो।
3: ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा।
4: देखिए कितना फोर्स है इस फ्लैश फ्लड में। पूरा पुल बह गया और बहता ही चला गया। पानी का रौद्र रूप ऐसा था कि देखकर डर लग जाए।
3: ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा।
4: कई कई मीटर ऊपर लहरें आ रही हैं। पानी अपने साथ पत्थर और मलबा लाता ही जा रहा था और फोर्स कम नहीं हो रहा था।

0: सोमवार को ये फ्लैश फ्लड चमोली की नीति घाटी में आया। बताया जा रहा है कि ऊपरी इलाकों में बादल फटा, जिससे तमक नाले में भारी मात्रा में पानी और मलबा आ गया। पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज बह गया। 13 गांवों का जोशीमठ तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और भारत चीन सीमा मार्ग भी बंद हो गया है।
1: चमोली की नीति घाटी में एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिला है। बताते चले, जोशीमठ से 37 किलोमीटर दूर तमक नाले में एक बार फिर से भारी बादल फटने जैसी घटना ऊपरी इलाकों में हुई है। और नीचे तमक नाले में जो वैली ब्रिज, अभी एक महीने पहले ही इसे बना के लगाया गया था, चालू किया गया था, ये पूरी तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। जो आज फ्लड आया, दोपहर बाद से लगातार पानी बढ़ता जा रहा था और जो अंतिम बार का जो फ्लड आया उसमें इतना जलस्तर इसका बढ़ा, इतना भारी मात्रा में मलवा और बोल्डर इसके साथ आए, पूरा पुल ताश के पत्तों की तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो वैली ब्रिज बनाया गया है, ये एकदम से याद दिलाता है पिछले वर्ष जो उत्तरकाशी की धराली की आपदा थी 5 अगस्त को जब वहाँ पे आया था, उसी तरह की ये जो बहाव आया है, ये फ्लड जो आया है, उसी तरह की याद दिलाता है। ऐसे में पूरा पुल बह चुका है।
0: इस हादसे में एक बीआरओ का कर्मचारी लापता बताया जा रहा है। पुल के बहने से जुम्मा, झेलम, कोशा, मलारी, कैलाशपुर, मेहरागांव, फरकिया, बांपा, कमशाली, नीति, द्रोणागिरी, कागा और गरपक समेत 13 गांवों का संपर्क जोशीमठ तहसील मुख्यालय से कट गया। इन गांवों के लिए ये पुल आवाजाही का प्रमुख मार्ग था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के खेत और सेब के बगीचे भी प्रभावित हुए हैं।
2: देखिए, जो तमक नाला है उसका पुराना भी इतिहास रहा है कि अतिवृष्टि में वो नाला काफ़ी बढ़ करके आ जाता है और वहाँ पे पुल बहने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये अभी कुछ ही समय पहले अतिवृष्टि के कारण जो नाला उफान पे आया है उसकी वजह से पुल वॉश आउट हुआ है। और साथ में जो प्रारंभिक हमें सूचना मिल रही है कि ग्रिफ के एक वर्कर वहाँ पे थे, वो भी बहे हैं। बाकी NDRF और SDRF को हमने तत्काल मौके पे भेज दिया है। हमारी प्रशासनिक टीम भी मौके पे पहुंच रही है और जो भी उसके बाद अपडेट रहता है उसका हम आपको फिर बता देंगे।
3: सर, अभी कितने गांव कट हो गए हैं और आगे की क्या व्यवस्था होगी?
2: देखिए, जो माइग्रेशन वाले हमारे गांव हैं, जो बेसिकली आजकल क्षेत्रों में ही रहते हैं, तो ऐसी कोई खाद्यान्न सामग्री की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए एक्स्ट्रा जो खाद्यान्न सामग्री है वो बरसात से पहले ही हम वहाँ पे व्यवस्था कर देते हैं। और वो लोग अपना पर्याप्त स्टॉक रखते भी हैं। जैसे पुल बहा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि कल जा कर के मौके पे जितनी जल्दी हो जाए वो उसका वैकल्पिक हम रूट बना लें ताकि आवाजाही कोई बहुत ज्यादा प्रभावित न रहे।
0: पिछले साल मॉनसून के दौरान इसी स्थान पर बना PCC पुल भी बह गया था। इसके बाद पिछले महीने ही बीआरओ की तरफ से यहां वैली ब्रिज लगाया गया था, लेकिन महज एक महीने के भीतर ही ये पुल भी तेज पानी के बहाव में बह गया। तमक नाले में हर मॉनसून के दौरान पुल और सड़क को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमें भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई हैं। टीमें मौके पर राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं। रात के अंधेरे में भी लगातार सर्च अभियान चलाया गया। आज सुबह फिर से लापता व्यक्ति के लिए सर्च अभियान शुरू किया गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। मॉनसून के सीजन पर पहाड़ों में ऐसे ही हादसे हो रहे हैं। इस वक्त पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां एक चलती हुई गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा NH 305 पर किरण बाजार बराड़ के बीच में हुआ है।
4: पहाड़ों पर ही नहीं, बारिश कहर बरपा रही है मैदानों पर भी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इतनी बारिश हो रही है कि बहुत सी नदियां उफान पर हैं कई जगहों पर, तो हालात को संभालने के लिए SDRF को बुलाना पड़ा है। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। ये राजस्थान के टोंक की तस्वीरें, जहां टोडा राइसिंग मालपुरा उपखंड के कई इलाकों में इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर बाढ़ सी आ गई। ये टोडा राइसिंग कस्बे की तस्वीरें हैं, जहां मुख्य बाजार की सड़कों पर बहुत तेज स्पीड से पानी बहता हुआ दिखा। बहुत सी निचली दुकानों में तो बारिश का पानी भर गया, लेकिन साथ ही बाजार में सड़कों के किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलें तेज बहाव में बह गई। लोग अपनी मोटरसाइकिलों को ऐसे ही रोकते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोहे की नहीं बल्कि कागज की बाइक्स होंगी जो ऐसे बह रही है। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। विदिशा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बेतवा नदी उफान पर है, नदी नाले और रपटे खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, घाटों पर बने कई मंदिर डूब गए। पिछले दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से बेतवा बढ़ गई है। बारिश और बाढ़ के बीच कई जगहों पर लोग अचानक से फंस गए। विदिशा के वामन खेड़ा में 15 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। सूचना मिलते ही SDRF और होमगार्ड की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 7 पुरुष, 2 महिलाओं और 6 बच्चों समेत सभी 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: वामन खेड़ा में जो पुल के ओवरफ्लो होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहां से पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया था। अभी तक लगभग 16 लोगों को सकुशल वापस निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन बल और SDRF की टीम वहीं तैनात है और बाकी बचे हुए के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है।
0: मव्वा खेड़ा पृथ्वीराज में तो तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। यहाँ लोग उफनती नदी को पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेते दिखाई दिए। तेज बहाव के बीच एक छोटी सी गलती इनकी जान पर आ सकती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक तस्वीरें सेमल खेड़ी से सामने आई, जहाँ छोटे छोटे स्कूली बच्चे ओवरफ्लो पुलिया के ऊपर से बहते पानी के बीच नदी पार करते दिखाई दिए। तेज बहाव के बीच बच्चों का इस तरह पुलिया पार करना बेहद खतरनाक है।
2: वक्त है अभी एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: पे।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है। विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियों में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है। माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो,

क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है। वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है। इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं। इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए। एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष एतराज क्यों जता रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की नज़र शरद पवार के अगले कदम पर है। उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: करीब दो साल बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रैली कर हुंकार भरी,
1: जय भीम।
0: बीजेपी सरकार पर हमला बोला, राहुल गांधी को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव पर तंज कसा और अपने बयानों से भविष्य वाली रणनीति का संकेत दिया।
2: तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना एड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए।
0: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। और इसी कड़ी में जब आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद में हुंकार भरी तो योगी सरकार सबसे ज्यादा निशाने पर रही।
2: मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप?
0: बीएसपी के खिसकते जनाधार और एक के बाद एक मिल रही चुनावी हार के बीच पार्टी प्रमुख मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद से सियासी चमत्कार की उम्मीद है। यही वजह है कि चुनावों के ऐलान से पहले ही आकाश आनंद ने मोर्चा संभाल लिया है और इस रैली में उन्होंने इशारों इशारों में राहुल गांधी को घेर लिया।
2: जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके सत्ता, अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे।
3: मुद्दा ये नहीं है कि किसको अंकल कहो और किसको दादाजी कहो, हिम्मत हो तो कह लेना मोदी जी को। मुद्दा ये है कि बहुजन मिशन को आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों क्यों गिरवी रख रहे हैं, आरक्षण विरोधियों के हक में क्यों बात कर रहे हैं, संविधान विरोधी भाजपा के हक में क्यों बात कर रहे हो, आप और आपकी बुआ जी दोनों के दोनों लोग बहुजन मिशन को क्यों बेच रहे हैं, क्या मिल रहा है आप?
0: लेकिन आकाश आनंद की इस रैली में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव पर ली गई चुटकी की हो रही है, जिसमें उन्होंने अखिलेश को अंकल बता दिया, जिसे जैन जी को लुभाने वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
2: आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ।
4: जो सीएस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
5: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है,
6: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है। वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मजारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द-गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।
7: मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

न्याय का दिया भरोसा, बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री की मंशा पर उठाए सवाल। राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी का, गृह मंत्री का जवाब सुनने का दिखाए साहस, नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस।

शहीदों को दे श्रद्धांजलि, एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। एयर इंडिया के पायलट की मेडिकल रिपोर्ट में गांजा पीने की पुष्टि। 4 अगस्त की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में 17 यात्री हुए थे जख्मी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। झारखंड में परीक्षा धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो गए। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप रहा जाता है, वही इस बार भी हो रहा है। इस पूरी खबर से हम खबरदार करें, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब से कुछ देर पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक साइलेंट मार्च निकाला है। यह मौन जुलूस उस सरकार और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ है, जो छात्रों की कई मांगे मानकर भी जरूरी मांग पर चुप्पी साधे हुए हैं। हाथ में मोबाइल टॉर्च लेकर निकलते ये प्रदर्शनकारी उस सरकारी अंधेरगर्दी से आजादी चाहते हैं, जो झारखंड में भर्ती आयोगों के बीच फैली हुई। इस प्रदर्शन की नौबत क्यों आई है? क्योंकि झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार आंख भी मूंद चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठी चार्ज नहीं दिखता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है वही बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है। जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है। उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरकत में हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीका से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
4: आप पास हो गई है फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट, जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
3: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
3: ये मेरे ही पे तैयारी करते, हम इसको समझाएं अभी तैयारी करने के लिए तो मजबूर किए।
4: आपकी बहन है छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी।
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ो।
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखी किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे आंख खोल कर देखे सरकार किसी का हाथ किसी का पैर किसी का कंधा किसी की कोहनी किसी का चेहरा किसी का सिर लाठियों के निशान मौजूद है।
6: बिल्ली को तो सबसे ज्यादा लगा
7: कहां लगा
8: गर्दन में
9: सात साढ़े सात बजे तक लाठी चार्ज किया गया बैरिकेड लगा कर मारा गया जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है हम लोग को इस तरह से मारा गया है तो बताइए
4: बहन को पैर में भी लगा हुआ है
10: सर बहुत गंदा मारा है सर बहुत
4: आपको भी
10: जी सर देखिए ना सर
11: बांस का डंटा था सर बांस का डंटा मोटा डंटा सर बांस का डंटा से मारा है सर
10: जबकि हम लोग पिस्तौल
11: में नहीं थी तो
1: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है मिलिए सत्ता की अंधेर गर्दी के दूसरे किरदार

0: के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
1: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छः सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
0: कोई कार्रवाई न कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां न आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
1: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूछा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
2: तो ये लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
1: देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
0: सोचिए, ये हाल है जहाँ मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
3: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था, उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि 8-8 बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
0: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
4: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
5: लेकिन कोई रिश्वत
4: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
0: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती, क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठीचार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
6: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात कहती है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है। अब इन दो मांगों की जरूरत क्या है, इसे आपको समझना है तो पहले जेपीएससी की इस बार की भर्ती में हुई धांधली के आरोपी किरदार देखने होंगे। किरदार नंबर 1, एल खिंगयाते, जेपीएससी पूर्व अध्यक्ष, जो कल ही गिरफ्तार हो चुके। फिर अभय तिवारी, सरकारी कर्मचारी और परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर, ये भी गिरफ्तार हो चुका है। तीसरे नंबर पर श्वेता गुप्ता, जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक, ये भी गिरफ्तार है। चौथा सत्यपाल सिंह, परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल का निदेशक। पांचवा रामबीर सिंह, टीडीपीएल एजेंसी का निदेशक। छठा सोनू कुमार, जेपीएससी कर्मचारी। सातवां मनोज तिर्की, जेपीएससी कर्मचारी। आठवां अवध कुमार, टीडीपीएल का कर्मचारी। ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त जेपीएससी की 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में धांधली के लिए जांच के दायरे में है। इन चेहरों पर आरोपों की फहरिस्त देखें और अब तक की जांच में सामने आई बात के आधार पर आप इसका आकलन करें कि इन्होंने किस तरह लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। बहुत ही चौंकाने वाले आरोप जांच एजेंसी के मुताबिक सामने आते हैं। जैसे एल खिंगयाते, जेपीएससी का पूर्व अध्यक्ष, जिसे कल यानी सोमवार को ही राज्य की सीआईडी ने आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि खिंगयाते ने ही परीक्षा आयोजित करने के लिए टीडीपीएल जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को चुना था। इनको पहले झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर रह चुके 22 जुलाई 2026 को जेपीएससी

0: चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था। किंग याते ने कहा था कि उनके इस्तीफे से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, लेकिन निष्पक्ष जांच की बात करते इन्हीं जेपीएससी पूर्व चेयरमैन पर आरोप है कि टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने 2 करोड़ रुपए एडवांस में दिए थे। साथ में इस पूरी सिविल सर्विस परीक्षा में धांधली से होने वाली पूरी कमाई का 20% कमीशन देने की डील करने का आरोप। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा किरदार अभय तिवारी। इसके बारे में हम लगातार आपको सबसे पहले से खबरदार करते आ रहे हैं। वही अभय तिवारी है जो खुद धांधली करके 13 साल में 12 सरकारी भर्ती परीक्षा पास कर चुका है। साथ ही सरकारी नौकरी करते हुए परीक्षा कराने वाली ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर भी रहा। इस पर आरोप है कि इसने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जेपीएससी चेयरमैन किंग याते को अगर 2 करोड़ एडवांस और भर्ती धांधली की पूरी कमाई में 20% कमीशन देने का वादा किया तो जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता को जेएसएससी सीजीएल की भर्ती में धांधली के लिए 1,80,00,000 देने और पूरी कमाई का 25% में डील करने का आरोप है। इस अभय तिवारी न केवल धांधली करके खुद अधिकारी बना बल्कि परिवार के लोगों को भी अफसर बना दिया। उसका भाई और पत्नी भी झारखंड में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसकी पत्नी स्वीटी पांडे जो एसओ बन गई है, तो इसके दोनों साले एक सौरभ और गौरव तिवारी भी नौकरी पा गए। अभय तिवारी तो गिरफ्तार है, रिश्तेदार फरार है। इस भर्ती धांधली में तीसरा नाम श्वेता गुप्ता है जो जेपीएससी में उप परीक्षा नियंत्रक थी। परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण काम इसकी ही देखरेख में होता था। चौंकाने वाली बात यह है कि 22 मई को श्वेता गुप्ता का तबादला खाद्य आपूर्ति विभाग में हो गया। इसके बाद भी जेपीएससी से रिलीव इन्हें नहीं किया गया और परीक्षा से जुड़े बड़े काम इन्हीं के देखरेख में होता रहा। यानी तबादला होने के बावजूद भी वो जेपीएससी परीक्षा व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य संभालती रही। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन कैसे होगा, परीक्षा कैसे होगी, इन सब में श्वेता गुप्ता की भूमिका थी। दावा है कि सीआईडी की पूछताछ में उसने बताया था कि जेपीएससी में टीडीपीएल को बिना किसी टेंडर के केवल नॉमिनेशन के आधार पर परीक्षा से जुड़ा काम सौंप दिया गया था। अब चौथा किरदार सत्यपाल सिंह जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल में रामवीर सिंह के साथ निदेशक के रूप में काम करता है। टीडीपीएल नोएडा की एक फर्म है जिसे झारखंड में सरकारी भर्ती कराने का ठेका मिला। पैसों के लेनदेन को लेकर सीआईडी गिरफ्तार करके इसकी जांच कर रही है। पांचवा किरदार है रामवीर सिंह का, ये भी टीडीपीएल कंपनी का निदेशक मुख्य आरोपियों में से एक गिरफ्तार किया जा चुका है। परीक्षाओं में गड़बड़ी और ठेका दिलाने के नाम पर घूसखोरी और ठगी के गंभीर आरोप है।
1: सर हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है, तो इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
2: सीजीएल भी दिए थे 2-3 बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक के वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
3: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो ऐसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
4: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
5: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर होटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास 5 टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98%, किसका 96%, किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है, सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
6: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, चारों एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएसएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है, दूसरे जिले का यहाँ पास लिखा हुआ है और यह हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
7: ये कब हुआ?
6: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
7: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
6: नहीं, अभी ज्वाइनिंग अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: झारखंड में पिछले 18 दिन के दौरान आज तक जब लगातार इन छात्रों के बीच मौजूद रहकर इनकी समस्या सुनता है तो पता चलता है कि ये सब केवल एक भर्ती नहीं बल्कि तमाम भर्तियों में हुई धांधली के पीड़ित हैं, जो चाहते हैं कि अब बदलाव हो। इसकी नौबत क्यों आई? कुछ आंकड़े सुन लीजिए, लंबे हैं, सुनकर आपको भी लगेगा क्या वाकई एक परीक्षा ढंग से नहीं हो रही। साल 2026 में 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को आंदोलन के चलते रद्द करने का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है। इसी साल फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की परीक्षा हुई, आरोप है कि होटलों में परीक्षा के प्रश्न पत्र रटाए गए। इसी साल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा में आरोप है कि पेपर लीक हुआ। सीडीपीओ परीक्षा का फाइनल हुआ, इसमें आरोप है कि भर्ती बाहरी राज्यों के लोगों की हुई। नर्सिंग परीक्षा में भर्ती राजस्थान समेत दूसरे राज्यों से होती है तो आरोप लगता है कि इसमें पैसा चला है। पीजीटी में 2023 की भर्ती निकली, आरोप है कि बोकारो के एक ही सेंटर से ज्यादा बच्चों का चयन हुआ। सहायक टीचर के लिए 26,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2024 में हुई लेकिन दो सालों से नियुक्ति प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई। टीईटी झारखंड के फॉर्म भरे गए 2024 में लेकिन नियमावली रद्द हो गई और फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2025 में झारखंड पुलिस में 5,000 पद की भर्ती निकली लेकिन परीक्षा ही नहीं हुई। 2012 के बाद पहली बार 2025 में एलडीसी के 863 पदों के लिए भर्ती निकली, नोटिफिकेशन 2023 में निकला लेकिन चार बार फॉर्म भरे गए, वैकेंसी वापस ले ली गई। आशु लिपिक के 408 पदों के लिए 2023 में भर्ती निकली, दो साल फॉर्म भराए गए लेकिन सरकार ने वैकेंसी वापस ले ली। टीजीटी की 9,000 सीटों के लिए 2016 में भर्ती निकली थी, 2025 में सरकार ने पदों को ही खत्म कर दिया जबकि राज्य में टीचरों की कमी है। बिजली विभाग में 3,200 सीटों के लिए 2015 में भर्ती निकली, फॉर्म भरे गए लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं। नगर निगम में 2022 में भर्ती निकली, 23 में 600 पदों के लिए परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। जेएसएससी की जेई भर्ती साल 2024 में परीक्षा हुई लेकिन पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई। झारखंड टेक्निकल सीजीएल के लिए 600 पदों के लिए 2023 में भर्ती निकली, परीक्षा 2026 में हुई लेकिन नतीजे नहीं आए। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 2026 में परीक्षा हुई लेकिन एक सेंटर में पेपर ही नहीं पहुंचा, अब तक नतीजे नहीं आए, इसीलिए छात्र रांची में अब तक प्रदर्शन कर रहे हैं।
8: हेमंत सोरेन की वर्दी में सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं, ये गुंडे
9: छात्रों का आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। केवल ये छात्रों की समस्याओं को सुनना बिल्कुल नहीं चाहती, ये बस चाहती है कि छात्रों को मारा जाए, पीटा जाए। पुलिस कल आप देखा कल किस प्रकार से प्रदर्शन में लाठी चार्ज किया।
10: हमने तय किया था हम काला पट्टा बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे लेकिन सरकार लगातार डरी हुई है। सीएम आवास जिस दिन हम लोग घेर रहे थे उस दिन भी हम लोग को रोका गया, आज तो प्रशासन ने सारी हदें पार कर दी है।
11: पुलिस के धक्का मुक्की में जो कि बस में बर्बरता तरीका से बस में अभी ठूसा जा रहा था उसी क्रम में ये अभी बेहोश हो गए हैं।
12: पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी को हेमंत सोरेन बंद कराने का प्रक्रिया कर रहे हैं।
13: सत्ता का कमांड अच्छा नहीं होता है, हेमंत जी याद रखिएगा, आपको बात ही करने पड़ रहा है। सीबीआई जांच मांग रहे हैं, सीबीआई जांच से आपको क्या तकलीफ है बोल दीजिए, क्या आपको तकलीफ है? हमको जाता है पैसा नहीं बोलने जाएंगे सर, आप अपना अपना से खुद से बोलिए।
0: एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज बीजेपी सड़क पर उतरी, झारखंड बंद का ऐलान किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के दूसरे नेता विधायक सड़क पर उतरे, कई जगह बंद कराया।
14: को हेमंत सोरेन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो झारखंड में सीट बेचना बंद करे और युवाओं के साथ खेलवाड़ करना बंद करे।
15: तो डिटेन किया जा रहा, हम लोग कौन सा देश विरोधी काम किए, ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना तलवार है, ना पुलिस प्रशासन का जबरन किया गया।
16: आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है तो झारखंड के विद्यार्थियों की कृपा से है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने झारखंड का पूरे विद्यार्थियों का भविष्य बेच दिया और बेचने के बाद जब विरोध कर रहे हैं।
17: सरकार के खिलाफ है, ये सरकार के नीतियों के विरोध में ये काला झंडा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार की ना तो नीति ठीक है और ना ही नियत ठीक है।
18: हेमंत सरकार इतनी मतलब बेरहम हो गई है कि कल तो उन्होंने अंधेरे में छात्र छात्राओं को तो पीटा ही, साथ में मीडिया बंधु को भी पीटा गया।
19: भारी तादाद में पुलिस उन्हें घेर लेती है और उसके बाद उन्हें बस में बिठाया जा रहा है, यानी डिटेन कर लिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मशक्कत किया गया पुलिस के तरफ से काफी, और ये स्टूडेंट जो है वो आरोप लगा रहे हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो संवैधानिक राइट है उससे उन्हें वंचित रखा जा रहा है।
20: छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के बाद बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। हम यहाँ किशोरगंज चौराहे पर है और टायर जला करके रास्तों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। आज झारखंड बंद का आह्वान है रांची के किशोरगंज में, यहाँ पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए झंडे लेकर के और अब उन्होंने यहीं से गाड़ियों को लौटाना शुरू कर दिया है। रास्तों को यहाँ से कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है।

0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक में सियासी जंग चल रही है। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल करते हैं, वहीं बीजेपी सांसद भी आज परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवाओं के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर लेकर प्रदर्शन करने निकले। दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही।
1: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
2: है? वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इस तरह का
3: है। अरे वो अब इश्यू अलग है, सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
1: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन?
4: आपको लगता है मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहा है?
5: शरम करो।
6: राहुल जी ने झारखंड
5: जाइए,
6: छात्रों
5: झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शरम करो, माफी मांगो।
7: माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
8: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
9: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
10: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, मीन से अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, कमरे में बैठते हैं बट अंदर नहीं आते।
11: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं जिसके प्रमाण आए हैं उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ, तो राहुल गांधी उस पर खामोश है। वहां लाठीचार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
12: पूछिए गृहमंत्री से ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
13: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं, यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
14: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
15: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
16: कल भी ये बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी चंदा चोरी का मामला उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस जॉन हाउस स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
0: आपको हमने युवाओं की समस्या दिखाई, समस्या पर होती सियासत दिखाई, अब देश के नागरिकों की उस समस्या से खबरदार करते हैं जिससे लोगों को रोज जूझना होता है। चुनौती सड़क पर गड्ढे की। महानगर हो, शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, गड्ढा हर जगह मिलता है, लेकिन यह गड्ढा कितना खतरनाक होता है पहला इसका एक अंदाजा आपको पश्चिम बंगाल की खबर से दिखाते हैं, जहां ई रिक्शा गड्ढे में गिरने से हाथ काटने तक की नौबत आ गई।
6: सड़क पर गड्ढा जो बारिश के पानी से भर जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं। उसी गड्ढे वाली सड़क पर पलटता रिक्शा देखकर कुछ लोगों को हो सकता है हंसी आए, कुछ को लगता है कि अरे ये क्या हुआ, चिंता की बात है। इसी तरह देश के हर राज्य हर जिले में होता है। जैसे वाराणसी की ये सड़क वायरल हुई, जब ई रिक्शा के बाद गड्ढे वाली सड़क पर पानी भरने से बाइक सवार गिरा। ऐसा ही वायरल वीडियो कानपुर का भी दिखा, जहां पर सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि लोग वहां से गुजरते हैं तो लगता है जैसे वाइब्रेशन वाली सड़क पर चल रहे हैं, जहां ई रिक्शा पलट जाता है। सड़क के गड्ढे कितने खतरनाक होते हैं, वो किस हाल तक आम आदमी को पहुंचा देते हैं, इसलिए मंदिर में पुजारी का काम करने वाले हावड़ा के शुभेंदु चक्रवर्ती से मिलिए, जिन्हें अपना एक हाथ तक गवाना पड़ गया, वजह हावड़ा की सड़क का गड्ढा बना। ये खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है, जहां पर शुभेंदु चक्रवर्ती ई रिक्शे से लौट रहे थे, तभी जीटी रोड और नस्करपाड़ा रोड के मोड़ पर जमा पानी के बीच एक बड़ा गड्ढा था जो किसी को दिखाई नहीं दिया। ई रिक्शा पलट गया। जख्मी शुभेंदु को पहले पास के अस्पताल पहुंचाया गया, फिर हालत आगे बिगड़ने पर कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले गए। पहले रिक्शा पलटने से उंगली में लगी चोट और फिर अस्पतालों में ऐसा दौड़ाया गया कि इन्फेक्शन फैलता गया, आधा बाया हाथ फिर काटना पड़ा।
17: हम टोटो पूजा करके टोटो करके आ रहा था, टोटो उलट के हमारा हाथ में एक्सीडेंट हो गया था, गड्ढा में गिर गया टोटो, तो उलट के हमारे साथ एक्सीडेंट।
18: पानी था वहाँ पे,
17: हल्का पानी था।
18: अच्छा, नीचे गड्ढा है क्या पता नहीं चला
17: ना। फिर इसका बाद जो ट्रीटमेंट हुआ था उसके लिए
18: रास्ता खराब था, पानी पड़ा हुआ था, इसीलिए आपका ये एक्सीडेंट हुआ। क्यों हुआ एक्सीडेंट?
17: एक्सीडेंट हुआ तो जो जो रास्ता में गड्ढा था वो दिखाई नहीं दिया
18: काय
17: ड्राइवर को।
18: दिखाई क्यों नहीं दिया? पानी भरा हुआ था पूरा।
17: हाँ हाँ,
19: क्या हुआ? पानी भरा था।
17: पानी भरा था
18: तो पानी भरा हुआ के गड्ढा दिखाई नहीं दिया। क्या क्या हुआ था खुल के बताइए।
17: वो लोग वो आ रहा था चला के, गड्ढा था पानी भरा हुआ तो दिखाई नहीं दिया, वो आ रहा था उस गड्ढे में गिर के प्लट गया।
6: शुभेंदु चक्रवर्ती की खबर से खबरदार करके ये बताना जरूरी है कि ये वो गड्ढे हैं जो वीआईपी इलाके में नहीं होते, केवल जनता जहां ज्यादा रहती है आती जाती है वहीं पनपते हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिक भुगतता है। अनुपम मिश्रा, हावड़ा आज तक।
0: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील और संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। इसके बाद फीता काटकर रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन कर दिया जाता है और फिर कुछ ही वक्त में उसी फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढे खबरदार करके बता देते हैं कि जो दावे करोड़ों रुपए लगाकर किए गए वो सच्चे नहीं। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बना। डेढ़ साल भी नहीं हुए 121 करोड़ से विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
6: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। डेढ़ साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
20: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। करीब 2.75 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई 1.5 साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी, खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
2: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार? जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है। और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
20: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप, और अंदाजा लगाइए ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
21: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
20: अच्छा,
21: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
22: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटते हैं, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, 2 बार मैं बचा हूँ उनसे,
20: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
22: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
2: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: गड्ढों से जुड़ी अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां नासिक में गड्ढा 6 जान ले चुका है, और रायगढ़ के कर्जत में सड़क के गड्ढों के खिलाफ बच्चियों ने ही प्रशासन को खबरदार कर दिया है।
2: महाराष्ट्र की 2 सड़कों पर आज आपको हम खबरदार कर रहे हैं। एक सड़क है नासिक, दूसरी रायगढ़ के कर्जत। एक तरफ सड़क के गड्ढे की वजह से जान गंवाने के बाद अपनों को खोने के डर से प्रदर्शन करते नागरिक, दूसरी तरफ प्रशासन गड्ढों के ऊपर जगाने वाली बच्चियां। पहले नासिक की खबर देखिए, जहां सिंहस्थ कुंभ अगले साल होना है, 1 साल बचा है। आज हालत ये, जहां देखो सड़क पर गड्ढा, कहीं निकलना हो तो 15 मिनट का सफर घंटे भर में पूरा होता है। ट्रक धंस जाते, ऑटो से चलना खतरनाक हो जाता है।
23: ये 2 महीने से काम चालू, 2-3 महीने से, और अभी तक रोड का कुछ काम आगे नहीं बढ़ा। रोड में इतने गड्ढे हो गए, प्लस चेंबर लाइन ये क्या भूत काट के, रोड में रोजाना एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, रोज गाड़ियाँ खराब हो रही है हमारी।
24: गाड़ी से परेशानी हो रही है ना सर, ये वन वे ट्रैफिक है, सब वन वे वन एक साइड से ट्रैफिक चल रहा है, उसमें जाने में देरी हो रही है, खड्डे गुड्डे में गाड़ी का खराब हो रहा है।
25: आप रोजाना अपडाउन करते हैं?
24: रोजाना अपडाउन करते हैं।
25: नुकसान कितना हो रहा है? वक्त भी जा रहा है,
24: वक्त भी जा रहा है ना,
25: मेंटेनेंस तो बहुत सारा निकल रहा है।
24: खड्डे के बारे में तकलीफ है पूरा, जहाँ पे पहला कम से कम तो 15 मिनट में जाता था आदमी, अभी डायरेक्ट 3-3, 4-4 घंटा लग रहा।
2: नासिक में अगले साल होने वाले कुंभ से पहले प्रशासन कहता है कि विकास का काम चल रहा है, लेकिन ऐसा विकास का काम जहां गड्ढा जान लेने लगे तो क्या प्रशासन की जवाबदेही नहीं? दावा है 6 लोगों की मौत नासिक में गड्ढे की वजह से हुई है।
26: मैं बिल्कुल मान्य करता हूं, लोगों को त्रास भी है, पहले भी हमने एक तरीके से लोगों को दिलगिरी भी व्यक्त करी है, सॉरी भी बोला है। आई थिंक दोबारा बोलने में कोई मेरे को हरकत नहीं है, क्योंकि लोगों को त्रास तो 100% हो रहा है।
2: सड़क के गड्ढों की वजह से प्रदर्शन नगर निगम तक में हो चुका है, जहां पार्षद मरीज बनकर प्रदर्शन करते हैं। खबरदार करता सवाल है कि आखिर यह हालत क्यों? क्या अगर शहर में विकास का काम होगा तो गड्ढे जान लेते रहेंगे? इसीलिए गड्ढों से तंग आकर रायगढ़ के करजत में बच्चियां ही खबरदार करने लगती हैं। स्कूली बच्चियां रिपोर्टिंग के अंदाज में गड्ढों वाला रास्ता प्रशासन को दिखा रही हैं। हाथ में माइक के तौर पर छाता लेने वाली ये बच्ची नेहा घरे, ये जिसका इंटरव्यू कर रही है उस बच्ची का नाम ज्योत्सना मकान है और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल दिखती हैं, लेकिन इसके पीछे संदेश बड़ा।
1: खड्डा रास्ता है कि रास्ता खड्डा है, कहीं कर रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कैमरामैन मानसी पवार, धन्यवाद।
3: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का।
4: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
3: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में।
2: तस्वीरें रायगढ़ के करजत तालुका, जहां बच्चियां सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती थी, मजाक मजाक में बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी।
0: पिछले दिनों आपने स्कूल में टीचर और बुनियादी जरूरतों की कमी के खिलाफ जेन अल्फा यानी छात्र छात्राओं को प्रदर्शन करते देखा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथ में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्टर तक पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब जल्द ही यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी। आज तक करता है खबरदार तो जागती है सरकार, ये एक बार फिर हुआ है। राजस्थान में हमने कल ही दिखाया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न काम दे रहे हैं न सैलरी। कल रात ही सरकार ने आदेश दे दिया कि सैलरी भी देंगे, काम भी बंट गया।
5: 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नौकरी भी मिल गई, पोस्टिंग के भी आदेश हो गए और सैलरी के भी आदेश हो गए। ये लंबी लड़ाई रही इनके लिए, हम भी आज तक पर खबरदार सरकार को इसलिए करते हैं। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो हमारी कोशिश होती है कि सूरत बदलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है। जो ये सब नौकरी पाए हैं, ये यहाँ पर आज तक के दफ्तर के बाहर आए हैं, ये धन्यवाद देने के लिए आज तक को कि जिस तरह से 7 सालों में इनका संघर्ष रहा, जितनी पढ़ाई इन्होंने की उससे ज्यादा संघर्ष किया इन्होंने नौकरी पाने के लिए। अब तो लंदन की पढ़ाई का सिला मिल गया।
7: जी बिल्कुल, हमें उसकी जो पढ़ाई की हमने उसका बिल्कुल सिला मिल गया। सबसे पहले मैं आज तक का बहुत तहे दिल से हमारे सभी साथी एफएसओं के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपके इस मीडिया की वजह से हमारे को पोस्टिंग मिल का ऑर्डर हो गया और जो हमारी जो सैलरी रुकी हुई सैलरी थी वो भी बहुत जल्दी पास हो जाएगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और चिकित्सा मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी खींवसर का और माननीय कमिश्नर मैडम तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भी आपने हमारी पीड़ा सुनी और हमारे को ये आज जो हमारी रुकी हुई सैलरी और पोस्टिंग थी उसकी प्रक्रिया को पूरी करवाई।
5: संतोष जी, 7 साल का बहुत लंबा वक्त होता, 7 साल आपने गुजारा कैसे?
8: सर संघर्ष लंबा था, कोर्ट में भी लड़े और जब जब मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और आज तक हमारे साथ डटा रहा, येन केन प्रकरण जो भी हुआ अंततः जीत हमारी हुई है। और कल जिस प्रकार से आपने हमारी बात रखी माननीय मंत्री जी के पास और अंततः आज हमारे सारे ऑर्डर हो गए, हम शुक्रगुजार हैं आपके आज तक के। और आज तक चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो या विद्यार्थी हित में और भी कोई डिसीजन हमेशा आगे रहा है। और शरद जी मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार छात्रों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मेहनती बच्चों के लिए सदैव आप तत्पर रहते हैं, आपका दिल से आभार।
5: हनुमान किसान, एफएसओ के मांग को लेकर लगातार आप संघर्ष करते रहे, ये इतना लंबा क्यों हो गया?
9: देखिए सर, पिछली सरकार से हम संघर्ष कर रहे हैं और ये जो चयनित है वो सबने बहुत अच्छी जगह से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है और इनको दर दर की ठोकर खाते हुए हमने देखा है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि नवंबर 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे अधिकारी जो इस भर्ती को अटकाने का काम कर रहे हैं उनको न केवल हटाया जाए जबकि उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाए, लेकिन आज दिनांक तक उनको संरक्षण दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और आज तक उसरत जी सर, आपके आशीर्वाद से आज इनको खुशियां जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अभी भी ये डर है कि जो तमाम जो रिक्त सीटें हैं उन तमाम रिक्त सीटों पर इनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए।
0: बिहार के स्कूलों की बदहाली पर भी आज तक ने खबरदार किया तो वहां भी सरकार जागी है। सहरसा के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। जहानाबाद में 6 दशक से मंदिर में चलते स्कूल को फिलहाल पास के स्कूल में चलाने का आदेश देकर आगे जमीन चिन्हित करके नया स्कूल बनाने का आदेश दे दिया गया है।
2: बिहार का जहानाबाद, जहां 64 साल से स्कूल तो चलता आया लेकिन भगवान के भरोसे। श्वेता सिंह ने जहानाबाद के इस मंदिर वाले स्कूल को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग को खबरदार किया, बताया किस तरह मंदिर में सरकारी स्कूल 6 दशक से चलाया जा रहा है।
10: तो स्कूल कर जाना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि मंदिर के परिसर में सरकारी स्कूल चल रहा है। यहाँ पर सर यहाँ क्लास यहीं चलता है, स्कूल नहीं बन
11: नहीं इसका। हाँ, भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
10: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला,
11: बिल्डिंग नहीं मिला है।
10: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
11: कोशिश की है, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है।
10: हाँ,
11: लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
10: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
11: हाँ, बहुत बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब हम लोग को जिस भी परिस्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा ही करें।
10: हाँ,
11: बेहतर ही करें। जब शादी ब्याह का टाइम आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से फिर भी बच्चों को हम लोग संभाल के ही रखते हैं, लेकिन परेशानी हमें बहुत ज्यादा होती है।
10: देखिए बच्चों की लिखावट भी बड़ी अच्छी है, कोशिश भी यहाँ पर टीचरों की तरफ से हो रही है कि पढ़ाई पूरी शिक्षा अच्छे से दी जाए, लेकिन हाथ बंध जाते हैं आपके उस जगह पर आकर जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। मैम आप लोग कोशिश कर रही हैं?
12: तो कोशिश तो कर ही रहे, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग न है तब तो जैसे यहाँ करना हो वैसे ही करेंगे ना।
2: आज तक के खबरदार करते ही शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। जहानाबाद में बच्चों को उनका अपना स्कूल मिलेगा। प्रशासन ने फिलहाल तय किया है कि मंदिर में चलते स्कूल को पास के स्कूल के साथ टैग करके वहां चलाया जाएगा।
13: खबर चली थी आज से कुछ दिन पहले, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने ये जो स्कूल है इसको जहानाबाद के एक स्कूल से टैग कर दिया गया है, ताकि अभी जो बच्चे इस मंदिर में बैठ के पढ़ रहे हैं वो उस स्कूल में जाएं।
14: आज तक न्यूज़ वाले जो हैं पहले भी ये चलाए थे, तो मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा जो न्यूज़ चलाया गया, इस न्यूज़ के माध्यम से हमारे विभाग को पता चला, जिसके आलोक में हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा हम लोग का विद्यालय तत्काल दूसरे विद्यालय में शिफ्ट, मौखिक रूप से उनसे कहा गया कि तो आप लोग का विद्यालय वहाँ चलिएगा।
2: इसके साथ ही आज तक ने खबरदार किया तो अब मंदिर में चलते स्कूल के लिए जमीन चिन्हित करके वहाँ जल्द स्कूल बनाने का भी आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है।
0: रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, रहिए खबरदार।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
1: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
2: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
1: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
2: सुपर स्ट्रॉन्ग
1: और मॉइस्चर प्रूफ।
2: वारंटी
1: 15 साल की।
2: कदम
1: सर प्लीज
2: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
3: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
8: Take a date not bites.
9: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
10: बिजली का बिल पेड
11: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
12: कैसे?
11: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
12: माही वे।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
17: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
18: पापा, सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
19: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
18: छक्का?
19: सब कैशलेस हो गया है।
18: हाँ ला भाई मेरा बैट।
20: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
21: चार्ज हुआ यार।
22: बैट किसका है?
23: टाटा AIG है तो भरोसा है।
24: आगे आगे।
25: अरे उधर।
24: करेक्ट करेक्ट।
26: मिल गया।
27: आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
29: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
30: In association with
31: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 10 अगस्त 2026 की सुबह जब लोग अपने काम की शुरुआत कर रहे थे, ठीक 7:34 पर धरती अचानक थर्रा उठी। रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता वाले इस प्रचंड भूकंप ने पूरे कोलंबिया में तबाही मचा दी। इस भूकंप की सबसे खौफनाक बात ये रही कि लगभग 2 मिनट तक धरती लगातार हिलती रही। ऐसा शायद ही कभी होता है। यही वजह है कि मजबूत से मजबूत इमारतें भी तिनके की तरह बिखर गई। इस महाविनाश की सबसे भारी कीमत कोलंबिया के पश्चिमी शहरों को चुकानी पड़ी है। परेरा शहर इस आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना है, जहां अकेले 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। वहीं कैली शहर भी मलबे का ढेर बन चुका है, जहां 20 से ज्यादा विशाल व्यावसायिक और आवासीय इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गई है। शहर का एक बड़ा अस्पताल भी भूकंप की चपेट में, और घायलों की जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। भूकंप का एपिसेंटर सैन जोस डेल पाल्मर से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व सैन जोस डेल पाल्मर में था, और ये जमीन के करीब 107 से 110 किलोमीटर की गहराई में था। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। दक्षिण अमेरिका में एक के बाद एक भूकंप इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि प्रशांत महासागर की ओर से नाजका प्लेट लगातार पूर्व की ओर खिसक रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस रही है। इन दो विशालकाय प्लेटों के आपस में टकराने और नीचे धंसने से जमीन की गहराइयों में भारी दबाव बनता है, जो रह रहकर इस तरह के भीषण तबाही और महाभूकंप के रूप में बाहर आता है। कोलंबिया में मौतों का आंकड़ा 160 के पार जा चुका है। 810 लोग घायल हैं और 3000 से ज्यादा लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आखिर में बात भारत चीन संबंधों की, जहां भारत ने फिर से दोहराया है कि एलएसी पर शांति रहेगी तो आपसी रिश्ते सुधरेंगे। विदेश मंत्रालय का बयान है कि द्विपक्षीय संबंधों पर जो सीमा पर हालात हैं उनका असर पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड में छात्रों के विधानसभा घेराव वाले मार्च से आई वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें झारखंड के मंत्री लाठी चार्ज मानने को तैयार ही नहीं है। भले ही इन तस्वीरों में पुलिस की लाठी छात्रों की पीठ, पैर, कमर, हाथ पर जाकर प्रहार हो, एक तरफ घायल छात्र है, कैमरे पर कैद पुलिस की कार्रवाई के सबूत है, तो दूसरी तरफ मंत्री इरफान अंसारी का ये दावा कि पुलिस ने कोई हिंसक कार्रवाई की ही नहीं बल्कि छात्र खुद पुलिस पर भारी पड़े, लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेता युवाओं के दर्द पर इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या मौसम के आगे कैलेंडर ने सरेंडर कर दिया है या फिर कैलेंडर की तारीखों को समझने में मौसम को कोई कंफ्यूजन हो रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में मौसम के बदलाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऋतुएं अपना मूल कैलेंडर भूल चुकी हैं। उन्होंने दूसरी ऋतुओं के काम में घुसपैठ कर दी है। न सर्दी के समय पर सर्दी, गर्मी के समय पर बारिश हो रही है, देर से शुरू हो रही है, बसंत तो जैसे गायब ही हो चुका है, यानी मौसम अपना मूल स्वभाव भूल चुका है, मूल वक्त भूल चुका है या इंसान के साथ वो खुद भी बदल चुका है। और इस बीच जब सिस्टम कुछ समझ ही नहीं पा रहा, गुरुग्राम जैसे शहरों की सड़कों पर नदियां बह रही हैं, लोग पानी में फंसे हैं, तब वहीं सैकड़ों करोड़ के पेंट हाउस बिक रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अब दुनिया पर एक और बड़ा साइबर खतरा मंडरा रहा है। नॉर्थ कोरिया के कुख्यात हैकर ग्रुप किमसुकी ने एक ऐसा खतरनाक एआई टूल तैयार किया है जो ऑटोमेटिक साइबर अटैक करने में पूरी तरह माहिर है। ये टूल खुद ही स्पेयर फिशिंग ईमेल तैयार कर चुटकियों में हजारों लोगों को शिकार बना सकता है। आखिर किम जोंग उन के हैक्स और हैकर्स जो हैं वो क्या दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं? और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे मिनटों में सामान पहुंचाने वाले जो इंस्टेंट डिलीवरी एप्स हैं जिससे आप की जिंदगी आसान हो रही है, लेकिन मुंबई और बेंगलुरु के डार्क स्टोर्स पर छापेमारी से पता चला है कि वो वाकई डरावना है। गंदगी, कॉकरोच, चूहे, उनका आतंक, एक्सपायर्ड सामान, क्या आप जानते हैं कि 10 मिनट की इस रफ्तार में आपकी सेहत के साथ, आपके खाने पीने के हाइजीन के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है? लेकिन आज हम शुरुआत करना चाहते हैं उत्तराखंड के चमोली से आई इन तस्वीरों से। ये तस्वीरें सिर्फ एक पुल के बह जाने की कहानी नहीं बता रही हैं। ये तस्वीरें हमें एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं, एक ऐसे खतरे की तरफ जिसमें पहाड़ों पर बारिश के बाद आने वाला सैलाब अब पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले ये देखिए, बहता क्रेन, बहते पुल, बहती गाड़ियां, बहते लोग, बहते इंसान, मतलब कल्पना से परे है ये तस्वीरें जो अब ऐसा लगता है कि हर कुछ महीने पे आने लगती हैं। जब जब बारिश आती है यही हाल होता है। हर बार बारिश के मौसम में उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसी तस्वीरें लोगों को दहला देती हैं। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगाते हैं, द माउंटेन्स आर कॉलिंग, यानी पहाड़ हमें बुला रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या ये पहाड़ सचमुच हमें बुला रहे हैं या फिर ये पहाड़ अब हमें चेतावनी दे रहे हैं? जिन पहाड़ों को हम खूबसूरत तस्वीरों, छुट्टियों और सुकून से जोड़ते हैं, उन्हीं पहाड़ों के भीतर आज एक बेचैनी दिख रही है, और चमोली की ये तस्वीरें उसी बेचैनी की कहानी कह रही हैं। जिस चमोली को आपने अभी देखा, वहां सिर्फ 5 साल पहले 2021 में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई थी। 2021 को रॉन्टी पीक की ढलान के करीब, समझ लीजिए कि उस ढलान से करीब 2,70,00,000 टन मीटर चट्टान और बर्फ टूटकर नीचे गिरे थे, कल्पना कीजिए। और उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लापता हो गए थे, मतलब समझिए जिंदा दब गए थे। दो बड़े हाइड्रो पार प्रोजेक्ट्स बुरी तरह प्रभावित हुए, इसके बाद भी चमोली की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 आ गया। चमोली की जिन घाटियों में कभी सुकून मिलता था, वहां चट्टानों के सैलाब ने लगातार अब खून बहाया है। और आज की ये तस्वीरें भी उसी के बारे में बता रही हैं। तमक नाले के ऊपर जो पुल इस सैलाब में बहते हुए दिखा है, जो पूरा आप पुल देख रहे हैं, उसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 4 करोड़ रुपए की लागत से पिछले महीने ही तैयार किया था। पिछले महीने इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि इस बरसाती नाले में ऐसी भयानक बाढ़ आएगी कि इसमें ये पुल इस तरह से बह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और लगातार 5वें साल चमोली के तबाही का सिलसिला जारी रहा है। देखिए,
1: ये ब्रिज जाएगा, वे ब्रिज जाएगा, ब्रिज का साइड हो रो, साइड हो रो, भागो, ओ गाड़ी गाड़ी गई, गाड़ी, ओ गाड़ी गाड़ी,

उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल क्षेत्र में आता है, जहां पूरे राज्य की लगभग 58% आबादी रहती है। अगर ये पहाड़ इसी तरह दरकते हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हैं और पहाड़ों का खिसकना जारी रहता है, तो सोचिए उत्तराखंड की आबादी कहां जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भारी बारिश होगी तो इंसान या हमारी सरकारें क्या ही कर लेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उत्तराखंड का ये हाल तब है जब वहां इस बार मॉनसून कम रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में सामान्य से 3% कम बारिश हुई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में ना जाने कितनी बारिश हो गई हो। यह आज की सबसे चिंताजनक सच्चाई है, जिन्हें शायद कोई आपको बताएगा नहीं। इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ऐसे मुद्दों में मसाला और राजनीति नहीं होती, वोट बैंक नहीं होता, आंदोलन नहीं होते, गाली गलौच नहीं होती। ये मुद्दा आपके और आपके परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये हमारे पहाड़ों से जुड़ा मुद्दा है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है, ये पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, ये मौसम से जुड़ा मुद्दा है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है कि अब मौसम का पैटर्न वैसा नहीं रहा जैसा आज से शायद कुछ दशकों पहले तक हुआ करता था। पहले एक साल में 6 और मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती थी, जिनमें कुछ महीने गर्मी पड़ती थी, कुछ महीने बारिश होती थी, कुछ महीने सर्दी रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज आपसे आपकी इन ऋतुओं को ही छीन रहा है। अब गर्मी के मौसम में बारिश होती है अचानक से, बारिश के मौसम में सूखा पड़ता है, सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ती है, गर्मियों का महीना आता है तो उस मौसम में हम बारिश, सर्दी, सूखा, हीट वेव सब देख लेते हैं।

0: मानसून जून में आता था, पहले सितंबर तक रहता था और इस दौरान लोगों की जिंदगी उसी हिसाब से चलती थी, जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पहले कई दिनों तक सामान्य बारिश होती थी, जबकि अब लंबे समय तक सूखा रहता है, फिर अचानक कुछ घंटों या एक दो दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश की कुल मात्रा कभी कभी उतनी ही रहती है, लेकिन उसका बंटवारा बदल गया है, सूखा और फिर अचानक बहुत गर्मी, उसके बाद अचानक जबरदस्त मूसलाधार बारिश। सबसे अजीब ट्रेंड यह है कि अब एक ही राज्य में सूखा और बाढ़ एक साथ देखने को मिल रहा है। जैसे राजस्थान, आज जैसलमेर में 10 अगस्त को अगर आप देखिए तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन इसी दौरान बूंदी और टोंक जैसे जिलों में ऐसी बाढ़ आई कि उसमें कई रिहायशी इलाके ही डूब गए हैं। यानी एक ही राजस्थान में इस समय दो मौसम चल रहे हैं, ये सामान्य बात तो नहीं है। देखिए, कुछ जगहों पर बाढ़ की हालत आप देख ही रहे हैं, वो एक करेक्शन है पहले कर दें। दरअसल 10 तारीख को जैसलमेर में लगभग 40 डिग्री का तापमान था, और उसके बाद आज देखिए कैसे बाढ़ की स्थिति अन्य जगहों पर है, बूंदी में है बाढ़, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर का ये कल का तापमान था जो कि 40 डिग्री है, मतलब एक ही राज्य में। अब सोचिए कि क्या क्या हो रहा है। यही कहानी मध्य प्रदेश की है, निवाड़ी और ग्वालियर ऐसे जिलों में 10 अगस्त को तापमान बीते दिन 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा, जबकि इसी दौरान विदिशा और भोपाल जैसे इलाकों में अचानक इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। कमाल की बात यह है कि बारिश की इस बदहाली में आम रिहायशी इलाके डूब गए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो आवास हैं, वहां सब चकाचक रहा। देखिए,
1: गीतानगर इलाके में घरों के अंदर क्या हालात है भोपाल में हुई मूसलाधार बारिश के बाद, वो इस तस्वीरों से समझिए आप। ये घर है जहां पे तकरीबन 2 फीट पानी भर चुका है। ये अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे इस घर की। यहां पे भी अगर आप देखें तो किचन भी पूरा पानी में डूबा हुआ है, और घर वालों के मुताबिक सुबह जब वो सो करके उठे तो उन्होंने घर में इस तरीके के हालात देखे।
0: क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया गर्म हो रही है, इसका मतलब ये भी है कि मौसम के पुराने पैटर्न में बदलाव हो रहा है। अब देखिए, गर्मी अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उससे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं लंबी गर्मी से, और फिर अचानक इस तरह से बाढ़ का सैलाब आता है। बारिश कब आएगी, कितने दिन रहेगी, कितनी तेज होगी, किस इलाके में होगी, धीरे धीरे इन सब में बदलाव हो रहा है। पहले हम मानसून को एक लंबे मौसम की तरह देखते थे, जून आया बारिश शुरू हुई, जुलाई अगस्त में बारिश का दौर चला, सितंबर तक धीरे धीरे मानसून विदा होने लगा, लेकिन अब तस्वीर कई जगहों पर ज्यादा अस्थिर दिखाई देती है, और इसे आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। साल 2024 में नवंबर का महीना साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा। देखिए, साल 1901 के बाद नवंबर का सबसे गर्म महीना, नवंबर के महीने में मौसम ठंडा होना चाहिए था जब मई जैसी गर्मी पड़ रही थी कई जगहों। 2025 में भी जब फरवरी के महीने में मौसम ठंडा होना चाहिए था, तब ये महीना भी इतिहास का उस महीने के हिसाब से जो सामान्य टेम्परेचर है

0: से तापमान ज्यादा था। इसी साल मार्च 2026 में जब गर्मियों का मौसम आ जाना चाहिए था तब देश के अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही थी, और जब इसी साल जून के महीने में मानसून की बारिश होनी चाहिए थी तब पूरे देश में सूखा पड़ रहा था। आपको यकीन नहीं होगा कि जून का महीना पिछले 146 में सालों में सबसे सूखा महीना रहा, और देश के लगभग सभी राज्यों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अब अगस्त महीने में सूखा और बाढ़ दोनों एक साथ पड़ रहे हैं अलग अलग जगहों। कुछ जगहों पर एक महीने की बारिश एक हफ्ते में हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, और ये अपने आप में एक खतरनाक बदलाव है। अब तक हमारे स्कूल्स में गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, मानसून की छुट्टियां लगभग तय होती थी। हमें पता होता था कि मई जून में गर्मी जबरदस्त होगी, दिसंबर जनवरी में सर्दी की छुट्टी होगी, बारिश के मौसम में स्कूल्स का समय उसी हिसाब से बदलेगा। लेकिन कई बार दिसंबर में ठंड वैसी नहीं आती जो जनवरी फरवरी में आती है, और तब तक स्कूल खुल चुके होते हैं। हो सकता है आने वाले समय में मौसम की ये पुरानी समझ ही बदल जाए, क्योंकि मौसम अब कैलेंडर देखकर नहीं बदल रहा। गर्मी में बारिश, मानसून में सूखा, सर्दियों में गर्मी, ये सब हो रहा है। और पंखे कई बार आप देख ही रहे हैं कि बहुत मई मतलब नवंबर दिसंबर तक चलाना पड़ता है। एक ही राज्य में एक शहर बारिश में डूबा है और कुछ सौ किलोमीटर दूर इलाका सूखा हुआ है। आने वाले समय में शायद हमें मानकर चलना पड़े कि जिस मौसम की हम उम्मीद कर रहे हैं जरूरी नहीं वही मौसम आए, और इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं पड़ेगा, असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा, पूरी जिंदगी पर। किसान कब फसल बोएगा ये बदल सकता है, बच्चे कब स्कूल जाएंगे ये बदलेगा, किस दिन ट्रेन चलेगी, किस दिन सड़क बंद होगी, किस दिन बिजली की मांग बढ़ जाएगी, मतलब होता ना पीक जो डिमांड के महीने होते हैं बिजली के। हमारे शहरों की योजना बदलनी पड़ेगी, घरों के डिजाइन बदलने होंगे, सड़कों और जो ब्रिज हम बनाते हैं, जो पुल हैं, उनको अलग तरीके से बनाना होगा। और शायद सबसे जरूरी बात हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये मानकर नहीं चलना है कि मौसम हमेशा वैसा ही रहता है जैसा शायद हमारे माता पिता देखते रहे, और प्रकृति का कैलेंडर बदल रहा है क्योंकि हम जिस तरह का प्रदूषण कर रहे हैं, और इस परीक्षा में हमारी सरकारें भी बुरी तरह फेल रही हैं। अब जरा देश के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाने वाले गुरुग्राम को देखिए, जो अकेले हरियाणा की जीडीपी में जानते हैं लगभग 20% का योगदान गुरुग्राम देता है। जिस गुरुग्राम को हम कॉर्पोरेट सिटी, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहते हैं, आज वही गुरुग्राम बारिश के बाद एक बड़े से वाटर पार्क में बदल गया है। खिलवाड़ी है लोगों के साथ, टैक्स देते जाइए, टैक्स देते जाइए, और बदले में आपको सड़कों पर पानी ही पानी मिलता रहेगा। जहां सड़कें थी वहां पानी है, कमाल है। अरे भाई, टैक्स इसीलिए तो हमने दिया है कि हम अपनी गाड़ियां पानी में दौड़ा सके। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलने जैसी स्थिति हो रही है, और कोई देखने वाला नहीं। गुरुग्राम के हुडा चौक का तो हाल ऐसा है कि लोग अब इसे गुरुग्राम का वाटरफॉल पॉइंट कह रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर है, लाखों लोग रोज काम करने आते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां यहां पर सड़कों पर दौड़ती हैं, बनती हैं, गगनचुंबी मारते हैं, चमचमाते मॉल्स हैं, साइबर पार्क है। लेकिन बारिश के कुछ घंटों बाद शहर की सबसे बड़ी समस्या ये बन जाती है कि पानी जाएगा कहां। और यही तस्वीरें हमें गुरुग्राम के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है, और वो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार आखिर क्या कर रही है। चंडीगढ़ और मुंबई के बाद पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गुरुग्राम के लोगों की है। ये वो गुरुग्राम है जिसने 2023 में 48,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था, और पूरे देश में टैक्स देने वाला ये 9वां सबसे बड़ा शहर था। और ये वो गुरुग्राम है जहां 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स बिक रहे हैं। आज ही खबर आई है कि जिस गुरुग्राम की सड़कों पर नदियां बह रही हैं, वहां गोल्फ कोर्स रोड पर एक पेंट हाउस, जानते हैं, 271 करोड़ रुपए में बिका है। ये पेंट हाउस 17,200 वर्ग फीट में फैला है, जो एक फुटबॉल मैदान के पांचवें हिस्से जितना बड़ा है। सोचिए कितनी अजीब बात है कि जिस शहर का ड्रेनेज सिस्टम बदहाल है, वहां 271 करोड़ रुपए के घर बिक रहे हैं, और खरीदने वाले लोग भी इसी देश के हैं। देखिए,
1: हर हर साल का यही सीन है, सरकार दावे करती है कि इस बार नहीं होगी बरसात से पहले, गर्मियों में काम भी हुआ है, सारी तरफ सीवेज साफ वगैरह हुई है, लेकिन कोई फर्क नहीं है।
0: अब तक सरकारें यही सोचती थी कि वो कोई बहाना बना लेंगी, लोग भी कुछ दिनों के बाद इन तस्वीरों को भूल ही जाते हैं, बारिश खत्म तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन जेन जी युवाओं के बाद जेन अल्फा पीढ़ी के बच्चों ने हमारी सरकारों की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की हैं, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 3 बच्चियों ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को ये याद दिलाया कि उनकी जनता के प्रति क्या जवाबदेही है। तो रायगढ़ महाराष्ट्र की इन बच्चियों की आवाज आज हम आपके सामने रखेंगे। ये कहानी गांव की उस सड़क से शुरू हुई जो बारिश में इतनी खराब हो गई थी कि बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़, पानी लोगों के लिए रोज की परेशानी बन गए। स्कूल जाते समय बच्चों की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती थी, कई बार सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की पहियों से कीचड़ उछलकर इन बच्चों पर पड़ता था। यही सब देखकर इन 3 बच्चियों ने एक वहीं से अपना वीडियो बनाया है और ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और यहीं से पूरा मामला सरकार तक पहुंचा। इन बच्चों ने पत्रकार बनकर सड़क की रिपोर्टिंग शुरू की। ये देखिए, उन्होंने ऐसे माइक लगाया, नेहा नाम की बच्ची ने रिपोर्टर की भूमिका निभाई, वो अन्य लोगों से बात करें, छाते को माइक की तरह पकड़ लिया, सड़क पर मौजूद ये गड्ढे दिखाने शुरू किए और पूरा एक वीडियो उन्होंने बनाकर डाला है। वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने सड़क की हालत का संज्ञान लिया, सड़क की मरम्मत और जो रीसर्फेसिंग है वो कराई गई, यानी एक वीडियो से गड्ढे में धस चुके सिस्टम की पोल खुल गई है। देखिए,
2: अपन आज आलेलो आहोत कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर, तर आमची रिपोर्टर ज्योत्ना तुम्हाला ह्या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल?
3: तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल। तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही। तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत,
4: तुम्ही बघू शकता
5: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाही।
2: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
0: तो बच्चियां पूछ रही है कि रस्ते में खड्डा है या खड्डों में रास्ता है। ये सिर्फ इन 3 बच्चियों का वायरल वीडियो नहीं है, इसमें एक खूबसूरत लोकतांत्रिक सीख छिपी है। वो ये कि जब लोग अपनी समस्याओं को आवाज देते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों तक पहुंचता है। इन बच्चियों के पास आप देखिए तो बहुत बड़े साधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उनके पास एक छाता, एक मोबाइल और गांव की समस्या, और उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे प्रशासन नजरअंदाज नहीं कर पाया, और ये जागरूकता जेन अल्फा की आज रंग ला रही है। जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो सरकारों को भी ये सोचना होगा कि अब पुराने ढर्रे पर चीजें बिल्कुल नहीं चल पाएंगी, कि भाई कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ था, कॉन्ट्रैक्टर ने भ्रष्टाचार कर दिया, इस वजह से सड़क टूट गई, सड़क में ये हो गया। लोगों को सहूलियत चाहिए, और खास तौर पर आज जब ऐसे दूर दराज के इलाके, वहां से भी अकाउंटेबिलिटी मानने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि कुदरत का क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है, उसे आप कोलंबिया की इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। और यही सतर्क करने वाली तस्वीरें हैं, कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का, मैग्नीट्यूड का जो शक्तिशाली भूकंप आया है, उसमें अब तक 126 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, ऑफिशियल डेटा है। 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। कोलंबिया में इतना ताकतवर भूकंप इसलिए आया क्योंकि इस देश का भूगोल इसे सिस्मिक रिस्क वाला देश बनाता है, और ऐसा ही रिस्क भारत में भी है, इसीलिए संभलकर। ये साउथ अमेरिका के उस हिस्से में है जहां अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, फॉल्ट सिस्टम सक्रिय है, यही कारण है कि कोलंबिया में भूकंप आते रहते हैं, और इसके कारण वहां कई बार हजारों लोगों की जाने गई हैं। हालांकि इस बार के भूकंप में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण लोग इसे बहुत बड़ी बर्बादी का संकेत मान रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है 10 अगस्त की वो तारीख जिस दिन ये भूकंप आया। असल में 10 अगस्त 1868 को कोलंबिया इक्वाडोर क्षेत्र में एक बेहद विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी। इत्तेफाक की बात यह है कि 2026 का ये भूकंप उसी तारीख को आया है जिसके कारण लोग इसे बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत मान रहे हैं। देखिए,
6: Water!
0: एक भूकंप ने क्या हाल कर दिया आप देख रहे हैं, लोगों की शुरुआत कैसे हुई सुबह की और फिर देखिए क्या कुछ हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको रांची से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने मुंह पर टेप लगाकर साइलेंट मार्च निकाला है। सोचिए ये कितने अफसोस की बात है कि ये सारे छात्र अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जब पुलिस की लाठीचार्ज के बाद इन छात्रों ने अपने होठों को सिल लिया है और मुंह पर टेप लगाकर ये बताया है कि सरकार अगर इन्हें जबरदस्ती चुप कराना चाहती है तो ये चुप तो हो जाएंगे, लेकिन क्रांति सड़कों पर इस तरह से दिखाई देती रहेगी। देखिए टेप लगा है या कुछ बच्चों ने उंगलियां रख ली, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है वो बता रहे हैं कि हम छात्र हैं अपराधी नहीं। यहां ये भी देखिए कि जिन नेताओं को लोग अपने वोट से विधायक सांसद और मंत्री बनाते हैं वो नेता इन्हीं आम लोगों के प्रति इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं। कल रांची में 18 दिनों से आंदोलन कर रहे जेंजी युवाओं ने जब विधानसभा तक पैदल मार्च किया तब पुलिस पर आरोप है कि उसने छात्रों की भीड़ पर न सिर्फ लाठी चार्ज किया बल्कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये वो कार्रवाई थी जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी और पूरे देश में इसकी आलोचना हुई, लेकिन आज झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह दावा किया कि छात्रों पर झारखंड पुलिस की तरफ से कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, कोई हिंसक कार्रवाई हुई ही नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस तो इस पूरे पैदल मार्च में मूक दर्शक बनकर खड़ी रही जबकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने ही इन पुलिसकर्मियों को पीटा जिससे भारी संख्या में ये पुलिसकर्मी घायल हुए। ये तस्वीरें देखिए, आप खुद तय कीजिए पहले तो कि लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि अंसारी जी भी ये वीडियो देखें। ये बयान सुबह से काफी चर्चा में है और इसकी इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पुलिस के संयम की तारीफ की थी जबकि प्रदर्शनकारी छात्र कह रहे थे कि उन्हें बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। कई छात्रों ने हमें यह भी बताया कि उनके सिर और गर्दन में लाठियां मारी गई, लेकिन झारखंड सरकार के ये मंत्री महोदय क्या कहते हैं वो सुन।
6: जिस प्रकार कल हुआ हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पांच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
7: लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
6: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई कोई छात्र, देखिए मैडम कोई कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस
0: आज बड़ा सवाल यही है कि कोई भी मंत्री नेता या सरकार उन लोगों के प्रति इतनी संवेदनहीनता कैसे दिखा सकता है? क्या ये तस्वीरें भी उन्हें नहीं दिख रही हैं? राजनीति करने के लिए सड़कों पर ये बच्चे आए नहीं हैं? अगर इन युवाओं को राजनीति करनी होती तो ये इस मंच पर इस तख्ती को नहीं लटकाते, ये नहीं कहते कि नेता उनके मंच से दूर रहें। किसी भी पार्टी के नेताओं को इन्होंने मंच नहीं दिया, ये छात्र सिर्फ अपनी तकलीफें अपनी पीड़ा लेकर आए। सरकार चाहती तो लाठीचार्ज के बाद भी इनके साथ अपनी संवेदनाएं दिखा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं। आज हम इन मंत्री महोदय को वो बताना चाहते हैं जो हमारे कैमरों ने देखा है। इस पैदल मार्च में एक बार नहीं बल्कि तीन बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इनमें पहला लाठीचार्ज उस वक्त हुआ जब प्रदर्शनकारी युवा विधानसभा भवन से 2 किलोमीटर दूर थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बार लाठीचार्ज तब हुआ जब ये प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट पर खड़े थे और पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही थी। और तीसरी बार लाठीचार्ज तब हुआ जब 200 से 300 प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर में बैठे हुए थे। सूरज ढल चुका था। आरोप है कि पुलिस ने पहले आसपास की लाइट्स बंद की और ये आरोप ये बच्चे ही लगा रहे हैं और ये बच्चे बता रहे हैं कि उसके बाद इन छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ये सब कुछ इन बच्चों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पुलिस की कार्रवाई के बाद भगदड़ मची हुई थी और इसी भगदड़ में कई छात्र घायल हो गए। देखिए

0: इरफान अंसारी चाहे तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जिनमें पुलिस के लाठीचार्ज के बाद कुछ प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए और कई लड़कियों ने ये आरोप लगाया कि उन पर लाठियां बरसाने वाले ज्यादातर पुलिसकर्मी पुरुष थे, महिला पुलिसकर्मियों को वहां नहीं भेजा गया था। जब ये प्रदर्शनकारी वापस से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे तब उन्होंने अपने शरीर पर पुलिस की लाठियों के निशान दिखाए। कई लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि जानबूझकर पुलिस ने शाम होने के बाद कार्रवाई की ताकि अंधेरे में सब कुछ छिप जाए। अगर इरफान अंसारी को अब भी लगता है कि कल कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ तो वो इन बच्चियों को सुन सकते हैं।
1: महिला पुलिस, घर में माँ बहन नहीं है, यही लोग तुम लोग पढ़ के नौकरी लिया है, घर में माँ बहन नहीं जाएंगे, ये झारखंड सरकार का जमीन नहीं है, क्योंकि लोग पुलिस वाला लोग हम लोग को इतना पगार मार रहा, दौड़ा रहा, शर्म जैसा इसका बाल बच्चा नहीं होगा, आप कुत्ता के साथ दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, इसको कौन वोट दे के सीएम बनाया हेमंत सोरेन को। हम लोग में है, हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस लोग आके भागो, यहाँ नहीं रहना है, क्यों नहीं रहना है भाई, हम लोग शांति से धरना दिए, क्यों मारना अंदाजे बिना मतलब का इधर उधर मारना।
2: जिन छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है उन्हें चोट आई है, वो घायल हुए हैं, किसी के पैरों में तगड़ी चोट लगी है, किसी के हाथों में सूजन आ गई है,
3: दौड़ा दौड़ा के मारा गया, निर्दय जैसे हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया, सिर्फ सीधे हम लोग रोज शांति पूर्वक बैठे हुए थे, एसपी द्वारा बैठाया गया था, हम लोग बैठे हुए थे सर, लेकिन लाइट बंद करके ना बहनों के और मेरे जो भाई लोग है ना उसको सुता सुता कर मारा है सर, इतना मारा ना, और साथ में हम लोग भी मारा, दौड़ा दौड़ा कर तीन मिनट दौड़ाया है सर,
4: एकदम संवैधानिक रूप से कोई हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, तो आप ही बताइए ना सर कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे।
2: पूरा पैर में सूजन आ गई है, ये तमाम जो छात्राएं थी इनके कपड़े बता रहे हैं कि आखिर इनके साथ वहां पर क्या कुछ हुआ शाम के अंधेरे में। ये देखिए, ये लाठी डंडो, ये लाल दिखाई दे रहा है, ये लाठी डंडों के निशान है पैरों पर, ये निशान है, और इसी के बाद आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने जब शाम को लाठी चार्ज किया है तो किस तरह कार्यवाही की है।
3: लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा, रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा, लगा कि हम लोग आतंकवादी हैं, एकदम
5: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सबको।
6: लोग सर खेत में घुस जा रहे थे, लोग पुलिस खेत में घुस घुस के मारी है लड़की लोग को गाली दे के मारा गया है सर।
7: इसी दिन देखने के लिए बनाए थे हम लोग, इसलिए उनको सत्ता दिए थे, इसलिए उनको कुर्सी दिए थे ताकि झारखंड का जो भविष्य है उनको अच्छा से देख रेख कर सके और उनको सवारे।
8: आप देख सकते हैं मेरी आंखें बच गई है, लाठी चार्ज किया, मैं खड़ा था आराम से शांतिपूर्वक खड़ा था, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा,
9: और लड़का लहो लड़की है किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसका पैर पे यहाँ पे चोट लगा है,
10: ऐसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े, ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया, अचानक से वो आए और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया।
11: पैंट खोल नहीं सकते सर, दिखाते ना कितना मारा सर, इतना मारा गया ना कि कोई बैठ नहीं सकता सर, बैठ नहीं सकता इतना मारा।
6: कि आप हमें मार के नौकरी बेचोगे क्या, आप हमें जान से मार के नौकरी बेचोगे, अगर आप हमें मार के नौकरी बेचना चाहते हो तो आप हमें जान से मार दो, लाठी क्यों चला रहे हो, गोली चला दो, गोली मार दो हम लोगों को।
0: हमारे रिपोर्टर सत्यजीत कुमार कहते हैं कि कल हुए लाठीचार्ज में कम से कम 18 छात्र घायल हुए, जबकि पुलिस कहती है कि इस पैदल मार्च में उसके भी 14 जवान घायल हुए हैं, और इन दृश्यों को देखने के बाद ये सवाल कहीं से नहीं बनता कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के पैदल मार्च के दौरान संयम दिखाया, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बच्चे बता रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। देखिए,
12: आप कानून का राज, बाप का राज,
13: कानून की बात नहीं हो रही है, आप जो बोल रहे हो किसी को ठीक है वो बात मैं बोल रहा हूँ, अरे चूने हो आप ही लोग भाई, हम लोग छोड़ चूते हैं।
0: तो आपने इस पुलिसकर्मी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को वो लोग नहीं चुनते बल्कि जनता चुनती है, इसलिए सरकार के कारण पुलिस का विरोध करना सही नहीं है। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं।
12: कानून का राज है, सिखाइए तो,
13: मैंने किसी को छुआ भी नहीं भाई,
12: तो आप कानून का राज, बाप का राज,
13: कानून की बात नहीं हो रही है, आप जो बोल रहे हो किसी को ठीक है वो बात मैं बोल रहा हूँ, अरे चूने हो आप ही लोग भाई, हम लोग छोड़ चूते हैं।
0: आज छात्रों पर हुई कार्रवाई के बाद बीजेपी ने झारखंड में बंद बुलाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छात्र सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी इनकी शिकायत आखिर क्या है। इनकी सबसे बड़ी शिकायत उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने सरकारी नौकरियों की कीमत तय करके उन्हें पैसों वालों को बेच दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के मुख्य सचिव रहे एल खिंग्याते को उनकी रिटायरमेंट के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था। फैसला खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था, यानी जिस पद पर रहते हुए एल किंग्याते पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रिश्वत लेकर सरकारी नौकरियां बेची, उस पद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद उन्हें बिठाया था। सीआईडी के मुताबिक जो अभय तिवारी परीक्षाओं में धांधली कराता था उसने धर्मेंद्र नाम के एक शख्स से पहले दोस्ती बढ़ाई। ये वही धर्मेंद्र है जो एल किंग्याते के अध्यक्ष रहते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग के कंप्यूटर विभाग में डिजिटल कामकाज संभालता था। आरोप है कि अभय तिवारी ने धर्मेंद्र की मुलाकात टीडीपीएल कंपनी के दो अधिकारियों से कराई। ये वही कंपनी है जिसे बाद में ब्लैकलिस्ट होने के बाद सरकारी नौकरियों की परीक्षा कराने का टेंडर मिल गया। इस मुलाकात में ऐसी खिचड़ी पकाई गई कि कुछ वक्त बाद एल खिंग्याते एक 5-स्टार होटल में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात आरोपों के मुताबिक इसी कंपनी के इन्हीं दोनों अधिकारियों से हुई। दावा है कि यही वो मुलाकात थी जिसमें एल खिंग्याते इस कंपनी से कहा उन्होंने कि वो आयोग के सामने अपना पूरा प्रस्ताव पेश करें। हैरानी की बात यह कि इस मुलाकात के दो दिन के अंदर सब कुछ फिक्स हो गया। एल खिंग्याते ने कहा कि इस कंपनी के अधिकारी धर्मेंद्र से मिलकर आगे की बात कर सकते हैं, यानी बात उसी धर्मेंद्र तक पहुंच गई जिसने इस पूरी मीटिंग को फिक्स कराया था। ये बाकायदा सीआईडी की रिपोर्ट में आया है और सीआईडी का कहना है कि इस मुलाकात में धर्मेंद्र ने तय किया कि अगर इस कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका चाहिए तो उसे एल खिंग्याते 2 करोड़ रुपए घूस देनी होगी। धर्मेंद्र को 25 लाख रुपए अलग से देने होंगे। आरोपों के मुताबिक कंपनी को सरकार से परीक्षाएं कराने का जितना पैसा मिलेगा उनमें 20% कमीशन देना होगा और चौथा दिन लोगों को ये सरकारी नौकरियां बेची जाएंगी। उनसे मिलने वाले पैसे में भी इनका एक परसेंटेज होगा, हिस्सा। अब आप खुद सोचिए, जब इन सरकारी नौकरियों में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था तब ये छात्र क्यों नहीं आंदोलन करेंगे, क्यों नहीं सरकार से इंसाफ की मांग करेंगे। खैर, अगली खबर का आप रुख करते हैं। आपको मोरबी के उस कुएं की कहानी बताते हैं जिस पर स्थानीय लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक कई कहानियां अलग अलग तरह की तैर रही है। ये कुआं मोरबी के वीरपरडा गांव में मौजूद है जो 18 फीट गहरा है और जिसका 2 अगस्त को एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कुएं का पानी लगातार हिलता, गोल गोल घूमता और लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ देर में ये पानी छलकता हुआ भी नजर आता है इस कुएं में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ स्थानीय लोगों, गुजरात के मोरबी जिले में लोगों ने यही माना कि शायद भूकंप के संकेत है। सबसे ज्यादा यही थ्योरी फैलाई गई कि ये भूकंप की वजह से हो रहा है। इन लोगों का कहना था कि जमीन में बिना हलचल के ये पानी नहीं हिल सकता, जमीन के नीचे हलचल हो रही है तो भूकंप का ये संकेत है। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास से जोड़ा। पूरे देश में एक कुएं को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। इस बहस का कारण यह था कि गुजरात के लोग भूकंप से बहुत ज्यादा डरते हैं और कारण यही है कि 2001 के भूकंप ने गुजरात के लोगों में बहुत खौफ पैदा कर दिया है क्योंकि उनका बहुत कुछ छीन लिया था उस भूकंप ने। अब लोगों के इसी डर को देखते हुए इस कुएं की जांच जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है और आज भी ये टीम इस कुएं पर पहुंची और अभी वो अपनी एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है। यहां इस टीम को यह भी कहना है कि इस घटना को भूकंप की आशंका से जोड़ना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक जब किसी इलाके में भारी बारिश और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है तो उससे कुएं का पानी समुद्र के पानी की तरह हिल जा सकता है। कारण यही है कि जमीन के नीचे सिर्फ खाली जगह नहीं होती, वहां अगर हवा फंस जाए या हवा का दबाव बनने लगे तो ऐसे ऊपरी सतह पर मौजूद पानी हिल सकता है। हालांकि यहां कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी कुएं से 500 मीटर दूर एक और कुआं है जिसका पानी नहीं हिल रहा है। सवाल उठता है कि अगर बारिश के कारण इस कुएं के नीचे हवा का दबाव बना तो यही चीज इस कुएं में 500 मीटर दूर क्यों नहीं होगा। सारे सवालों को देखते हुए इस कुएं की जांच की जा रही है और सरकार का कहना है कि जब तक जांच नहीं होती तब तक लोग इस घटना को लेकर गलत दावे, अफवाहें ना फैलाएं। देखिए,
14: आज हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो जियोलॉजिस्ट की टीम है उनके द्वारा इस स्थल की विजिट की गई। उनके ध्यान पे ये आया है प्राथमिक कि वहाँ पे एयर जो है बिकॉज ऑफ रेन, जो पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई है उसके कारण कुछ एयर नीचे एक्वीफर में ट्रैप हो गई है। जब उस एयर में मूवमेंट होता है उस कारण थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट ऊपर के सतह पे भी हमें देखने मिलता है।
0: और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में चर्चा हो रही है। ये सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की से सुरक्षित निकालने के लिए किया गया था। उन्हें ईरान से खतरा था। पिछले महीने जो दावा है 7 और 8 जुलाई को तुर्की में नेटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस दौरान मुसाद ने CIA को बताया था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर सकता है। CIA को डर था कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन पर अटैक कर सकता है। उस वक्त खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो सम्मेलन खत्म करने के बाद पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे, जबकि वो कतर से गिफ्ट में मिले विमान से तुर्की आए थे। ये पूरी खबर CIA द्वारा फैलाई गई थी क्योंकि ये उनके सीक्रेट ऑपरेशन का पहला चरण था। 8 जुलाई को तस्वीरों में ये देखा गया कि अंकारा एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप नए एयरफोर्स वन के बजाय पुराने एयरफोर्स वन में गए। इस विमान के पास पत्रकार और अन्य सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पुराने एयरफोर्स वन में बैठना एक छलावा था। द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि CIA ने तुर्की से डोनाल्ड ट्रंप को निकालने के लिए जो प्लान बनाया था उसके तहत दिखावे के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पुराने एयरफोर्स वन में बैठना था और फिर इसके बाद विमान के दूसरे दरवाजे से निकलकर अमेरिकी वायुसेना के एक सीक्रेट विमान में उनको दरअसल जाना था। यानी जिस एयरफोर्स वन से अमेरिकी राष्ट्रपति के ब्रिटेन जाने की खबर आई थी, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उस विमान में थे ही नहीं, बल्कि वो तो अमेरिकी सेना के एक दूसरे विमान से ब्रिटेन गए थे। ईरान से खतरे को देखते हुए ये पूरा ऑपरेशन CIA ने ऑपरेट किया था। CIA ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरी दुनिया की नजरों से बचाकर तुर्की से कैसे निकाला, अब ये देखिए। CIA ने दुनिया को दिखाया कि अंकारा एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कार से उतरे, पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए। लेकिन कुछ खास बातों पर गौर कीजिए। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप विमान में दाखिल हो रहे थे, उसी वक्त विमान को चारों तरफ से सीक्रेट सर्विस के लोगों ने घेरा हुआ था। विमान के दूसरी तरफ एक ट्रक खड़ा था जिसके जरिए विमान में खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाती है। इस ट्रक के ऊपर एक कंटेनर भी था। जब पत्रकारों को एयरफोर्स वन के पिछले दरवाजे से एंट्री दी गई, उस वक्त ये केटरिंग ट्रक वहां से चला गया। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है, और यह खबर हम आपको वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बता रहे हैं, कि CIA ने डोनाल्ड ट्रंप को इसी केटरिंग ट्रक के कंटेनर में छिपाकर निकाला था। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप विमान में दाखिल होने के बाद दूसरे दरवाजे से केटरिंग ट्रक के कंटेनर में आकर बैठ गए और इसके बाद इस कंटेनर को वहां से हटाकर अमेरिकी वायुसेना के C-32A विमान तक ले जाया गया। CIA के अलावा किसी को पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप कंटेनर में थे। जिस विमान में डोनाल्ड ट्रंप को चोरी छिपे ले जाया गया उसे एयरफोर्स 2 भी कहते हैं। CIA के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी बहुत से व्हाइट हाउस स्टाफ को भी नहीं दी गई। यहां तक कि कई पत्रकारों, व्हाइट हाउस के स्टाफ को यही लगता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ पुराने वाले एयरफोर्स वन में सवार है। इसी विमान के कर्मचारियों ने पत्रकारों से विंडो शेड्स को बंद रखने के निर्देश दिए थे। जब पत्रकारों ने ट्रंप से विंडो शेड्स बंद रखने को लेकर सवाल पूछे थे, तब ट्रंप ने कहा था कि शायद वो जिस फ्लाइट में बैठे थे वो सबसे खतरनाक फ्लाइट थी।
15: But if I go, you go, right?
16: But was there a
15: specific perhaps someday you want to change professions.
0: अब आपको एक ऐसे शातिर ठग के बारे में बताएंगे जिसने मुंबई, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर से लेकर कोलकाता तक ऐसा ठगी का जाल बिछाया कि पिछले 10 साल में करीब 40 महिलाओं को करोड़ों की ठगी का शिकार बना लिया। इस शख्स का नाम है अनुज त्रिवेदी, जो सीतापुर के चंद्रावल गांव का रहने वाला है। खुद को मुंबई और देश के बड़े शहरों में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी बताने वाला ये ठग अभी महाराष्ट्र की जेल में बंद है। इस हाई प्रोफाइल मामले में भूचाल तब आया जब इसकी आंच सीतापुर के सेवता से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी के परिवार तक पहुंच गई। ठगी का ये आरोपी अनुज त्रिवेदी विधायक ज्ञान तिवारी का समधी है। विधायक ने अपने इसी समधी के खिलाफ रेउसा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। खुद अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस फरेब से पर्दा उठाया। उन्होंने रोते हुए बताया कि आरोपी ने बेटी की शादी के वक्त उनसे सब झूठ बोला। विधायक ने कहा कि अगर उनका दामाद प्रखर त्रिवेदी भी इसमें शामिल हो तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
17: हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनुज त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं, मेरा इतना ही कहना है कि कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है आज हम भी ठगे हैं और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूं, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
0: अनुज त्रिवेदी की ठगी की शिकार कई महिलाओं ने सामने आकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस शातिर को बेनकाब किया है। अब आरोप क्या क्या है वो सुनिए। आरोप है कि 2016 से महिलाओं को अपना शिकार ये शख्स बना रहा था। आरोप है कि ये ठग अखबारों में शादी के विज्ञापन छपवाता, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाता और जब विवाह के संबंध में अमीर महिलाएं इसके संपर्क में आती थी तो उन्हें झांसा देता था या उनसे ठगी करता था। ये ठगी कभी भी अपने सही नाम असली पहचान का इस्तेमाल नहीं करता था। कभी ये अजय अग्रवाल बन जाता, कभी यही शख्स अजय सिंह बन जाता, कभी चंद्र प्रकाश, कभी संतोष सिंह, कभी अजय गुप्ता। ये आरोपी मुख्य रूप से 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित और तलाकशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और इसकी शिकार ऐसी महिलाएं भी होती थी जिनके पति का निधन हो चुका था, जिन लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष होता था या किसी तरह से शादी में अड़चने आती थी, ये उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। ये उनसे शादियां रचाता, नजदीकियां बढ़ाता, धीरे धीरे भरोसे में लेकर उनकी गाढ़ी कमाई, नकदी, सोना चांदी, आभूषण पर धीरे धीरे हाथ साफ करता। अधिकतर महिलाएं बदनामी के डर से चुप रह जाती। कई महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए देश के अलग अलग थानों में अब शिकायत दर्ज कराई है लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। एक महिला ने मई 2025 में इसके खिलाफ महाराष्ट्र के डोंबिवली थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके एक साल के बाद मुंबई पुलिस को इसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली और अभी ये कल्याण की आधारवाड़ी जेल में बंद है। और अब कई और महिलाओं ने सामने आकर इसकी ठगी का खुलासा भी किया है।
16: इसने बताया कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और रियल इस्टेट का काम करता हूँ। मेरी बीवी का गले के कैंसर से 2014 में मृत्यु हो गई है। मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस एक पुत्र।
0: शाम को घर आते वक्त धनिया लाना भूल गए, सुबह की चाय के लिए दूध खत्म हो गया, तुरंत ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट खोलो और 10 मिनट में सब कुछ मंगा लो, 10 से 18 मिनट। बड़े शहरों में अब तमाम लोगों की सुबह और शाम अब इसी एक आदत से शुरू और खत्म होती है। बटन दबाया नहीं, बाइक वाला डोरबेल बजा देता है। इंस्टेंट डिलीवरी के इस दौर में सब कुछ मिनटों में दरवाजे पर हाजिर है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इस रफ्तार और जिस रफ्तार से ये कंपनियां आपके घर तक सामान पहुंचा रही हैं, उसी रफ्तार से कहीं आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। 7 अगस्त को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने मुंबई के मलाड वेस्ट में ब्लिंकिट के एक डार्क स्टोर पर छापा मारा तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। यहां ताजे फल और हरी सब्जियां जिन्हें आप बड़े भरोसे से मंगवाते हैं ना, उनके बीच कॉकरोच आराम से दावत उड़ाते हुए पाए गए। खाने पीने का सामान सीधे गंदी जमीन पर फेंका हुआ था और जिस रैक पर रखा था उस पर रस्ट लगी हुई थी। कोल्ड स्टोरेज के अंदर ऐसा सामान भरा पड़ा था जो या तो एक्सपायर्ड हो चुका था या जिसके पैकेट से छेड़छाड़ की गई थी। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है. कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है. और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम. जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप.
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन.
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर. मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन्ड एचजीएमआर मैक्स, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
7: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
8: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। BTEX मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
9: अब वही BTEX मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
10: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
6: Jab baat ho soyabean aur makke ki faslon ko sundiyon se bachane ki, to har asli hero ki pehli pasand hai Crystal Crop ka Proclaim Extra. Jeete har baazi.
12: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है, तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है। विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियां में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है। माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: करीब दो साल बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रैली कर हुंकार भरी,
2: जय भीम।
1: बीजेपी सरकार पर हमला बोला, राहुल गांधी को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव पर तंज कसा और अपने बयानों से भविष्य वाली रणनीति का संकेत दिया।
3: तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड अपना एड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए।
1: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। और इसी कड़ी में जब आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद में हुंकार भरी तो योगी सरकार सबसे ज्यादा निशाने पर रही।
3: मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप?
1: बीएसपी के खिसकते जनाधार और एक के बाद एक मिल रही चुनावी हार के बीच पार्टी प्रमुख मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद से सियासी चमत्कार की उम्मीद है। यही वजह है कि चुनावों के ऐलान से पहले ही आकाश आनंद ने मोर्चा संभाल लिया है और इस रैली में उन्होंने इशारों इशारों में राहुल गांधी को घेर लिया।
3: जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे है, आज इधर तो कल उधर, अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके सत्ता, अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे।
4: मुद्दा ये नहीं है कि किसको अंकल कहो और किसको दादाजी कहो, हिम्मत हो तो कह लेना मोदी जी को। मुद्दा ये है कि बहुजन मिशन को आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों क्यों गिरवी रख रहे हैं, आरक्षण विरोधियों के हक में क्यों बात कर रहे हैं, संविधान विरोधी भाजपा के हक में क्यों बात कर रहे हो, आप और आपकी बुआ जी दोनों के दोनों लोग बहुजन मिशन को क्यों बेच रहे हैं, क्या मिल रहा है आप?
1: लेकिन आकाश आनंद की इस रैली में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव पर ली गई चुटकी की हो रही है, जिसमें उन्होंने अखिलेश को अंकल बता दिया, जिसे जैन जी को लुभाने वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
3: आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ।
5: बहस में हम और आप न बोल रहे, जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
6: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है,
7: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती, समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और वजह चाहे जो हो एक हद तक ही सहा करो, उसके बाद स्वाहा करो। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एससी जेएसएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का साइलेंट मार्च। सीएम सोरेन ने न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई जांच से डर रही है राज्य सरकार। यूपी के हमीरपुर में सड़क पर उतरा जैन अल्फा। कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन। बदहाल सड़क से परेशान बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर अधिकारियों से लगाई गुहार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। कहा, गृह मंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष राहुल पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप। अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। और साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 3700 से अधिक फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक। 11000 करोड़ से अधिक की ठगी रोकी गई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट। कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक उत्तर प्रदेश में शुरू हुई जेन जी पॉलिटिक्स की। जी हां, मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कह दिया और अंकल बोलकर एक नई बहस छेड़ दी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक पिच पर उतरे आकाश आनंद न सिर्फ आक्रामक तेवर में नजर आते हैं बल्कि योगी और बीजेपी की सरकार से लेकर कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव को अंकल बताकर जेंजी वोटरों को आकाश टारगेट कर रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाएं आकाश आनंद के सहारे क्या है मायावती का जेंजी वाला गेम प्लान।
1: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव, जेन जी वाला गेम प्लान। जंतर मंतर आंदोलन के बाद यूपी में जेन जी वाली सियासत। आकाश आनंद ने अखिलेश को बोला अंकल, मामला पॉलिटिकल।
2: इनकी हरकतों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने।
1: अंकल पर अखिलेश यादव का जवाब, एक सिक्के के दो पहलू।
3: यूपी में
1: आकाश आनंद ने योगी सरकार को घेरा, बीजेपी पर हमला बोला।
4: आरोप लगाया सरकार पे।
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन ने सियासत का पूरा पैटर्न बदल दिया है। 20 जुलाई को सीजेपी के चलो संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुआ तो पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में उतर गया। और जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो सियासत में सबको समझ में आ गया कि जेन जी जहां है ताकत वहां है। जब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और उनकी पार्टी खुद को जेन जी का हिमायती साबित करने में जुटी है और पूरी सियासत को छात्रों और युवाओं पर फोकस कर रही है, ऐसे में मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाथरस में पहली बड़ी रैली की तो उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। पहले तो आकाश आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और फिर राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित किया।
4: चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है।
1: इसके बाद आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को भी अंकल बोला और वो ये भी बताते हैं कि उनकी उम्र अभी 30 साल है।
4: रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े
5: अखिलेश भैया,
4: अखिलेश अंकल हैं। अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं।
1: राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहना संयोग नहीं बल्कि जेन जी वाला वो प्रयोग है जिस वर्ग को अपने पाले में खींचने के लिए हर राजनीतिक पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। यूपी में कैसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जेन जी याद आ रहे हैं और यूपी में जेन जी वोटर्स का चुनावी गणित क्या है, उसे दिखाने से पहले आपको आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर अखिलेश यादव का जवाब सुनवाते हैं।
6: ऐसा है, उस बहस में हम और आप न उलझे और जो सीएस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे। तो अगर शिक्षा परीक्षा से काम नहीं हो पा रहा है तो अयोध्या से काम चले, वो बात तो आपको हमको पता ही है कि ये बोरे भर के कहां गए थे, कंडों में पैसे निकले थे और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी साजिश की गई। एक दिन में इतने कॉल किए गए, संभव है क्या इतने कॉल किए गए हों और सरकार को न पता हो। सुनने में आया कि यहाँ जो छात्र नौजवान आए थे नेटवर्क से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो भविष्य में सरकार पता नहीं क्या करे, इसलिए दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समझिए एक सिक्के के दोनों दो पहलू हैं। बीजेपी और उनके संगी साथी दोनों इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं।
1: अब अखिलेश के एक ही सिक्के के दो पहलू का मतलब क्या है, ये यूपी में राजनीति की समझ रखने वाले समझ रहे हैं, लेकिन अब बात यूपी में जेन जी वोटर्स की करते हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इसमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2,07,00,000 हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाया जाए।
3: युवाओं की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव और राहुल गांधी करते दिख रहे हैं, लेकिन अब बहुजन की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते बढ़ते हुए आकाश आनंद अब जेन जी की पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं। उम्र उनके साथ है, 30 साल उनकी उम्र है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि 52 साल और 50 साल के लोगों को अगर हम अंकल ना कहें तो क्या कहें। मकसद साफ है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पुरानी पीढ़ी के नेता घोषित करना और खुद को जेन जी के साथ खड़ा करना। लेकिन ये इतना आसान भी इसलिए नहीं है क्योंकि आकाश आनंद लंबे वक्त के बाद दोबारा से सामने आए हैं, और अगर इसी तरीके से ब्रेक लेकर वो आते रहे तो फिर उनके लिए जड़ें जमाना मुश्किल होगा।
1: इसलिए आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बोला तो बड़ी बहस छिड़ गई

0: हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो और मायावती जी की इजाजत हो तो एक बार नरेंद्र मोदी जी को दादाजी भी तो कहकर के संबोधित करो ना।
1: इस बीच में जेंजी
2: देखिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों, इन्होंने हमेशा हमारे युवाओं को बरगलाने बहकाने का काम किया है। 12 से लेकर 17 तक इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सरकारी नौकरियों की बोली लगती थी।
3: अब ऐसे तो हम लोग भी बुआ जी कहते हैं बहन जी को, और आकाश जी ने किस भाव से कहा ये उन्हीं से पूछे तो बेहतर बता सकते हैं।
4: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में इस बार जेंजी मतदाताओं को वोट बैंक माना जा रहा है और जेंजी की हिस्सेदारी लगभग 15% है, जो कई सीटों पर रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी दल 2027 के चुनाव में युवा वोटरों को साधने की रणनीति बना रहे हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राहुल और अखिलेश को अंकल कहा है, जो योगी सरकार और बीजेपी पर भी वार किया है।
5: आपको बता दें कि यूपी में खुद सीएम योगी ने पूरा फोकस युवाओं पर किया है। जी हां, सीएम योगी ने नई युवा नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिया है कि यूपी के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाए।
6: राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कड़घरे में खड़ा कर देती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज आप राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी।
5: लेकिन आकाश आनंद ने योगी सरकार पर भी करारा प्रहार किया। आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता के टैक्स के पैसे यानी 7,000 करोड़ रुपए से बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाई है।
7: पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़, साथियों 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई है। 7,000 करोड़ ये अपनी कमियां छुपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर कर सकते हैं, पर 4 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद इनके खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं।
5: इतना ही नहीं, मायावती के भतीजे ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और योगी सरकार को एनकाउंटर की सरकार बताते हुए यूपी पुलिस को भी घेरा।
7: मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप?
5: आकाश आनंद ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक प्रहार किया।
7: इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार लाएंगे और आपके सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे। उन्होंने नारा दिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है, सड़क भूल गए क्या? जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया। आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा, आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है।
5: जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में युवाओं के बीच जो जो मुद्दे उछले उन्हें विपक्ष न सिर्फ पकड़ रहा है बल्कि सियासत का आधार उन्हीं को बना रहा है। और आज का सूरत हाल ये है कि विपक्ष हो या बीजेपी या फिर RSS, हर किसी का फोकस जेन जी पर आ गया है आज तक के।
4: और आइए अब हम आपको दिखाएं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथ में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर नारेबाजी की। जेन अल्फा के आक्रोश के बाद प्रशासन ने यह विश्वास दिलाया कि अब यहां जल्द ही 1,81,00,000 रुपए खर्च करके सड़क बनवा दी जाएगी।
8: सड़क के बारे में कोई सोचना करनी है।
9: कितनी बार यहाँ आ चुकी है?

0: दो चार बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं करते। कल बता रहे थे जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, दो दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन देकर भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
1: बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, कहा हम भी गिर पड़ते हैं, पैदल भी गिरते हैं।
2: कब से ये समस्या है आपसे?
1: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई रहे थे डलवाने के लिए, डलवा नहीं पा रहे हैं।
2: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
1: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। 15 दिन की मोहलत ली थी, फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
2: आज आप आए तो क्या
1: हुआ? जब तक काम नहीं चालू होगा, जब तक नहीं कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ से।
3: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है, उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
4: और आइए अब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि ऐसा सर्वे जो आपको ये बताएगा कि हमारे देश में मौजूदा समय में जेन ज़ी का मिजाज क्या है। पूरे देश में सर्वे सी वोटर ने किया है। हर राज्य के करीब करीब हर जिले में 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवाओं की टेलीफोनिक सर्वे के द्वारा राय ली गई। इसका सैंपल साइज 1270 है और इसे 8 अगस्त को किया गया। तो आइए हम देखें कि सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा जेन ज़ी के लिए क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। और यहां देखिए NDA, विपक्ष, अन्य, कुल सबको हमने आपको दिया है। 56.7% NDA, विपक्ष 51.7%, अन्य 45.8% और कुल यहां पर 53% है। इसका मतलब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी 6.7%, 12.8% और कुल मिलाकर 8.2%, महंगाई इसी तरह 9.2% जेन ज़ी की राय है और 15.1% विपक्ष के पक्ष में जेन ज़ी जा रहा है और यहाँ पर अन्य 18.9 यानी कि कुल 13.1 यानी कि महंगाई सबसे ज्यादा है। अब क्या सोशल मीडिया की राजनीतिक राय बनाने में बड़ी भूमिका है? यहाँ हाँ जेन ज़ी कहता है 53.2 NDA, 48.3 विपक्ष, 40.7 कुल, यहां पर है 49.3 और नहीं जा रहा है NDA, विपक्ष, अन्य मिला के 24.6। और ऐसे जेन ज़ी भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, कोई राय हमारी नहीं, 26.1%। इसके अलावा एक और सवाल यहां पर है, वोटिंग के समय उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी जरूरी है? हमारा जेन ज़ी ये मानता है कि हाँ जरूरी है, 26.0%। क्या राजनीतिक दल जेन ज़ी के मुद्दों को समझते हैं? हाँ, NDA 26%, विपक्ष 17.1, अन्य 15.4, कुल 20.7%। नहीं, हाँ 58.7 कुल यहां पर होते हैं, 54% NDA समझता है, विपक्ष 64% समझ रहा है, अन्य 58.5 और अंत में 20.5 आ रहा है कि कह नहीं सकते। अब देखिए, अब किसी प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता कितनी जरूरी है? क्या 60%, 61%, 54% कुल हो जाता है यहाँ पर 59.5% और कुछ हद तक जरूरी, यानी कि यहाँ पर NDA 18.8%, जेन ज़ी 17.6, कुल मिलाकर 19.2 जाता है, जरूरी नहीं में आता है 13.9 कुल, कह नहीं सकते में 7.4%। रांची में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का अनशन आज 18वें दिन भी जारी है। कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था। दिन भर छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शाम होते ही रांची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में 20 से अधिक छात्र घायल हुए, 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने घायल छात्रों से बात की, उनका दर्द जाना, छात्रों की आप बीती आप भी सुनिए।
5: किसी का कंधा टूटा,
6: दौड़ा के मारा गया, निर्दय जैसे हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया।
5: किसी की टांगे टूटी, किसी की पीठ पर लाठी,
6: ना लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा, रात का अंधेरा में मौका मिला और
7: ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा।
5: किसी के हाथ पर चोट,
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़की सब को।
5: एक दो तीन चार पाँच, गिनते चले जाइए, इनके जख्मों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान जो हुआ, सत्ता तंत्र ने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ जगह बदलती है, फितरत नहीं बदलती। चाहे दिल्ली हो या रांची, विरोध की बुलंद आवाज किसी भी सरकार को मंजूर नहीं है। रांची में जो हुआ वो कितना भयावह और क्रूर है, ये आप इन छात्रों की आप बीती सुनकर जान जाएंगे।
9: गाली देते के सर, दो दो किलोमीटर दौड़ा के मारा गया है सर।
10: आप लोग भी वहीं पर?
7: ना लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा। रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा, लगा कि हम लोग आतंकवादी हैं। एकदम दो दो किलोमीटर सर, दो दो
8: सर लड़की सबको, विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़की सबको।
7: लाठियों से मारा है, लाठियों से पूरा दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। पुलिस लग रहा था कि हम लोग आतंकवादी हैं। इतने यदि इसमें हिम्मत है तो जाकर के बॉर्डर को सील करो, रास्ती करो। उसके बाद हम लोग छात्र
9: लोग सर खेत में घुस जा रहे थे, लोग पुलिस खेत में घुस घुस के मारी है लड़की लोग को, लड़की लोग को गाली दे दे के मारा गया है सर। इतना बुरी तरह से पीटा गया हम लोग को, और जबकि हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी कहीं पे कोई कोई हिंसा नहीं हुई है।
5: लेकिन लाठियां झेल कर जख्म सहकर भी ये सरकार के सामने डटे हैं और सख्त जान की तरह खड़े हैं। और सरकार है कि लाठीचार्ज को लाठीचार्ज नहीं मान रही है, तो फिर उसकी बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। जी हाँ, इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने कुछ नहीं किया।
11: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
12: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग ऐसा जब नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
13: लेकिन कोई रिपब्लिक
12: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे। वापिस करो, मुझे मार रहे हैं, बीच पे हाथ
5: किया। यही वजह है कि जब सरकार कहती है वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी है, तभी छात्रों का भरोसा डिगने लगता है। क्योंकि जो सरकार यही न माने कि लाठीचार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी। रांची से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो अगले हिस्से में दस्तक के दिखाएंगे मुश्तबा की नई टीम, ट्रंप की उड़ी नींद। आप देखते रहिए दस्तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: Papa!
3: Sorry, यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। हाँ। ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: बिजली का बिल पेड
8: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
9: कैसे?
8: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
9: इतना माही वे।
10: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
11: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
4: राजस्थान की सड़कों पर सैलाब, आसमान से आफत बनकर बरसा पानी. बूंदी से लेकर झालावाड़ बारिश ने किया हाल बेहाल. मानसूनी बारिश के चलते राजस्थान के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं. ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी इलाके की है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया. बूंदी के नागदी बाजार, सदर बाजार और मीरा गेट वाली सड़क पर पानी मानो नदी की तरह बहने लगा और इसकी चपेट में खड़ी कई बाइक और स्कूटी आ गईं, जो तिनके की तरह पानी के साथ बहने लगी. ये तस्वीर देखिए, जहां अपनी बाइक को बचाने के लिए बाइक सवार पानी में दौड़ा, लेकिन तेज बहाव के चलते उसे पकड़ नहीं पाया. बाइक ही नहीं, सड़क पर खड़ी स्कूटी भी पानी के तेज बहाव में बह गई. बूंदी ही नहीं, टोंक में भी आफत बनकर बरस रहे हैं बादल. भारी बारिश के बाद टोड़ा रायसिंह इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए. सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया और इसकी चपेट में कई बाइक सवार आ गए. बूंदी ही नहीं, राजस्थान के झालावाड़ में भी बारिश से हाल बेहाल हो गया है. जहां लगातार हो रही बारिश के चलते एक सरकारी स्कूल में पानी भर गया और देखते ही देखते स्कूल एक टापू में तब्दील हो गया. स्कूल में पानी भर जाने की वजह से करीब 35 बच्चे और स्कूल टीचर फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए SDRF टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित निकाला. बूंदी से भवानी सिंह और झालावाड़ से चेतन गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो.

अगस्त में आसमान से बरस रही है आफत। बादल फटने के बाद चमोली में तबाही का मंजर। पहाड़ों से आए मलबे ने सब कुछ बहाया। सावन का महीना चल रहा है और देवभूमि में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों से आ रहे मलबे को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगी। गनीमत ये रही कि वो बच गया। लेकिन सैलाब के रौद्र रूप में एक गाड़ी बह गई। एक और तस्वीर देखिए, पहाड़ों से आए मलबे की रफ्तार इतनी तेज है कि लोहे का पुल ताश के पत्तों की तरह बह रहा है। महज 30 से 35 सेकंड में मलबा अपने साथ पुल को ले गया। पुल बहने से नीति घाटी के 13 गांव का जोशीमठ से संपर्क टूट गया है। नीति घाटी में मलबा तो बह गया, लेकिन अपने पीछे एक तबाही का मंजर छोड़ गया है। अब चमोली पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बादल फटने के बाद आए मलबे ने भारी तबाही मचाई है। नदी किनारे के खेतों में मलबा, पत्थर और बोल्डर से भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली से कमल नयन, सिडोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान और अमेरिका की। तो हम आपको ये बता दें कि जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर कोई ठोस बात अभी तक नहीं बनी है, ऐसे में ईरान ने सबसे बड़ा सैन्य फेरबदल कर दिया। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC में बड़ा फेरबदल करते हुए अपनी नई टीम बना ली। अब सवाल यह है कि क्या ईरान को किसी बड़े खतरे का डर है या फिर मुश्तबा कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप का डर भी सामने आ गया। खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने तुर्की से ब्रिटेन जाने के लिए सीक्रेट रूप से छोटे मिलिट्री विमान का इस्तेमाल किया। क्या है ट्रंप की सीक्रेट फ्लाइट की इनसाइड स्टोरी, आइए दिखाएं आपको।

0: ईरान की फौज में बड़ा फेरबदल, मुस्तबा ने क्यों बनाई नई टीम, क्या है ईरान का प्लान, आईआरजीसी में नए कमांडरों की भर्ती क्यों हुई, ईरान ने दिखाया बारूदी तहखाना, ट्रंप ने क्यों मांगा हर्जाना, ट्रंप की सीक्रेट फ्लाइट की इनसाइड स्टोरी, तुर्की में क्यों बदला प्लेन, क्या ईरान के डर से प्लेन छोड़कर निकले ट्रंप, अमेरिका में क्यों मचा हड़कंप, जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ नए नए प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ तकरीबन 6 महीने के युद्ध में ईरान समझ चुका है कि कब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट जाए या मुकर जाए कोई नहीं जानता। और अब जो ईरान से बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईरान की सेना और इस्लामी सेना आईआरजीसी में बड़ा फेरबदल किया। इस फेरबदल में ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। इस फेरबदल के साथ ही सुप्रीम लीडर ने नए आईआरजीसी प्रमुख को साफ साफ आदेश दिया है कि वो सेना को दुश्मन के खिलाफ बेहद शक्तिशाली और आक्रामक अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार रखे। दरअसल ईरानी सैन्य अधिकारियों को इस बात के पुख्ता इनपुट मिले हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल मिलकर आने वाले दिनों में ईरान के महत्वपूर्ण ऊर्जा और सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा हवाई या जमीनी हमला कर सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए ईरान के ग्राउंड फोर्सेस कमांडर और रक्षा अधिकारियों ने अपने सभी टॉप जनरलों को अलर्ट मोड पर रहने और अमेरिकी बेस और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों पर एक साथ निर्णायक हमला करने की रणनीति तैयार करने को कहा है। इसके अलावा आज ही ईरान ने एक नया वीडियो भी जारी किया है जिसमें आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर माजिद मुसावी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी रफ्तार से ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता को फिर से हासिल कर रहा है वो युद्ध से पहले के मुकाबले भी तेज है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के साथ साथ ईरान की हर फोर्स के कमांडर्स को मार चुके हैं, लेकिन ईरान की चेन ऑफ कमांड इतनी लंबी है कि वो तुरंत अगले कमांडर को चीफ बना देते हैं। और अब आईआरजीसी की नई लीडरशिप आपको दिखाते हैं जिनकी नियुक्ति ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने की है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। ये गुरिल्ला युद्ध और कुछ फोर्स के पुराने अनुभवों के साथ ईरान के सबसे घातक रणनीतिकार माने जाते हैं। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को चीफ ऑफ स्टाफ आर्म्ड फोर्स बनाया गया। ये ईरान की पारंपरिक सेना और आईआरजीसी के संयुक्त ऑपरेशंस के बीच पूर्ण सैन्य तालमेल बिठाने में माहिर है। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी अब आर्म्ड फोर्स यानी ईरान की सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। सेना की ग्राउंड फोर्सेस के प्रमुख के रूप में इन्होंने जमीनी सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा और आधुनिक युद्ध तकनीकों को मजबूत किया है। रियर एडमिरल अरी अजमाई अब कमांडर आईआरजीसी नौसेना है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों को रोकने के लिए असिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर और फास्ट अटैक बोट्स के संचालन में ये बेहद आक्रामक है। हुसैन तायब अब बसीज फोर्स के मुखिया हैं। वो आईआरजीसी की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख होने के नाते आंतरिक सुरक्षा और जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने का अचूक अनुभव रखते हैं। मेजर जनरल मुस्तफा इजादी डिप्टी कमांडर इन चीफ आईआरजीसी ईरान इराक युद्ध के इस अनुभवी जनरल के पास साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों को लीड करने का आधुनिक अनुभव है। अमेरिका और इजराइल के लिए इस नए सैन्य फेरबदल का सीधा और साफ संदेश है कि यह पहले से ज्यादा आक्रामक और अप्रत्याशित ईरान है जो हमलों का इंतजार नहीं करेगा, उससे पहले ही दुश्मन पर कार्रवाई कर सकता है। इस बदलाव से ईरान ने देश के भीतर भी कमजोर कड़ी को हटाकर जासूसी के नेटवर्क को खत्म करने का इरादा जाहिर कर दिया है। और अब आपको एक और सनसनीखेज खुलासा दिखाते हैं। ये खुलासा है ईरान से डरते डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो सुनिए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर आई, उसने दावा किया है कि ईरान के हमले के डर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंकारा एयरपोर्ट पर अपने एयरफोर्स वन को छोड़ दिया। अंकारा से वो एक तीसरे विमान में सवार हुए जिसका इस्तेमाल धोखा देने के लिए किया गया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस स्टाफ और अपने साथ चल रहे पत्रकारों को भी धोखे में रखा। यह घटना 8 जुलाई की है, जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में हुई नाटो की बैठक के बाद अमेरिका लौट रहे थे। आप ये तीन तस्वीरें देखिए जिनसे यह साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से तुर्की तक का सफर उस नए एयरफोर्स वन से किया था जो उन्हें कतर ने साल 2025 में गिफ्ट किया था, लेकिन अंकारा से लौटते समय उन्होंने उस विमान को छोड़ दिया, ये कहकर पुराने नीले रंग के एयरफोर्स वन में सवार हुए कि वो आखिरी बार पुराने विमान से उड़ान भरना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप उस विमान में सवार भी हुए और हाथ हिलाकर लोगों से विदाई भी दी, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से उस विमान से उतर गए और फिर उसके साथ इंतजार कर रहे अमेरिकी एयरफोर्स विमान C-32A में सवार हो गए। यहां से वो यूके के RAF बिल्डन हॉल मिलिट्री बेस पहुंचे। अब आप देखिए कि ये पूरा खेल कैसे हुआ। चूंकि तुर्की और ईरान पड़ोसी देश हैं और अंकारा के आसमान से उड़ान भरने वाला विमान सीधे ईरान के हमले की जद में आ सकता है, वहीं अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को यह खबर थी कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान को निशाना बना सकता है, लिहाजा उन्होंने एक गेम प्लान के तहत ट्रंप का विमान बदला। वो पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए, उस विमान के पिछले दरवाजे से व्हाइट हाउस का आधा स्टाफ और सारे पत्रकार सवार हुए, लेकिन अपनी नजर आप केटरिंग ट्रक पर जमा लीजिए जो उस विमान के दूसरी तरफ खड़ा था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उसकी छत की ऊंचाई एयरफोर्स वन के पुराने विमान के दूसरे दरवाजे के बराबर तक की गई। ट्रंप दूसरे दरवाजे से उस ट्रक में सवार हुए, वो ट्रक घूमकर साथ खड़े C-32A विमान के पास पहुंचता है, डोनाल्ड ट्रंप उस विमान में सवार हो जाते हैं। इस बीच पुराना एयरफोर्स वन विमान पत्रकारों और कुछ व्हाइट हाउस स्टाफ को लेकर उड़ान भरता है। पत्रकारों को हिदायत दी गई थी कि वो अपनी खिड़की के शटर को बंद रखें। पत्रकार यही समझते रहे कि ट्रंप उसी विमान में सवार है जिसमें वो सफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब यूके के RAF बिल्टन हॉल मिलिट्री बेस की तीन तस्वीरें देखिए। अंकारा से उड़ान भरने के बाद शाम 6:26 पर वो एयरफोर्स वन विमान उतरा जिसे कतर ने गिफ्ट किया था और जिसे ट्रंप ने अपने पुराने एयरफोर्स वन विमान में सफर की दलील देकर छोड़ दिया था। इसके बाद रात 10:20 पर एयरफोर्स का C-32A प्लेन उतरा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सवार थे। इसके 9 मिनट के बाद यानी रात 10:29 पर अमेरिकी राष्ट्रपति का पुराना एयरफोर्स वन विमान उतरा। यहां आकर ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए और उससे ऐसे उतरे जैसे वो उसी विमान से यूके पहुंचे हो। यहां से वो कतर से गिफ्ट किए गए एयरफोर्स वन से अमेरिका पहुंचे। रास्ते में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि उन्हें अपनी खिड़की के शटर गिराए रखने के लिए क्यों कहा गया था, तब ट्रंप ने कहा था कि उनकी जान को खतरा रहता है, अगर वो गए तो उनके साथ पत्रकारों की जान भी जाएगी। लेकिन सच यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एयरफोर्स के C-32A विमान से सफर किया, जबकि पत्रकारों और आधे व्हाइट हाउस स्टाफ को उसी पुराने एयरफोर्स विमान में छोड़ दिया जिस पर हमले का खतरा था। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर पाकिस्तान की। बलूचिस्तान ने आज पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त को बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को आधिकारिक मान्यता देने की मांग की। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने पाकिस्तान को कैंसर बताया और बलूच की धरती से कैंसर को उखाड़ फेंकने की बात कही। इसके साथ ही बलूचिस्तान वालों ने दुनिया के सामने उनका मुद्दा उठाने के लिए भारतीय मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। आइए दिखाएं आपको अब बलूचिस्तान कैसे चलेगा।
2: आज बलूचिस्तान का एक एक बाशिंदा आजादी का जश्न मना रहा है, पाकिस्तान से आजादी की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। आज पक्का शहबाज शरीफ और मुनीर की नींद उड़ी हुई होगी, क्योंकि उनके जुल्मों से तंग आया बलूचिस्तान आज आजादी का दिन मना रहा है। वहां पाकिस्तान के झंडे नहीं बल्कि बलूचिस्तान के अपने झंडे लहरा रहे हैं। कई जगह सेना और पुलिस तैनात है, लेकिन दुनिया भर में जहां भी बलोच मौजूद है वो अपना खुद का ध्वज लहराने में गर्व महसूस कर रहे हैं। 11 अगस्त 1948 से शुरू हुई ये जंग अब आजादी के जश्न के साथ पूरी हो रही है।

0: पिछले 80 साल से पाकिस्तान की धोखेबाजी और जुल्मों का शिकार हो रहे बलूचिस्तान के लोग अब अपनी अलग वही पहचान चाहते हैं जो अंग्रेजों की गुलामी से पहले उनकी थी। उनका तो ये भी दावा है कि जल्द ही वो अलग करेंसी, अलग पासपोर्ट और अलग दूतावास का भी ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इसका ऐलान तो पाकिस्तान की सियासत में पहले ही हो चुका था, लेकिन अब आजादी की तारीख भी लिख दी गई।
1: रोश इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे। अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की।
0: बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों ने पाकिस्तानी झंडे को पूरी तरह से नकार दिया। अब पाकिस्तान के मंत्री और बलूचिस्तान में सेना की कठपुतली सरकार के प्रतिनिधि बंदूक के दम पर क्वेटा के लोगों के बीच पाकिस्तानी झंडे बांटकर ड्रामा कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी का जश्न मनाने से लोगों को रोकने के लिए पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना ने पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया है। दूसरी ओर लोगों के बीच जबरदस्ती पाकिस्तानी झंडे बांटे जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान की सेना अब सड़कों और बाजारों में उतरने, लोगों के हाथों में पाकिस्तानी झंडे थमाने और उन्हें उन झंडों के साथ वीडियो में दिखाने के लिए मजबूर हो रही है। बलूचिस्तान के लिए 11 अगस्त एक ऐसी ही तारीख है। 1947 में आजादी मिलने का जो सपना बलूचिस्तान ने संजोया था, इतने दशकों के बाद आज भी संघर्ष की वो दास्तान जारी है। बलूचिस्तान के लोगों ने आजादी की अपनी तारीख को एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया और अपने लोगों को याद दिलाया कि 11 अगस्त उनकी आजादी का दिन है और 2026 में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से वो इस दिन को मना रहे हैं। बलूचिस्तान में रहने वाले भी और दुनिया भर में जहां भी कोई बलोच रहता है, वो भी पाकिस्तान की पहचान से अलग होकर आज का दिन किसी त्योहार की तरह मना रहा है। बलूचिस्तान को 1947 के बाद से ही पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। मिनरल्स के मामले में बेहद संपन्न होने के बाद बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान द्वयम दर्जे का बर्ताव करता आया है। साथ ही बलूचिस्तान की बिना मंजूरी के यहां चीन की बड़ी कंपनियों को निवेश का न्योता भी दिया गया, जिससे बलूचिस्तान के लोग खासे नाराज हैं। बलूचिस्तान ने आज यानी 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वैसे बलूचिस्तान का आजादी दिवस पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त से 3 दिन पहले आता है। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नामक समूह की तरफ से एक ऑनलाइन संदेश भी जारी किया गया, जिसमें बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच, पश्तून, हिंदू, सिख और सभी धर्मों के लोगों को बधाई दी गई। इसके साथ ही समूह ने दुनिया भर से गुहार लगाई है कि वो बलूचिस्तान की आजादी को मान्यता दे। बलूचिस्तान की इस मुहिम को कई जगह समर्थन भी मिल रहा है। ओडिशा में युवाओं ने एक बाइक रैली निकाली और बलूचिस्तान की आजादी के पक्ष में नारेबाजी भी की।
2: लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ।
0: आज तक ब्यूरो।
3: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में 60 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। ये अतिरिक्त सेस लगाया है सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में, तो 60 पैसे प्रति लीटर आज रात 12 बजे से आपको अधिक देने होंगे। हिमाचल प्रदेश में 102.50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हिमाचल प्रदेश में हो गया है और ये अतिरिक्त सेस लगाने का निर्णय किया है। अनाथ एवं विधवा सेस यहाँ लगाया जा रहा है एक अधिनियम के तहत, तो हिमाचल प्रदेश में अब पेट्रोल 60 पैसे प्रति लीटर आज रात 12 बजे से हो जाएगा। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: In association with
5: Cera Sanitaryware, it's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 10 अगस्त 2026 की सुबह जब लोग अपने काम की शुरुआत कर रहे थे, ठीक 7:34 पर धरती अचानक थर्रा उठी। रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता वाले इस प्रचंड भूकंप ने पूरे कोलंबिया में तबाही मचा दी। इस भूकंप की सबसे खौफनाक बात ये रही कि लगभग 2 मिनट तक धरती लगातार हिलती रही। ऐसा शायद ही कभी होता है। यही वजह है कि मजबूत से मजबूत इमारतें भी तिनके की तरह बिखर गई। इस महाविनाश की सबसे भारी कीमत कोलंबिया के पश्चिमी शहरों को चुकानी पड़ी है। परेरा शहर इस आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना है, जहां अकेले 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। वहीं कैली शहर भी मलबे का ढेर बन चुका है, जहां 20 से ज्यादा विशाल व्यावसायिक और आवासीय इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गई हैं। शहर का एक बड़ा अस्पताल भी भूकंप की चपेट में और घायलों की जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। भूकंप का एपिसेंटर सैन जोस डेल पाल्मर से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व सैन जोस डेल पाल्मर में था और ये जमीन के करीब 107 से 110 किलोमीटर की गहराई में था। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। दक्षिण अमेरिका में एक के बाद एक भूकंप इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि प्रशांत महासागर की ओर से नाजका प्लेट लगातार पूर्व की ओर खिसक रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस रही है। इन दो विशालकाय प्लेटों के आपस में टकराने और नीचे धंसने से जमीन की गहराइयों में भारी दबाव बनता है, जो रह रहकर इस तरह के भीषण तबाही और महाभूकंप के रूप में बाहर आता है। कोलंबिया में मौतों का आंकड़ा 160 के पार जा चुका है। 810 लोग घायल हैं और 3000 से ज्यादा लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
2: सो सॉरी।

कोलंबिया में मचा कोहराम। भूकंप के झटकों से कांपा साउथ अमेरिकी देश। ढही कई इमारतें, मलबे में दबे लोग, कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह तबाही का मंजर लेकर आई। सुबह करीब 7:30 बजे कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद हर तरफ कोहराम मच गया। ये तस्वीर कोलंबिया के पेरेरा की है, जहां भूकंप के तेज झटकों से इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। एक और तस्वीर देखिए, ये पेरेरा के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां भूकंप के झटके आने के बाद टेबल के नीचे बैठकर अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। भूकंप से मचे हाहाकार की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज झटकों से एक अस्पताल की इमारत का ऊपरी हिस्सा गिर गया और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पश्चिमी कोलंबिया के साथ साथ सेंट्रल कोलंबिया में भी कई इमारतें ढह गईं। पेरेरा, कैली, मनीजाले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पालमार के पास था। भूकंप की गहराई 107 किलोमीटर थी। कोलंबिया की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान तेज करने को कहा है। कोलंबिया में आए इस भूकंप के झटके इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा तक महसूस किए गए हैं। इससे पहले वेनेजुएला में इसी साल जून में शक्तिशाली भूकंप आया था, जहां हजारों लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

एम सोरेन की अपील नाकाम। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का साइलेंट मार्च। बाबूलाल मरांडी बोले सीबीआई जांच से डर रही है राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृह मंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप। अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है वीडियो संदेश। लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की, कहा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक। 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में आज रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम में होगी बढ़ोतरी। 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया है फैसला। अनाथ और विधवा सेस से बढ़ेंगी कीमतें।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हाल के वक्त में कई पति अपनी पत्नियों के हाथों मारे गए, लेकिन बारामती का ये वो इंजीनियर पति है जो पत्नी के हाथों मारे जाने और कब्र तक पहुंचने के बावजूद कब्र से जिंदा वापस आ गया। जी हाँ, महाराष्ट्र के बारामती की ये वो कहानी है जिसे सुनकर भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा। एक पत्नी ने अपने पति को मारने के बाद उसकी लाश को घर में दफनाने के लिए घर के अंदर ही कब्र खोद दी, लेकिन सांसें रुकने से ऐन पहले एक चमत्कार हो गया। ये शमशान है और ये कब्रिस्तान, जिंदगी की आखिरी मंजिल। इंसानों के बनाए दस्तूर के मुताबिक मरने के बाद इन्हीं दो जगहों पर इंसानी सफर खत्म हो जाता है। आमतौर पर शमशान या कब्रिस्तान इंसानी बस्तियों से कुछ दूर होते हैं, पर जरा सोचिए, अगर यही शमशान या कब्रिस्तान हमारे और आपके घरों में उतर आए तो क्या हो? जाहिर है, न दस्तूर इसकी इजाजत देता है और न ही धर्म या मजहब। मगर हमारे और आपके बीच ऐसे कुछ इंसान भी बसते हैं जो शमशान और कब्रिस्तान को उठाकर सीधे अपने घरों में ले आए। ये चंद तस्वीरें उसी की बानगी है। किसी के घर के बाथरूम से कोई कब्र बाहर निकली तो किसी के ड्राइंग रूम से, किसी कारखाने से कोई कब्र बाहर आई तो किसी बेडरूम से, यहाँ तक कि ड्राइंग रूम तक में हमारे और आपके जैसे इंसानों ने अपने ही जैसे इंसान का अंतिम संस्कार तक कर डाला, घर के अंदर ही जिंदा जलाकर।

पता नहीं ये खुशी के आंसू हैं या गम के, पर जो भी है ये एक पति के आंसू है। एक ऐसे खुशनसीब पति के आंसू जिसकी सांसें बस कुछ मिनटों की मेहमान थी, जो लगभग कब्र में समा चुका था पर ऐन मरने से पहले जिंदा बच गया। हाल के वक्त का शायद ये पहला ऐसा पति है जिसने मौत के साथ साथ अपनी पत्नी को भी चकमा दे दिया। ये बच गया इसलिए फिलहाल इसकी पत्नी को कातिल पत्नी नहीं कह सकते, अलबत्ता अधूरी कातिल जरूर कह सकते हैं, यानी हाफ मर्डरर। ये महाराष्ट्र के बारामती शहर की एक सोसाइटी है, इंद्रप्रस्थ सोसाइटी। इस सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर ये 9 नंबर का फ्लैट प्रवीण प्रकाश जगताप का है। इस फ्लैट में 41 साल का प्रवीण, 38 साल की अपनी पत्नी शर्मिला जगताप, अपने 2 बच्चों, माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहता है। यानी यहाँ एक पूरा परिवार बसता है, यानी इस बस्ती में यह इंसानों का घर है। अब चलिए आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। ये ड्राइंग रूम है, कमरे में सोफे पड़े हैं, कुर्सी है, टेबल भी है और इसी ड्राइंग रूम के बाहर ये एक बालकनी है। पर इस बालकनी की सबसे खास चीज ये है, पहली नजर में इसे देखकर यही लगता है जैसे बालकनी के किनारे 2-2.5 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर इस जगह का इस्तेमाल शायद पौधे उगाने के लिए या फिर घर के किसी और काम के लिए होना है। इस कच्ची दीवार के साथ जमीन पर ये मार्बल का एक बड़ा सा स्लैब पड़ा है। इस स्लैब को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस गड्ढे के ऊपर इसे रखा जाना है। बस यहीं आप गलत निकले, दरअसल घर के अंदर ये जगह कुछ और नहीं बल्कि एक अधूरी कब्र है। एक ऐसी कब्र जिसमें एक अधूरे मुर्दे को लिटाया जा चुका था, उसके ऊपर चादर तकिया सब रखे जा चुके थे। ये स्लैब भी लगभग रखा जा चुका था, वो तो ऐन वक्त पर हवा चली और अधूरी लाश के पैरों तले जरा सी चादर खिसक गई और इस तरह आंसुओं से रो रहा ये पति बस मरते मरते बच गया। अब चलिए सिलसिलेवार पूरी कहानी सुनते हैं। इस फ्लैट का मालिक प्रवीण प्रकाश जगताप पेशे से एक इंजीनियर है। पत्नी शर्मिला ने बी फार्मेसी की पढ़ाई

0: यानी शर्मिला दवाओं की जानकार है। बात 1 अगस्त की है, दोपहर का वक्त था। एक मुखबिर इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर श्री शैल चिवट शेट्टी को फोन करता है। फोन पर बताता है कि इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9 में एक शख्स जिंदा समाधि लेने की कोशिश कर रहा है। खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच जाती है।
1: दिनांक 1 तारीख को

0: 1 तारीख को, तारीख 1 तारीख को अन्ना भाऊ साठे जयंती थी। उस दिन हमारा जो बंदोबस्त चालू था तो उस साठे चौक में, तो मैं ड्यूटी में था, तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे के दरमियान मुझे एक गोपनीय जो साक्ष्यदार थे या गोपनीय कोई बातमीदार थे हमारे इन्फॉर्मर, उनका फोन आया कि पुलिस हमारे जुरिडिक्शन में जो कस्बा चौक है वहाँ एक घर में, घर के अंदर एक जिंदा समाधि लेने की कोशिश चालू है, ऐसे उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो इन्फॉर्मेशन के तहत हम 2-3 स्टाफ जो है, डिटेक्शन ऑफिसर और कोई स्टाफ है हमारे लेडीज पुलिस, उनको लेके हम उस वारदात, जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन थी वारदात की जगह हम गए।
1: जब पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी तब घर में मौजूद शर्मिला उन्हें देखकर अचानक घबरा गई। पुलिस ने शर्मिला से पूछा कि क्या यहाँ कोई जिंदा समाधि लेने की कोशिश कर रहा है। शर्मिला ने घबराते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है। शर्मिला पुलिस को दरवाजे से ही लौटाना चाहती थी।
0: घर के अंदर दूसरे फ्लोर पे घर के अंदर एक महिला थी, जिन्होंने हमको, हमने उनको बोला कि दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने अंदर जाने के बाद थोड़ा सा उनको जरा ये लगा था, थोड़ा सा दम लगा था। तो उनको पूछा कि वो क्यों आप इतना घबराए हो, क्यों क्यों क्या बात है? तो वो बोल रहे सर ये सब जो मेरे खिलाफ जो बता आपको जो बता रहे वो सब झूठ बता रहे हैं। क्या बता रहे थे कि वो जो भी कुछ बता रहे, बोला ऐसा कुछ समाधि जैसा कुछ चीज है क्या अपने पास, कोई चल रहा है क्या? बोले ये सब झूठ बता रहे।
1: पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखा, लेकिन जैसे ही पुलिस बालकनी में इस जगह आई हैरान रह गई। यहाँ 2-2.5 फीट ऊंची इस बॉक्स जैसी जगह के अंदर तकिए और चादर पड़े थे।
0: थोड़ा चेक किया मैंने घर में, तो एक पैसेज है घर के सामने, हॉल के बाजू में ही एक पैसेज है, गैलरी है, गैलरी के अंदर एक तकरीबन 2-2.5 फुट का हाइट का एक जो ईट का कंस्ट्रक्शन किया था, और कंस्ट्रक्शन करने के उसके ऊपर रखने के लिए एक जाड़ ऐसा 2 इंच का कड़प्पा, जो हेवी वेट रहता था, तो हेवी वेट का कड़प्पा है वहां रखा था। और उसके अंदर जो चौकोन के अंदर मैंने देखा तो वहां वो जो अपना तकिया और चादर वगैरह थी, तो मैंने पूछा उनको ये तकिया चादर किस लिए रखा है आपने? मैंने वैसा ही रखा है, वो वैसा रखने के लिए मुझे वैसा ही वेस्ट था इसलिए रखा था। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया क्या सही में कुछ तो इधर घटा घट गया है।
1: हालांकि शर्मिला पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर शेट्टी को जिस मुखबिर ने फोन किया था, असल में उस मुखबिर को एक मजदूर ने फोन कर ये जानकारी दी थी कि घर में एक शख्स शायद जिंदा समाधि ले रहा है। हुआ ये था कि उसी मजदूर ने स्लैब रखते वक्त चादर हिलने की वजह से प्रवीण के पैर देख लिए थे। उसे लगा शायद वो समाधि ले रहा है, फिर 112 नंबर पर फोन भी किया, तब पुलिस आई, लेकिन शर्मिला ने उन्हें दरवाजे से ही टरका दिया था।
0: तो इन्फॉर्मर का भी वही कहना था कि अंदर जो बॉक्स है, जो ईट का जो कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चादर और तकिया है उसमें एक आदमी सोया हुआ था, उसके ऊपर कुछ सामान, घर का सामान रखा था, और उसके ऊपर वो जो महिला थी घर की, वो हमको उस जो कड़प्पा था, बड़ा कड़प्पा जैसा कोई परशी रहती, तो वो बड़ा रखने के लिए हेवी वेट था, इसलिए वो बुलाया था, दो मजदूर लोग बुलाए थे। तो मजदूर लोग उधर ऊपर रखने रखने के लिए गए तो अंदर चादर थोड़ी सी हिल गई थी, तो उनको डाउट हो गया कि अरे चादर रखी हुई आदमी कोई तो अंदर है जो हिल रहा है, और ये महिला जो है उसके ऊपर हमको कड़प्पा रखने के लिए बोल रही है। तो उनको कुछ डाउट आ गया, तो डाउट आने के बाद वहां से वो कड़प्पा रख के भाग गए, और भागते हुए जाने के बाद उन्होंने 112 को कॉल किया, वहां हमारे पुलिस भी गए, तो उनको पुलिस को उन्होंने महिला ने कॉपरेट नहीं किया।
1: अभी पुलिस घर के अंदर इस अधूरी कब्र की पड़ताल कर ही रही थी कि तभी घर के कोने में उसे एक शख्स नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ था, शायद नीम बेहोशी की हालत में था, कपड़े फटे हुए थे, सिर से खून रिस रहा था। पुलिस ने जब शर्मिला से पूछा कि ये कौन है, तब पता चला ये शर्मिला का पति प्रवीण प्रकाश जगताप है। जब प्रवीण के जख्मी होने के बारे में पुलिस ने पूछा तो शर्मिला ने कहा कि मैंने ही इसे बैट से मारा है।
0: अंदर वो महिला को पूछा कि अंदर जो 2 बेडरूम है, तो 2 बेडरूम में कौन कौन है, खोल खोल के मुझे बताइए, दिखाइए मुझे। तो वो थोड़ी डर गई, तो बोले वो मेरे अंदर सास है जो बहुत बीमार है, आपको अगर यूनिफॉर्म में देखेंगे तो वो डर जाएंगे, और उसको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे पति मेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दिखाइए एक्चुअली क्या अंदर क्या है मैटर है। तो बाद में मैंने उसको दिखाया तो नहीं, लेकिन उसके रिश्तेदार जो है, जो उसका देवर है, उस उसी वक्त वो उस जगह पे आ गए।

0: तो उन्होंने बताया क्या बात है ऑफिसर, आप क्यों आए हो? तो मैंने बताया हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन है, हम इसको छानबीन करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला आप कॉपरेट, तो जो उनकी बहन भाई की जो बीवी थी उनको बोले तो पुलिस के क्यों नहीं दिखा रहे हो रूम, चलो दिखाओ करके बोला उन्होंने। तो मैंने अंदर जाके फिर उन्होंने रूम खोलना चालू किया, तो उसकी एक जगह माँ थी, तो माँ तो थी, दूसरे बेडरूम में देखा तो उसका भाई जो था, मुझे ये आदमी का जो लेडी थी उसका जो हस्बैंड था, उसका जो टी शर्ट फटा हुआ था और वो जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ था, तो वो बोलने की हालत में नहीं था। तो उसके बाजू में, सर के बाजू में एक बैट पड़ा हुआ था, क्रिकेट की बैट, वो बैट पड़ी हुई थी। तो वो मैंने वो लेडी से पूछा, तो लेडी बोली सर मैं गुस्से में उसके सर पे मैंने 3-4 बार बैट से मार दिया है, ऐसा उसने बताया। तो वो जख्मी हालत में था, उसे तुरंत उसका मैंने मेरे स्टाफ के जरिए तुरंत मेरे गाड़ी में डाल के उनको सिल्वर जुबली हॉस्पिटल में भेज दिया उपचार के लिए, उसको एडमिट करवाया। और जो लेडी थी उनको, मेरे लेडीज पुलिस थी मेरे साथ में, उनके इंक्वायरी के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लेके आए।
1: अब पुलिस घायल और नीम बेहोश प्रवीण को फौरन पास के ही सिल्वर जुबली अस्पताल ले जाती है, जहां धीरे धीरे उसकी हालत सुधरती है। पर मामला कुछ ऐसा अनोखा था कि पुलिस अब भी शर्मिला को गिरफ्तार नहीं करती, वो घर पर ही थी। इस दौरान पुलिस मामले की जांच करती रहती है, फिर प्रवीण के ठीक होने पर उसका बयान लेती है और इसके बाद 4 अगस्त को आखिरकार शर्मिला को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद प्रवीण और शर्मिला जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी कुछ यूं है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में शर्मिला अपने घर की इस बालकनी के कोने में 2 से 2.5 फीट ऊंची एक दीवार खड़ी करती है, गहराई और लंबाई इतनी कि एक आदमी इसमें आसानी से समा जाए। फिर 31 जुलाई की रात शर्मिला अपने पति के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है, साथ ही वही दवा सास को भी दे देती है। चूंकि शर्मिला ने बी फार्मा किया हुआ था इसलिए उसे दवाओं की पूरी जानकारी थी। 1 अगस्त की सुबह जब बच्चे और उसका देवर घर पर नहीं थे और जब प्रवीण बेहोशी के आलम में था, तब उसने उसे घर में रखे बैट से सर पर कई बार मारा। शर्मिला को लगा कि प्रवीण मर चुका है, इसके बाद वो उसे घसीट कर इसी अधूरी कब्र में ले आए, प्रवीण को तकिए और चादर से ढक दिया। इरादा ये था कि इसके बाद उसके ऊपर मार्बल का ये स्लैब रखकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देगी और इस तरह घर के अंदर ही प्रवीण की कब्र तैयार हो गई। पर मसला तब आया जब शर्मिला से ये भारी स्लैब अकेले नहीं उठ पाया, तब उसने मजदूरों को बुलाने का फैसला किया। प्रवीण को मुर्दा समझकर उसके ऊपर और ज्यादा चादर और तकिए रख दिए। दोपहर 2 मजदूर घर आए, स्लैब को उठाकर अभी वो ऊपर रख ही रहे थे कि तभी हवा की वजह से चादर का एक सिरा सरक जाता है और मजदूर को एक इंसानी पैर दिखाई देता है। ये देखते ही घबराकर दोनों मजदूर बदहवास घर से भाग निकलते हैं। फिर उन्हीं में से 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करता है। ठीक होने के बाद प्रवीण ने आज तक को उस रात और उस अधूरी कब्र की कहानी सुनाई।
2: दुवारी रात्रि मला त्यांनी ऑर्थो ज्यूस मध्ये स्लीपिंग पिल्स दिल्यामुळे मी गुरुवारी पूर्ण दिवस पूर्ण रात्र, शुक्रवारी पूर्ण दिवस पूर्ण रात्र आणि शनिवारी मला थोडीशी जाग आली, कारण का ते मला बॅटने मारत होते, अजून माझी मिसेस होती बॅटने मारत होते, त्यामुळे मला थोडंसं कळत होतं की मला कोणीतरी भरपूर मारतंय। मी म्हणत होतो की मला मारू नका मारू नका, तरी पण ते मारत होते। ह्याच्यामध्ये माझी मिसेस होती आणि अजून कोण आहे हे मला माहिती नाही आहे। आणि त्यानंतर त्यांनी मला उचलून त्या जो गॅलरीमध्ये डक्ट बांधला होता त्या डक्टमध्ये त्यांनी मला टाकलेलं होतं, पण जो गवंडे आलता त्याच्या त्यांनी जे बघितलं कडपा टाकताना की माझा हात किंवा पाय हललेला असेल, त्याच्यामुळं त्याला डाऊट आला आणि तो खाली पळत सुटला बिल्डिंगच्या, आणि त्याने 112 फोन केला आणि त्यामुळं तत्काळ पोलिसांची मदत मिळाली, त्याच्यामुळं माझा जीव वाचलेला आहे।
1: प्रवीण ने आगे बताया की उसकी माँ को भी बेहोशी की दवा दी गई थी, लेकिन शायद मेरे चीखने पर मेरी माँ को कुछ होश आया।
2: त्यावेळेस शनिवारी जो हा प्रकार घडला मला मारण्याचा आणि पुरून टाकण्याचा, त्यावेळेस मी माझी आई आणि माझी पत्नी घरामध्ये होतो आणि माझ्या आईचा पाय फ्रॅक्चर आहे आणि माझ्या आईला पण तिने झोपेच्या गोळ्या दिल्या, त्यामुळे माझी आई पूर्ण बेशुद्धावस्थेत होती, त्यामुळे माझ्या आईला याची काहीच कल्पना नव्हती। पण ज्या दिवशी मला मारत होती त्यावेळेस मी ओरडत होतो त्यामुळं तिला थोडीशी जाग आली आणि ज्यावेळेस तिला हे कळालं की काहीतरी प्रॉब्लेम चाललाय, तर त्यावेळेस आमच्या आईनी आमच्या सोसायटीमधील एका व्यक्तीमार्फत संपर्क साधून आमच्या भावाला पाचारण केलं आणि भावाला पाचारण करून ते त्यावेळेस भावाला ज्यावेळेस पाचारण केलं त्यावेळेस पोलीस पण तिथं उपस्थित होते, पण आमच्या भावानी दरवाजा उघडला त्यावेळेस मला बेशिरवाईस बघितलं, त्यांनी मला उचललं तत्काळ हॉस्पिटल नेलं।
1: प्रवीण ने एक और अजीब बात बताई। उसने कहा कि उसके घर पर एक कैलेंडर टंगा है जिस पर 13 और 14 जुलाई की तारीख के खाने में नो रिजल्ट लिखा है। उसका कहना है कि इन्हीं तारीखों में अमावस्या भी थी। उसे लगता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है। उसका ये भी कहना है कि घर के अंदर एक बिल्कुल नई कुल्हाड़ी भी रखी थी।
2: पण आमच्या घरचे सगळे लोक प्रचंड घाबरलेले होते। तत्काळ तपास व्हावा याचे सर्व अँगल, म्हणजे कॅलेंडरवरती 13 आणि 14 जुलै म्हणजे ज्या दिवशी अमावस्या होती त्या दिवशी त्यांनी नो रिझल्ट असं लिहिलेलं आहे, तर त्याचा अर्थ काय? एक दुसरा असा आहे की घरामध्ये जी कोराड आणली ती कोराड कुठून आणली, ऑनलाईन मागवली, ऑफलाईन घेतली, कुठून घेतली, कशासाठी घेतली, त्याची चौकशी व्हावी।
1: हालांकि बारामती पुलिस के मुताबिक कैलेंडर की इन तारीखों या इसके पीछे की कुछ और वजहों का इससे कोई लेना देना नहीं। पुलिस का ये भी कहना है कि प्रवीण को मारने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया।
3: घर में कैलेंडर था जिस पर नो रिजल्ट ऐसे लिखा था, क्या वजह है? आप उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं?
0: वैसा कुछ उधर लिखा नहीं था, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। ये आप जो है इन्फॉर्मेशन आपको ये गलत है, ऐसा कुछ उधर घटा नहीं था। जो मेरे सामने की बात है वो मैं बोल रहा हूँ, वैसा कुछ तारीख पे ऐसा कुछ लिखा
3: नहीं। एक कुल्हाड़ी भी थी शायद, एक फोटो वायरल हो रहे उसके।
0: नहीं, वो कुल्हाड़ी रहेंगी घर के अंदर, कुछ सामान रहते उसके, कुछ उसमें ये नहीं है। वो लेडी ने खुद बताया कि मैंने बैट से मारा था, उस कुल्हाड़ी का उस घटना से कुछ संबंध नहीं है।
1: प्रवीण का यह भी कहना है कि उसे बेहोश करने के लिए नींद की गोलियां दी गई थी। प्रवीण अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी परेशान है। उसने कहा कि उसके दोनों बच्चे इस वक्त शर्मिला के घर पर हैं।
2: ते औषध जे गुंगीचं औषध आहे किंवा झोपेच्या गोळ्या आहेत ते तिने कुठून आणलं? ते तिने ज्या मेडिकलवाल्याने तिला दिलं ते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दिलं, तर ते का दिलं? त्या मेडिकलवाल्यावरती कारवाई व्हावी, त्या मेडिकलवाल्याचं तत्काळ त्याला अटक व्हावी, त्याचं लायसन कॅन्सल व्हावं, ही एक माझी विनंती आहे। आणि प्लस असं आहे, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझी मुलं गायब आहेत, माझी मुलं सासऱ्याच्या लोकांनी घेऊन गेले आहेत, माझा मुलगा आहे।

0: माझी दोन्ही मुलं गायब आहेत, माझा मुलगा आणि माझी मुलगी ते कुठं आहेत, आणि त्यांना तिच्यापासून धोका आहे आणि माझ्या साचरकडपासून लोकांपासून धोका आहे, तर त्यांनी माझी मुलं माझ्या स्वाधीन करावी ही माझी विनंती आहे.
1: वसंत मोरे, बारामती, आज.
2: अब सवाल यह है कि शर्मिला ने आखिर घर के अंदर ही कब्र क्यों खोदी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो अपने पति को घर के अंदर ही कब्र में क्यों दफनाना चाहती थी. तो बकौल बारामती पुलिस, शर्मिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और साथ ही ये भी बता दिया है कि आखिर वो अपने पति को मारना क्यों चाहती थी. फिलहाल शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस का कहना है कि शर्मिला ने अपने पति को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि वो उसे नौकरी करने नहीं दे रहा था, साथ ही उसके साथ मारपीट भी क्या करता था.
3: बोल रही थी कि मुझे बहुत मारपीट करते हैं और मेरे को डांटते काम घर को घर में नौकरानी जैसे मेरी हालत करके रखी है, और मैं खुद भी फार्मेसी पढ़ी हूँ तो, और मुझे इतना होने के बावजूद ना नौकरी करने देते है, नौकरानी जैसे मेरे बर्ताव करते है, मेरे बच्चों को मारते है, मुझे टॉर्चर करते है.
2: पुलिस का ये भी कहना है कि शर्मिला डिप्रेशन में थी, उसे ये भी पता नहीं था कि पति को मारने के बाद क्या करें.
3: ये जो लड़ी है जो डिप्रेशन में, उसने ये उसके वजह से डिप्रेशन में गई थी वो लड़ी, उसने डिप्रेशन में उसने उसने वैसा किया है, तो उसको लगा कि उसको मारने के बाद करेंगे क्या, मर जाए, उसको लगा कि वो बेहोश बेहोश की हालत में अगर उसको अंदर डाल के रख भी दिए तो मर जाएंगे, उसका शायद यही था, इसी वजह से तो केस हो गई है. तो हमने उनको रिश्तेदारों को उसी दिन बताया कि आप अगर गुना दाखिल करते हो तो तुरंत हम रजिस्टर करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला घर का मामला है, हमको सर गुना दाखिल करने का नहीं है. और 3-4 दिन के बाद उनको फिर एहसास हो गया कि वो जो भी घटा है वो गलत है, तो 4 तारीख को वो खुद आए और उन्होंने केस रजिस्टर की और हमने गुना दाखिल करके जो आगे का जो इन्वेस्टिगेशन हम चालू है.
2: खैर, शर्मिला इस बारामती पुलिस की कस्टडी में है. फिलहाल पुलिस ने FIR में उस पर जो धाराएं लगाई हैं, वो हत्या की कोशिश की है, यानी अधूरे कत्ल, या यूं कहें कि हाफ मर्डर की. पर इस कहानी का सबसे अजीब पहलू यह है कि बारामती में जैसे ही लोगों को घर के अंदर बनी इस अधूरी कब्र के बारे में पता चला, लोग इस सोसाइटी को देखने चले आए. इसी वजह से फिलहाल घर के लोग इस फ्लैट को बंद कर कहीं और चले गए. अब यहाँ सिर्फ ताला लगा है. अब चलते चलते एक बार फिर आपको प्रवीण के इन आंसुओं के साथ छोड़े जाता हूँ, जो पता नहीं पत्नी के हाथों मिले जख्म के हैं या फिर उसी पत्नी के हाथों मरते मरते बच जाने के. प्रवीण खुशनसीब पति था जो बच गया. वसंत मोरे, बारामती, आज तक.
4: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: ये ब्रिज जाएगा, मैं ब्रिज जाएगा।
1: पहाड़ों पर मानसून ने कैसा हाहाकार मचाया है उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। शोर करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी मार से लोहे का बड़ा पुल बहता चला जाता है। दिल दहला देने वाला ये मंजर उत्तराखंड के जोशीमठ का है, जहां एक दिन पहले तमक नाले के पास आए फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। तस्वीरें देखिए, तबाही किस तरह आई, देखिए किस तरह पानी तेज रफ्तार से आ रहा है। सामने एक छोटा ट्रक और जेसीबी है। पानी को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगा। पानी की मार को लोहे का पुल भी नहीं सह पाया और सैलाब में बह गया। उत्तराखंड के कई जिलों में मॉनसून तेवर दिखा रहा है। नैनीताल से चमोली तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 13 अगस्त तक राहत के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देखिए, ये हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से ये ट्रस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन सब ट्रस्ट को अपने अधीन करना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट इनके अधीन रहे और सरकार जिस पे जाए जब चाहे शिकंजा कर सके।
2: FCRA में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं उनको ये देश को बताना चाहिए कि विदेशी धन भारत में आएगा तो उसका स्रोत क्या है, पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसकी जानकारी और निगरानी रखना क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है? खड़गे साहब को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि FCRA किसी संस्था का के खिलाफ कानून थोड़े है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

झारखंड में सीएम सोरेन की अपील नाकाम। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का साइलेंट मार्च। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई जांच से डर रही है राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप। अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में आज रात 12 बजे से पेट्रोल के दामों में होगी बढ़ोतरी, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया है फैसला। ना तो विधवा सेस से बढ़ेंगी कीमतें।

0: बीजेपी ने विशाल तिरंगा रैली निकाली मुंबई में। फडणवीस ने विदेशी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा, भारत को महाशक्ति बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। गढ़चिरौली में 3 आदिवासी छात्राओं की मौत पर फडणवीस सख्त, आश्रम स्कूल का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया गया। 511 स्कूलों का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। गढ़चिरौली में 3 आदिवासी छात्राओं की सर्पदंश की मौत के बाद कांग्रेस का सरकार पर हमला, हर्षवर्धन सपकाल ने प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भिवंडी में टीटी पेपर लीक मामले में सोलापुर में 16वीं गिरफ्तारी, प्रकाश पवार को 15 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली FIR पुणे में दर्ज की गई, नाबालिग को धर्म बदलने के लिए उकसाने के आरोप। पुणे के चाकण इंडस्ट्रीज से 20 कंपनियों के पलायन का खतरा, 1,000 करोड़ के कारोबार और 4,000 नौकरियों पर संकट। चाकण इंडस्ट्रीज पर उदय सामंत का बयान, कंपनियों के पलायन की खबरें गलत हैं, सरकार बना रही इंफ्रा। देश में जैन साईं बाबा को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का मामला, 9 छात्रों पर केस, 7 को जमानत, 2 की अग्रिम जमानत खारिज। छात्र अबरूप पॉल गिरफ्तार किए गए, उमर खालिद और शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी, रिहाई के नारे लगाए गए थे, पुलिस कस्टडी पर कोर्ट में बहस हुई। रायगढ़ में छात्राओं की रिपोर्टिंग वाली रील वायरल हुई है, गड्ढों पर बनाई गई वीडियो के बाद प्रशासन ने करजत कुंडीवडे सड़क की कराई है मरम्मत। महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं पर FDA की बड़ी कार्रवाई, 434 संस्थानों का निरीक्षण, 10 के लाइसेंस रद्द और 135 को नोटिस। जलगांव में डिपो से ST बस चोरी, टायर पंचर होने पर शाहपुर के पास छोड़कर भागे थे चोर, CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद। पालघर में 19 साल की युवती से गैंगरेप, 6 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज, 3 हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के जालना में सड़क से गुजरते समय 10 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। सूरत में मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, शख्स की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर बेरहमी से पिटाई के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने पर विचार करें, 17 राज्य यूटी पहले ही कर चुके हैं अधिसूचित। होटल और ढाबों पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती, एक्सपायर्ड खाना मिलने पर होगी कार्रवाई, FSSAI के नियमों का पालन अनिवार्य। पान मसाला पैकेजिंग पर FSSAI सख्त है, प्लास्टिक या प्लास्टिक लेमिनेटेड पैकेजिंग अब अनुमत सामग्री में शामिल नहीं है। टीबी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, JP नड्डा की अध्यक्षता में कर्नाटक केरल के सांसदों के साथ मंथन। सिडको की नई EWS आवास योजना, 4,779 घर उपलब्ध, 15 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। पुणे मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे सरकार और प्रशासन सख्ते में आ गए। दरअसल रायगढ़ के करजत में मेन रोड की हालत काफी समय से बड़ी खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में पानी भरने से खासतौर पर स्कूल के बच्चों को बड़ी परेशानियां हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय 3 बच्चियों ने एक रील बनाई, सोशल मीडिया पर उसको अपलोड किया, उसके बाद आनन फानन में सड़क की मरम्मत शुरू हो गई। अब ये लड़कियां पूरे इलाके में स्टार बन गई हैं।
1: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
2: कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल, तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्ग सारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही, तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत,
3: तुम्ही बघू शकता
4: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
2: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
1: तस्वीरें रायगढ़ के करजत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रखी।
3: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कुंदीवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी? तो ये जो रास्ता है, कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, जैसा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है। कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है। उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई, उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी?
5: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए। हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
3: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है महाराष्ट्र भर में?
5: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी, और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में। तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
3: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं। हाँ। तो रास्ते और खराब थे,
2: रास्ते पे वो खड्डे है, तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, सरकार ने हमारी सुनी।
1: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
6: लड़की का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया, और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है, और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है, कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है या आपने दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, मेरी मांग है।
1: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा हैं जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
7: कर्ज बंदिवडेरे रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या वर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
1: इन बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था, मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी, वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचा दी। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, कर्जत, आज तक।
0: गांव और छोटे कस्बों की सड़क खराब होना तो अलग बात है, लेकिन मुंबई गोवा हाईवे पर भी गड्ढों की भरमार है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही नई बनी हुई सीमेंट, कंक्रीट और डामर की सड़कें टूट चुकी हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। कनला एनिमल सेंचुरी के बाहर बना मंकी ब्रिज गिरने की वजह से बंदर नेशनल हाईवे पर ऐसे उसे पार करते हुए नजर आते हैं, जिससे हादसे का खतरा कई गुना बढ़ गया है।
3: इस वक्त मुंबई गोवा महामार्ग पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, कर्नाला बर्ड सेंचुरी। आप पीछे हमारे हाईवे देख सकते हैं। अब क्योंकि इस हाईवे के बीच में से, ये आप कह सकते हैं बर्ड सेंचुरी के बीच में से हाईवे है, इसीलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पर साउंड बैरियर लगाए हैं और साथ ही साथ एक मंकी ब्रिज जो है 2021 में बनाया गया था। हम देख रहे हैं कि आज वो मंकी ब्रिज जो है वो टूट चुका है। ये आप देखेंगे कि ये दो जो कह सकते हैं 2 फीट लंबा और 40 फीट ऊपर ये एक ब्रिज बनाया गया था। ये रस्सी का इस्तेमाल कर ब्रिज दिया गया था ताकि जो बंदर, 3 प्रकार के बंदर इस बर्ड सेंचुरी में पाए जाते हैं, वो बंदर एक जगह से दूसरी जगह क्रॉसिंग कर सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो ब्रिज जो है वो टूट चुका है। ये ब्रिज का एक हिस्सा है, ब्रिज का दूसरा हिस्सा आप देखेंगे कि रोड के उस तरफ है। अब इससे दिक्कत ये पेश आ रही है कि जो बंदर हैं, इतने सालों से वो लोग इस ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अब वो हाईवे से रोड क्रॉस हो रहा है और इसमें जो गाड़ियां तेजी से आ रही हैं, टर्न पर गाड़ियां हैं और इससे एक्सीडेंट्स क्या होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और ये
0: महाराष्ट्र एफडीए अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से सुर्खियों में रहता है। एफडीए ने कॉकरोच और गंदगी मिलने पर ब्लिंकिट के मलाड स्टोर का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वाशिम में एफडीए ने गोदाम पर छापा मारा, 18 लाख की कीमत का प्रतिबंधित गुटखा जब्त कर लिया। वहीं कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ एक्शन लेने में हाईकोर्ट ने एफडीए को बुरी तरह से फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं बल्कि समझदारी के लिए करना चाहिए।
8: महाराष्ट्र में पिछले महीने से एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कभी मिलावटी दूध के खिलाफ अभियान तो कभी स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगी तो मुंबई के 5 बड़े क्लब के फूड लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुके हैं। इसीलिए एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की कार्यशैली की कई बार तारीफें भी हो रही है, लेकिन कई बार उनके काम करने के स्टाइल पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बार एफडीए की टीम ने मलाड में कॉकरोच और गंदगी मिलने पर ब्लिंकिट के मलाड स्टोर का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया। एफडीए ने जांच में पाया कि स्टोर के अंदर साफ सफाई और खाद्य भंडारण संबंधी कई खामियां पाई गई। अधिकारियों के मुताबिक फल और सब्जियों के स्टॉक में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए। जांच के दौरान एफडीए ने कहा कि खाने पीने के सामान सीधे फर्श पर रखे थे। वहीं स्टोर में जंग लगे रैक भी मिले।
9: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 7 अगस्त को मलाड में स्थित ब्लिंकिट के इस गोडाउन पर रेड की गई, जहां पर जो नियम कानून थे उनका पालन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इनके लाइसेंस को, मलाड में जो स्टोर है इसके लाइसेंस को एफडीए द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। जब एफडीए अधिकारियों ने यहां पर रेड की तब उन्होंने पाया कि जो खाने पीने के सामान थे वो नीचे जमीन पर कुछ जगह पड़े हुए थे, तो कहीं चूहे और कॉकरोच घूम रहे थे, तो वहीं कुछ जगह पर एफडीए को एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट भी मिले जिनको टेम्पर किया गया था, जो कहीं से फटे हुए थे, जिसके बाद से एफडीए ने कड़े कदम उठाते हुए इस इनके लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। 7 अगस्त से ही ये स्टोर जो है वो बंद है। इसी स्टोर से जो है ब्लिंकिट पे अगर कोई ऑर्डर करता था तो वो सामान सप्लाई होता था, जिसके बाद से इन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो बंद रखा है। फिलहाल एफडीए की कार्रवाई पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में ये कार्रवाई जो है एफडीए द्वारा वो की गई है।
8: वाशिम इलाके में भी एफडीए की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर 18 लाख की कीमत का प्रतिबंधित गुटखा जब्त कर लिया। दरअसल पूरे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है। एफडीए की टीम ने मालेगांव शहर की इस गोदाम में छापा मारा तो शटर पर ताला लटका मिला, जिसके बाद गोदाम का शटर काटकर टीम अंदर घुसी। यहां गुटखे से भरी 2 गाड़ियां खड़ी मिली। एफडीए ने केस दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर एफडीए ने बड़ी दवा कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। एफडीए ने कंपनी के वेयरहाउस में छापा मारकर कुछ दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कंपनी ने एफडीए के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरूरत से ज्यादा सख्ती और नियमों की मनमानी मामले में एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे और उनकी टीम को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून में पहले गोली मारो बाद में सवाल पूछो वाला तरीका नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राहत देते हुए एफडीए से कहा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से किया जाना चाहिए।
10: महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की शुरू कार्रवाई के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। फिलहाल हर किसी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो होटल हो चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, सभी जगह पर एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह की एक कार्रवाई उन्होंने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर की थी, जिसको लेकर ये मामला जो है वो कोर्ट तक चला गया और कोर्ट ने पहली बार एफडीए को खरी कोटी सुनाई है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के एडवोकेट अलंकार किरपेकर हमारे साथ है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है और एफडीए को अगर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाई है, तो किन मुद्दों पर उन्होंने ये कहा है।
11: उन्होंने आज जो कही ऑनरेबल जस्टिस घुगे ने, वो ये कही कि तुम्हारे इस एक्शन से जो दवाई है, जो एसिलॉक दोनों दवाइयां जैसे रेनिटिडिन और फेमोटिडिन, ये दोनों दवाइयों से जो पब्लिक है वो वंचित रह रही है, तो उसके लिए आप उसकी नुकसान भरपाई कैसे कर पाओगे। इस टाइप के एक्शंस को उन्होंने गलत ठहराया है और ये उन्होंने कहा है कि आपने अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है।
10: तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि इस मामले में खुद जज कह रहे हैं और काफी तीखी टिप्पणी कर रही है कि वो मच्छर के मारने के लिए आपने तलवार निकाली है, यानी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सराहना भी पूरे देश भर में होते नजर आ रही है, कई सारे सेलिब्रिटीज भी इस बात को एंडोर्स करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या एसओपीज फॉलो हो रही है, क्या कायदा कानून इसके अधीन रहकर ये सब कार्रवाई की जा रही है, और इस मामले में यही चीज मुझे लगता है उजागर बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं यदुवंशी हूं, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है,
1: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द-गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: अक्टूबर 2025 को टिस यानी के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कुछ छात्रों ने मुंबई के जीएन साईं बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शन किया था और टिस प्रशासन ने प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए टिस ने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया। ट्रॉम्बे पुलिस ने गैर कानूनी प्रदर्शन के लिए 9 छात्रों पर मामला दर्ज किया और पाया ये कि प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने शर्जील इमाम को रिहा करो, उमर खालिद को रिहा करो ये नारे लगाए थे।
2: TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जीएन साई बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शन मामले में आरोपी छात्र अभिरूप पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैंपस में आपत्तिजनक नारेबाजी के आरोपी छात्र ने मुंबई सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद देखिए कैसे इस कार में आरोपी छात्र को ले जाया जा रहा है। 7 अगस्त को मुंबई सेशन कोर्ट ने गैर कानूनी प्रदर्शन और नारे लगाने के आरोपी 7 छात्रों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन 2 छात्रों कामाख्या प्रसाद दास और अभिरूप पॉल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
3: टीआईएसएस स्टूडेंट अभिरूप पॉल को आज कोर्ट में पेश किया गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। आइए जानते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शशि हिरे से कि आज कोर्ट में क्या हुआ। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? अभिरूप पॉल जो कि टीआईएसएस का स्टूडेंट है, उसे अरेस्ट किया गया था सैटरडे को, आज कोर्ट में क्या हुआ?
4: अभिरूप का हमने आगे की पुलिस कस्टडी मांग की थी। इसके पहले हमें 2 बार पुलिस कस्टडी मिल चुकी थी, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन और भी आगे ले जाना है, इसके लिए पुलिस के तरफ से आज हमने पुलिस कस्टडी की डिमांड रखी थी। दोनों पक्षों का आज ऑनरेबल कोर्ट ने काफी डिटेल में आर्ग्यूमेंट सुना और ये सुनने के बाद कोर्ट ने आज ये जो एक्यूज है उनको मैजिस्ट्रेट कस्टडी दी हुई है।
3: सर, एक और आरोपी है जिसकी बेल रिफ्यूज हुई थी सेशंस कोर्ट से, कामाख्या प्रसाद, वो कहां पर है? क्या उसे वांटेड दिखाया है पुलिस?
4: ये पुलिस का चॉइस है उसके बारे में तलाश करने के बारे में, और पुलिस जरूर ही उसका तलाश कर रही है।
3: सर, क्या कोई प्रोफेसर्स को भी, टीआईएसएस के प्रोफेसर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अक्टूबर 12, 2025 के इवेंट में, उन्हें भी नोटिस इशू किए गए?
4: देखो, काफी चीजें जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन की होती है और इन चीजों के लिए आज जिक्र करना सही नहीं होगा।
3: सर, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या रखे गए कोर्ट के सामने, जब आप लोग कस्टडी डिमांड कर रहे थे, रिमांड डिमांड कर रहे थे अभिरूप पॉल के लिए?
4: हमने कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाए, जो व्हाट्सएप चैट में इस चीजों का जिक्र है कि इंडिया के पावर सेंटर के ऊपर अटैक होना चाहिए, जिसमें।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Kongres. For this wonderful welcome, thank you for this love and affection.
1: छात्रों के मुद्दे पर प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस ने यूपी में संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के प्लान पर काम शुरू कर दिया।
2: आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है।
1: प्रयागराज की रैली में मिले समर्थन से कांग्रेस बेहद उत्साहित है। इसी कड़ी में अब उसने यूपी में संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। खबर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जल्द ही नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके तहत कई जिलों और शहरों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। संगठन में फेरबदल के लिए नवनियुक्त सह प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक महीने में रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सौंपी जाएगी। एक दिन पहले दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई बैठक में इस रणनीति का पूरा खाका तैयार किया गया। दरअसल प्रयागराज में राहुल के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस को 2027 के लिए नई उम्मीद जरूर मिली है। वैसे तो यूपी विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी। नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही थी और पार्टी को हासिल सिर्फ इतना रहा कि विधानसभा में खाता खुल गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के जरिए कांग्रेस ने यूपी में जो वापसी की, उसे 2027 में दोहराने की कोशिश जरूर करेगी।
3: इम्पैक्ट तो भयंकर है। आप छात्रों से पूछो ना, कितना गजब का उत्साह है, इतना जबरदस्त उत्साह छात्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे इम्पैक्ट का पता लगता है। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है और केंद्र की सरकार घबरा गई है। मोदी जी, अमित शाह जी इतनी हिम्मत नहीं कर रहे कि राहुल गांधी की आंख में आंख मिला के संसद में जवाब दे सके। इससे पता लगता है कितना इम्पैक्ट है।
1: कांग्रेस पार्टी अभी से राहुल गांधी की लोकप्रियता का माहौल बना रही है। कांग्रेस की ये रणनीति समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग में भी उसके लिए कारगर हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि सीट नहीं, जीत को प्राथमिकता दी जाएगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा।

जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का साइलेंट मार्च। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया, कहा सरकार के दबाव में छात्रों को खदेड़ा गया। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीएम सोरेन ने छात्रों को न्याय का भरोसा दिया। बाबूलाल मरांडी बोले सीबीआई जांच से डर रही है राज्य सरकार। हमीरपुर में सड़क पर उतरा जैन अल्फा। कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया बदहाल। सड़क से परेशान बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर अधिकारियों से लगाई गुहार। राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी का, गृहमंत्री का जवाब सुनने को दिखाएं साहस। बीजेपी के नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने के आरोप। अमित शाह के जवाब पर अड़ी हुई है कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर घर तिरंगा लहराने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्वतंत्रता सेनानियों को दें श्रद्धांजलि, देश में कई जगहों पर एनडीए सांसदों ने लहराया तिरंगा। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की रोकी गई। एयर इंडिया के पायलट की मेडिकल रिपोर्ट में गांजा पीने की पुष्टि। 4 अगस्त की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में 17 यात्री जख्मी हुए थे। फुकेट दिल्ली एयर इंडिया घटना की जांच जारी है। एएआईबी बोला निष्कर्ष से पहले पूरे साक्ष्यों की समीक्षा हो। मुंबई में बीजेपी ने विशाल तिरंगा रैली निकाली। फडणवीस ने विदेशी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा भारत महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। गढ़चिरौली में 3 आदिवासी छात्राओं की मौत पर फडणवीस सख्त। आश्रम स्कूल का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया गया। 511 स्कूलों का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। गढ़चिरौली में 3 आदिवासी छात्राओं की सर्पदंश से मौत पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। हर्षवर्धन सपकाल ने लगाए प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप। महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली एफआईआर पुणे में दर्ज। नाबालिग को धर्म बदलने के लिए उकसाने के आरोप है। भिवंडी टीईटी पेपर लीक मामले में सोलापुर में 16वीं गिरफ्तारी। प्रकाश पवार को 15 अगस्त तक पुलिस ने हिरासत में लिया। पुणे के चाकड़ इंडस्ट्री से 20 कंपनियों के पलायन का खतरा। 1000 करोड़ के कारोबार और 4000 नौकरियों पर संकट। चाकड़ इंडस्ट्रीज पर उदय सामंत का बयान, कंपनियों के पलायन की खबरें गलत है, सरकार बना रही है इंफ्रा। इस छात्र आबिरू पॉल गिरफ्तार। उमर खालिद शर्जील इमाम की रिहाई के नारे लगाने के आरोप में पुलिस कस्टडी पर कोर्ट में बहस हुई। रायगढ़ में छात्राओं की रिपोर्टिंग वाली भी रील वायरल हुई। गड्ढों पर बनाई गई वीडियो के बाद प्रशासन ने सड़क की मरम्मत की बात कही। सिडको की नई ईडब्ल्यूएस आवास योजना, 4789 घर उपलब्ध। 15 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को आदेश, कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने पर करें विचार। 17 राज्य यूटी पहले ही कर चुके हैं अधिसूचित। होटल ढाबों पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती, एक्सपायर्ड खाना मिलने पर कार्रवाई होगी। एफएसएसएआई ने नियमों का पालन अनिवार्य किया। पान मसाला पैकेजिंग पर एफएसएसएआई सख्त, प्लास्टिक या प्लास्टिक लेमिनेटेड पैकेजिंग अब अनुमत सामग्री में शामिल नहीं होगी। टीबी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कर्नाटक केरल के सांसदों के साथ मंथन। खान मार्केट में एनडीएमसी की साइन बोर्ड हटाने की कार्रवाई पर व्यापारियों का विरोध, रोकी गई ड्राइव। ट्रेड एसोसिएशन अध्यक्ष संजीव मेहरा ने कहा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण नहीं, पहले दस्तावेजों की जांच करें एनडीएमसी। सांसद बांसुरी स्वराज से भी हस्तक्षेप की मांग। मोहन भागवत ने नागपुर में श्री गणेश मंदिर के नए गर्भगृह का उद्घाटन किया, बोले मंदिर पूजा में सभी की भागीदारी बढ़ती है। प्रशांत किशोर का युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान, 1 से 2 साल में बांकीपुर के 10,000 बेरोजगार युवाओं को देश भर में निजी क्षेत्रों में दिलवाएंगे नौकरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेशी। जम्मू कश्मीर में बारिश से उफनाए दरिया, बामियाल की सड़कों पर बह रहा है जबरदस्त पानी। पठानकोट के बमियाल सेक्टर में बाढ़ जैसे हालात, उफान पर उज्ब और जला लिया दरिया। मही सागर में भारी बारिश की वजह से जलभराव हुआ एक गांव, दूसरे गांव से टूटा है संपर्क। 25-30 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वडोदरा से आए 100 लोग सुरक्षित। पौड़ी में बारिश ने बढ़ाई है छात्रों की मुसीबत, 1 साल से नहीं बन पाया पुल। उफनते पानी और जंगल के रास्ते स्कूल जाने

हिमाचल में मानसून का कहर, बाढ़ भूस्खलन से अब तक 157 लोगों की मौत हो गई है, 250 से ज्यादा सड़कें बंद, बिजली पानी की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। हिमाचल में बीती रात भारी बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ, जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण हाईवे और वैकल्पिक मार्ग यातायात के लिए बंद। दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद जोर बंगलो पेशोक रोड का 25% हिस्सा बहा, धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार, कालिम्पोंग सिक्किम मार्ग बाधित हुआ। राजस्थान के टोंक में मॉनसून की पहली जोरदार बारिश, सड़कों पर बहा सैलाब, तेज बहाव में बह गए कई वाहन। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश आफत बन गई है, बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान के बूंदी में बारिश का आया है सैलाब, सड़क से घरों में घुसा पानी। बिजनौर में मूसलाधार बारिश के बाद पानी पानी हुआ है शहर, कई कॉलोनीज में बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही। मेरठ में बारिश में जर्जर मकान की छत गिरी, 80 साल की महिला की मौत हुई, एक युवती के घायल होने की खबर। शिवपुरी में नेशनल हाईवे 40 पर भरा पानी, यातायात बाधित हुआ, अंडरपास में पानी भरने से ग्रामीण परेशान। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हुई, लाल किले के पास दंगल पार्क में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले 21 तोपों की सलामी की तैयारी। जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, शोपियां में जिला प्रशासन ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। रक्षाबंधन से पहले नागपुर में सरहद पे प्रहरियों के लिए अनोखा कार्यक्रम, देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 3,00,000 राखियां। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर खास आयोजन, स्विमिंग, कायाकिंग और कैनोइंग का विशेष समक कोचिंग कैंप आयोजित किया गया। झांसी में रेलवे स्टेशन पर वंदे मातरम की गूंज, 15 अगस्त तक अनाउंसमेंट के साथ गूंजेंगे देशभक्ति के तराने। गुलमर्ग में अनोखी तिरंगा रैली, एटीवी पर सवार होकर निकले तिरंगा लेकर लोग, स्थानीय लोगों ने और छात्रों ने स्वागत किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुलगांव में निकाली गई मेगा तिरंगा बाइक रैली। 15 अगस्त से पहले शोपियां में बड़ा सर्च ऑपरेशन, सीआरपीएफ के साथ पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी की। संसद की कैंटीन में चाय अमृतसरी जायका, तरुण चुग ने सांसदों को खिलाए छोले कुलचे और लस्सी। मुजफ्फरपुर में पिता चलाते हैं चाय नाश्ते की दुकान, बेटे ने पास किया है यूपीएससी परीक्षा को, बने असिस्टेंट कमांडेंट। मुजफ्फरनगर में दिखा भक्ति का अलग ही रंग, स्कूटी से गंगाजल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर परशुराम शर्मा। हरिद्वार से हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग चंदर का जोरदार स्वागत हुआ, हरिद्वार से कावड़ लेकर पहुंचने पर गांव वालों ने स्वागत किया। कावड़ यात्रा के दौरान यूपी के बागपत में कावड़ियों के साथ बारिश में व्यवस्था संभालते हुए नजर आए पुलिस वाले, एसपी खुद बारिश में व्यवस्था बनाते हुए नजर आए। यूपी के सहारनपुर में महाभारत कालीन अनोखा शिव मंदिर है, मान्यता है कि इस मंदिर में दुर्योधन ने बनवाया था इसे और भीम ने दिशा बदली थी। अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर इस पश्चिम मुखी शिव मंदिर में मान्यता लेकर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, यहां सावन में मेला लगता है। गुरुग्राम की लग्जरी सोसाइटी में हाउस हेल्प से जमकर मारपीट हुई, काम को लेकर कहा सुनी, 52 साल की फ्लैट मालकिन गिरफ्तार। सूरत में पीवीसी के गोदाम में लगी थी भीषण आग, 3 लोगों ने सूझबूझ से जान बचाई। इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर जीतू साहू की मौत का खुलासा, हत्या नहीं हादसा थी मौत की वजह, पुलिस को प्रेमिका पर शक था। पीलीभीत में स्कूल की दीवार गिरी, मलबे में दबे 6 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं। जशपुर में शराब के नशे में विवाद के बाद लकड़हारे की हत्या, लाठी पत्थर से वार कर सीसीटीवी फुटेज सामने आया। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जमीन अतिक्रमण विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 11 से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए, 3 की हालत गंभीर है। यूपी के भदोही में अश्लील हरकत की शिकायत करने पर लड़की को दरोगा ने भगा दिया, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने निलंबित किया, आरोपियों पर केस दर्ज। इटावा में सैफई थाने में महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या की, पति गिरफ्तार, परिजनों ने प्रताड़ना और आर्थिक दबाव के आरोप लगाए। सूरत में मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, शख्स की मौत के बाद परिजनों का पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में सड़क से गुजरते समय 10 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला बोला, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुजरात के खेड़ा में 4 वाहनों की जोरदार भिड़ंत हुई, केले से भरी पिकअप पलट गई, टला बड़ा हादसा। गुजरात के दाहोद में विश्व आदिवासी दिवस की रैली के दौरान पुलिस पर पथराव, हमले में 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज, 13 की गिरफ्तारी। जूनागढ़ में खड़ी बाइक पर लिपटा दिखा विशाल अजगर, युवकों ने सावधानी से हटाकर जंगल की ओर छोड़ा। औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद विकराल आग लगी, ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। जयपुर में पैदल जा रहे

आगरा से बाइक सवार बदमाशों ने लूट ली थी चेन। स्नैचिंग के बाद लुटेरों से भिड़ गई थी महिला। देवास में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, गम में डूबा है पूरा गांव। गोरखपुर में 4 दिन पहले हुए ठेकेदार हत्याकांड का वीडियो वायरल हुआ है, तलवार से हमला करते हुए नजर आए आरोपी, राहुल कैमरे में कैद हुआ। मुजफ्फरपुर में चलती स्कॉर्पियो बन गई थी आग का गोला, ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बनासकांठा के नाता के पास 4 लेन हाईवे पर जीप में आग लगी, भीषण नुकसान। जामनगर में वेल्डिंग के दौरान एक स्कूटर में अचानक से आग लग गई थी, अफरा तफरी मची। जलगांव में डिपो से एसटी बस चोरी, टायर पंचर होने पर शाहपुर के पास छोड़कर भागे थे चोर, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। पालघर में 19 साल की युवती से गैंगरेप, 6 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज, 3 हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं पर बड़ी कार्रवाई, 10 कंपनियों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए, 135 को नोटिस। गाजियाबाद में फैक्ट्री में सो रहे सुपरवाइजर की गर्दन पर कैंची से ताबड़तोड़ वार किया गया, खून से लथपथ मिला शव, सहकर्मी कारीगर ने मौत के घाट उतारा। मोतिहारी में स्कूल बस में 2 राहगीरों को टक्कर के बाद एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ कर डाली। सोशल मीडिया के साथ ही कारोबार जगत और कोर्ट तक छाई जेंजी, 15 अगस्त को लाल किले में भी जेंजी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में जुटी हुई है सरकार। हॉर्मुज डील की उम्मीद और सेंट्रल बैंक की खरीद के 10 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया गोल्ड। इंटरनेशनल मार्केट में एक हफ्ते में सोना 7,000 और चांदी 10% तक महंगी। टमाटर प्याज और आलू महंगे होने से जुलाई में वेज थाली 4% महंगी होकर 28.10 रुपए पर पहुंच गई है। चिकन सस्ता होने के बाद नॉनवेज थाली 2% सस्ती हुई। सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने से डीजल में एथेनॉल मिलाने का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, जांच में एथेनॉल के इस्तेमाल से फ्लैश पॉइंट घटने की बात सामने आई। 13 मई से 2 अगस्त के बीच सोना चांदी और प्लेटिनम के इम्पोर्ट से सरकारी खजाने में करीब 10,500 करोड़ रुपए आए, कुल रिसीट्स में सोने का योगदान 10,000 करोड़ रुपए रहा। पश्चिमी कोलंबिया में आया जबरदस्त भूकंप से तबाही, 7.4 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 132 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी, देश में आपातकाल की घोषणा। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की से लौटे हुए एक गुप्त मिलिट्री फ्लाइट ली, जबकि व्हाइट हाउस का कहना था कि वो एयरफोर्स वन में सवार हुए थे। ट्रंप ने यह कदम ईरान की ओर से मिली धमकियों के बाद उठाया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड और सशस्त्र बलों में 6 नई नियुक्तियां की हैं। मेजर जनरल पायलट अली अब्दुल्लाही को सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए सैनिकों की एक और टुकड़ी और मिसाइलें भेजने की कर रहा है तैयारियां, उत्तर कोरिया सैनिकों की तैनाती रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में होंगी। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी याब्दुलोको को पार्टी में सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव में लड़ने से रोक दिया है, अदालत ने चुनावी पंजीकरण रद्द कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का कड़ा विरोध करती रही है ये पार्टी। तुर्की की संसद ने प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को खत्म करने का कानून पास किया, नए कानून के तहत जेल में बंद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के सदस्यों की भी हो सकेगी रिहाई। चीन का लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट उड़ान भरने के लिए कुछ ही समय के बाद हवा में फट गया, हिनान में विंगचांग स्पेस लॉन्च साइट से अपने साथ सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष जा रहा था रॉकेट। अमेरिका के शिकागो में स्कूल में गोलीबारी हुई, मार्क ट्वेन एलिमेंट्री स्कूल में हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर। ब्राजील के रियो शहर के पास जंगलों में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, पायलट समेत 4 लोगों की मौत की खबर। फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने बताया हादसे के घंटों बाद गहन तलाशी के बाद जंगल में मिला हेलीकॉप्टर का मलबा। अमेरिका की एक अपील में कोर्ट ने मेटा के फेसबुक और अल्फाबेट के गूगल, बाइडांस और टिकटॉक और स्नैपचैट के खिलाफ 1,000 मुकदमों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड में छात्रों के विधानसभा घेराव वाले मार्च से आई वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें झारखंड के मंत्री लाठी चार्ज मानने को तैयार ही नहीं है। भले ही इन तस्वीरों में पुलिस की लाठी छात्रों की पीठ, पैर, कमर, हाथ पर जाकर प्रहार हो, एक तरफ घायल छात्र है, कैमरे पर कैद पुलिस की कार्रवाई के सबूत है, तो दूसरी तरफ मंत्री इरफान अंसारी का ये दावा कि पुलिस ने कोई हिंसक कार्रवाई की ही नहीं बल्कि छात्र खुद पुलिस पर भारी पड़े, लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेता युवाओं के दर्द पर इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या मौसम के आगे कैलेंडर ने सरेंडर कर दिया है या फिर कैलेंडर की तारीखों को समझने में मौसम को कोई कंफ्यूजन हो रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में मौसम के बदलाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऋतुएं अपना मूल कैलेंडर भूल चुकी हैं, उन्होंने दूसरी ऋतुओं के काम में घुसपैठ कर दी है। न सर्दी के समय पर सर्दी, गर्मी के समय पर बारिश हो रही है, देर से शुरू हो रही है, बसंत तो जैसे गायब ही हो चुका है, यानी मौसम अपना मूल स्वभाव भूल चुका है, मूल वक्त भूल चुका है या इंसान के साथ वो खुद भी बदल चुका है। और इस बीच जब सिस्टम कुछ समझ ही नहीं पा रहा, गुरुग्राम जैसे शहरों की सड़कों पर नदियां बह रही हैं, लोग पानी में फंसे हैं, तब वहीं सैकड़ों करोड़ के पेंट हाउस बिक रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अब दुनिया पर एक और बड़ा साइबर खतरा मंडरा रहा है। नॉर्थ कोरिया के कुख्यात हैकर ग्रुप किमसुकी ने एक ऐसा खतरनाक एआई टूल तैयार किया है जो ऑटोमेटिक साइबर अटैक करने में पूरी तरह माहिर है। ये टूल खुद ही स्पेयर फिशिंग ईमेल तैयार कर चुटकियों में हजारों लोगों को शिकार बना सकता है। आखिर किम जोंग उन के हैक्स और हैकर्स जो हैं वो क्या दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं? और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे मिनटों में सामान पहुंचाने वाले जो इंस्टेंट डिलीवरी एप्स हैं जिससे आप की जिंदगी आसान हो रही है, लेकिन मुंबई और बेंगलुरु के डार्क स्टोर्स पर छापेमारी से पता चला है कि वो वाकई डरावना है। गंदगी, कॉकरोच, चूहे, उनका आतंक, एक्सपायर्ड सामान, क्या आप जानते हैं कि 10 मिनट की इस रफ्तार में आपकी सेहत के साथ, आपके खाने पीने की हाइजीन के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है? लेकिन आज हम शुरुआत करना चाहते हैं उत्तराखंड के चमोली से आई इन तस्वीरों से। ये तस्वीरें सिर्फ एक पुल के बह जाने की कहानी नहीं बता रही हैं। ये तस्वीरें हमें एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं, एक ऐसे खतरे की तरफ जिसमें पहाड़ों पर बारिश के बाद आने वाला सैलाब अब पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले ये देखिए, बहता क्रेन, बहते पुल, बहती गाड़ियां, बहते लोग, बहते इंसान, मतलब कल्पना से परे है ये तस्वीरें जो अब ऐसा लगता है कि हर कुछ महीने पे आने लगती हैं। जब जब बारिश आती है यही हाल होता है, हर बार बारिश के मौसम में उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसी तस्वीरें लोगों को दहला देती हैं। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगाते हैं, द माउंटेन्स आर कॉलिंग, यानी पहाड़ हमें बुला रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या ये पहाड़ सचमुच हमें बुला रहे हैं या फिर ये पहाड़ अब हमें चेतावनी दे रहे हैं? जिन पहाड़ों को हम खूबसूरत तस्वीरों, छुट्टियों और सुकून से जोड़ते हैं, उन्हीं पहाड़ों के भीतर आज एक बेचैनी दिख रही है, और चमोली की ये तस्वीरें उसी बेचैनी की कहानी कह रही हैं। जिस चमोली को आपने अभी देखा, वहां सिर्फ 5 साल पहले 2021 में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई थी। 2021 को रॉन्टी पीक की ढलान के करीब, समझ लीजिए कि उस ढलान से करीब 2,70,00,000 टन मीटर चट्टान और बर्फ टूटकर नीचे गिरे थे, कल्पना कीजिए। और उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लापता हो गए थे, मतलब समझिए जिंदा दब गए थे। दो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बुरी तरह प्रभावित हुए, इसके बाद भी चमोली की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 आ गया। चमोली की जिन घाटियों में कभी सुकून मिलता था, वहां चट्टानों के सैलाब ने लगातार अब खून बहाया है और आज की ये तस्वीरें भी उसी के बारे में बता रहे हैं। तमक नाले के ऊपर जो पुल इस सैलाब में बहते हुए दिखा है, जो पूरा पुल देख रहे हैं, उसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 4 करोड़ रुपए की लागत से पिछले महीने ही तैयार किया था। पिछले महीने इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि इस बरसाती नाले में ऐसी भयानक बाढ़ आएगी कि इसमें यह पुल इस तरह से बह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और लगातार 5वें साल चमोली के तबाही का सिलसिला जारी रहा है। देखिए,
1: ये ब्रिज जाएगा, वे ब्रिज जाएगा, ब्रिज का साइड हो रो, साइड हो रो,
2: गाड़ी गाड़ी गई गाड़ी, ओ गाड़ी गाड़ी

0: उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल क्षेत्र में आता है, जहां पूरे राज्य की लगभग 58% आबादी रहती है। अगर ये पहाड़ इसी तरह दरकते हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हैं और पहाड़ों का खिसकना जारी रहता है, तो सोचिए उत्तराखंड की आबादी कहां जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भारी बारिश होगी तो इंसान या हमारी सरकारें क्या ही कर लेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड का ये हाल तब है जब वहां इस बार मानसून कम रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में सामान्य से 3% कम बारिश हुई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में ना जाने कितनी बारिश हो गई हो। यह आज की सबसे चिंताजनक सच्चाई है, जिन्हें शायद कोई आपको बताएगा नहीं। इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ऐसे मुद्दों में मसाला और राजनीति नहीं होती, वोट बैंक नहीं होता, आंदोलन नहीं होते, गाली गलौच नहीं होती। ये मुद्दा आपके और आपके परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये हमारे पहाड़ों से जुड़ा मुद्दा है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है, ये पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, ये मौसम से जुड़ा मुद्दा है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है कि अब मौसम का पैटर्न वैसा नहीं रहा जैसा आज से शायद कुछ दशकों पहले तक हुआ करता था। पहले एक साल में 6 और मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती थी, जिनमें कुछ महीने गर्मी पड़ती थी, कुछ महीने बारिश होती थी, कुछ महीने सर्दी रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज आपसे आपकी इन ऋतुओं को ही छीन रहा है। अब गर्मी के मौसम में बारिश होती है अचानक से, बारिश के मौसम में सूखा पड़ता है, सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ती है, गर्मियों का महीना आता है तो उस मौसम में हम बारिश, सर्दी, सूखा, हीटवेव सब देख लेते हैं। सोचिए कौन कल्पना कर सकता है कि जून में जब पीक की गर्मी हो तो बाढ़ आ जाएगा, वो भी राजस्थान में। मानसून जून में आता था, पहले सितंबर तक रहता था और इस दौरान लोगों की जिंदगी उसी हिसाब से चलती थी, जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पहले कई दिनों तक सामान्य बारिश होती थी, जबकि अब लंबे समय तक सूखा रहता है, फिर अचानक कुछ घंटों या एक दो दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश की कुल मात्रा कभी कभी उतनी ही रहती है, लेकिन उसका बंटवारा बदल गया है, सूखा और फिर अचानक बहुत गर्मी, उसके बाद अचानक जबरदस्त मूसलाधार बारिश। सबसे अजीब ट्रेंड यह है कि अब एक ही राज्य में सूखा और बाढ़ एक साथ देखने को मिल रहा है। जैसे राजस्थान, आज जैसलमेर में 10 अगस्त को अगर आप देखिए तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन इसी दौरान बूंदी और टोंक जैसे जिलों में ऐसी बाढ़ आई कि उसमें कई रिहायशी इलाके ही डूब गए हैं। यानी एक ही राजस्थान में इस समय 2 मौसम चल रहे हैं। ये सामान्य बात तो नहीं है। देखिए कुछ जगहों पर बाढ़ की हालत आप देख ही रहे हैं, वो एक करेक्शन है पहले कर दे। दरअसल 10 तारीख को जैसलमेर में लगभग 40 डिग्री का तापमान था और उसके बाद आज देखिए कैसे बाढ़ की स्थिति अन्य जगहों पर है, बूंदी में है बाढ़ हम आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर का ये कल का तापमान था जो कि 40 डिग्री है, मतलब एक ही राज्य में अब सोचिए कि क्या क्या हो रहा है। यही कहानी मध्य प्रदेश की है, निवाड़ी और ग्वालियर ऐसे जिलों में 10 अगस्त को तापमान बीते दिन 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा, जबकि इसी दौरान विदिशा और भोपाल जैसे इलाकों में अचानक इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। कमाल की बात यह है कि बारिश की इस बदहाली में आम रिहायशी इलाके डूब गए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो आवास हैं वहां सब चकाचक रहा। देखिए
1: Thank you. गीता नगर इलाके में घरों के अंदर क्या हालात है भोपाल में हुई मूसलाधार बारिश के बाद, वो इस तस्वीरों से समझिए आप। ये घर है जहां पे तकरीबन 2 फीट पानी भर चुका है। ये अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे इस घर की। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो किचन भी पूरा पानी में डूबा हुआ है। और घर वालों के मुताबिक सुबह जब वो सो करके उठे तो उन्होंने घर में इस तरीके के हालात देखे।
0: क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया गर्म हो रही है, इसका मतलब ये भी है कि मौसम के पुराने पैटर्न में बदलाव हो रहा है। अब देखिए, गर्मी अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उससे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं लंबी गर्मी से, और फिर अचानक इस तरह से बाढ़ का सैलाब आता है। बारिश कब आएगी, कितने दिन रहेगी, कितनी तेज होगी, किस इलाके में होगी, धीरे धीरे इन सब में बदलाव हो रहा है। पहले हम मानसून को एक लंबे मौसम की तरह देखते थे, जून आया बारिश शुरू हुई, जुलाई अगस्त में बारिश का दौर चला, सितंबर तक धीरे धीरे मानसून विदा होने लगा। लेकिन अब तस्वीर कई जगहों पर ज्यादा अस्थिर दिखाई देती है और इसे आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। साल 2024 में नवंबर का महीना साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा। देखिए, साल 1901 के बाद नवंबर का सबसे गर्म महीना, नवंबर के महीने में मौसम ठंडा होना चाहिए था जब मई जैसी गर्मी पड़ रही थी कई जगहों। 2025 में भी जब फरवरी के महीने में मौसम ठंडा होना चाहिए था, तब ये महीना भी इतिहास का उस महीने के हिसाब से जो सामान्य टेम्परेचर है उससे तापमान ज्यादा था। इसी साल मार्च 2026 में जब गर्मियों का मौसम आ जाना चाहिए था, तब देश के अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही थी। और जब इसी साल जून के महीने में मानसून की बारिश होनी चाहिए थी, तब पूरे देश में सूखा पड़ रहा था। आपको यकीन नहीं होगा कि जून का महीना पिछले 146 सालों में सबसे सूखा महीना रहा, और देश के लगभग सभी राज्यों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अब अगस्त महीने में सूखा और बाढ़ दोनों एक साथ पड़ रहे हैं अलग अलग जगहों। कुछ जगहों पर एक महीने की बारिश एक हफ्ते में हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, और ये अपने आप में एक खतरनाक बदलाव है। अब तक हमारे स्कूल्स में गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, मानसून की छुट्टियां लगभग तय होती थी। हमें पता होता था कि मई जून में गर्मी जबरदस्त होगी, दिसंबर जनवरी में सर्दी की छुट्टी होगी, बारिश के मौसम में स्कूल्स का समय उसी हिसाब से बदलेगा। लेकिन कई बार दिसंबर में ठंड वैसी नहीं आती जो जनवरी फरवरी में आती है, और तब तक स्कूल खुल चुके होते हैं। हो सकता है आने वाले समय में मौसम की ये पुरानी समझ ही बदल जाए, क्योंकि मौसम अब कैलेंडर देखकर नहीं बदल रहा। गर्मी में बारिश, मानसून में सूखा, सर्दियों में गर्मी, ये सब हो रहा है। और पंखे कई बार आप देख ही रहे हैं कि बहुत मई मतलब नवंबर दिसंबर तक चलाना पड़ता है। एक ही राज्य में एक शहर बारिश में डूबा है और कुछ 100 किलोमीटर दूर इलाका सूखा हुआ है। आने वाले समय में शायद हमें मानकर चलना पड़े कि जिस मौसम की हम उम्मीद कर रहे हैं जरूरी नहीं वही मौसम आए, और इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं पड़ेगा, असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा, पूरी जिंदगी पर। किसान कब फसल बोएगा ये बदल सकता है, बच्चे कब स्कूल जाएंगे ये बदलेगा, किस दिन ट्रेन चलेगी, किस दिन सड़क बंद होगी, किस दिन बिजली की मांग बढ़ जाएगी, मतलब होता ना पीक जो डिमांड के महीने होते हैं बिजली के। हमारे शहरों की योजना बदलनी पड़ेगी, घरों के डिजाइन बदलने होंगे, सड़कों और जो ब्रिज हम बनाते हैं, जो पुल हैं, उनको अलग तरीके से बनाना होगा। और शायद सबसे जरूरी बात, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये मानकर नहीं चलना है कि मौसम हमेशा वैसा ही रहता है जैसा शायद हमारे माता पिता देखते रहे, और प्रकृति का कैलेंडर बदल रहा है क्योंकि हम जिस तरह का प्रदूषण कर रहे हैं, और इस परीक्षा में हमारी सरकारें भी बुरी तरह फेल रही हैं। अब जरा देश के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाने वाले गुरुग्राम को देखिए, जो अकेले हरियाणा की GDP में जानते हैं लगभग 20% का योगदान गुरुग्राम देता है। जिस गुरुग्राम को हम कॉर्पोरेट सिटी, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहते हैं, आज वही गुरुग्राम बारिश के बाद एक बड़े से वाटर पार्क में बदल गया है। खिलवाड़ी है लोगों के साथ, टैक्स देते जाइए और बदले में आपको सड़कों पर पानी ही पानी मिलता रहेगा। जहां सड़कें थी वहां पानी है, कमाल है। अरे भाई, टैक्स इसीलिए तो हमने दिया है कि हम अपनी गाड़ियां पानी में दौड़ा सके। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलने जैसी स्थिति हो रही है, और कोई देखने वाला नहीं। गुरुग्राम के हुडा चौक का तो हाल ऐसा है कि लोग अब इसे गुरुग्राम का वाटरफॉल पॉइंट कह रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर है, लाखों लोग रोज काम करने आते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां यहां पर सड़कों पर दौड़ती हैं, बनती हैं, गगनचुंबी मारते हैं, चमचमाते मॉल्स हैं, साइबर पार्क है। लेकिन बारिश के कुछ घंटों बाद शहर की सबसे बड़ी समस्या ये बन जाती है कि पानी जाएगा कहां। और यही तस्वीरें हमें गुरुग्राम के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है, और वो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार आखिर क्या कर रही है। चंडीगढ़ और मुंबई के बाद पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गुरुग्राम के लोगों की है। ये वो गुरुग्राम है जिसने 2023 में 48,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था, और पूरे देश में टैक्स देने वाला ये नौवां सबसे बड़ा शहर था। और ये वो गुरुग्राम है जहां 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स बिक रहे हैं। आज ही खबर आई है कि जिस गुरुग्राम की सड़कों पर नदियां बह रही हैं, वहां गोल्फ कोर्स रोड पर एक पेंट हाउस, जानते हैं, 271 करोड़ रुपए में बिका है। ये पेंट हाउस 17,200 वर्ग फीट में फैला है, जो एक फुटबॉल मैदान के पांचवें हिस्से जितना बड़ा है। सोचिए कितनी अजीब बात है कि जिस शहर का ड्रेनेज सिस्टम बदहाल है, वहां 271 करोड़ रुपए के घर बिक रहे हैं, और खरीदने वाले लोग भी इसी देश के हैं। देखिए,
2: हर साल का यही सीन है। सरकार दावे करती है कि इस बार नहीं होगी बरसात से पहले, गर्मियों में काम भी हुआ है, सारी तरफ सीवेज साफ वगैरह होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं है।
0: अब तक सरकारें यही सोचती थी कि वो कोई बहाना बना लेंगी, लोग भी कुछ दिनों के बाद इन तस्वीरों को भूल ही जाते हैं, बारिश खत्म तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन जेन जी युवाओं के बाद जेन अल्फा पीढ़ी के बच्चों ने हमारी सरकारों की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की हैं, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 3 बच्चियों ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को यह याद दिलाया कि उनकी जनता के प्रति क्या जवाबदेही है। तो रायगढ़ महाराष्ट्र की इन बच्चियों की आवाज आज हम आपके सामने रखेंगे। ये कहानी गांव की उस सड़क से शुरू हुई जो बारिश में इतनी खराब हो गई थी कि बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़, पानी लोगों के लिए रोज की परेशानी बन गए। स्कूल जाते समय बच्चों की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती थी, कई बार सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की पहियों से कीचड़ उछलकर इन बच्चों पर पड़ता था। यही सब देखकर इन 3 बच्चियों ने एक वहीं से अपना वीडियो बनाया है और ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और यहीं से पूरा मामला सरकार तक पहुंचा। इन बच्चों ने पत्रकार बनकर सड़क की रिपोर्टिंग शुरू की। ये देखिए, उन्होंने ऐसे माइक लगाया, नेहा नाम की बच्ची ने रिपोर्टर की भूमिका निभाई, वो अन्य लोगों से बात करें, छाते को माइक की तरह पकड़ लिया, सड़क पर मौजूद ये गड्ढे दिखाने शुरू किए, और पूरा एक वीडियो उन्होंने बनाकर डाला है। वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने सड़क की हालत का संज्ञान लिया, सड़क की मरम्मत और जो रीसर्फिसिंग है वो कराई गई, यानी एक वीडियो से गड्ढे में धस चुके सिस्टम की पोल खुल गई है। देखिए,
3: अपन आज आलेलो आहोत कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर, तर आमची रिपोर्टर ज्योत्ना तुम्हाला ह्या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल?
4: तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल। तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही। तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत,
5: तुम्ही बघू शकता, खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
3: तर आजची न्यूज इथे संपते। रिपोर्टर नेहा गारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
0: तो बच्चियां पूछ रही है कि रस्ते में खड्डा है या खड्डों में रास्ता है। ये सिर्फ इन 3 बच्चियों का वायरल वीडियो नहीं है, इसमें एक खूबसूरत लोकतांत्रिक सीख छिपी है। वो ये कि जब लोग अपनी समस्याओं को आवाज देते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों तक पहुंचता है। इन बच्चियों के पास आप देखिए तो बहुत बड़े साधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उनके पास एक छाता, एक मोबाइल और गांव की समस्या, और इसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे प्रशासन नजरअंदाज नहीं कर पाया, और ये जागरूकता जेन अल्फा की आज रंग ला रही है। जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो सरकारों को भी ये सोचना होगा कि अब पुराने ढर्रे पर चीजें बिल्कुल नहीं चल पाएंगी, कि भाई कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ था, कॉन्ट्रैक्टर ने भ्रष्टाचार कर दिया, इस वजह से सड़क टूट गई, सड़क में ये हो गया। लोगों को सहूलियत चाहिए, और खास तौर पर आज जब ऐसे दूर दराज के इलाके, वहां से भी अकाउंटेबिलिटी मानने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि कुदरत का क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है, उसे आप कोलंबिया की इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। और यही सतर्क करने वाली तस्वीरें हैं, कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का, मैग्नीट्यूड का जो शक्तिशाली भूकंप आया है, उसमें अब तक 126 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, ऑफिशियल डेटा है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। कोलंबिया में इतना ताकतवर भूकंप इसलिए आया क्योंकि इस देश का भूगोल इसे सिस्मिक रिस्क वाला देश बनाता है, और ऐसा ही रिस्क भारत में भी है, इसीलिए संभल कर। ये साउथ अमेरिका के उस हिस्से में है जहां अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, फॉल्ट सिस्टम सक्रिय है, यही कारण है कि कोलंबिया में भूकंप आते रहते हैं और इसके कारण वहां कई बार हजारों लोगों की जाने गई हैं। हालांकि इस बार के भूकंप में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण लोग इसे बहुत बड़ी बर्बादी का संकेत मान रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है 10 अगस्त की वो तारीख जिस दिन ये भूकंप आया। असल में 10 अगस्त 1868 को कोलंबिया इक्वाडोर क्षेत्र में एक बेहद विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी। इत्तेफाक की बात यह है कि 2026 का ये भूकंप उसी तारीख को आया है जिसके कारण लोग इसे बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत मान रहे हैं। देखिए एक भूकंप ने क्या हाल कर दिया आप देख रहे हैं, लोगों की शुरुआत कैसे हुई सुबह की और फिर देखिए क्या कुछ हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको रांची से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने मुंह पर टेप लगाकर साइलेंट मार्च निकाला है। सोचिए ये कितने अफसोस की बात है कि ये सारे छात्र अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जब पुलिस की लाठीचार्ज के बाद इन छात्रों ने अपने होठों को सिल लिया है और मुंह पर टेप लगाकर ये बताया है कि सरकार अगर इन्हें जबरदस्ती चुप कराना चाहती है तो ये चुप तो हो जाएंगे, लेकिन क्रांति सड़कों पर इस तरह से दिखाई देती रहेगी। देखिए टेप लगा है या कुछ बच्चों ने उंगलियां रख ली, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है वो बता रहे हैं कि हम छात्र हैं अपराधी नहीं। यहां ये भी देखिए कि जिन नेताओं को लोग अपने वोट से विधायक सांसद और मंत्री बनाते हैं वो नेता इन्हीं आम लोगों के प्रति इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं। कल रांची में 18 दिनों से आंदोलन कर रहे जेंजी युवाओं ने जब विधानसभा तक पैदल मार्च किया तब पुलिस पर आरोप है कि उसने छात्रों की भीड़ पर न सिर्फ लाठी चार्ज किया बल्कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये वो कार्रवाई थी जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी और पूरे देश में इसकी आलोचना हुई, लेकिन आज झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह दावा किया कि छात्रों पर झारखंड पुलिस की तरफ से कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, कोई हिंसक कार्रवाई हुई ही नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस तो इस पूरे पैदल मार्च में मूक दर्शक बनकर खड़ी रही जबकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने ही इन पुलिसकर्मियों को पीटा जिससे भारी संख्या में ये पुलिसकर्मी घायल हुए। ये तस्वीरें देखिए, आप खुद तय कीजिए पहले तो कि लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि अंसारी जी भी ये वीडियो देखें। ये बयान सुबह से काफी चर्चा में है और इसकी इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पुलिस के संयम की तारीफ की थी जबकि प्रदर्शनकारी छात्र कह रहे थे कि उन्हें बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। कई छात्रों ने हमें यह भी बताया कि उनके सिर और गर्दन में लाठियां मारी गई, लेकिन झारखंड सरकार के ये मंत्री महोदय क्या कहते हैं वो सुनो।
6: जिस प्रकार कल हुआ हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पांच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
7: लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
6: देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
0: आज बड़ा सवाल यही है कि कोई भी मंत्री, नेता या सरकार उन लोगों के प्रति इतनी संवेदनहीनता कैसे दिखा सकता है? क्या ये तस्वीरें भी उन्हें नहीं दिख रही हैं? राजनीति करने के लिए सड़कों पर ये बच्चे आए नहीं हैं? अगर इन युवाओं को राजनीति करनी होती तो ये इस मंच पर इस तख्ती को नहीं लटकाते, ये नहीं कहते कि नेता उनके मंच से दूर रहें। किसी भी पार्टी के नेताओं को इन्होंने मंच नहीं दिया। ये छात्र सिर्फ अपनी तकलीफें, अपनी पीड़ा लेकर आए। सरकार चाहती तो लाठीचार्ज के बाद भी इनके साथ अपनी संवेदनाएं दिखा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं। आज हम इन मंत्री महोदय को वो बताना चाहते हैं जो हमारे कैमरों ने देखा है। इस पैदल मार्च में एक बार नहीं बल्कि तीन बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इनमें पहला लाठीचार्ज उस वक्त हुआ जब प्रदर्शनकारी युवा विधानसभा भवन से 2 किलोमीटर दूर थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बार लाठीचार्ज तब हुआ जब ये प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट पर खड़े थे और पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही थी। और तीसरी बार लाठीचार्ज तब हुआ जब 200 से 300 प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर में बैठे हुए थे, सूरज ढल चुका था। आरोप है कि पुलिस ने पहले आसपास की लाइट्स बंद की, और ये आरोप ये बच्चे ही लगा रहे हैं, और ये बच्चे बता रहे हैं कि उसके बाद इन छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ये सब कुछ इन बच्चों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पुलिस की कार्रवाई के बाद भगदड़ मची हुई थी, और इसी भगदड़ में कई छात्र घायल हो गए। देखिए,

0: इरफान अंसारी चाहे तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जिनमें पुलिस के लाठीचार्ज के बाद कुछ प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए और कई लड़कियों ने ये आरोप लगाया कि उन पर लाठियां बरसाने वाले ज्यादातर पुलिसकर्मी पुरुष थे, महिला पुलिसकर्मियों को वहां नहीं भेजा गया था। जब ये प्रदर्शनकारी वापस से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे तब उन्होंने अपने शरीर पर पुलिस की लाठियों के निशान दिखाए। कई लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि जानबूझकर पुलिस ने शाम होने के बाद कार्रवाई की ताकि अंधेरे में सब कुछ छिप जाए। अगर इरफान अंसारी को अब भी लगता है कि कल कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ तो वो इन बच्चियों को सुन सकते हैं।
1: जिन छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है उन्हें चोट आई है, वो घायल हुए हैं, किसी के पैरों में तगड़ी चोट लगी है, किसी के हाथों में सूजन आ गई है।
2: दौड़ा दौड़ा के मारा गया, निर्दय जैसे हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया। सिर्फ सीधे हम लोग बहुत शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, एसपी द्वारा बैठाया गया था, हम लोग बैठे हुए थे सर, लेकिन लाइट बंद करके ना बहनों के और मेरे जो भाई लोग है ना उसको सुता सुता कर मारा है सर, इतना मारा ना, और साथ में हम लोग भी मारा, दौड़ा दौड़ा कर तीन दो दो तीन तीन मिनट दौड़ाया है सर।
3: एकदम संवैधानिक रूप से कोई हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, तो आप ही बताइए ना सर कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे।
1: पूरा पैर में सूजन आ गई है। ये तमाम जो छात्राएं थी इनके कपड़े बता रहे हैं कि आखिर इनके साथ वहां पर क्या कुछ हुआ शाम के अंधेरे में। ये देखिए ये लाठी डंडों, ये लाल दिखाई दे रहा है, ये लाठी डंडों के निशान है, पैरों पर ये निशान है, और इसी के बाद आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने जब शाम को लाठीचार्ज किया है तो किस तरह कार्यवाही की है।
2: लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा, रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा, लगा कि हम लोग आतंकवादी हैं, एकदम
4: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सबको।
5: लोग सर खेत में घुस जा रहे थे, लोग पुलिस खेत में घुस घुस के मारी है लड़की लोग को, लड़की लोग को गाली दे के मारा गया है सर।
6: इसी दिन देखने के लिए बनाए थे हम लोग, इसलिए उनको सत्ता दिए थे, इसलिए उनको कुर्सी दिए थे ताकि झारखंड का जो भविष्य है उनको अच्छा से देख रेख कर सके और उनको सवारे।
7: आप देख सकते हैं मेरी आंख बच गई है, लाठी चार्ज किया, मैं खड़ा था आराम से शांतिपूर्वक खड़ा था, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से परिवर्तन की गई है पुलिस के द्वारा,
8: और लड़का लहो लड़की है किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसके बाद पैर पे यहाँ पे चोट लगा है।
9: ऐसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े, ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया, अचानक से वो आए और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया।
10: पैंट खोल नहीं सकते सर, दिखाते ना कितना मारा सर, इतना मारा गया ना कि कोई बैठ नहीं सकता सर, बैठ नहीं सकता इतना मारा।
11: कि आप हमें मार के नौकरी बेचोगे क्या? आप हमें जान से मार के नौकरी बेचोगे? अगर आप हमें मार के नौकरी बेचना चाहते हो तो आप हमें जान से मार दो, लाठी क्यों चला रहे हो, गोली चला दो, गोली मार दो हम लोगों को।
0: हमारे रिपोर्टर सत्यजीत कुमार कहते हैं कि कल हुए लाठीचार्ज में कम से कम 18 छात्र घायल हुए, जबकि पुलिस कहती है कि इस पैदल मार्च में उसके भी 14 जवान घायल हुए हैं। और इन दृश्यों को देखने के बाद ये सवाल कहीं से नहीं बनता कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के पैदल मार्च के दौरान संयम दिखाया, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बच्चे बता रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। देखिए
12: तो आप कानून का राज, बाप का राज,
13: कानून के बात नहीं हो रही है, आप जो बोल रहे हो किसी को सिखाए वो बात मैं बोल रहा हूँ। अरे चुने हो आप ही लोग भाई, हम लोग थोड़े चूनते हैं।
0: तो आपने इस पुलिसकर्मी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को वो लोग नहीं चुनते बल्कि जनता चुनती है, इसलिए सरकार के कारण पुलिस का विरोध करना सही नहीं है। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं।
12: कानून का राज है, सिखाइए तो।
13: मैंने किसी को छुआ भी नहीं भाई।
12: तो आप कानून का राज, बाप का राज,
13: कानून के बात नहीं हो रही है, आप जो बोल रहे हो किसी को सिखाए वो बात मैं बोल रहा हूँ। अरे चुने हो आप ही लोग भाई, हम लोग थोड़े चुनते हैं।
0: छात्रों पर हुई कार्रवाई के बाद बीजेपी ने झारखंड में बंद बुलाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छात्र सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी इनकी शिकायत आखिर क्या है। इनकी सबसे बड़ी शिकायत उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने सरकारी नौकरियों की कीमत तय करके उन्हें पैसों वालों को बेच दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के मुख्य सचिव रहे एल खेंग्याते को उनकी रिटायरमेंट के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था। फैसला खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था, यानी जिस पद पर रहते हुए एल खेंग्याते पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रिश्वत लेकर सरकारी नौकरियां बेची, उस पद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद उन्हें बिठाया था। सीआईडी के मुताबिक जो अभय तिवारी परीक्षाओं में धांधली कराता था उसने धर्मेंद्र नाम के एक शख्स से पहले दोस्ती बढ़ाई। ये वही धर्मेंद्र है जो एल खेंग्याते के अध्यक्ष रहते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग के कंप्यूटर विभाग में डिजिटल कामकाज संभालता था। आरोप है कि अभय तिवारी ने धर्मेंद्र की मुलाकात टीडीपीएल कंपनी के दो अधिकारियों से कराई। ये वही कंपनी है जिसे बाद में ब्लैकलिस्ट होने के बाद सरकारी नौकरियों की परीक्षा कराने का टेंडर मिल गया। इस मुलाकात में ऐसी खिचड़ी पकाई गई कि कुछ वक्त बाद एल खेंग्याते एक 5-स्टार होटल में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात आरोपों के मुताबिक इसी कंपनी के इन्हीं दोनों अधिकारियों से हुई। दावा है कि यही वो मुलाकात थी जिसमें एल खेंग्याते इस कंपनी से कहा उन्होंने कि वो आयोग के सामने अपना पूरा प्रस्ताव पेश करें। हैरानी की बात यह है कि इस मुलाकात के दो दिन के अंदर सब कुछ फिक्स हो गया। एल खेंग्याते ने कहा कि इस कंपनी के अधिकारी धर्मेंद्र से मिलकर आगे की बात कर सकते हैं, यानी बात उसी धर्मेंद्र तक पहुंच गई जिसने इस पूरी मीटिंग को फिक्स कराया था। ये बाकायदा सीआईडी की रिपोर्ट में आया है और सीआईडी का कहना है कि इस मुलाकात में धर्मेंद्र ने तय किया कि अगर इस कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका चाहिए तो उसे एल खेंग्याते 2 करोड़ रुपए घूस देनी होगी। धर्मेंद्र को 25 लाख रुपए अलग से देने होंगे। आरोपों के मुताबिक कंपनी को सरकार से परीक्षाएं कराने का जितना पैसा मिलेगा उनमें 20% कमीशन देना होगा और चौथा दिन लोगों को ये सरकारी नौकरियां बेची जाएंगी, उनसे मिलने वाले पैसे में भी इनका एक परसेंटेज होगा, हिस्सा। अब आप खुद सोचिए, जब इन सरकारी नौकरियों में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था तब ये छात्र क्यों नहीं आंदोलन करेंगे, क्यों नहीं सरकार से इंसाफ की मांग करेंगे। खैर, अगली खबर का आप रुख करते हैं। आपको मोरबी के उस कुएं की कहानी बताते हैं जिस पर स्थानीय लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक कई कहानियां अलग अलग तरह की तैर रही हैं। ये कुआं मोरबी के वीरपरडा गांव में मौजूद है जो 18 फीट गहरा है और जिसका 2 अगस्त को एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कुएं का पानी लगातार हिलता, गोल गोल घूमता और लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ देर में ये पानी छलकता हुआ भी नजर आता है इस कुएं में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ स्थानीय लोगों और गुजरात के मोरबी जिले में लोगों ने यही माना कि शायद भूकंप के संकेत है। सबसे ज्यादा यही थ्योरी फैलाई गई कि ये भूकंप की वजह से हो रहा है। इन लोगों का कहना था कि जमीन में बिना हलचल के ये पानी नहीं हिल सकता, जमीन के नीचे हलचल हो रही है तो भूकंप का ये संकेत है। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास से जोड़ा। पूरे देश में कुएं को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। इस बहस का कारण यह था कि गुजरात के लोग भूकंप से बहुत ज्यादा डरते हैं और कारण यही है कि 2001 के भूकंप ने गुजरात के लोगों में बहुत खौफ पैदा कर दिया है क्योंकि उनका बहुत कुछ छीन लिया था उस भूकंप ने। अब लोगों के इसी डर को देखते हुए इस कुएं की जांच जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है और आज भी ये टीम इस कुएं पर पहुंची और अभी वो अपनी एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है। यहाँ इस टीम को यह भी कहना है कि इस घटना को भूकंप की आशंका से जोड़ना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक जब किसी इलाके में भारी बारिश और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है तो उससे कुएं का पानी समुद्र के पानी की तरह हिल जा सकता है। कारण यही है कि जमीन के नीचे सिर्फ खाली जगह नहीं होती, वहां अगर हवा फंस जाए या हवा का दबाव बनने लगे तो ऐसे ऊपरी सतह पर मौजूद पानी हिल सकता है। हालांकि यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी कुएं से 500 मीटर दूर एक और कुआं है जिसका पानी नहीं हिल रहा है। सवाल उठता है कि अगर बारिश के कारण इस कुएं के नीचे हवा का दबाव बना तो यही चीज इस कुएं में 500 मीटर दूर क्यों नहीं हो रहा। सारे सवालों को देखते हुए इस कुएं की जांच की जा रही है और सरकार का कहना है कि जब तक जांच नहीं होती तब तक लोग इस घटना को लेकर गलत दावे अफवाहें ना फैलाएं। देखिए
14: आज हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो जियोलॉजिस्ट की टीम है उनके द्वारा इस स्थल की विजिट की गई। उनके ध्यान पे ये आया है प्राथमिक कि वहाँ पे एयर जो है बिकॉज ऑफ रेन, जो पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई है उसके कारण कुछ एयर नीचे एक्वीफर में ट्रैप हो गई है। जब उस एयर में मूवमेंट होता है तो उस कारण थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट ऊपर के सतह पे भी हमें देखने मिलता है।
0: और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में चर्चा हो रही है। ये सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की से सुरक्षित निकालने के लिए किया गया था। उन्हें ईरान से खतरा था। पिछले महीने जो दावा है 7 और 8 जुलाई को तुर्की में नेटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस दौरान मोसाद ने CIA को बताया था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर सकता है। CIA को डर था कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन पर अटैक कर सकता है। उस वक्त खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो सम्मेलन खत्म करने के बाद पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे, जबकि वो कतर से गिफ्ट में मिले विमान से तुर्की आए थे। ये पूरी खबर CIA द्वारा फैलाई गई थी क्योंकि ये उनके सीक्रेट ऑपरेशन का पहला चरण था। 8 जुलाई को तस्वीरों में ये देखा गया कि अंकारा एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप नए एयरफोर्स वन के बजाय पुराने एयरफोर्स वन में गए। इस विमान के पास पत्रकार और अन्य सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पुराने एयरफोर्स वन में बैठना एक छलावा था। द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि CIA ने तुर्की से डोनाल्ड ट्रंप को निकालने के लिए जो प्लान बनाया था उसके तहत दिखावे के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पुराने एयरफोर्स वन में बैठना था और फिर इसके बाद विमान के दूसरे दरवाजे से निकलकर अमेरिकी वायुसेना के एक सीक्रेट विमान में उनको दरअसल जाना था। यानी जिस एयरफोर्स वन से अमेरिकी राष्ट्रपति के ब्रिटेन जाने की खबर आई थी, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उस विमान में थे ही नहीं, बल्कि वो तो अमेरिकी सेना के एक दूसरे विमान से ब्रिटेन गए थे। ईरान से खतरे को देखते हुए ये पूरा ऑपरेशन CIA ने ऑपरेट किया था। CIA ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरी दुनिया की नजरों से बचाकर तुर्की से कैसे निकाला, अब ये देखिए। CIA ने दुनिया को दिखाया कि अंकारा एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कार से उतरे, पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए। लेकिन कुछ खास बातों पर गौर कीजिए। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप विमान में दाखिल हो रहे थे, उसी वक्त विमान को चारों तरफ से सीक्रेट सर्विस के लोगों ने घेरा हुआ था। विमान के दूसरी तरफ एक ट्रक खड़ा था जिसके जरिए विमान में खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाती है। इस ट्रक के ऊपर एक कंटेनर भी था। जब पत्रकारों को एयरफोर्स वन के पिछले दरवाजे से एंट्री दी गई, उस वक्त ये केटरिंग ट्रक वहां से चला गया। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है, और यह खबर हम आपको वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बता रहे हैं, कि CIA ने डोनाल्ड ट्रंप को इसी केटरिंग ट्रक के कंटेनर में छिपाकर निकाला था। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप विमान में दाखिल होने के बाद दूसरे दरवाजे से केटरिंग ट्रक के कंटेनर में आकर बैठ गए और इसके बाद इस कंटेनर को वहां से हटाकर अमेरिकी वायुसेना के C-32A विमान तक ले जाया गया। CIA के अलावा किसी को पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप कंटेनर में थे। जिस विमान में डोनाल्ड ट्रंप को चोरी छिपे ले जाया गया उसे एयरफोर्स 2 भी कहते हैं। CIA के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी बहुत से व्हाइट हाउस स्टाफ को भी नहीं दी गई। यहां तक कि कई पत्रकारों, व्हाइट हाउस के स्टाफ को यही लगता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ पुराने वाले एयरफोर्स वन में सवार हैं। इसी विमान के कर्मचारियों ने पत्रकारों से विंडो शेड्स को बंद रखने के निर्देश दिए थे। जब पत्रकारों ने ट्रंप से विंडो शेड्स बंद रखने को लेकर सवाल पूछे थे, तब ट्रंप ने कहा था कि शायद वो जिस फ्लाइट में बैठे थे वो सबसे खतरनाक फ्लाइट थी।
15: But if I go, you go, right?
16: Was there a
15: so perhaps, today? Perhaps someday we'll change professions.
0: अब आपको एक ऐसे शातिर ठग के बारे में बताएंगे जिसने मुंबई, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर से लेकर कोलकाता तक ऐसा ठगी का जाल बिछाया कि पिछले 10 साल में करीब 40 महिलाओं को करोड़ों की ठगी का शिकार बना लिया। इस शख्स का नाम है अनुज त्रिवेदी, जो सीतापुर के चंद्रावल गांव का रहने वाला है। खुद को मुंबई और देश के बड़े शहरों में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी बताने वाला ये ठग अभी महाराष्ट्र की जेल में बंद है। इस हाई प्रोफाइल मामले में भूचाल तब आया जब इसकी आंच सीतापुर के सेवता से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी के परिवार तक पहुंच गई। ठगी का यह आरोपी अनुज त्रिवेदी विधायक ज्ञान तिवारी का समधी है। विधायक ने अपने इसी समधी के खिलाफ रेउसा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। खुद अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस फरेब से पर्दा उठाया। उन्होंने रोते हुए बताया कि आरोपी ने बेटी की शादी के वक्त उनसे सब झूठ बोला। विधायक ने कहा कि अगर उनका दामाद प्रखर त्रिवेदी भी इसमें शामिल हो तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
17: हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है आज हम भी ठगे हैं और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूं, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
0: अनुज त्रिवेदी की ठगी की शिकार कई महिलाओं ने सामने आकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस शातिर को बेनकाब किया है। अब आरोप क्या क्या है वो सुनिए। आरोप है कि 2016 से महिलाओं को अपना शिकार ये शख्स बना रहा था। आरोप है कि ये ठग अखबारों में शादी के विज्ञापन छपवाता, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाता और जब विवाह के संबंध में अमीर महिलाएं इसके संपर्क में आती थी तो उन्हें झांसा देता था या उनसे ठगी करता था। ये ठगी कभी भी अपने सही नाम असली पहचान का इस्तेमाल नहीं करता था। कभी ये अजय अग्रवाल बन जाता, कभी यही शख्स अजय सिंह बन जाता, कभी चंद्र प्रकाश, कभी संतोष सिंह, कभी अजय गुप्ता। ये आरोपी मुख्य रूप से 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित और तलाकशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और इसकी शिकार ऐसी महिलाएं भी होती थी जिनके पति का निधन हो चुका था, जिन लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष होता था या किसी तरह से शादी में अड़चने आती थी, ये उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। ये उनसे शादियां रचाता, नजदीकियां बढ़ाता, धीरे धीरे भरोसे में लेकर उनकी गाढ़ी कमाई, नकदी, सोना चांदी, आभूषण पर धीरे धीरे हाथ साफ करता। अधिकतर महिलाएं बदनामी के डर से चुप रह जाती। कई महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए देश के अलग अलग थानों में अब शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। एक महिला ने मई 2025 में इसके खिलाफ महाराष्ट्र के डोंबिवली थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके एक साल के बाद मुंबई पुलिस को इसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली और अभी ये कल्याण की आधारवाड़ी जेल में बंद है। और अब कई और महिलाओं ने सामने आकर इसकी ठगी का खुलासा भी किया है।
16: इसने बताया कि मैं मुंबई का रहने वाला हूं और रियल इस्टेट का काम करता हूं। मेरी बीबी का गले के कैंसर से 2014 में मृत्यु हो गई है। मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस एक पुत्र।
0: शाम को घर आते वक्त धनिया लाना भूल गए, सुबह की चाय के लिए दूध खत्म हो गया। तुरंत ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट खोलो और 10 मिनट में सब कुछ मंगा लो, 10 से 18 मिनट। बड़े शहरों में अब तमाम लोगों की सुबह और शाम अब इसी एक आदत से शुरू और खत्म होती है। बटन दबाया नहीं, बाइक वाला डोरबेल बजा देता है। इंस्टेंट डिलीवरी के इस दौर में सब कुछ मिनटों में दरवाजे पर हाजिर है। लेकिन जरा ठहरिए, कि आपने कभी सोचा है कि इस रफ्तार और जिस रफ्तार से ये कंपनियां आपके घर तक सामान पहुंचा रही हैं, उसी रफ्तार से कहीं आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? 7 अगस्त को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने मुंबई के मलाड वेस्ट में ब्लिंकिट के एक डार्क स्टोर पर छापा मारा तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ ताजे फल और हरी सब्जियां जिन्हें आप बड़े भरोसे से मंगवाते हैं ना, उनके बीच कॉकरोच आराम से दावत उड़ाते हुए पाए गए। खाने पीने का सामान सीधे गंदी जमीन पर फेंका हुआ था और जिस रैक पर रखा था उस पर रस्ट लगी हुई थी। कोल्ड स्टोरेज के अंदर ऐसा सामान भरा पड़ा था जो या तो एक्सपायर्ड हो चुका था या जिसके पैकेट से छेड़छाड़ की गई थी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और वजह चाहे जो हो एक हद तक ही सहा करो, उसके बाद स्वाहा करो। नमस्कार।

0: झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है, जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है।
2: अलग अलग
1: जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।

0: तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में,
1: हम लोग साथ हैं आपके।
0: हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
2: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
0: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीके से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
3: आप पास हो गई है फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी
0: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट हो। जो पैसा देके पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
3: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
0: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटा टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
2: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
3: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं दिया।
0: मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए।
3: आपकी बहन है छोटी?
0: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए
3: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी।
0: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ा।
4: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा।
2: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
5: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
2: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखे किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है।
6: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था,
9: लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
3: बहन को पैर में भी लगा हुआ है
10: सर, बहुत गंदा मारा है सर, बहुत।
3: आपको भी
10: जी सर, देखिए ना सर,
11: बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा, मोटा मोटा डंडा सर, बांस का डंडा से मारा है सर,
10: जबकि हम लोग पीस
11: नहीं थी।
2: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
12: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा हुआ, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
2: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
12: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
13: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
12: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम कोई

0: लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस
1: सोचिए, ये हाल है जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
2: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि 8-8 बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
3: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं,
4: लेकिन कोई रिपोर्ट
3: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती, क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठीचार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
5: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
6: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है, तो इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
7: सीजीएल भी दिए थे 2-3 बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया, उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक की वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
8: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
9: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
10: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच तक टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98%, किसका 96%, किसका 97%। तो ये बोलना चाहते हैं, ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है? सारे के सारे सीट को बेच दिया गया, और गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया, वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
11: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे, और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है दूसरे जिले का, यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
12: ये कब हुआ?
11: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
12: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
11: नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
5: छात्रों के मुद्दे पर संसद में, सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप है ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही, तस्वीरें देखिए।
4: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
13: थी? हमारे लोग डबल स्टैंडर्ड इस तरह वो अलग है, सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
4: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
14: आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
15: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो, शरम करो, शरम करो।
16: राहुल जी ने झारखंड के
15: झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शरम करो,
17: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
18: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
19: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
20: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं उनके कमरे में बैठते हैं, नहीं
21: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं जिसके प्रमाण आए हैं उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ, तो राहुल गांधी उस पर खामोश है। वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
22: पूछिए गृहमंत्री से ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
23: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
24: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन नहीं चली है तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
25: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
26: कल भी बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली, और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी चंदा चोरी का मामला उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस से जज जॉन हाउस स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
5: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, यह सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है। 1.5 साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
27: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई 1.5 साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी, खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
27: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार? जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है, और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
0: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप, और अंदाजा लगाइए ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
1: काफी टाइम हो गया सर, गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
0: अच्छा,
1: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
2: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, 2 बार मैं बचा हूँ उनसे,
0: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
2: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
27: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है? अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां 1.81 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
3: सड़क के बारे में कोई सोचना करनी है?
0: कितनी बार यहाँ आ चुकी है?
3: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं कर, सब बता देते हैं जा जा जा, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन देकर भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते हैं 1 हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
6: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं? हम भी गिर पड़ते हैं, पैदल भी गिरते हैं।
0: कब से ये समस्या है आपसे?
6: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई रहते डलवाने के लिए डलवा नहीं पा रहे हैं।
0: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
6: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। 15 दिन की मोहलत ली रहे, फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
0: आज आप आए तो क्या हुआ?
6: जब तक काम नहीं चालू होगा, जब तक नहीं कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ से।
7: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1.81 करोड़ की है, उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
5: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार, जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन सर, हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है, इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह से रिजल्ट हुआ है इस तरीका से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें
4: आप पास हो गई है फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
3: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है, हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
3: ये मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं, अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए।
4: आपकी बहन है छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है, हम जहाँ तैयारी करते हैं आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी।
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ो,
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा। ये
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखी किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार किसी का हाथ किसी का पैर किसी का कंधा किसी की कोहनी किसी का चेहरा किसी का सिर लाठियों के निशान मौजूद है।
6: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था,
9: लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
4: बहन को पैर में भी लगा हुआ है।
10: सर बहुत गंदा मारा है सर, बहुत
4: आपको भी
10: जी सर देखिए ना सर,
11: बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा, मोटा मोटा डंडा सर, बांस का डंडा से मारा है सर,
10: जबकि हम लोग पिस्तौल नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
12: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
12: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूठा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
9: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
12: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस
1: सोचिए ये हाल है जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और बहुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
13: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि 8-8 बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
14: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं,
15: लेकिन कोई रिपोर्ट,
14: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती, क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठी चार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
0: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
5: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है। इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
15: सीजीएल भी दिए थे दो तीन बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक की वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी। और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
1: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
16: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
17: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच तो टॉप किए हैं, रैंकिंग लाए, रैंक लाए हैं, किसका 98%, किसका 96%, किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है। सारे के सारे सीट को बेच दिया गया, गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
16: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है दूसरे जिले का, यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
18: ये कब हुआ आपके?
16: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
18: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
16: नहीं, अभी ज्वाइनिंग, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
19: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
20: है? वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड
21: है वो इश्यू अलग है। 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
19: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
22: सर आपको लगता है, मैं लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
23: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो, शरम करो, शरम करो।
24: राहुल जी ने झारखंड के छात्रों के
23: झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शरम करो, माफी मांगो।
25: माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
26: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
27: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तो वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है, जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
28: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट नहीं
29: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में नौकरियां बिकी हैं जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
30: पूछिए गृहमंत्री से
2: ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
3: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
4: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
6: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
7: कल भी बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे, जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का मामला, उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते वैसे हाउस से जज जॉन हाउस से स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
0: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है। 1.5 साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
8: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
9: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई 1.5 साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी, खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
8: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
9: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप और अंदाजा लगाइए, ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त
1: एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का, जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
5: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर?
1: अच्छा,
5: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
10: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
1: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
10: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
8: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
11: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए यह है नेहा घारे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं। उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
12: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
13: तर आजची न्यूज इथे संपते। रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
11: तस्वीरें रायगढ़ के करजत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रख दी।
14: महाराष्ट्र के करजत तालुका में कुंदीवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, जैसा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है। करजत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है। उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई, उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी?
12: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
14: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
12: हाँ, पहुंचा है ना, सबने रील हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में। तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
15: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं तो रास्ते और खराब थे,
12: रास्ते पे वो खड्डे है। तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, सरकार ने हमारी सुनी।
11: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
16: लड़की का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है या आपने दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, मेरी मांग है।
11: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा हैं जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
29: कर्ज पंदिवडेरे रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या वर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
11: इन बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था, मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी, वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जन आज तक।
0: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां एक करोड़ 81 लाख रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
17: सड़क के बारे में कोई सोचना करनी है?
18: कितनी बार यहां आ चुकी है?
17: कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहां कोई सुना ही नहीं करता, बस बता देते हैं जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। आश्वासन देकर भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते हैं एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
18: बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, कहा हम भी पढ़ते हैं, पैदल भी करते हैं।
19: कब से ये समस्या है आपकी?
18: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई रहते डलवाने के लिए डलवा नहीं पा रहे हैं।
19: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
18: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है, 15 दिन की मोहलत ली है, फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
19: आज आप आए तो क्या हुआ?
18: जब तक काम नहीं चालू होगा, जब तक यहाँ कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ से।
20: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
0: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है। जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरकत से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जितना मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीके से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें
4: आप पास हो गई है फिर भी चाहते कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
3: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहे कि दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है, हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं दिया।
3: मेरे ही पे तैयारी करते, हम इसको समझाए, अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए।
4: आपकी बहन है छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इससे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ो।
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा ये।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है।
6: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था, अंदर।
9: सात साढ़े सात बजे तक लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
10: बहन को पैर में भी लगा हुआ है
11: सर, बहुत गंदा मारा है सर, बहुत।
10: आपको भी
11: जी सर, देखिए ना सर,
12: बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा, मोटा मोटा डंडा था, बांस का डंडा से मारा है सर,
11: जबकि हम लोग पिस्तौल भी नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठीचार्ज को लाठीचार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
13: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छः सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहाँ ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
13: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूछा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
9: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
13: देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
1: सोचिए ये हाल है, जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
14: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि आठ आठ बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
15: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
16: लेकिन कोई रिपोर्ट
15: नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है।

0: कि सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
1: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है, तो इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
2: सीजीएल भी दिए थे दो तीन बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया, उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक के वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
3: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
4: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
5: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच टॉप किए हैं, रैंक लाए हैं, किसका 98%, किसका 96%, किसका 97%। तो ये बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है, सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। और गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया, वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
6: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पास सर्टिफिकेट मेरे पास है, दूसरे जिले का यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
7: ये कब हुआ?
6: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
7: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
6: नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में, सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
8: सर, हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई?
9: डबल स्टैंडर्ड
10: वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
8: सर, अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन?
11: आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
12: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो।
13: राहुल जी ने झारखंड के छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए?
12: राहुल गांधी शरम करो,
14: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
15: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते हैं, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
16: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
17: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट हाउस के अंदर नहीं आते।
9: इतने दिन से हल्ला कर रहे।

0: सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब क्या हुआ, आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
1: पूछिए गृह मंत्री से, ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
2: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूते हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
3: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
4: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
5: कल भी बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे, जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का मामला, उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस से जज जॉन हाउस से स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
6: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है, 1.5 साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
7: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा, 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
8: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई 1.5 साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए, आपकी खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
7: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं। हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
8: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप और अंदाजा लगाइए, ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का, जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
9: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
8: अच्छा,
9: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
10: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
8: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
10: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
7: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
11: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं। उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
12: कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही, तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत,
13: तुम्ही बघू शकता।
14: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
12: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
11: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रख दी है।
15: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कोंदिवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, एक जैसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है। कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है, उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
13: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए। हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
15: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
13: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में, तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
15: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं तो रास्ते और खराब थे,
13: रास्ते पे वो खड्डे है, तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो। सरकार ने हमारी सुनी।
11: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
16: का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहा खराबी है कहा ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है या आपने दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, मेरी मांग है।
11: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जन अल्फा है जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
4: कर्ज बंदिवडेरे रस्त्याची जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या वर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
11: इन बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जर आज तक।
6: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
17: मैं सड़क के बारे में कुछ सोचना करनी है।
18: कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं?
17: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं कर, बस बता रहे थे जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, दूसरे दिन काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन देकर बता दिया था, हम लोग चले जाते वापस, बता देते एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
19: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं? कहा करते हम भी पढ़ते हैं, पैदल भी करते हैं।
18: कब से ये समस्या है आपसे?
19: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई राय डलवाने के लिए डलवा नहीं पा रहे हैं।
18: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
19: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है, 15 दिन की मोहलत ली है, फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
18: आज आप आए तो क्या हुआ?
19: जब तक काम नहीं चालू होगा जब तक नहीं कोई लोग नहीं जाएंगे यहाँ से।
20: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
6: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार, जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरकत से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह से रिजल्ट हुआ है इस तरीका से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
4: आप पास हो गए फिर भी चाहते कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
3: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
3: ये मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं, अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए।
4: आपकी बहन है छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ा।
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है। यह मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार किसी का हाथ किसी का पैर किसी का कंधा किसी की कोहनी किसी का चेहरा किसी का सिर लाठियों के निशान मौजूद है।
6: बिल्ली को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था, अंदर
9: लाठीचार्ज किया गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
10: बहन को पैर में भी लगा हुआ है।
11: सर बहुत गंदा मारा है सर, बहुत
10: आपको भी
11: जी सर देखिए ना सर,
12: बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा, मोटा मोटा डंडा सर, बांस का डंडा से मारा है सर,
11: जबकि हम लोग पिस्तौल भी नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठीचार्ज को लाठीचार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
13: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
13: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूठा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
9: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
13: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस
1: सोचिए ये हाल है जहाँ मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और बहुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
14: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि 8-8 बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
15: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं,
16: लेकिन कोई रिपोर्ट,
15: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठीचार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
0: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
5: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है। इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
16: सीजीएल भी दिए थे दो तीन बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक की वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
17: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
18: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
19: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच तो टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98% किसका 96%, किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है। सारे के सारे सीट को बेच दिया गया, और गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
18: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद चार एग्जाम लिया गया हम लोग से, चारों एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है दूसरे जिले का, यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
20: ये कब हुआ आपके?
18: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
20: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
18: नहीं, अभी ज्वाइनिंग, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
21: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
22: है? डबल स्टैंडर्ड
21: देख सकता है क्या सर?
22: वो इश्यू अलग है, सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
21: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
23: आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
24: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो, शरम करो, शरम करो।
25: राहुल जी ने झारखंड के छात्रों के
24: झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शरम करो,
26: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
27: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
28: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तो वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है, जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
29: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट नहीं
30: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
31: पूछिए गृह मंत्री से
2: ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
3: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
4: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
6: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
7: कल भी बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी चंदा चोरी का मामला उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते वैसे हाउस से जज जॉन हाउस से स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
0: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है। डेढ़ साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
8: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। डेढ़ साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
9: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब डेढ़ साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन डेढ़ साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई डेढ़ साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
8: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
9: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप और अंदाजा लगाइए, ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त
1: एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का, जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
5: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
1: अच्छा,
5: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
10: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
1: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
10: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
8: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
11: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं। उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
12: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
13: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
11: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रखी है।
14: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कुंदीवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है। कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है। उसके बाद इन्हें कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
12: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
14: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
12: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील्स हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में। तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
15: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं हाँ। तो रास्ते और खराब थे,
12: रास्ते पे वो खड्डे है। तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, सरकार ने हमारी सुनी।
11: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
16: लड़की का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है या आपने दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, मेरी मांग है।
11: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जन अल्फा है जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
30: कर्ज बंदिवडेरे रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या वर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
11: इन बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था, मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी, वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जन, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
17: सड़क के बारे में कोई सोचना करनी है।
18: कितनी बार यहाँ आ चुकी है?
17: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं कर, बस बता रहे थे जा जा जा, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, 2 दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन दे भगा दिया था, हम लोग चले जाते वापस, बता देते एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
18: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं? हम भी गिर पड़ते हैं, पैदल भी गिरते हैं।
19: कब से ये समस्या है आपसे?
18: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई रहे थे डलवाने के लिए, डलवा नहीं पा रहे हैं।
19: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
18: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। 15 दिन की मोहलत ली, फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
19: आज आप आए तो क्या हुआ?
18: जब तक काम नहीं चालू होगा, जब तक नहीं कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ से।
20: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
0: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है। जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है। उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
3: हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जितना मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
4: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीके से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
5: आप पास हो गई है फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी
4: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट, जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
5: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते,
4: हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
5: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
4: ये मेरे ही पे तैयारी करते, हम इसको समझाएं अभी तैयारी करने के लिए तो मजबूर किए।
5: आपकी बहन है छोटी?
4: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
5: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
4: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखा दे कि नहीं ऐसा पढ़ो।
6: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा ये।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखी किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है।
7: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
8: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
9: गर्दन में, हाथ में था,
10: तक लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
11: बहन को पैर में भी लगा हुआ है।
12: सर बहुत गंदा मारा है सर, बहुत
11: आपको भी
12: जी सर, देखिए ना सर,
13: बांस का डंटा था सर, बांस का डंटा, मोटा मोटा डंटा सर, बांस का डंटा से मारा है सर,
12: जबकि हम लोग पिस्तौल भी नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं, लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
14: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
14: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
10: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
14: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
1: सोचिए ये हाल है जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हुआ, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
15: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि आठ आठ बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
16: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग भी ऐसा शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
17: लेकिन कोई रिश्ता
16: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठी चार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
0: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
6: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना

0: सीजीएल भी दिए थे, दो तीन बार इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक के वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
1: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
2: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
3: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच तो टॉप किए हैं, रैंक लाए हैं, किसका 98% 96% 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है, सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। और गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
4: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जाँच हुई, सारी जाँच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पास सर्टिफिकेट मेरे पास है दूसरे जिले का, यहाँ पास लिखा हुआ है और यह हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
5: ये कब हुआ?
4: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
5: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
4: नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
6: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठी चार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठी चार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
7: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
8: है? डबल स्टैंडर्ड
9: है क्या सर? वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
7: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
10: आपको लगता है मैं लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
11: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो।
12: राहुल जी ने झारखंड के छात्रों के लिए
11: राहुल गांधी शरम करो,
13: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
14: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते हैं, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
15: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है, जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
16: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट नहीं
17: आते। इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
18: पूछिए गृहमंत्री से ये डर किस बात का है नौजवान।

0: के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
1: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूते हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
2: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
3: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
4: कल भी ये बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे, जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का मामला, उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस जॉन हाउस स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
5: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है, डेढ़ साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
6: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। डेढ़ साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब डेढ़ साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन डेढ़ साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई डेढ़ साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए, आपकी खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
6: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
7: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप, और अंदाजा लगाइए ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त, एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहां बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहां से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का, जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
8: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
7: अच्छा,
8: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
9: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
7: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
9: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
6: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चूं तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
10: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
11: कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही, तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत,
12: तुम्ही बघू शकता।
13: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
11: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
10: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है, ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रख दी।
14: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कोंदिवाड़े एक सामान्य गांव है, वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, एक जैसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है, कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब ये लोग स्कूल जाते हैं सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है, उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
15: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
14: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
15: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील्स हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में, तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
12: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं। हाँ। तो रास्ते और खराब थे,
15: रास्ते पे वो खड्डे है, तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, सरकार ने हमारी सुनी।
10: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
16: का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है ये आपने दिल्ली तक पहुँचाना चाहिए, मेरी मांग है।
10: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा है जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
3: कर्ज बंदिवडेरे रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज यावर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
10: बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जर, आज तक।
5: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां 1.81 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
17: मैं सड़क के बारे में कोई सूचना करनी है।
18: कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं?
17: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं करता। बस बता रहे थे जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, 15 दिन में काम चालू हो जाए लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। आश्वासन देने भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
19: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं, कहा करते हम गिर पड़ते हैं, पैदल भी गिरते हैं।
20: कब से ये समस्या है आपसे?
19: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई राय डलवा नहीं पा रहे हैं।
20: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
19: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है, 15 दिन की मोहलत ली है फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
20: आज आप आए तो क्या हुआ?
19: जब तक काम नहीं चालू होगा जब तक नहीं कोई लोग नहीं जाएंगे यहाँ से।
21: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1.81 करोड़ की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
5: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
1: कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार, जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है। उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है। हम नहीं चाहते कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीका से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
4: आप पास हो गए फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
3: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटा टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
3: ये मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं, अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए।
4: आपकी बहन है छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते हैं आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ो।
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार किसी का हाथ किसी का पैर किसी का कंधा किसी की कोहनी किसी का चेहरा किसी का सिर लाठियों के निशान मौजूद है।
6: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था,
9: लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
10: बहन को पैर में भी लगा हुआ है।
11: सर बहुत गंदा मारा है सर, बहुत
10: आपको भी
11: जी सर देखिए ना सर,
12: बांस का डंटा था सर, बांस का डंटा, मोटा मोटा डंटा सर, बांस का डंटा से मारा है सर,
11: जबकि हम लोग पिस्तौल
12: नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेर गर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
13: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
13: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूठा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
9: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
13: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस
1: सोचिए ये हाल है जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
14: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि 8-8 बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
15: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं,
16: लेकिन कोई रिपोर्ट
15: नहीं, ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठी चार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
0: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
5: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है। इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
16: सीजीएल भी दिए थे दो तीन बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक की वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
17: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
18: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
19: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच तो टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98% किसका 96%, किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है। सारे के सारे सीट को बेच दिया गया, गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
18: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यही पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद चार एग्जाम लिया गया हम लोग से, चारों एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है दूसरे जिले का, यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
20: ये कब हुआ आपके?
18: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
20: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
18: नहीं, अभी ज्वाइनिंग, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
21: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
22: है? डबल स्टैंडर्ड देख सकता है
23: क्या सर? वो इश्यू अलग है, सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
21: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
24: आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
25: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो।
26: राहुल जी ने झारखंड के छात्रों के
25: झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शरम करो,
27: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
28: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
29: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तो वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है, जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
30: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट नहीं
31: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
32: पूछिए गृहमंत्री से
2: ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं। इतने डरपोक कैसे हो गए आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
3: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
4: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
6: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
7: कल भी बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी चंदा चोरी का मामला उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते वैसे हाउस से जज जॉन हाउस से स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
0: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है। 1.5 साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
8: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
9: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई 1.5 साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी, खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
8: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है। और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
9: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप और अंदाजा लगाइए, ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त
1: एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का, जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
5: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
1: अच्छा,
5: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
10: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
1: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
10: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
11: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
12: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए यह है नेहा घारे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं। उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
13: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
14: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
12: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रखी है।
15: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कोंदीवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है। कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है। उसके बाद इन्हें कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
14: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
15: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
14: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में। तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
16: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं हाँ। तो रास्ते और खराब थे,
14: रास्ते पे वो खड्डे है। तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, सरकार ने हमारी सुनी।
12: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
17: लड़की का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है या आपने दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, मेरी मांग है।
12: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा है जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
31: कर्ज बंदी उड़े रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या वर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
12: बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था, मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी, वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जन, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां 1.81 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
18: सड़क के बारे में कोई सोचना करनी है?
19: कितनी बार यहाँ आ चुकी है?
18: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं करता। सब बता रहे थे जाओ जाओ जाओ, 1 हफ्ते में काम चालू हो जाए, 15 दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन देकर बता दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते 1 हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
19: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं? कहा करते हम भी गिर पड़ते हैं, पैदल भी गिरते हैं।
20: कब से ये समस्या है आपसे?
19: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई रहे थे डलवाने के लिए, डलवा नहीं पा रहे हैं।
20: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
19: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। 15 दिन की मोहलत ली, फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
20: आज आप आए तो क्या हुआ?
19: जब तक काम नहीं चालू होगा, जब तक नहीं कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ से।
21: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1.81 करोड़ की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
0: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है। जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
3: हम बोल नहीं पाते, किस तरकत में हम तैयारी कर रहे हैं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरकत में हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जितना मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीके से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
4: आप पास हो गई है फिर भी चाहते कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट, जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
3: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहे कि दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है, हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं दिया।
3: मेरे ही पे तैयारी करते, हम इसको समझाएं, अभी तैयारी करने के लिए तो मजबूर किए।
4: आपकी बहन है छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है, हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ो।
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा ये।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखी किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है।
6: बिल्ली को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था, अंदर।
9: सात साढ़े सात बजे तक लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग भी ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
10: बहन को पैर में भी लगा हुआ है
11: सर, बहुत गंदा मारा है सर, बहुत।
10: आपको भी
11: जी सर, देखिए ना सर,
12: बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा, मोटा मोटा डंडा था, बांस का डंडा से मारा है सर,
11: जबकि हम लोग पिस्तौल भी नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं, लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
13: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छः सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
13: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूछा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
9: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
13: देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
1: सोचिए ये हाल है, जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
14: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि आठ आठ बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
15: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग ऐसा जब नहीं बोले हैं, अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
16: लेकिन कोई रिश्ता
15: नहीं, ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती, क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठीचार्ज

0: जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
1: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है, तो इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
2: सीजीएल भी दिए थे 2-3 बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया, उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक के वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
3: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
4: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
5: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच टॉप किए हैं, रैंक लाए हैं, किसका 98%, 96%, किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है, सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। और गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया, वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
6: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पास सर्टिफिकेट मेरे पास है, दूसरे जिले का यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
7: ये कब हुआ?
6: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
7: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
6: नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में, सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
8: सर, हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई?
9: वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
8: सर, अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
10: आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
11: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो।
12: राहुल जी ने झारखंड के छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए?
11: राहुल गांधी शरम करो,
13: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
14: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते हैं, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं, ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
15: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
16: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट उसका अंदर नहीं आते।
17: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं,

0: क्या हुआ आपके पूरे झारखंड में? बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है। वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
1: पूछिए गृहमंत्री से, ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
2: जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूते हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
3: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
4: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
5: कल भी बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे, जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का मामला, उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस से जज जॉन हाउस से स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
6: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो 3 बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है। 1.5 साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
7: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
8: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई 1.5 साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए, आपकी खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
7: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
8: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप और अंदाजा लगाइए, ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
9: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
8: अच्छा,
9: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
10: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
8: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
10: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
7: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चूं तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
11: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए यह है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
12: कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही, तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत,
13: तुम्ही बघू शकता बघू शकता
14: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
12: तर आजची न्यूज इथं संपते, रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
11: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है, ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रख दी है।
15: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कोंदिवाड़े एक सामान्य गांव है, वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई, वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, जैसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है, कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब ये लोग स्कूल जाते हैं सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है, उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
16: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए। हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
15: तो ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
16: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में, तो हमारी रील वायरल हुई। तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
15: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं। हाँ। तो रास्ते और खराब थे,
16: रास्ते पे वो खड्डे है, तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो। सरकार ने हमारी सुनी।
11: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
17: किका वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहा खराबी है कहा ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है या आपने दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, मेरी मांग है।
11: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा हैं जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
18: कर्ज बंदिवडेरे रस्त्याची जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या वर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
11: इन बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचा दी। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जर आज तक।
6: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
19: मैं सड़क के बारे में कुछ सोचना करनी है।
20: कितनी बार यहाँ आ चुकी है?
19: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं कर, बस बता रहे थे जा जा जा, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, दो दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन देकर भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते हैं 1 हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
21: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं कहाँ कहाँ, हम भी गिर पड़ते हैं, पैदल भी गिरते हैं।
20: कब से ये समस्या है आपसे?
21: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई राय डलवाने के लिए डलवा नहीं पा रहे हैं।
20: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
21: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है, 15 दिन की मोहलत ली है, फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
20: आज आप आए तो क्या हुआ?
21: जब तक काम नहीं चालू होगा जब तक कोई लोग नहीं जाएंगे यहाँ से।
22: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
6: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है, जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है। जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जितना मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीके से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
4: आप पास हो गई है फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट, जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चला।
3: हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
3: ये मेरे ही पे तैयारी करते, हम इसको समझाएं अभी तैयारी करने के लिए मजबूर किए।
4: आपकी बहन है? छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते हैं आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखा दे कि नहीं ऐसा पढ़ो।
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा ये।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है। यह मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखी किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है।
6: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था, अंदर
9: सात साढ़े सात बजे तक लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग भी ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
10: बहन को पैर में भी लगा हुआ है।
11: सर बहुत गंदा मारा है सर, बहुत।
10: आपको भी?
11: जी सर, देखिए ना सर,
12: बांस का डंटा था सर, बांस का डंटा, मोटा डंटा सर, बांस का डंटा से मारा है सर,
11: जबकि हम लोग पिस्तौल भी नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं, लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
13: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छः सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहाँ न आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
13: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूछा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
9: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
13: देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
1: सोचिए ये हाल है, जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हुआ, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
14: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि आठ आठ बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
15: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग भी ऐसा शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
16: लेकिन कोई रिश्ता नहीं,
15: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठी चार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
0: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
5: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है। इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
16: सीजीएल भी दिए थे दो तीन बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक की वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी। और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
17: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
18: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
19: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच टॉप टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98% किसका 96% किसका 97%। तो ये बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है, सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
18: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पास सर्टिफिकेट मेरे पास है दूसरे जिले का, यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
20: ये कब हुआ?
18: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
20: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
18: नहीं, अभी ज्वाइनिंग अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
21: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई?
22: डबल स्टैंडर्ड
23: वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
21: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
24: आपको लगता है मैंने लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं?
25: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो।
26: राहुल जी ने झारखंड
25: जाइए,
26: झारखंड क्यों नहीं गए?
25: राहुल गांधी शरम करो,
27: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
28: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
29: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तो वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है, जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
30: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट नहीं
31: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
32: पूछिए गृहमंत्री से
2: ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं। इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
3: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूते हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
4: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
31: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
6: कल भी बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे, जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का मामला, उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस जज जॉन हाउस स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
0: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है, डेढ़ साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
7: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। डेढ़ साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
8: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब डेढ़ साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन डेढ़ साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई डेढ़ साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी, खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
7: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
8: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप, और अंदाजा लगाइए ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त
1: एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का, जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
5: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
1: अच्छा,
5: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
9: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
1: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
9: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
7: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
10: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
11: कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही, तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत,
12: तुम्ही बघू शकता।
13: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
11: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घरे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
10: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है, ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रखी है।
14: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कुंदीवाड़े एक सामान्य गांव है, वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई, वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, एक जैसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है, कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब ये लोग स्कूल जाते हैं सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है, उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
13: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का।
14: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
13: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील्स हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में। तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
12: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं हाँ। तो रास्ते और खराब थे,
13: रास्ते पे वो खड्डे है। तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, सरकार ने हमारी सुनी।
10: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
15: का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है ये आपने दिल्ली तक पहुँचाना चाहिए, ये मेरी मांग है।
10: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा है जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
31: कर्ज रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज यावर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
10: बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी, वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जर, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां 1.81 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
16: मैं सड़क के बारे में कोई सूचना करनी है।
17: कितनी बार यहाँ आ चुकी है?
16: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं कर बता रहे थे जाओ। एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, दूसरे दिन में काम चालू हो जाए लेकिन कोई काम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन दे बता दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते हैं 1 हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
17: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं, कहा करते हम भी पढ़ते हैं, पैदल भी करते हैं।
18: कब से ये समस्या है आपसे?
17: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई रहते डलवा नहीं पा रहे हैं।
18: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
17: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। 15 दिन की मोहलत ली है फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
18: आज आप आए तो क्या हुआ?
17: जब तक काम नहीं चालू होगा जब तक नहीं कोई लोग नहीं जाएंगे यहाँ से।
19: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1.81 करोड़ की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
0: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार, जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन सर, हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
3: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीका से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
4: आप पास हो गए फिर भी चाहते कि कैंसिल हो ताकि बाकी
3: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट है। जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
4: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते
3: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटा टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
4: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
3: ये मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए।
4: आपकी बहन है छोटी?
3: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
4: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
3: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ा।
5: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा ये।
1: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है। जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है,
2: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
1: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार किसी का हाथ किसी का पैर किसी का कंधा किसी की कोहनी किसी का चेहरा किसी का सिर लाठियों के निशान मौजूद है।
6: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
7: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
8: गर्दन में था, हाथ में था,
9: लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
10: बहन को पैर में भी लगा हुआ है।
11: सर बहुत गंदा मारा है सर, बहुत
10: आपको भी
11: जी सर देखिए ना सर,
12: बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा, मोटा मोटा डंडा सर, बांस का डंडा से मारा है सर,
11: जबकि हम लोग पिस्तौल
12: नहीं थी।
1: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेर गर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
13: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पाँच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
1: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
13: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूठा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
9: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
13: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस
1: सोचिए ये हाल है जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हुआ, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
14: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि आठ आठ बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
15: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग सब जमीन में बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
16: लेकिन कोई रिपोर्ट,
15: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे
1: हैं। यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठी चार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
0: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद

0: बहुत मुश्किल है सर। हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है, तो इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
1: सीजीएल भी दिए थे दो तीन बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया, उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक के वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
2: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी? आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार?
3: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
4: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98% किसका 96% किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है? सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया, वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
5: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पास सर्टिफिकेट मेरे पास है, दूसरे जिले का यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
6: ये कब हुआ?
5: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
6: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
5: नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
7: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठी चार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठी चार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही। तस्वीरें देखिए।
8: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
9: वहाँ पर? हमारे लोग डबल स्टैंडर्ड
10: वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
8: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
11: आपको लगता है मैं लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शरम करो।
12: राहुल जी ने झारखंड
13: जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए?
14: राहुल गांधी शरम करो,
15: माफी मांगो। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
16: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते हैं, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
17: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
18: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट नहीं
19: आते। इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में नौकरियां बिकी हैं।

0: जिसके प्रमाण आए हैं उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठीचार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
1: पूछिए गृहमंत्री से, ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
2: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
3: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब यहाँ आरटीआई फाइल हुई है, वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
4: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
5: कल भी ये बात हुई थी कि ठीक है, सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे, जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का मामला, उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस जॉन हाउस स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
6: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है। डेढ़ साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
7: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। डेढ़ साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
8: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब डेढ़ साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन डेढ़ साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई डेढ़ साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी, खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
7: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
8: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप और अंदाजा लगाइए, ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है, दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
9: काफी टाइम होगा सर गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर?
1: अच्छा,
9: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
10: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटते हैं, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
1: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
10: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
7: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चूं तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
11: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घारे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
12: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
13: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
11: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रखी है।
14: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कुंदीवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है, कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है, उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी?
15: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
14: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है महाराष्ट्र भर में?
15: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील्स हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में। तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
16: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं तो रास्ते और खराब थे,
15: रास्ते पे वो खड्डे है। तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, सरकार ने हमारी सुनी।
11: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
17: का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते है, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है ये आपने दिल्ली तक पहुँचाना चाहिए, ये मेरी मांग है।
11: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा है जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
4: कर्ज बंदिवडेरे रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज यावर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
11: बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जन, आज तक।
6: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रास्ते के गड्ढों के खिलाफ हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा निकल पड़ा है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी भी की। उसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अब बहुत ही जल्द यहां ₹1,81,00,000 रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
18: मैं सड़क के बारे में कुछ सोचना करनी है।
19: कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं?
18: यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं करता। बस बता देते जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, 15 दिन में काम चालू हो जाए लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। अच्छा संदे भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
20: बच्चे पढ़ने आ पा रहे हैं? कहा हम भी गिर पड़ते हैं, पैदल भी गिरते हैं।
19: कब से ये समस्या है आपसे?
20: समस्या बहुत दिन से, लेकिन कई रहते डलवाने के लिए डलवा नहीं पा रहे हैं।
19: आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं?
20: हम कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है, 15 दिन की मोहलत ली है फिर भी कहा तो कोई सुनाई नहीं है।
19: आज आप आए तो क्या हुआ?
20: जब तक काम नहीं चालू होगा जब तक यहाँ कोई लोग नहीं जाएंगे यहाँ से।
21: जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा।
6: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा, सीएम सोरेन से न्याय का दिया भरोसा। बाबूलाल मरांडी बोले, सीबीआई से डरी राज्य सरकार। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा गृहमंत्री का जवाब सुनने का दिखाएं साहस। नेता विपक्ष पर लगाया सदन को बंधक बनाने का आरोप, अमित शाह के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। आज सुबह 6 बजे एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3700 से ज्यादा फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी गई। और हिमाचल में पेट्रोल के बड़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। अनाथ और विधवा से इससे बढ़ेंगी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों को 18 दिन हो चुके हैं। रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के स्वादानुसार फायदा देखकर बोला और चुप्पी साधी जाती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार भी आंख बंद कर चुकी है। जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं नजर आता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है बढ़िया है।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार, जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
2: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
3: हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं,
1: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
3: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि एक दो नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जितना मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
1: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
4: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीके से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
5: आप पास हो गई है फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी
4: जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट, जो जो पैसा दे के पास किया हमको नहीं चाहिए कि वैसा वैसा स्टूडेंट को।
5: यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चलाते,
4: हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहे कि दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है, हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
1: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
5: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं देना।
4: ये मेरे ही पे तैयारी करते, हम इसको समझाएं, अभी तैयारी करने के लिए मजबूर किए।
5: आपकी बहन है छोटी?
4: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है, हम जहाँ तैयारी करते हैं आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे, इसको इसीलिए
5: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही।